0: मार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
3: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
2: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
4: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। और दोस्तों, मैं क्या कहूं, कर मनुज शिव की आराधना, कर मनुज शिव की साधना, भर अंतर में शिव की भावना, देखना शिव भक्ति उतर जाएगी, शिव भक्ति उतर जाएगी मन में, और शिव से हो जाओगे तुम अपने पर में। तो जब हम किसी भी इष्ट को या किसी भी शक्ति को बार बार अभ्यास करके अंदर की तरफ खींचते हैं दोस्तों, तब हमें उसका आभास होने लग जाता है। और यही आभास हमें कराता है, यही अनुभव हमें कराता है शिव पुराण, जिसके सुनने मात्र से, जिसके पठन मात्र से हम सबका जीवन सफल हो जाता है, हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं, क्षम्य हो जाते हैं, हमें ईश्वर क्षमा कर देता है, हमारे अपराध क्षमा कर देता है, ऐसा पुराण है ये। तो हमारी यही मनोरथ है, भावना है कि जो जो भी इसको सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक भी है आवाज़ जा रही है, ईश्वर उन सब के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, उन सब के घर में प्रसन्नता रहे, उनका जीवन फूल की तरह से खिला रहे और उनके सभी कार्य ईश्वर सिद्ध करें, यही हमारी मंगल कामना है। और उनके सभी दुखों का विनाश भगवान शिव करें। इसी भावना के साथ हम अपने स्टूडियो में आपको शिव पुराण सुनवाने के लिए डॉक्टर लीना सिन्हा जी को बुलवाते हैं। आज भी हमने डॉक्टर लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है, वो हमारे स्टूडियो में ही उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में आपने बहुत ही सुंदर वर्णन कार्तिकी की महिमा का किया था, बताया था कि वो कितने बलशाली हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगी वो ये था कि कार्तिकेय जब भी कोई बड़ा कार्य करने जाते थे तो अपने माता पिता को नमन करके जाते थे, उनका आशीर्वाद लेके जाते थे। अब हमारे समाज में इस भावना की अत्यधिक आवश्यकता है। ये प्रेरणा देता है हमारे नवयुवकों को और हमारी युवतियों को कि जो घर में, परिवार में हमारी युवतियों के, जो जहाँ पर हमारी लड़कियाँ शादी होकर जाती हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं वो उनके माता पिता हैं, आप उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लें और अपना कार्य आरंभ करें उनके आशीर्वाद से ही। और हमारे जो नवयुवक हैं वह भी प्रत्येक कार्य के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे उनका कार्य सफल होगा और उनके परिवार में हमेशा प्रसन्नता रहेगी, हमेशा खुश रहेंगे, वो उन्नति करेंगे, उन्नति रहेगी, लक्ष्मी अवश्य ही वहाँ पर रहेगी, विद्यमान रहेगी, कभी भी अभाव, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, क्योंकि संस्कार पड़ गए हैं, ईश्वर के जो वरदान है वो उस घर में उतर गया है। और जहाँ ईश्वर का वरदान उतर जाए, जहाँ ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ जाए, तो उस घर में तो किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता, न प्रेम का, न अन्न का, न धन का, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता दोस्तों। तो हमें और क्या चाहिए इस जीवन में, छोटा सा जीवन है, इसको स्वर्णिम बना लें, सुंदर बना लें, सुंदर सा उपवन बना लें अपने मन को, अपने जीवन को, और वो बनेगा ईश भक्ति द्वारा, शिव भक्ति द्वारा। तो लीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बड़ा स्वागत है। और आप हमें अब इस शिव पुराण में कथा आगे कैसे बढ़ती है, हम सब के लिए क्या संदेश है उन प्रसंगों से, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो सके, कि क्योंकि हमने जन्म लिया है मनुष्य रूप में, तो मनुष्य रूप में यदि जन्म लिया है तो मनुष्य के जैसे कार्य भी हमें करने चाहिए, वरना तो ये सब कार्य जो हम कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति के अलावा, वो सब तो जानवर भी कर रहे हैं, उसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। तो उनको करते हुए ही अगर हम अपना जीवन काट रहे हैं, फिर तो हम व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन, मनुष्य जीवन जो इतनी योनियों के बाद में हमको मिला है। अब हमको अपना जीवन सफल कैसे बनाना है, वह उस वो जो पद्धति है वो हमें शिव पुराण बताता है। तो हम जो भी सीखते हैं इससे, जो भी संदेश लेते हैं उससे, हम मनुष्य कहलाने योग्य ही बन जाएं तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। कम से कम मानवता तो अपने हमारे अंदर रहनी चाहिए, मानवता की दृष्टि से ही कार्य करें, आपस में व्यवहार करें, घर में, बाहर, समाज में, संसार में। तो उस सब के लिए ही हम ये कथा सुनना चाहते हैं। तो लीना जी हमें बताइए कि यह कथा कैसे आगे बढ़ती है। अब
1: मंजू जी, रुद्र संहिता के कुमारखंड का 12वां अध्याय हम लोग सुन रहे हैं। अब इस 12वें अध्याय में सभी देवी देवता जितने भी हैं सब किसका किसकी स्तुति कर रहे हैं, ये कार्तिकेय की। अब कार्तिकेय जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, अपने कैलाश पहुँचते हैं भगवान शिव और पार्वती के पास। अब देवता गण कहते हैं कि इस प्रकार तारकासुर को मारकर वर देकर अपने चराचर सहित हम सबको आपने सुखी कर दिया है, अब आप शिव जी के घर कैलाश में जाकर माता पिता का दर्शन कर। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनका चमर डुला रहे हैं, इंद्र आदि सभी देवता कार्तिकेय की यथा योग्य सेवा कर रहे हैं और प्रसन्न होकर चारों ओर घूम रहे हैं। शिव जी की जयकार करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने वहां मंगल ध्वनि की। वहां शिव शिवा को देखकर सभी विष्णु आदि देवता शीघ्र भक्ति से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करने लगे। विनम्र कुमार ने भी विमान से उतरकर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी तथा सिंहासन पर बैठी हुई जगत जननी शिवा को भी प्रणाम किया। हे नारद, प्राण प्रिय अपने पुत्र उस कुमार को देखकर वे दोनों शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु शिव जी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया और प्रेम से उसका माथा सूंघा तथा स्नेह से हाथ से छुआ। आनंदित होकर शिव जी ने उस महाप्रभु तारकारी कुमार का मुख चूमा। फिर पार्वती ने अपनी गोद में बैठाकर माथा सूंघ कर उसका मुख चूमा। हे मनारद, उन दोनों स्त्री पुरुषों का लोकाचार करते हुए बड़ा प्रेम भरा। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार का उत्सव मनाया गया। चारों ओर से जय और नमः शब्द सुनाई पड़ रहा था। हे मुनि, उसके बाद विष्णु आदि देवताओं तथा मुनियों ने शिव जी को प्रणाम कर शिव सहित कुमार की स्तुति की। अब देखिए, शिव भी कुमार की स्तुति कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि क्या इससे शिव जी छोटे हो गए? नहीं, बल्कि उन्होंने पुत्र के पराक्रम की स्तुति की। अब देवतागण कहते हैं, अब देवतागण क्या कहते हैं? कहते हैं, देव देव महादेव भक्तानां भयप्रद, नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर, अद्भुताते महादेव महालीला सुप्रदा, सर्वेषां शंकर सतां दीनबंधो महाप्रभु, वयं मूर्धियश्चाज्ञा पूजायां ते सनातनम् आवाहनम् न जानीमो गतिम चैव प्रभो अद्भुतां, गंगा सलिल धाराय हियाधाराय गुणात्मने नमस्ते त्रिदशेशाय शंकराय नमो नमः। वो कहते हैं कि देव देव महादेव, भक्तों को अभय देने वाले दयालु महेश्वर, आपको अनेक प्रकार से नमस्कार है। हे महादेव, हे दीन बंधु महाप्रभु, सभी सज्जनों का कल्याण करने वाली आपकी लीला आश्चर्यकारक है। हे प्रभु, हम अज्ञानी मूर्ख बुद्धि आपके स्थाई आवाहन को, आपकी अद्भुत गति के कारण को नहीं जानते, क्योंकि जब तक कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ था, जब शिव और पार्वती का विवाह हो गया था तो शिव पार्वती अपने आनंद लोक में थे, तो उस समय देवतागण बड़े विचलित हो रहे थे कि अब क्या होगा, कि हजारों वर्ष से ये दोनों सिर्फ रति कार्य में ही संलग्न हैं, तो कार्तिकेय का जन्म नहीं हो रहा है, अब हम लोगों का क्या होगा, तारकासुर आतंक मचा रहा है। वो धैर्य नहीं रख रहे थे, अधीर हो रहे थे, तो इसलिए अपने आप को अब वो कोस रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनकी हर प्रकार से सहायता की, कुमार को जन्म दिया और कुमार का पालन पोषण भी हुआ दिव्य प्रकार से, और कुमार के द्वारा तारकासुर का वध भी हुआ। तो समय आने पर सब कुछ होता है, हम असमय ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। अधिकांश लोग यही काम करते हैं कि समय की प्रतीक्षा नहीं करते, धैर्य धारण नहीं करते और परेशान होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, खींचने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं कि अरे हमारा काम ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन समय आने पर सब कुछ होता है। समय पाए तरवल फले कातक सींचो नीर, कि तरवल तो समय आने पर ही फलता है, चाहे तुम कितना भी पानी देते रहो। तो यहाँ पर कार्तिकेय का जन्म जब समय आता तभी होता, और तारकासुर का वध भी जब समय आता तभी होता, तो असमय अरण्य निरोधन करने से कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हम मूर्ख बुद्धि आपके स्थाई आवाहन को आपकी अद्भुत गति के कारण नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार त्रिगुणात्मा त्रिदेशों के स्वामी शिव जी के लिए नमस्कार है। वृषभ ध्वज महेश गणों के स्वामी सर्वेश्वर देव तथा तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी लोकों का संहार करने वाले रक्षक तथा रचयिता देवेश त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। संग्रहित परेश शिव परमात्मा निष्प्रपंच शुद्ध उत्कृष्ट मायावी तथा अव्यय आपको नमस्कार है। दंडधारी काल स्वरूप पास को धारण करने वाले वेद मंत्रों में चर्चित सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। भूतम भव्यम भविष्यं च स्थावरम जंगमम च यत् तब देहात् समुत्पन्नम सर्वथा परमेश्वर पाहि नः सर्वदा स्वामिन प्रसीद भगवन प्रभो वयं ते शरणापन्ना सर्वथा परमेश्वर क्षितिकंठाय रुद्राय स्वाहाकाराय ते नमः अरूपाय स्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः शिवाय नीलकंठाय चिताभस्मांग धारिने नित्यम नील शिखंडाय श्रीकंठाय नमो नमः सर्वप्रणत देहाय संयम प्रणताय च महादेवाय सर्वाय सर्वार्चित पदाय च त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नील लोहित आत्मा च सर्वभूतानां सांख्य पुरुष उच्यसे। अब देखिए क्या कहते हैं वे कि देवगण की भूत वर्तमान भविष्यत स्थावर जंगम चर अचर हे परमेश्वर ये सभी आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु भगवान स्वामी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर हम सब प्रकार से आपकी शरण में आए हैं। आप शितिकंठ रुद्र स्वाहाकार निर्गुण सगुण तथा संसार के समस्त रूपों वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ चिताभस्म को धारण करने वाले शाश्वत नील शिखंड तथा श्रीकंठ आपको नमस्कार है। सबके प्रणम में संयम से विनम्र महादेव सर्व तथा सभी द्वारा पूजित चरण आपको नमस्कार है। आप सब देवताओं में ब्रह्मा रुद्रों में नील लोहित सब प्राणियों की आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको ही पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु नक्षत्रों में चंद्रमा ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवताओं में इंद्र हैं। आप वेदों में ओंकार हैं। हे महेश्वर हमारी रक्षा करें। तुम संसार के हित के लिए सब प्राणियों को तृप्त करते हो। शुभ अशुभ के निरीक्षक महाभाग महेश्वर देवेश हमारी वृद्धि कीजिए। हम आपके आज्ञाकारी हैं। हे देव देव आपके हजारों करोड़ों रूप हैं। हम आपके अंत को नहीं पा सकते। आपको नमस्कार है। अब हजारों करोड़ों रूप कैसे हो सकता है एक का? वही है अद्वैत भाव कि सभी के अंदर परमात्मा अंश रूप में आत्मा रूप में विराजमान है। तो जितने प्राणी उतने शिव। जीवो केवल शिव की स्थिति है कि जीव केवल शिव स्वरूप है और इसलिए जीव भी नमन के योग्य है। शिव तो नमनीय है। तो अभी देवगण उनकी स्तुति करते थक नहीं रहे हैं। वो प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहे हैं क्योंकि शिव पुत्र ने तारकासुर का वध करके उन लोगों का उद्धार किया है, देवताओं का उद्धार किया है। जब भी कोई असुर बदशाली होता है तो वो सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण करता है और फिर स्वर्गाधिपति असुर बन जाता है और स्वर्गाधिपति इंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है अपने देवताओं के साथ। तो इसलिए वो बहुत परेशान होते हैं। घर जिसका भी छीन लिया जाता है वो तो परेशान होगा ही, और इंद्र का घर है स्वर्ग, देवी देवताओं का घर है स्वर्ग, अगर उस घर को छीन लिया किसी ने तो परेशान तो होंगे ही। अब उस परेशानी से मुक्ति दिलाई है कार्तिकेय ने, और कार्तिकेय कौन है? शिव के पुत्र हैं, इसलिए शिव की जो है पूजा हो रही है, शिव का नमन वंदन हो रहा है।
2: लीना जी आपने अभी जो बात कही कि जिसका घर छीना जाता है उसको फिर दुख तो होता ही है, तो ये समाज में भी देखा जा रहा है कि किसी भी गरीब की संपत्ति को कोई जो बलशाली है समाज में जिनके पास बल भी है और धन भी है वो उसको डरा धमकाकर उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। गांव के जो सीधे साधे लोग हैं वो अशिक्षित हैं, उनको पता भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। उनसे झूठे, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, उन पे झूठे अंगूठे लगवाकर उनके जो थोड़े बहुत खेत हैं जिनसे वो गुजारा करते हैं उसको भी हड़प लेते हैं, उनके छोटे छोटे जो मकान हैं उनको भी हड़प लेते हैं और वो सड़क पर आ जाते हैं। तो अभी जैसा कि आपने कहा है कि यदि ऐसा अत्याचार होता है कि किसी को किसी से भी संपत्ति हड़प ली जाती है, तो उनका मारने उनको मारने वाला भी ऐसे पाठकों को ख़त्म करने के लिए भी कोई ना कोई उनसे अधिक वीर ऐसा पैदा होता है योद्धा जो उनको समाप्त कर लेता है। क्योंकि समय तो आएगा, समय तो आता है, क्योंकि अधर्म का नाश होना है, पापी का नाश होना।
1: जिन्होंने भी ऐसा किया है या कर रहे हैं वे भी पातकी
2: हैं,
1: वे भी अधर्मी हैं।
2: तो उन पातकों का नाश करने वाला कोई ना कोई तो धर्म को मानने वाला, धर्म की पताका को फहराने वाला योद्धा आएगा ही कभी ना कभी। इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। हाँ। वो ये ना सोचें कि हमें अमर हैं इस धरती पर, हम कभी मरेंगे ही नहीं और हमें उपभोग करेंगे इसका, तो ऐसा कभी नहीं
1: तो
2: होता।
1: ये यही असुर बुद्धि है
2: जी,
1: इन्हीं को नरपशु नरपावर की संज्ञा दी गई है। यही नर प्रेत भी नर पिशाच भी यही कहलाते हैं जो मनुष्य रहते हुए मनुष्य का खून चूसते हैं। तो मनुष्य शरीर में अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे जैसा पापी अधर्मी कोई नहीं है। मनुष्य वह है जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो धर्म पर खड़ा है वह मनुष्य है, जिसके अंदर सत्य है, अहिंसा है, दया है, प्रेम है, अक्रोध है, वह मनुष्य है। लेकिन जो धर्म की स्थापना नहीं करता अपने हृदय में वह अधर्मी है। जो दूसरों को पीड़ित करता है वह अधर्मी है। तो ऐसे अधर्मी का नाश सुनिश्चित है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, लेकिन वह अधर्मी विनष्ट होगा ही। तो अभी देखिए शिव की स्तुति चल रही है। तो अब कहते हैं कि आपके हजारों करोड़ों रूप हैं और हम आपके अंत को नहीं पा सकते, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवता बार बार प्रणाम करके और स्कंद को आगे करके खड़े हो गए। सर्वेश्वर स्वयं प्रकाशित दयालु शिव जी देवताओं की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं से शंकर परम ईशान दीन बंधु सत्पुरुषों के सहायक शिव प्रसन्न होकर के कहने लगे। अब शिव क्या कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा वाक्यम में श्रुणुत आदरात सर्वथा अहम सदाम त्राता देवानाम वह कृपा निधि। दुष्ट हंता त्रिलोकेश शंकरो भक्तवत्सल कर्ता भर्ता च हर्ता च सर्वेषां निर्विकारवान यदा यदा भवेद् दुःखं युष्माकं देव सत्तमा तदा तदा माम यूयम वै भवन भजन्तु सुखेत वे। अब शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा हे विष्णु आदि देवताओं मेरी बात को आदर से सुने। मैं सदा सज्जनों का रक्षक आप देवताओं के लिए कृपा निधि हूँ। मैं दुष्टों का नाशक तीनों लोकों का स्वामी कल्याणकारक भक्तों का प्यारा विकार रहित सृष्टिकर्ता पालनकर्ता और सबका विनाश करने वाला हूँ। हे देवताओं जब जब आपको कोई दुख हो तब तब आप लोग सुख प्राप्ति के लिए मेरा भजन करें। और फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि इस प्रकार आज्ञा पाकर विष्णु आदि देवता मुनीश्वरों के साथ प्रसन्न होकर शिव तथा शिव कुमार को प्रणाम करके शिव पार्वती तथा कुमार के सुयश का वर्णन करते हुए हे मुनि वे सब आनंदित होकर अपने अपने घरों को चले गए। परमेश्वर शिव जी भी पार्वती कुमार तथा अपने गणों के साथ उस पर्वत पर आनंद से रहने लगे। हे मुनि कुमार का तथा शिव जी का सुखद एवं दिव्य यह सब चरित्र तुमसे कह दिया गया है, तुम बतलाओ अब और क्या सुनना चाहते हो। तो ये स्वामी कार्तिक चरित्र गर्भित शिव और शिवा के चरित्र वर्णन का 12वां अध्याय समाप्त होता है जो रुद्र संहिता के कुमार खंड का है। तो इसमें कुमार के पराक्रम का वर्णन किया गया है, उनके अतुलित बल का वर्णन किया गया है और उनका अतुलित बल कहाँ से आ रहा है, शिव और पार्वती के द्वारा आ रहा है। शिव और पार्वती कौन है, वह परमेश्वर हैं और परमेश्वरी हैं। अगर देखा जाए तो यह सारा संसार शिव और शक्ति का खेल ही है। अगर शिव और शक्ति का खेल नहीं होता तो कुमार का जन्म नहीं होता, और कुमार का जन्म नहीं होता तो तारकासुर का वध नहीं होता, तारकासुर का वध नहीं होता तो फिर देवी देवता ऐसे ही परेशान होते रहते। तो देवत्व के उदय के लिए, धरा पर स्वर्ग के अवतरण के लिए शिव और शक्ति की महती आवश्यकता है। जिस दिन हम शिव और शक्ति को पूजने लगेंगे, उनका नमन करने लगेंगे, तो इस धरती पर फिर से देवत्व का उदय संभव है। और हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिव प्रसन्न है तो शक्ति प्रसन्न है, शक्ति प्रसन्न है तो शिव प्रसन्न है। तो शिव और शक्ति कौन है? हमारे अंदर की आत्मा और हमारे अंदर के परमात्मा, सब कुछ अपने ही अंदर है। कहते हैं देहो देवालय प्रोक्त, यह देह क्या है? देवालय है। यह शरीर क्या है? मंदिर है। इस मंदिर में कौन भगवान है? तो वो शिव और शक्ति ही भगवान है। इस शरीर रूपी मंदिर में जिस दिन हम उनकी आराधना करने लगते हैं तो हम स्वयं सुंदर बनने लगते हैं, क्योंकि मंदिर में हम जब भी प्रवेश करते हैं तो अपने पैर धो करके जाते हैं, फूल पत्ती लेकर के जाते हैं अपने आराध्य को चढ़ाने के लिए। तो उस फूल को अपना मन बना लें, सुमन मन, सुंदर मन हमारा फूल बन जाए, और उसके बाद परमात्मा के चरणों की आराधना करनी है तो फूल लेकर के जाएं, अपने मन की पावनता, अपने मन की निर्मलता को गंगा स्वरूप बना लें तो गंगा जल भी हमारे अंदर ही है। और शरीर रूपी दिव्य मंदिर में हम परमात्मा और परमेश्वरी को बसा लें तो इस मंदिर में भगवान की भी कमी नहीं होगी, और आराध्य की आराधना में जब समय बीतने लगेगा तो साधना अपने आप प्रतिफलित हो जाएगी और हम साधक ईश्वर के गुणगान में रम जाएंगे, तो हम ही भक्त बन जाएंगे। और भक्ति में नंदी कितना सुंदर उनका रूप है और कितना सुंदर उनका चरित्र है कि नंदी के ही कान में सभी जाकर के कहते हैं अपनी बातें। क्यों? क्योंकि नंदी को भगवान शिव बहुत मानते हैं और नंदी जो कहता है वो शिव तक सुनाई देता है, इसलिए हमें भगवान का नंदी बन जाना चाहिए। फिर देखिए कितना सुंदर यह दृश्य होगा, ये दुनिया कितनी सुंदर होगी अगर भक्ति उतर जाएगी हर मन में हर जन में।
2: लीना जी, एक छोटा सा प्रश्न है। अब कुछ स्त्रियां हैं जो उपवास रखने के बाद भी, जैसे शिव अब सावन में सोमवार रखती हैं, तो वो जो है शिवालय नहीं जा पाती क्योंकि उनके घर में काम बहुत है, उनके घर में गाय भैंस है और जो है काम पर जाने वाले बच्चे भी हैं, उनके जो है पति देव भी हैं, तो उनको इतना समय नहीं मिलता कि वो शिवालय नहीं जा पाती। तो वो घर पर ही कैसे पूजा करें, कैसे उसको घर को ही शिवालय बनाएं, बस इतना समय में प्रश्न है जो।
1: बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है।
2: हाँ।
1: देखिए भगवान की भाव से आराधना होती है, भगवान की मन से आराधना होती है। अगर हमारी भावना सुंदर है तो गंगा हमारे ही अंदर है, पुष्प हमारे ही अंदर है, और हर चीज जितना चीज भगवान को चाहिए सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे इसी शरीर में भगवान का वास है, तो हम अपने मन से अपनी भावनाओं से भगवान शिव की आराधना करें, उनकी साधना करें, तो सब कुछ हमें यहीं मिल जाएगा। अब प्रहलाद कहाँ विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए जाता था? कहीं मंदिर तो जाता नहीं था। जब मंदिर नहीं जाता था लेकिन आराधना तो विष्णु भगवान की हो रही थी, तभी तो प्रहलाद के लिए उन्होंने नृसिंह रूप तक धारण कर लिया। तो असंभवम संभव कर्तुम उद्यते, असंभव को भी संभव कर देते हैं भगवान जब हम भगवान की भक्ति में भावना से विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये भावना ही हमारे अंदर क्या बनती है? विश्वास। विश्वास ही हमारे अंदर आस्था का रूप लेती है, आस्था ही हमारे अंदर श्रद्धा का रूप लेती है, और श्रद्धा से भावना से जब हम भगवान को पुकारते हैं आर्त स्वर से, तो भगवान हमारे हृदय में ही उपस्थित हो जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं, और हम उन नीलकंठ के की आराधना मन से करने लगते हैं तो वो वहीं खुश हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हाँ हम किस कारण से उनके मंदिर नहीं आ पा रहे, तो शरीर रूपी दिव्य मंदिर में हम भगवान की आराधना करें और भगवान को प्रसन्न कर लें।
2: एक और प्रश्न मेरे से पूछा गया था कि जो बाजार में जो शिवलिंग मिलते हैं छोटे छोटे पूजा के स्थलों पर, क्या वो स्त्रियां अपने घर में वो शिवलिंग स्थापित कर सकती हैं अपने पूजा घर में और उस पर जल चढ़ा, जल और पुष्प और बेल पत्र वगैरह चढ़ा सकती हैं?
1: बिल्कुल कर सकती हैं। भावना हमारी गहरी होनी चाहिए, शिवलिंग ले आए और गंगा जल से उसे धो करके हम अपने उस पर, लेकिन शिवलिंग को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि शिवलिंग बाहर ही रहता है। तो हम अपने घर के बाहर या छत पर कहीं भी शिव चौरा बना करके उसमें शिवलिंग रख दें और वहाँ उनकी आराधना करें तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। और पांच चीजें शिव को बहुत प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, बेलपत्र अगर मिलता है तो बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, शहद से अगर हम आराधना करते हैं तो मिठास हमें मिलती है। हम भगवान शिव को जो चढ़ाएंगे वही हमारे स्वभाव में उतर जाएगा। शहद चढ़ाएंगे तो मिठास हमारे अंदर आएगी, दूध चढ़ाएंगे अगर पुत्र की कामना हमारे अंदर है तो दूध चढ़ाएं तो दूध से भी भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद ये शहद हो गया, दूध हो गया, अगर मिठास हमारे पास शहद भी नहीं है तो हम गुड़ भी रख सकते हैं। अक्षत चढ़ाएं, अक्षत न छता मैंने जो नष्ट नहीं हुआ,
2: जो चावल टूटा हुआ नहीं है, साबुत चावल है वो चढ़ाएं,
1: चंदन चढ़ाएं, तो जो भी हम भावना से चढ़ा दें उनको, हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, भावना से जो भी चढ़ाएंगे हमें वही मिलेगा। लोग देखिए, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव को दूध चढ़ाने से क्या होगा, हमें गरीबों को खिला देना चाहिए, लेकिन यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान शिव को जब हम दूध चढ़ाते हैं तो समझिए पूरे सृष्टि को हम चढ़ाते हैं। भगवान शिव पूरे सृष्टि के हैं और पूरी सृष्टि में जो भी दीनहीन है सब तक उनकी कृपा बरसती है। लेकिन अगर हम गरीब को पिलाते हैं तो एक ही गरीब का उद्धार होता है, लेकिन भगवान शिव को जब हम चढ़ाते हैं तो संसार के समस्त दीनों का उद्धार होता है। तो इसलिए भगवान शिव को दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। और मैंने सावन में ये भी देखा है कि पॉलीथीन के साथ वो चढ़ा देते हैं, इसलिए उनकी भावना ये रहती होगी चलो भाई दूध गंदा ना हो, हम शिव पर भी चढ़ा रहे हैं एक पंथ दो काज, लेकिन ये उचित नहीं है क्योंकि पॉलीथीन में दूध अगर हम चढ़ाते हैं तो भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। शिवलिंग पर अगर दूध चढ़ाना है तो हमें दूध लोटे में डाल करके और चढ़ाना चाहिए। दूध में जल डाल करके भी बहुत लोग चढ़ा देते हैं, जल बाद में चढ़ाई दूध चढ़ाई
2: दूध पहले,
1: हाँ दूध जितना जितना जितना हम भगवान को देंगे उतना उतना हम वापस
2: पाएंगे।
1: कहते हैं तुम एक पैसा दोगे वह 10 लाख देगा, वही बात है। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, हम अगर भाव से उनको एक पैकेट दूध चढ़ाते हैं तो हमें उसका 10 गुना लाभ मिलता है।
2: अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि शिवलिंग को पूजा स्थल में ना स्थापित करके बाहर उनको पधारना चाहिए। तो जैसे पूजा का एक क्या नाम तुलसी का एक गमला है और उसी के पास
1: में नहीं रखना,
2: हाँ तो उसी के पास एक और गमला लेकर उस खाली गमला लेकर उसमें उसको पधार सकते हैं।
1: कारण
2: खाली गमले
1: ये
2: में
1: है कि तुलसी विष्णु भगवान की प्रिय है, और विष्णु भगवान के साथ तुलसी अच्छी लगती है। तो भगवान शिव को स्थापित करना है तो बेलपत्र के पास भी हम रख सकते हैं, और नहीं तो शिव चौरा रख ले तो उसमें भी हम
2: एक गमला ले लें खाली जी, और जी, उसमें अलग से पधार दें उसमें और उसी में फिर वो पूजा करें, है ना, ये बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर। तो मेरे जो श्रोता हैं जो महिलाएं हैं उनके इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि उन्हें पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है कि वो मंदिर नहीं जा पाते, वो दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, पर घर में ही पूजा कर लें। अगर ला सकती हैं तो बाज़ार से छोटा सा ये शिवलिंग लाकर बाहर किसी खाली गमले में अपने आंगन में आगे या पीछे उसमें रखकर उसमें पूजा कर लें, उसी में जल चढ़ा लें। और जैसे कि बताया है कि यदि दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं तो पहले लोटे में दूध डालें यथाशक्ति और फिर उसमें तब जल भरें और तब श्रद्धापूर्वक उनको अर्पित करें। तो जो भी आपके पास है सामग्री उसी को अर्पित करें, ये भगवान शिव उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई आपका कोई ऐसा प्रश्न हो तो हमें आप पत्र द्वारा भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लीना जी, अब ये क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। लीना जी, आपका सारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: कि आपने इतना ज्ञान दिया। श्रोताओं, अब मुझे भी इस एपिसोड को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। तो वो अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलेंगे, मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल,
1: तू है बुलबुल,
0: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल,
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम, एक गण हम तुम पे दिल्ली सार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर है हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो

0: नित्य सनातन और पुरातन है। मनुष्य शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है K P square L H B P, अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप

0: में अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूँ तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है
0: जी। बिल्कुल, उन्होंने भी एक एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचर वाला, या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई है, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं, पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा यह गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है, जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है। और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में है या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति
0: स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से मन आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में

0: दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं। और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: नमस्कार, रेडियो मानवरत्न नायक 107.8 वाट पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों, कथाओं को हम आप तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। और हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल कार्यक्रम आत्मदर्शन में हम आपको बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंगों के बारे में जो महाभारत में समाहित हैं। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से हमने कथा जानी, ऋषि चवन और सुकन्या के बारे में जाना, राजा उशनीर की कथा हमने जानी, किस तरह से राजा उशनीर की परीक्षा ली थी इंद्रदेव ने, ये कथा हमने पिछले एपिसोड में जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से जानते हैं कि आज कौन सी कथा वो हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली है। जी,
1: आज हम अष्टावक्र जी का जन्म और उनके साथ साथ का वृतांत सुनेंगे।
0: जी,
1: तो उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। निरंतर फल मूलों से संपन्न रहने वाले आश्रम मुनि का है। उद्दालक मुनि का कहोर नाम का एक प्रसिद्ध शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्दी सब वेद पढ़ा दिए। अपनी कन्या सुजाता भी उसे ब्याह दी। कुछ साल बीतने के बाद सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोर वेद पाठ कर रहे थे, उसी समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु ये ठीक ठीक नहीं होता। शिष्य के बीच में इस प्रकार आक्षेप करने से पिताजी को बहुत क्रोध आ गया। तब वो गर्भ में है और बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये उदरस्त बालक को श्राप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें किया करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई। उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लाने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहाँ वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। उद्दालक को जब ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इस विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को उसका कुछ पता न चला। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी तो उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहाँ श्वेत केतु आए और अपने पिता की गोदी में से खींच कर कहा, ये गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। उससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई। उसने शाप के भय से सब बात बता दी। ये सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर ये सलाह की, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले। ये यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है, वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुँच कर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने पूछा, आप लोग को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ, तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानों को योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल ने राजा के पास ले गया। वहाँ अष्टावक्र ने कहा, राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत धर्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वे बंदी कहाँ है, मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं, तुम उसकी शक्ति को ना समझ कर उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, इसी प्रकार सभी उसके सामने हतप्रत हो गए। उस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसे से पाला नहीं पड़ा। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के लिए विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है वही बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसने पक्ष रूपी 24 पर ऋतु रूपी 6 नाभि मास रूपी

0: सारांश और 3 रूपी 360 अरे हैं। वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जल लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्धि मानता हूँ, वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, तो मैं आपको मंडप के द्वार सौंपता हूँ, यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूम कर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन नदी के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, क्षत्रियों का नाश करने वाले देवराज इंद्र एक ही वीर हैं और पितरों के ईश्वर यमराज भी एक ही हैं। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्नि ये दोनों देवता हैं, नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं, दो ही अश्वनी कुमार हैं, रथ के पहिये भी दो ही होते हैं, अविदाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। पृथ्वियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है, पृथ्वी में 13 दीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी ने आधा श्लोक कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि वायु सूर्य ये 3 देवता 13 दिनों के यज्ञों के व्यापक हैं और वेदों में 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, किंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, अष्टावक्र जी की कथा जान रहे हैं और किस तरह का उनका जन्म रहा, किस तरह का जीवन बीत रहा है, ये सारी बात हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और अभी रागलेखा दासी जी हमें अष्टावक्र जी की कथा सुना रही हैं कि किस तरह से जन्म लेने से पहले से ही उनका जो टोकना था या उनकी जो बातें थी वो पहले से ही बोल पाते थे और किस तरह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, आगे की कथा भी हम जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी आगे बताएं।
0: जी अष्टावक्र ने कहा, राजन ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबा चुका है, अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज मैं जलाधीश्वरों का पुत्र हूँ, मेरे पिता के यहाँ आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है, उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है, वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं, उनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव जी से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बंदी ने कहा, राजन वरुण के पुत्र होने से मुझे डूबने का कुछ भी भय नहीं है, अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिताजी कहोर के भी दर्शन करेंगे। समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल के बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में पहुंच गए। उनमें से कहोर ने कहा, मनुष्य ऐसे कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं, जिस काम को मैं नहीं कर सका वही मेरे पुत्र ने करके दिखाया। राजन कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेके समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र जी की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिताजी की पूजन किया और श्वेतकेतु के सहित वे अपने आश्रम को लौट आए। वहां पहुंचकर कहोर ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस रमंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई उनके अंग सीधे हो गए और उनके संसर्ग से वह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
1: जी बहुत खूबसूरत।
0: अभी एक प्रसंग करेंगे, भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत।
1: जी
0: अर्जुन से मिलने की इच्छा, पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे, उतने में ही देव योग से ईशान कुंड की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्र दल कमल उड़ाया, वे बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गन बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पे गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह सुगंधित नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य मैं यह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए, मैंने काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली गई। राज महर्षि द्रौपदी का आश्रय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस और वायु उसे उड़ाकर लाई थी उसी और फूल लेने के लिए फिर तेजी से चले। उन्होंने धनुष और पैने बाण ले लिए। थोड़ी दूर जाने पर गंध मादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जन करते हुए झपट कर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वायु पुत्र है हनुमान जी और वायु पुत्र ही भीमसेन है तो भीमसेन के इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में उनका कोई तिरस्कार कर दे या उन्हें शाप दे दे। तो इस रक्षा करने के विचार से उन्होंने केले के बगीचे से जाने वाले सकरे मार्ग को रोक कर लेट गए। जम्बाई लेकर अपनी पूछ फटकारते थे, उसकी प्रतिध्वनि सब और फैल जाती थी। ये शब्द मतवाले हाथी के गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब और फैल रहे थे। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे कारण के ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब और घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। महाबली भीमसेन निर्भय होकर उनके पास चले गए। भैया मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? हनुमान जी बोले, तुम हो कौन और किस लिए इस वन में लेते हो? भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन है और इस वानर देह में आपने क्यों धारण की है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत गुरुवंश से उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के घर से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायु पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ, तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो तो मैं इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही है, तुम यहाँ से लौट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ।
1: अच्छा।
0: मैं बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा, हे अनग तुम रोष न करो, बुढ़ापे के कारण मुझमें उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे तस तमस भी न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे असमर्थ रहे। तब उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने जो कटु वचन कहे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ। इस प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। अयोध्यापुरी में राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे ये वर मांगा कि हे शत्रुधवन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। भीमसेन सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए मुझे इच्छा अनुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थान पर गंधर्व अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुना कर मुझे आनंदित करती रहती है। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्य के लिए अगम्य है, इसलिए मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता, तुम्हें श्राप दे देता, इसलिए क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। और तुम्हें यहाँ जाने के लिए आए हो, ये सरोवर तो यही है। भीमसेन बोले कि आज मेरे समान कोई बड़ा भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की है, आपके दर्शन से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। समुद्र को लौटते हुए आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ, इससे मुझे संतोष होगा और आपके विष्णु पर विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के इस प्रकार कहने से हनुमान जी ने मुस्कुराकर वह रूप दिखाया जो समुद्र लांघते समय उन्होंने धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गए। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी ने विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केला बगीचा आच्छादित हो गया। वह विशाल रूप देख कर बड़े विस्मित हुए भीमसेन और उनके शरीर में रोमांच हो आया। हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ जान करता था। भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। मैंने आपके शरीर को महान विस्तार देख लिया, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। मेरे मन में तो आज यह बड़ा आश्चर्य है, राम जी को रावण के समय युद्ध करना पड़ा, उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों सहित आपके ही बाहुबल में सहज ही नष्ट कर सकते थे। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी बोले, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, ये अदम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था। सारे लोगों को कांटे के समान चलाने वाला उस रावण को यदि मैं मार डालता तो राम जी को एक कीर्ति कैसे मिलती। रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस अदम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। लोगों में उनका सुयश फैल गया। अब तुम जाओ, देखो ये सामने वाला मार्ग सुगंधित वन को जाता है, वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करना, मनुष्य को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए
1: जी।
0: फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़ कर वानरराज हनुमान ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट दूर हो गई और वो सब प्रकार से अनुकूलता का अनुभव करने लगे। तो हनुमान जी बोले, तुम्हें मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए, तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हस्तिनापुर में जाकर कुछ दुष्टाश्र के पुत्रों को मार डालो, ये भी मैं कर सकता हूँ। तुम चाहो तो पत्थरों से इस नगर को नष्ट कर दूं और अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर दूं। भाई और सुहर्द होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और वाणों से व्याप्त शत्रु के सेना में दुष्ट सिंहनाद करोगे, उसी समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जन को बढ़ा दूंगा और अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसा भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उसे सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उसे मार दिखाया और वही अंतर्ध्यान हो गया
1: जी। बहुत सुंदर प्रसंग श्रोताओं, भीमसेन और हनुमान जी की जो भेंट हुई, मुझे कहीं ना कहीं याद आता है कि कभी टीवी सीरियल्स में मैंने ये देखा है। तो जब आप रागली की तस्वीर सुना रही थी तो वो पूरी छवि मेरे सामने आ रही थी। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है दोस्तों कि किस तरह से भीमसेन और हनुमान जी की जो भेंट हुई, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जाना। आगे और भी प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में महाभारत में समाहित और भी कथा प्रसंग रागलेखा दासी जी से हम जानते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइफ।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ अपने साथ और आपके पास। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शो की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दूँ, आज देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे का है, क्योंकि अब से ना मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे। यहाँ हर दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ साथ और बहुत सारी होती हैं बातें, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फिटनेस की, योगा की, मेडिटेशन की। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि देखिए हम बात जरूर करते हैं यहाँ पर क्विज की भी, और बात होती है स्पोर्ट्स की भी। तो जी हाँ, बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। मॉर्निंग की करते हैं खूबसूरत सी शुरुआत, और आज क्या है कुछ खास वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनेवरेज नाउ 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ आपके पास. और बातें हमारी चल रही हैं तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो. और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं. जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद. और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो. और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की. जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियाँ लेकर के आता है. ऐसे में अपने आप को, खुद को ठीक रखना ज़रूरी है. अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा. हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का से सेवन जो है वो करना है. आप देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे. और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं. महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ. चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मारव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिससे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी, अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में, ये जो गर्मियों

का राजा फल है ये खाते हैं तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन, जी हाँ यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में हमें लू से बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज़ तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए ज़रूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा, आपको क्या करना है बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है देखिए आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुँचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊँगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो. जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ. ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत बनी रहे. क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है, और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज. साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की, तो ये भी अच्छा है. लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की. जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन. जी हाँ, खरबूजा. खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को. साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है. इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं. कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं. अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा ज़रूर खाएं. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं. एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं. अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब. जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है. इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है. और वैसे भी कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे. सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समेत खाइए ताकि फाइबर मिले. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो उससे फाइबर आपको मिलेगा. नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ साथ बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्जॉर्व होते हैं. तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है. इसी के साथ साथ एक ही फल रोज आपको खाना है. आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए. फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं. फल खाने से के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है. चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें, और इसी के साथ देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आ ही जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें. स्ट्रेच प्लीज हमारा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें. जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है, और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और योगा करना, मेडिटेशन करना. उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जो आपके लिए अच्छी हैं, बताऊँगी कुछ ही देर में. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: मेरा मेरा तेरा प्यार।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं आपको योगा के बारे में। आपको बताती हूँ, देखिए योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना, जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए अपनी जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग, क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितना ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हुए छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनोवरेश्वरम 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूं यहां पर आपके पास। और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में। जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है। एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, इससे जो है आपकी एनर्जी जो है ये बरकरार रहती है। और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की। सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है। जी हाँ, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है, देखिए इसमें अलग अलग क्योंकि ये डिवाइडेड है, 12 अलग अलग पोजेज में ये डिवाइडेड है। तो अब बात करते हैं क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप हैं। पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज। सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायाम आसन। और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है। आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी। अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है देखिए आपका जो है पादहस्तासन। अब इसमें होता है हैंड टू फुट पोज, यानी कि सांस आपको छोड़नी है, आगे झुकना है और हाथ पैरों के पास लेके जानी है। इससे आपकी बॉडी जो है एक अच्छे पोस्चर मेंटेन करती है, और धीरे धीरे, मैं ये मानती हूँ कि एकदम से आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कमर से जुड़ी हुई, या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में अभी दिक्कत आ रही है, तो शुरुआत में ये दिक्कत रहती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप जो कि है चौथा स्टेप, और वो है अश्वसंचालनासन। जी हाँ, इसको करने के लिए आपको अपने राइट लेग आपको पीछे लेके जाना है, लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है और चेस्ट जो है आपको ऊपर रखनी है। और ये है हमारा चौथा पोज। और पांचवा पोज आ जाता है प्लैंक पोज यानी कि डंडा आसन। दोनों पैर पीछे आपको ले जाने हैं, सीधा बॉडी प्लैंक जो है ये बन जाए, इस तरीके से आपको ये पोज करना है। जिसके बाद सीधा सीधा आते हैं हम अगले हमारे स्टेप पे जो है आपका अष्टांग नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगासन की, और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की, जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है, और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है, और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज, यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन, यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे, इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्वासन जालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है, और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है, और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जो अश्वासन जालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आसन, और वो है पादहस्तासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं, और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हस्तोत्तानासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है, और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो 1st स्टेप है वो एक बार फिर से आता है, यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है, फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे, और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा, एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है, और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है अपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ, तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, पोस्चर, और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए, और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है, और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है, और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने की

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद साक्षी। जी हाँ, पावर प्ले विद आरजे साक्षी में हम करते हैं बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, बहुत सारी स्पोर्ट्स अपडेट आपके पास लेकर के जरूर आती हूँ। अच्छा, अब एक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल के मूवमेंट के बारे में, और ये

नहीं बल्कि दो हैं। सबसे पहले आता है खेलो इंडिया और इसी के साथ साथ दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए नए भारत का ये स्पोर्टी अंदाज है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था ईयर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज़्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आर जे साक्षी के। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट बेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है। और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए। और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की तो देखिए, फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए, स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना, स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए, यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए, इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक। आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल। कुछ सवालों के जवाब आप देंगे और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पर, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का. जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की. और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब. और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होके जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी. चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी. लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता तो दो. तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद। और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज, आपसे सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं, और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट। और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट होके और बिल्कुल सही जवाब देगा, उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का, और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी, और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए, ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली मैं दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप, और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली. मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसका सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं. ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं. बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. भाई देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो वही जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में, जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता दूँ, देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए. और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे. और पानी पीते रहना है, और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पानी पीते रहे. सिर्फ पानी पानी आपको पीना है, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप जूस कोई पी सकते हैं. लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता. ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं. आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है. चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए, आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं, मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई हमें याद।

क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एकदम से ना हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब, मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078, इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब। जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं, देखते कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मैनोरमा 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके लिए हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाता है, वो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। और इस प्रोग्राम में नॉलेज पार्टनर है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर किसी के घर में एक नन्ही किलकारी जरूर आती है, लेकिन ये नन्ही किलकारी जब आती है आपके घर तो एक डिस्कशन उसके आने से पहले काफी होता है कि बच्चे की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन। तो चाइल्ड बर्थ नॉर्मल होना चाहिए या फिर सिजेरियन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। बहुत सारे लोग फैमिलीज को या मदर को कन्विंस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिजेरियन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को पसंद भी नहीं करते हैं। कुछ पुराने ख्यालों के लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेस्ट होती है क्योंकि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सिजेरियन भी कंफर्टेबल होती है और इसमें भी रिकवरी अब जल्दी ही हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। सो ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में हैं या फिर आपके मन में हैं। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत आसान है 8010781078, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर दीप्ति, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच।
0: डॉक्टर दीप्ति, अब हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर कोई इंसान जो है वो दुनिया में आया है और ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है पूरी फैमिली के लिए जब कोई बच्चा घर में आता है। तो यहाँ पर हर बच्चे के जन्म से पहले ये डिस्कशन ज़रूर होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए या सिजेरियन होनी चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ, दोनों में से क्या कंफर्टेबल, क्या बेटर होता है, फिर उसके बाद हम एक एक करके सवाल भी लेंगे और चर्चा भी करेंगे।
1: दीक्षा, नॉर्मल डिलीवरी को हम नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। डॉक्टर को वो प्रोसेस सिर्फ असिस्ट करना होता है, सिजेरियन डॉक्टर को करना होता है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेटर होती है फॉर पेशेंट रिकवरी। चाइल्ड के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है फॉर आगे की जो फ्यूचर उसकी ग्रोथ होती है। बट ये हर पेशेंट के लिए सेम सिचुएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई विल से अपने एक्सपीरियंस के साथ कि अगर एक नॉर्मल डिफिकल्ट डिलीवरी है उससे बेटर है कि एक इजी सिजेरियन हो, बिकॉज डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लेटर लाइफ में मदर को और बेबी को दोनों को बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप कर सकती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिजेरियन विल बी बेटर। अगर हम एक जनरल बात करें तो इट्स नॉर्मल डिलीवरी, तो दैट मीन्स नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर।
0: जी बिल्कुल, नॉर्मल प्रोसेस हमेशा बेटर ही होता है, लेकिन कई केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी एक बहुत बड़ा जो तकलीफ है वो एक माँ को दे जाती है, क्योंकि इतने घंटों का लेबर पेन या फिर इतनी ज़्यादा तकलीफों के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है तो सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो कई कई घंटे जो है वो एक मदर परेशानी में रहती है, 12-12, 14-14 घंटे, और उसके बाद फिर सिजेरियन करना होता है। तो अक्सर मदर्स ये बोलती हैं कि इससे अच्छा तो पहले ही सिजेरियन करा लेते, हम नॉर्मल के लिए ट्राई ही नहीं करते। सो डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हैं लेकिन मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग और बहुत सालों से ये कहते हैं कि आजकल सी सेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, आज से 20 साल पहले भी ये कहते थे और अब भी यही कहते हैं, तो सी सेक्शन इतने ज़्यादा क्यों होने लग गए हैं?
1: सिजेरियन रेट्स ऑब्वियसली पहले से बहुत इंक्रीज हुआ है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा सिजेरियन रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा होता है लाइफस्टाइल। पहले की अगर आप अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को अगर आप देखते हैं तो जो उनका लाइफस्टाइल था, दे यूज्ड टू हैव सिटिंग किचन,
0: एब्सोल्युटली
1: वो सब काम घर में नीचे बैठकर करते थे, उनकी वॉशिंग जो होती थी वो नीचे जमीन में बैठकर होती थी, खाना वो नीचे बैठ के बनाते थे। अगर फील्ड वर्कर्स की आप बात करते हो तो वो पूरा दिन स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठते हैं, तो इन लोगों की लेबर बहुत ईजी होती थी, देयर पेल्विसेस वर वेरी वाइड। लेकिन जैसे जैसे हम एक सिटिंग कल्चर में आ गए हैं, आज अगर हम देखते हैं तो फिजिकली स्पेशली अर्बन एरियाज में फीमेल्स बहुत ज्यादा घर में काम नहीं कर रही हैं, वी ऑल आर वर्किंग मोर मेंटली, हम फिजिकल वर्क उतना नहीं कर रहे हैं।
0: और जो घर में भी कर रहे हैं वो भी जैसे वॉशिंग मशीन खड़े होकर है या खाना आप खड़े होकर बना रहे हैं, तो बैठने वाला जो एक पोजिशन आपने स्क्वैटिंग कही वो तो ना के बराबर होती है।
1: यस, इसके साथ साथ हमारा फिर वो उसी हिसाब से जो पेल्विस है वो उतना ओपन नहीं होता। इसके साथ एक रीजन ये भी है कि ओवर द एजेस, नॉट द ईयर्स, ओवर द एजेस सो मैनी एरास जो हमारे निकल गए, जो बेबी का हेड साइज है वो इंक्रीज हो रहा है।
0: ओके,
1: यस, इट्स अ लाइक जैसे अगर आप एप्स की पिक्चर्स देखते हो
2: हाँ,
1: तो हमारा जो हेड साइज था वो छोटा
2: थोड़ा वैसा होता
1: तो जैसे जैसे ह्यूमन रेस जो है वो आगे एडवांस हो रही है, हेड साइज जो है वो बड़ा हो रहा है. इन एनी केस वी आर यूजिंग आवर ब्रेन्स मोर देन आवर बॉडीज, तो उस हिसाब से हमारा जो हेड साइज है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है.
2: ओके, सो इस वजह से
1: यस. एंड थर्ड रीजन कि हमारे को अपनी कंट्री का मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट डिक्रीज करना है. तो जब आप किसी एक टर्शरी केयर सेंटर की बात करते हो वहाँ पे हमेशा सिजेरियंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वी गेट मोर रेफर्ड पेशेंट्स, जो मिसमैनेज्ड पेशेंट्स हैं जो प्रोलॉन्ग लेबर में रहे. ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास सिजेरियन ही एक बेस्ट ऑप्शन होती है बिकॉज हमें मदर और बेबी की सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर रखनी है. ये नहीं देखना है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो रहा है कि सिजेरियन हो रहा है.
2: बिल्कुल, यानी बहुत ध्यान रखना होता है एक मदर का. वॉम टू बी का इतना ज़्यादा ख्याल हम रखते तो हैं लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, खासतौर पर से मैं रूरल एरिया की बात करना चाहूँगी, जहाँ पे कुछ मिसमैनेज जैसे आपने कहा कि सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट मिनट सिजेरियन ही होते हैं. और सिजेरियन को लेकर लोगों का नज़रिया भी बदला है, अब लोग इतना डरते भी नहीं हैं सिजेरियन कराने से. इसके बारे में और भी बहुत सारे सवाल हैं, ऑफ कोर्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा. हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति गोयल स्टूडियो मौजूद हैं जो शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं. आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078. अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. मैं हूं दीक्षा.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, और सब कुछ वेल रहे इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस तो जरूरी होती है। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और डॉक्टर दीप्ति से आज हम बात करें हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में। एक बच्चे का जन्म सबसे खूबसूरत होता है। जी हाँ, आपके जीवन में एक नई जिंदगी आती है, और एक नई जिंदगी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े प्रोसेस में जाती है, लेकिन इसमें भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हेल्थ को लेकर और चाइल्ड बर्थ को लेकर। कभी कोई कहता है सिजेरियन की तरफ चलें, तो कभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स भी किया जाता है मदर्स को। लेकिन क्या नॉर्मल डिलीवरी हमेशा फायदेमंद होती है, या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब हमारे साथ दे रही हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल। सो डॉक्टर दीप्ति, नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, तो पहले मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने बताया कि इसमें ये क्योंकि नॉर्मल है, प्रोसेस ही शुरू से यही है ह्यूमन बॉडी का, इसलिए इसको नॉर्मल कहा जाता है। सो इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या होते हैं?
1: इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कोई डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस फॉर फ्यू डेज एंड देन यू विल बी बैक टू वर्क। आप अपना एक्सरसाइज रूटीन वापस फॉलो कर सकते हो, आप अपना वर्क जल्दी ज्वाइन कर सकते हो।
0: ओके
1: और आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती,
0: डिपेंडेंसी
1: नहीं रहती है। और अगर हम बेबी की बात करते हैं, तो बेबी की लंग्स की मेच्योरिटी, उसकी क्राई, जब वो एक बर्थ कैनाल से बेबी पास होता है, तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं लंग्स की, वो अच्छे से स्क्वीज आउट होती हैं। तो बेबी के लिए भी एक हेल्थ बेनिफिट उसमें होता है।
0: ओके, यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए बेनिफिट होता है। इसमें आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो 40 दिन के लिए, 40 डेज का एक पीरियड होता है जिसमें मदर को घर में रखा जाता है, बच्चे को उसके साथ रखा जाता है, फ़ैन भी बंद कर देते हैं गर्मी का मौसम है, फिर भी एसी या कूलर नहीं चलाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये रिकवरी को देखकर की जाती हैं। सो क्या ये प्रोसेस सही है 40 दिन, या फिर इससे कम टाइम में भी सब कुछ बेटर हो सकता है?
1: नहीं, इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, और जो यूट्रस की हीलिंग है वो ऑलमोस्ट 6 वीक्स में होती है।
0: ओके,
1: जो मदर की जो यूट्रस का साइज बड़ा हुआ है, वो वापस नॉर्मल होने में, उसकी सिक्रीशंस को पूरा वॉश आउट होने में, स्टिचेस को हील होने में 6 वीक्स का ही टाइम लगता है।
0: ओके,
1: तो दैट 40 डेज वाज वेरी गुड पीरियड जो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिथ बन गई हैं, जैसे कि अभी आपने फैन की बात की, कि गर्मियों में भी फैन बंद कर देते हैं और कवर करके रखते हैं, ईयर्स में कॉटन प्लग लगा देते हैं कि हवा नहीं जानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों से मदर को नुकसान होता है, बिकॉज एक्सेसिव स्वेटिंग से बहुत डिहाइड्रेशन होती है। आप फीड करा रहे हो, फिर आपको स्वेटिंग से एक तो वाटर लॉस हो रहा है, साथ में आपकी हाइजीन का एक इशू बन रहा है। तो उन सब चीज़ों से मदर को नुकसान होता है। 40 डेज रिकवरी पीरियड इज ए गुड टाइम, बट उन मिथ्स को हमें छोड़कर आगे बढ़ना होगा।
0: जैसे बहुत सारे लोग नहाने नहीं देते हैं मदर्स को काफी दिनों तक, कि 11 दिनों तक आप मत नहाइए, 6 दिनों तक मिनिमम होता है, तो क्या ये भी करना जरूरी है नॉर्मल डिलीवरी में?
1: नॉट एट ऑल, इवन नॉट इन सिजेरियन।
0: अच्छा,
1: हम सिजेरियन में भी आफ्टर 2-3 डेज अपने पेशेंट्स को, मदर्स को बोलते हैं कि आप अच्छे से बात लीजिए, ड्रेसिंग्स वाटरप्रूफ होती हैं। तो आप तो नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें तो हमें day 1 से हम पेशेंट्स को बात दे सकते हैं। एंड किसी भी डिलीवरी, सिजेरियन या कोई भी सर्जरी के बाद हाइजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जो एक मिथ बना हुआ है कि वाटर चला जाएगा, सोप लग जाएगा, स्टिचेस पक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हाइजीन अगर रहती है तो हमारी हीलिंग बेटर
0: होती है। जी। अब इसमें 40 दिनों का आपने जो बोला वो एकदम ठीक है, लेकिन बहुत सारे आजकल हमने देखा है लोग जो हैं, मदर्स जो हैं, वर्किंग है या सेलिब्रिटीज़ को अक्सर देखा है कि 11 दिनों में, 21 दिनों में वो वापस काम पे जाना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। या हमने देखा है सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो 11 या 21 दिनों में कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, थोड़ा सा आउटिंग कर रहे हैं, क्या ये ठीक है बाहर निकलना इस तरीके से, घूमना फिरना, या फिर

0: वापस उस काम पे लौटना. इट्स अप टू अ पर्सन्स ओन कॉल. अगर उसकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है, अगर आप किसी एक ऐसे बंदे से बात करोगे जो कि रेगुलर जिम करता है, तो ऑब्वियसली उसकी रिकवरी किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी प्रोसेस के बाद बहुत फास्ट होगी.
1: ओके.
0: तो अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है कि आप उठ के जाओ, आप अपना ऑफिस वर्क करो, तो वो आप कर सकते हो. नॉर्मल डिलीवरी में तो भी किसी भी इवन फॉर वेट लिफ्टिंग कोई हमारी तरफ से मना नहीं होता है. आप सब कुछ यू कैन कैरी ऑन ऑल द एक्टिविटीज.
1: ओके. एक डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है या अवेयरनेस है, बहुत सारी जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं जो फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रखना चाहती हैं, योगा और जिम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर रही होती है. बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखे हैं वायरल होते कि वो 7 मंथ है या 9 मंथ है, वो प्रॉपर योग कर रही हैं और वेट लिफ्टिंग भी चल रही है उसमें और एरोबिक्स भी चल रहा है. सो क्या ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं?
0: अगर आप रेगुलरली प्री प्रेगनेंसी पीरियड में जिम कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, देन इट्स वेरी गुड. बट इट शुड नॉट बी स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज ए न्यू एक्सरसाइज. आप स्विमिंग करते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, यू कैन डू एवरीथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय योर डॉक्टर. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर मना करेंगे कि आपको ये सब नहीं करना है. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप पहले से ये सब कर रहे थे, तो आप कंटिन्यू करो. बट डोंट स्टार्ट हैवी एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ न्यू वन. लेकिन माइल्ड योगा, माइल्ड एक्सरसाइजेज, ये सब रिकमेंडेड है. जैसे मैंने बोला कि पेल्विस ओपन करना है, प्रीनेटल योगा होता है, हमें पेल्विस ओपन करना है, बैक की मसल्स को रिलैक्स करना है, थाइज में थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सब चीजों के लिए अगर आप योगा और माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, तो दैट इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन.
1: ओके. यानी माइल्ड एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन कोई एक्सरसाइज ऐसी मत कीजिए जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, और वो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू करें, क्योंकि उसके फ़ायदे होने की जगह नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं. डॉक्टर दीप्ति, अब बहुत अहम सवाल. फ़ायदे बहुत सारे बता दिए आपने बेनिफिट्स नॉर्मल डिलीवरी के, लेकिन मैं कुछ जानना चाहूँगी कि क्या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कुछ केसेस में?
0: नॉर्मल डिलीवरी का एज सच, अगर सब कुछ प्रोसेस नॉर्मल है, बेबी हेल्दी है, मदर हेल्दी है, तो कोई नुकसान नहीं है. लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी है, तो नुकसान होता है. नॉर्मल डिलीवरी जितनी आसान लगती है, उतनी होती नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस भी बहुत पेनफुल होते हैं. यू हैव टू सिट ऑन दो स्टिचेस. उसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर उन स्टिचेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है. बहुत सारी मदर्स के लिए 1 मंथ बिल्कुल बेड पे बैठना, चेयर पे बैठना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उन लोगों को स्टिचेस के लिए ट्यूब भी यूज़ करनी पड़ती है, जिसके ऊपर वो सिट करके फीड करा सके. तो इट कैन बी दैट मच पेनफुल ऑल्सो. साथ ही अगर आपको बेबी का साइज बहुत बड़ा है और एक डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी की जा रही है, जिसमें वजाइनल टेयर्स हो सकते हैं, जो कि आपको ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपको ओटी तक ले जा सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ कभी भी हमें रिस्क लेके नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए. बेबी को भी डिस्ट्रेस होने के चांसेस नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा होते हैं. जब पेन्स आते हैं तो बेबी के ऊपर भी स्ट्रेस होता है. तो ऐसे में अगर बेबी की हार्ट बीट डिप हो रही है या बेबी ने अगर पॉटी कर दी है, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, अगर वो हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बेबी के लिए रिस्की हो सकती है.
1: ओके. तो ऐसे सिचुएशन में आप सिजेरियन रिकमेंड करते हैं?
0: यस.
1: सो हर चीज़ के फायदे हैं और हर चीज़ के नुकसान भी हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और बहुत अच्छे से होती भी है, सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर मदर्स को बहुत ट्रॉमा भी सहना पड़ता है, और उस केस में अगर डॉक्टर रिकमेंड करें सिजेरियन, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है. बहुत सारी और भी बातें करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो आप भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और उसके बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर डॉक्टर दीप्ति गोयल से हुई ये सारी बातचीत आप कभी भी शेयर कर सकते हैं.

0: मशहूर हो जाए।
1: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है डॉक्टर दीप्ति गोयल से, हमारी आज की एक्सपर्ट, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम बात करें आज चाइल्ड बर्थ में नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरीज क्या बेटर हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पहले ये इन्फॉर्मेशन आस पड़ोस के लोग, बड़े बुजुर्ग या फिर घर की लेडीज़ के थ्रू आती थी, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन आपके एक क्लिक पर है, बहुत सारे वीडियोस के तौर पर, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे आर्टिकल्स के तौर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि ये एक बहुत पुराना प्रोसेस है, इंसान का जन्म जो है वो एक नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के आने से इसमें मोर्टालिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए सिजेरियन सेक्शंस अब ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल भी बिगड़ गया है। सो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ सवाल, क्या बेटर है नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, नॉर्मल है तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सिजेरियन है तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कमियाँ हो सकती हैं, हमें बता रही हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल। सो डॉक्टर दीप्ति, अभी आपने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत सिंपल है और बहुत रिकवरी वाइज बहुत अच्छा रहता है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ सी सेक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आजकल की लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ईजी ऑप्शन है, क्या ये ईजी ऑप्शन है?
2: सिजेरियन इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी ऑप्शन। सिजेरियन भी पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत मुश्किल पीरियड होता है, इट्स नॉट ईजी। देर आर 7 लेयर्स जो सिजेरियन में ओपन होती हैं, तो हाउ कैन इट बी ईजी? इट्स नॉट एन ईजी ऑप्शन, बट येस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बिकॉज ऑफ एनेस्थीजिया पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, बट आफ्टर सिजेरियन रिकवरी में टाइम लगता है।
1: जी, यानी रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस किस सिचुएशन में सिजेरियन आप रिकमेंड करती हैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अक्सर बोलते हैं कि कई डॉक्टर्स ना जब डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही होती, बहुत लेट होता है, ये अक्सर हमने सुना है कि जब डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है तो डॉक्टर्स फटाफट सिजेरियन करके जो है वो करना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोसेस में समय ना लगे, जल्दी हो जाए काम। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉइंट अपने लाते रहते हैं अक्सर।
2: बिल्कुल, हम ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेली फेस करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: पेशेंट्स आके हमें ऐसे ही बोलते हैं कि सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे बेबी भी बिल्कुल ठीक है, मदर भी बिल्कुल ठीक है, हमने एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को एडमिट किया है, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि एडमिट नॉर्मल के लिए करने के बाद भी हमें सिजेरियन करना पड़े, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मतलब बेबी की हार्ट बीट जो है वो कम होने लगी है। जैसे मैंने बताया कि जब पेन्स आते हैं तो मदर के साथ साथ बेबी को भी स्ट्रेस होता है, उसका भी ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जब पेन चला जाता है तो वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। जब बेबी वीक होता है या कोई और इंट्रिंसिक प्रॉब्लम होती है, लेबर बहुत लंबी चली होती है, तो ऐसे केसेस में बेबी उस स्ट्रेस को नहीं ले पाता और उसका हार्ट बीट डिप होने लगता है या फिर वो मिकोनियम पास कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि ग्रीन कलर का जो वाटर है वो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक प्रोग्रेस ऑफ लेबर का एक रूल होता है। आप ऐसे नहीं है कि आप आज एडमिट कर रहे हैं और आप 3 दिन तक डिलीवरी के लिए वेट करते रहेंगे। अगर आज हमने पेशेंट को एडमिट किया है तो बिफोर टुमोरोज नाइट पेशेंट शुड हैव बीन डिलीवर्ड। अगर हम उससे ज़्यादा पेन्स में पेशेंट को रखते हैं तो वो बेबी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, मदर के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, बेबी की हार्ट बीट डिप हो सकती है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन में वो दोनों लैंड अप कर सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस में एक डिक्टम होता है, सन शुड नॉट सेट ट्वाइस एंड राइज ट्वाइस ड्यूरिंग लेबर। तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है विद इन 36 आवर्स, मतलब इट शुड नॉट बी 48 आवर्स। 36 आवर्स में आपको डिलीवरी हो जानी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है जो कि मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर बहुत देर से 7-8 आवर्स से एक ही फाइंडिंग पे पेशेंट रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम फिर सिजेरियन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
1: जी, यानी ये सिचुएशन जैसे डायबिटीज़ बहुत लोगों को हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या हाई बीपी हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे और मदर दोनों की सेफ्टी के लिए सिजेरियन किया जाता है। डॉक्टर साहब, सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? जैसे नॉर्मल में आपने बताया कि लास्ट मिनट पर कॉम्प्लिकेशंस आती है तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है, क्या सिजेरियन में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं?
2: सिजेरियन कॉम्प्लिकेशंस आर जस्ट लाइक एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है. अगर बहुत देर से पेशेंट लेबर में था तो यूट्रस जो है वो डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, उसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं. जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कि आपने सुना होगा कि डिलीवरी हुई और अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई. तो नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट कि इस पेशेंट को होगी कि नहीं होगी. हमें थोड़ा एक आइडिया होता है पेशेंट प्रोफाइल से कि इस पेशेंट को हाई रिस्क है पीपीएच का, बट सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारी पीपीएच ही होती है आफ्टर सिजेरियन, या नॉर्मल के बाद भी हो सकता है, बट सिजेरियन में भी उसका रिस्क काफ़ी होता है.
1: ओके. तो ऐसे सिचुएशन में एक डॉक्टर की टीम को और फैमिली को क्या तैयारी करनी चाहिए?
2: मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डिलीवरी शुड बी ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल. किसी छोटी जगह पे कभी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए. डिलीवरी हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मदर के लिए अगर जरूरत पड़े तो आईसीयू अवेलेबल हो, बेबी के लिए अगर जरूरत पड़े तो आईसीयू अवेलेबल हो, ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड अवेलेबल हो. अगर को सर्जन की जरूरत पड़ रही है, हमारे आईसीयू स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, फिजिशियन की जरूरत पड़ रही है, तो वो सारे डॉक्टर्स एज ए टीम वहाँ पर अवेलेबल हो. ऐसी जगह हमेशा डिलीवरी होनी चाहिए. छोटी जगह डिलीवरी मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है सही हो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं देन इट कैन टेक अ टोल ऑन लाइफ ऑल्सो.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सो एक अच्छा सिस्टम होगा जहाँ पर पीडियाट्रिशियंस अच्छे हों, जहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे हो, जहाँ पर एक पूरा सेटअप हो जो मदर और बेबी को हेल्प कर सकता है, वो होना ज़रूरी है. डॉक्टर, बहुत सारी लेडीज़ को ये कहा जाता है कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चे का जन्म होना चाहिए. फैमिलीज इसमें बहुत बिलीव करती हैं. सो सबके अपने अपने बिलीव होते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस हफ्ते से किस हफ्ते तक ये जो मुहूर्त वाली चीज़ है या जो डे और टाइम देखकर जो चाइल्ड बर्थ प्लान किया जाता है वो ठीक रहता है? क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि नहीं 40 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है. कई लोग कहते हैं नहीं पहले कर दीजिए, ये मुहूर्त बहुत अच्छा है.
2: हमारा बेबी फुल टर्म 38 वीक्स पे हो जाता है.
1: ओके.
2: 38 वीक्स के बाद अगर किसी मेडिकल रीजन से या किसी और रीजन से हमें डिलीवरी करनी पड़ती है तो वी कैन प्लान द डिलीवरी.
1: ओके.
2: मुहूर्त डिलीवरी नहीं होती, मुहूर्त सिजेरियन होता है. नॉर्मल डिलीवरी को मुहूर्त में प्लान करना इज नॉट पॉसिबल.
1: बिल्कुल.
2: अगर कभी किसी पेशेंट का हमें ऑलरेडी पता है कि सिजेरियन ही होगा, जैसे कि मान लीजिए उसके पहले 2 सिजेरियन हो चुके हैं और हम 3rd सिजेरियन प्लान कर रहे हैं, या बेबी उसका ट्रांसवर्स पोजीशन में है, या उल्टा बच्चा जिसे हम कहते हैं उल्टा है, किसी का प्लेसेंटा बिल्कुल कवरिंग कॉज है, या कोई और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें पता है कि हमें इस पेशेंट का सिजेरियन ही करना है, ऐसे पेशेंट्स को हम एक ऑप्शन दे सकते हैं इफ देयर इज नो मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर पेशेंट हमें कहता है कि हमारा मुहूर्त 1.5 महीना पहले का है तो हम नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन जब हमारा बेबी फुल टर्म हो गया है उसके बाद 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता
1: है,
2: बट वो 1 दिन एट 34 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आफ्टर 38 वीक्स वी कैन एडजस्ट. मतलब इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, इट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेडिकल इंडिकेशन.
1: बिल्कुल बिल्कुल. कि जब होना है तभी उसको नॉर्मल प्रोसेस से लेके चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. लेकिन हाँ, अगर 1-2 दिन आगे पीछे का कुछ ऐसा मुहूर्त है तो वो आप प्लान कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ट्विंस की. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्विंस हैं तो सिजेरियन ही होगा, ऐसा होता है?
2: ट्विंस में सिजेरियन ही होगा नहीं होता, बट सिजेरियन का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. ट्विंस में एक बेबी अगर हमारा नॉर्मली डिलीवर हो गया है तो कभी कभी सेकेंड बेबी की पोजीशन ऐसी होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेकेंड बेबी के लिए करना पड़ता है. तो जहां हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि फिर हम पेशेंट को नॉर्मल के भी पेन्स देंगे और सिजेरियन भी करेंगे, तो दैट इज नॉट अ थॉटफुल आइडिया. तो ऐसे केसेस में फिर हम डायरेक्ट सिजेरियन करते हैं. बट अगर दोनों बेबीज बिल्कुल सही अलाइंड है, उनका वेट ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम ट्विंस में भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं.
1: ओके. यानी नॉर्मल के चांसेस हो सकते हैं. और ट्विंस में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सही टाइम क्या होता है, क्योंकि जनरली ट्विंस डिलीवरी जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल चाइल्ड.
2: ट्विंस में हमेशा मेच्योरिटी 2 वीक्स पहले आती है.
1: ओके.
2: जो मेच्योरिटी 40 वीक्स पे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आती है वो मेच्योरिटी ट्विंस में 38 वीक्स पे आती है. तो ट्विन डिलीवरीज हमेशा पहले हो जाती हैं. उनके वेट्स कम होते हैं बट वो बेबीज मेच्योर होते हैं. साथ ही यूट्रस जो है वो ओवर डिस्टेंडेड होता है तो उसमें अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शंस टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती हैं. दैट इज द रीजन कि ट्विन डिलीवरीज पहले हो जाती हैं.
1: जी बिल्कुल. सो बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, खास तौर पर से फर्स्ट टाइम मदर्स को, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो गया है. चीजें बहुत सारी हमें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, लेकिन ये चीजें सही हो, ये जानकारी सही हो, ये जरूरी नहीं है. तो एक्सपर्ट के द्वारा दी गई जानकारी बहुत जरूरी होती है. अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं मॉम टू बी, तो जरूर कीजिए. 8010781078 पर अपने सवाल पूछिए, और हमारी ऐप डाउनलोड करके रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ढूंढ सकते हैं. आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर दीप्ति गोयल के साथ हुई ये सारी बातचीत कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कीजिए. बहुत सारी बातें और भी करेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक।
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है नॉर्मल वर्सेस सी सेक्शन डिलीवरीज के बारे में। चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, लेकिन अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मदर को, फैमिली को, बच्चे को हर तरीके से तैयार भी रहना पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके डॉक्टर का। सो ऐसी ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर दीप्ति गोयल, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर दीप्ति, एक और बहुत ज़्यादा आजकल जो चर्चा हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है लोग उसको नहीं सहना चाहते, और फॉरेन में ये बहुत कॉमन है, एपिड्यूरल की बात होती है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। इंडिया में लोग अभी उसको समझ नहीं पाए हैं कंसेप्ट को, तो मैं आपसे चाहूँगी कि ये ज़रूर हमें बताएं,
1: पेनलेस वजाइनल डिलीवरी इज द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज अगर मैं आज की डेट में बात करती हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे सिजेरियन की रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको पेन्स नहीं लेने हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन होता है। पेनलेस डिलीवरी के लिए हम एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एनल्जीजिया आई विल से हम देते हैं कि बैक में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि ड्रिप के जैसे फ्लो करता है पूरा टाइम।
0: ओके,
1: जैसे ड्रिप हमें एक कैनुला लगा दिया जाता है और उससे आईवी ड्रिप हमारी फ्लो होती है
0: बैक में पेशेंट के।
1: तो वो कैनुला नहीं होता, इट्स लाइक वेरी थिन स्ट्रिप जिसको हम स्पाइन में इंसर्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, और उसके थ्रू वो मेडिसिन पूरी हमारी चलती है। उसका बेनिफिट ये है कि आपको पेन्स फील होने बंद हो जाते हैं, पेन्स आने बंद नहीं होते। प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है कि पेन्स बंद हो जाएंगे फिर डिलीवरी कैसे हुई। पेन्स आ रहे हैं बट आपकी सिर्फ सेंसेशंस ब्लॉक होती हैं।
0: ओके,
1: तो पेशेंट उठ के घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं,
0: अच्छा
1: कोई एक्सरसाइज करनी है वो कर सकते हैं, यूरिन पास करने के लिए जा सकते हैं, बट उनको पेन्स फील होने बंद हो जाते हैं और वो आराम से एग्जॉस्ट नहीं होते, आराम से अपनी डिलीवरी के लिए रेडी रहते हैं। जब पुश करने का टाइम होता है तो हम एपिड्यूरल को ऑफ कर देते हैं और पेशेंट को थोड़ी थोड़ी सेंसेशन आने लगती है, वहां पे हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा पाते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्टेबली कराते हैं।
0: और ये कॉमन होने लगा है इंडिया में,
1: ये कॉमन होने लगा है। नाउ वी आर ऑफरिंग दैट फैसिलिटी टू ऑल आवर पेशेंट्स। आई विल से दैट इज द राइट ऑफ एवरी मदर। व्हाई टू सफर पेन, व्हाई टू सफर पेन।
0: बिल्कुल। सो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है और होता भी है कि आफ्टर दिस इंजेक्शन जो हम नॉर्मली सिजेरियन में देखते हैं बैक में जो इंजेक्शन लगता है उससे बाद में बैक पेन बहुत सालों तक रहता है, क्या इससे भी रहता है?
1: इससे बैक पेन होने का जो परसेंटेज है वो हार्डली 5% है।
0: अच्छा,
1: लेकिन बैकएक जो है वो पोस्ट डिलीवरी आई विल से 70% मदर्स को होता है। उसका रीज़न ये इंजेक्शंस नहीं होते, ना ही सिजेरियन में जो इंजेक्शन लगता है वो होता है, ना ही जो एपिड्यूरल में इंजेक्शन लगता है वो होता है। उसका रीज़न होता है आपकी बैक की जो मसल्स हैं वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारा जो टमी है वो एक तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो एक इरेगुलर वेट गेन हो रहा है हमारा, पूरी बॉडी पे नहीं हो रहा है,
0: ऐसे हो जाते हैं।
1: तो बैक को बहुत काम करना पड़ता है हमें इरेक्ट पोस्चर में रखने के लिए, हमारी मसल्स एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। पोस्ट डिलीवरी हमें उसके लिए एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, लेकिन हम पूरे टाइम बेबी के साथ बिजी होते हैं, फीड कराने में लोगों का पोस्चर बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो इन सब चीजों की वजह से बैकएक होता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी होगी, बैक स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, बट एपिड्यूरल कैन नॉट बी द रीजन एवरी टाइम फॉर अ बैकएक।
0: ओके, एपिड्यूरल एक रीजन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और ये ट्रीटमेंट IVF IUI के नाम से काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ बेटर भी हुई है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि IVF, क्योंकि ये काफ़ी प्रीशियस प्रेगनेंसीज मानी जाती हैं, इसमें कभी ट्विंस होते हैं कभी सिंगल होता है, लेकिन ये काफ़ी प्रीशियस होती है बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत कुछ झेलना पड़ता है मदर को, तो क्या इसमें सिजेरियन ही कराना पड़ता है?
1: ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है और ना ही ऐसी कोई गाइडलाइन है कि अगर IVF कंसीव किया है तो सिजेरियन ही कराना है। अगर पेशेंट नॉर्मली लेबर में एडवांस कर रहा है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो, बट यस वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि बेबी को या मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एवरीथिंग गोज फाइन, गो फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी, बट इफ इट्स रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड देन आई विल से कि यू शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन।
0: ओके, वो ज़्यादा बेटर है, किसी भी तरीके की रिस्क लेने से बेटर है कि आप सी सेक्शन की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पर उसकी तैयारी कैसे करनी है वो इंटरनेट पर देख देख के प्रीनेटल योगा या इन सब की प्रिपरेशंस करते हैं, बट एक्चुअली में क्या करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ा जा सके?
1: इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड यू आर प्रोसीडिंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि हाँ पेन्स जब स्टार्ट होंगे तो मुझे उन पेन्स को थोड़ा बेयर करना है. बिकॉज हम जो पेनलेस का इंजेक्शन देते हैं वो भी हम स्टार्टिंग से नहीं दे सकते. उसके लिए भी एटलीस्ट 3 to 4 centimeters की डायलिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद हम वो इंजेक्शन पेशेंट्स को दे सकते हैं. उसके साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पहले लोग बहुत फिजिकली एक्टिव थे इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होती थी, तो अब वो वन डे में नहीं हो पाएगा. उसके लिए आपको पूरा 9 months अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी. एंटीनेटल क्लासेस होती हैं जो कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस सिखाते हैं. लमास सेशंस होते हैं कि आपको लेबर में कैसे बिहेव करना है. ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो सब सिखाया जाता है ताकि आपकी लेबर जो है वो स्मूथली निकल सके. तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनका अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेस का नाम लूँ तो कैट एंड काउ पोजेज हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस हैं, कीगल्स हैं, डक वॉक है, स्क्वाट्स हैं. तो वो राइट टाइम पे राइट एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हो
0: पर एक्सपर्ट की गाइडेंस में.
1: यस ऑब्वियसली. यस
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जब डाइट की बात करते हैं तो मदर्स को बहुत ज़्यादा घी और बहुत सारी पंजीरी और दूध और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले ही खिलानी शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ ईजी हो जाएगा, बाद में भी बहुत कुछ खिलाते हैं. इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो ऑफकोर्स होता होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वेट गेन बहुत ड्रास्टिकली होता है. सो ये कितना सही है?
1: एक हमारी सोसाइटी में कॉमन मिथ है कि अगर आप पेशेंट मदर को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसको घी पिला दो हाँ, तो उसका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और जो हमारा बर्थ कैनाल है दे आर नॉट कनेक्टेड एनीवे. जो आप घी पियोगे वो सिर्फ इंटेस्टाइन में जाएगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, फैट बन के डिपॉजिट होगा. उसके साथ साथ जब आपको पेन्स आएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है. तो अगर आपका स्टमक ज़्यादा फुल होगा तो उस वजह से आपको वॉमिटिंग्स और अनइजीनेस ज़्यादा होती है. तो उस घी के लिए तो मैं बिल्कुल बिग नो है. जो हमारा घी का क्वांटिटी प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी है, आई विल से कि मॉडरेशन में जितना आप कुकिंग के लिए आप जो भी घी ऑयल आप यूज कर रहे हो वही यूज करो. उसके अलावा घी का कोई बहुत ज्यादा मेजर बेनिफिट नहीं है. हमारी एक अगर हम हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की बात करें उसके हिसाब से जितनी फैट रिक्वायरमेंट है हमें वही लेना है. अगर किसी चीज़ का बेनिफिट है तो वो प्रोटीन इनटेक है. आपको अपनी डाइट में पल्सेस हैं, एग्स हैं, पनीर है, बेसन है, सोयाबीन है, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ाना है जिससे कि आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो, हीलिंग फास्ट हो, चाहे नॉर्मल है चाहे सिजेरियन है. योर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर हीलिंग.
0: ओके जी, यानी प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए. पनीर है, टोफू है, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर लेते रहें तो वो बॉडी को आपकी स्ट्रांग बनाने में मदद करती है. डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर हम बात करें तो काफ़ी घंटों तक बात हो सकती है, बट हमारे पास लिमिटेड टाइम है. सो बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब देने के लिए आपने गाइड किया है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो मानव रचना और इस तरीके से गाइड करने के लिए.
1: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच.
0: जी हाँ, नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी. कोई मन में सवाल अगर रह गया है और आपने ये पूरा एपिसोड नहीं सुना है तो इसे आप सुन सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके. रेडियो मानव रचना और पॉडकास्ट सेक्शन में जाके आरजी दीक्षा के फोल्डर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डॉक्टर दीप्ति गोयल के साथ हुई बातचीत मिल जाएगी. इस टॉपिक पर एक मॉम टू बी को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा, तो ज़रूर ये जानकारी उनके साथ शेयर कीजिए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. ऑल इज वेल में आज बस इतना ही. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

सेम पेस पर रखा जाता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत क्रूशियल रोल पे करता है। एग्जैक्टली वही इल्यूसी डेटा करती है। और ये कैसे हेल्पफुल है बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके डेटा के बिहाफ पर, इसका जो भी वहां पर एनालाइज करने का तरीका है, एग्जामिन करने का तरीका है, जितना ये डेटा को रीड करते हैं, जितना R&D कंपनी करती है, उससे बहुत हेल्प होती है नए ड्रग्स बनाए जाने में। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है इसकी USP क्या है, तो इल्यूसी डेटा क्या ऐसा अलग करती है। देखिए, ये ऑपरेट तो करती है विद इन बायोटेक एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये कंपनी की USP है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया है यहां पर, जहां पर AI एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड किया जाता है। एक्शनेबल इनसाइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा सेट्स, जहां पर जो रिसर्चर्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो डिसीजन लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अब उनके पास जो दिशा है, जो थोड़ी सी ब्लरी एक डायरेक्शन थी, अब वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। तो इसमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, तो ड्रग्स की जो डिस्कवरी का प्रोसेस है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा और जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अफोर्डेबल होगा हेल्थ केयर। जो नए ड्रग्स बनाए जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डील करने में सक्षम होंगे, वो अब अफोर्डेबल हो पाएंगे, एक्सेसिबल हो पाएंगे। और जितना ज्यादा इस डेटा को रीड किया जाएगा, जितना ज्यादा इस डेटा के ऊपर काम किया जाएगा, जितना ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को यहां पर फिक्स किया जाएगा, उतना ही जो है हमें देखने को मिलेगा कि दवाइयां जल्दी जल्दी डिस्कवर की जा रही हैं, उतना ही हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वो दवाइयां, वो ड्रग्स जो है वो एक्सेसिबल हो गए हैं, वो अफोर्डेबल हो गए हैं लो इनकम और मिडिल इनकम लोगों के लिए भी। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग, इट्स ऑल वेल कनेक्टेड। जैसे मैंने कहा कि आप इंडस्ट्री को समझ लीजिए, इंडस्ट्री को अगर आपने समझ लिया तो कंपनी को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इंडस्ट्री को तो हम जानते ही, अभी तक सब कुछ हमने जाना उसके बारे में, कैसे डिस्कवरी की जाती है, कैसे अलग अलग सेगमेंट्स में डील किया जाता है। वहीं पर अगर इल्यूसी डेटा जैसी कंपनीज की बात करें तो ये कंपनीज आती हैं लेकर AI एंड मशीन लर्निंग, जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत सिंपल वर्ड से प्रोवाइड करती है। दैट्स हाउ नई कंपनीज की हेल्प होती है, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी है तो वो रिसर्च करने में काफी उसकी मदद मिलने वाली है उसको इन सब डेटा शीट्स के बिहाफ पर। कंपनी स्टार्ट हुई 2015 में। कंपनी को स्टार्ट किया अभिषेक झा एंड श्वेताब पाठक ने। कंपनी का अगर आप बात करें तो विजन बहुत क्लियर है, जहां पर ये डेटा ड्रिवन अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जहां पर क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको फिक्स करने का काम ये दो लोग कर रहे हैं, अभिषेक झा एंड श्वेताब पाठक। अभिषेक झा की अगर आप बात करेंगे तो अभिषेक झा की अगर एजुकेशन को हम समझें तो इनके पास बैचलर्स डिग्री है इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT रुड़की, साथ साथ मास्टर्स डिग्री भी है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इससे ही पता लगता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अपनी पढ़ाई भी उसी में की है, तो एक अच्छी खासी नॉलेज जो है वो रखते हैं। अब जानते हैं इनके थोड़े से एक्सपीरियंस को। तो इल्यूसी डेटा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने काम किया है एज अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट एट येल यूनिवर्सिटी, जहां पर इन्होंने जो है इंटरेस्ट डेवलप किया इन यूटिलाइजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, या फिर कहें कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करके सिंपल बनाना, जो है वहां पर उस एक चीज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ अभिषेक का। एंड द नेक्स्ट नेम इज श्वेताब पाठक। श्वेताब की जो बैचलर डिग्री है वो है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ही इज फ्रॉम IIT कानपुर, साथ साथ उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट की है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेनोसेता। अब श्वेताब की अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, बट एक फील्ड में मल्टीपल चीजें इन्होंने एक्सप्लोर की है इन मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स, जहां पर वेरियस रोल्स इन्होंने प्ले किए, जहां पर टेक इंडस्ट्री को अच्छे से समझा बिफोर को फाउंडिंग इल्यूसी डेटा। तो ऐसी चीजें काम करती हैं, मतलब एक इंसान लेकर आए अपनी नॉलेज AI एंड मशीन लर्निंग में, दूसरे इंसान लेकर आए अपनी नॉलेज इन बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स हाउ दोनों ने मिलाकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, और नॉट जस्ट एक कंपनी खड़ी की बल्कि एक मेजर प्रॉब्लम को भी वहां पर ये एड्रेस कर रहे हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स जो बायोटेक्नोलॉजीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये फिक्स कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ हेल्थ केयर सेगमेंट हमारे देश में इंप्रूव हो रहा है।
अभी तक बहुत कुछ हम कंपनी के बारे में जान चुके हैं, कंपनी की यूएसपी पता है, फाउंडर्स के बारे में पता है, इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, की सेगमेंट्स को समझ चुके हैं, हम इस इंडस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं वो आपको बता चुके हैं, रेगुलेटरी एनवायरमेंट को बता चुके हैं, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स को भी हम बता चुके हैं, कैसे कैसे इनोवेट किया जाता है, कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, मार्केट ट्रेंड्स बता चुके हैं, चैलेंजेस बता चुके हैं, इंपैक्ट्स ऑफ कोविड 19 बता चुके हैं, साथ साथ एलयूसी डेटा के बारे में सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्रोथ एंड इम्पैक्ट की। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, सिंस इट्स इंसेप्शन, इसने बहुत तेजी से ग्रो किया है, बहुत रैपिडली ग्रोथ हमने देखी है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया कि दो इंसानों का वर्सेटाइल एक्सपीरियंस यहां पर काम आया है। एक इंसान वहां पर नॉलेज लेकर आते हैं जो डील कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी, दूसरे इंसान नॉलेज लेकर आते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग की। दोनों के पास मल्टीपल रोल्स का एक्सपीरियंस था, अलग अलग फील्ड्स की जो है पढ़ाई इन्होंने करी, और एक टेबल पर जब वो दोनों मर्ज हुए, दैट्स हाउ ये कंपनी बड़ी हुई, क्योंकि दोनों का पैशन भी सेम था कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, दैट्स हाउ यहां पर हेल्थ केयर काफी इम्प्रूव हुआ है। आई होप अब इसी के साथ जो आज की केस स्टडी थी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। आपका फीडबैक क्या है इसके ऊपर 8010781078 पर बताइएगा जरूर। नाउ विद दिस नोट शो को खत्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें, सुनते रहें रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। गुड बाय, नमस्कार।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम सत्यमेव जयते। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते में बहुत सारी बातें मैं आपके साथ करता हूं, और कभी मैं अकेला होता हूं तो कभी मेरे साथ मेहमान होते हैं और बात करते हैं आप ही लोगों के अधिकारों के बारे में। अधिकार की जब बात आती है तो हमें एडवोकेट याद आते हैं, और आज मेरे साथ एडवोकेट हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, नाम है शीला असवानी। शीला जी, सबसे पहले मैं आपका रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार सर। नमस्कार ऑडियंस, मैं एडवोकेट शीला असवानी रेडियो मानव रचना से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे।
0: जी, और देखिए शीला जी, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जब कानून की बात आती है, लोगों के अधिकारों की जब बात आती है। आज हम बात करेंगे जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को यही बताइए कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं ये क्या है?
1: क्या है ये? जी सर, देखिए हमारे इंडियन पेनल कोड और हमारा CRPC प्लस हमारा एविडेंस एक्ट, ये हमारे अंग्रेजों के टाइम के जमाने के बने हुए हैं लॉज। आप ये देखें कि इंडियन पेनल कोड IPC शॉर्टकट में IPC बोलते हैं हम, ये हमारा 1860 का बना हुआ है, डेट मीन्स आज़ादी से पहले का ही है। और प्लस हमारा जो CRPC है वो 1974 का बना हुआ है जी। ये भी अंग्रेजों के टाइम का था, लेकिन थोड़ा सा अमेंड करके इंडियंस ने अपना इसका इंडियंस के नाम दे दिया गया, लेकिन है तो ही अंग्रेजों के टाइम के जमाने का ही। और आप देखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य, ये भी 1872 का बना हुआ है। ये हमारे सारे लॉज हमारे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं सर। ये तो उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, आज का जमाना अलग है, आज की टेक्नोलॉजी अलग है। आप ये देखिए कि उस टाइम पे किसी घर में फोन भी नहीं होता था।
0: बिल्कुल,
1: फोन तो बहुत दूर की बात है कि जो लैंडलाइन फोन वो भी नहीं होते थे। यानी एक घर में है तो चार घर में नहीं होगा, और हम उस टाइम बड़ी बेसब्री से वेट करते थे, अच्छा फोन आया है, बहुत इंतजारी होती थी। अब तो फोन की इंतजारी नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं
0: जी।
1: और किसी को सूचना देनी होती थी, तार के माध्यम से सूचना जाती थी, जिसको हम टेलीग्राम्स बोलते हैं। तो अगर किसी घर पे अगर तार आ जाए ना, तो समझो तो उसके हाथ पर फूलने लग जाते थे कि ये क्या क्या न्यूज, कोई बैड न्यूज आई है, कोई बुरी खबर आई है। तो अब आप देखिए कि आजकल के टाइम में आजकल के टाइम छोड़िए, सबसे पहले हम क्या कहते थे कि फास्टेस्ट सर्विस किसकी होती थी? एरोप्लेन की। और आज के टाइम में फास्टेस्ट सर्विस है आपकी मोबाइल की, विद इन कुछ सेकंड के अंदर किसी के पास सूचना पहुंच जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये हमारे उस टाइम पे नहीं था। तो उस लॉज के अंदर भी, ये हमारे कानून के अंदर भी हमारी टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं था। तो इसलिए प्रावधान हमारे चेंज किए गए हैं, पनिशमेंट चेंज की गई है, बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो रिफॉर्म किया गया है। यानी हमारे जो न्यू लॉज हैं वो हमारे भारतीयों के फेवर के लिए हैं
0: जी।
1: भारतीयों के फेवर के लिए, कि भारतीयों को दंड ना मिले बल्कि उनको न्याय मिले। तो भारतीयों के न्याय के लिए ये हमारे लॉज बनाए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए गए।
0: तो ये जो लॉज बनाए गए हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहना है हमारी मेहमान शीला असवानी जी का। और शीला जी देखिए, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवाल भी जहन में आते हैं, और उसी से संबंधित कुछ और सवाल हैं मैं आपसे करूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको सुनाता हूं एक गाना, और उसके बाद लौट करके आता हूं आज के मेहमान एडवोकेट शीला असवानी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी, हाई कोर्ट दिल्ली में है, और आज बात कर रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉज की जब बात आती है तो बहुत सारे सवालों का जहन में उठना स्वाभाविक है। शीला जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये न्यू क्रिमिनल लॉज क्या है
1: जी।
0: लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, वारदातें हो जाती हैं घर में, घर से बाहर। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो लोगों के लिए हैं और लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, उससे अवगत नहीं है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नागरिक देश का कंप्लेंट अपने किसी थाने में देना चाहता है, उसके लिए उसके क्या क्या अधिकार हैं?
1: जी सर, थाने में अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं, मान लो कि किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, हम एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी है, उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो अगर वो क्रिमिनल नेचर का है, क्रिमिनल अपराध है, तो आप थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर थाने वाले आपके पुलिस स्टेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि आप EFIR कर सकते हैं। पहले हमारे जो पुराने लॉज है CRPC, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारी उस टाइम नहीं थी, आज के में टेक्नोलॉजी है, तो आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन EFIR दर्ज करने के बाद आपको within 3 days, 3 दिन के अंदर वहाँ पे साइन करने जाना होगा। बिना साइन के आपकी कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी।
0: ये तो जो आपने बताया EFIR, ये EFIR क्या है हमारे श्रोताओं को जरा
1: ये इलेक्ट्रॉनिक FIR है कि आप अपने फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन में अपनी EFIR के थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और आपको 3 दिन के अंदर वहाँ पे थाने के अंदर साइन भी करना होगा। हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे की आड़ में रहती हैं और जिनका पुलिस स्टेशन तक अप्रोच नहीं है, वो नहीं जा सकती हैं, या उन्हें कुछ बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन फ़ोन तो सबके पास होता है, वो अपने इस फ़ोन से पुलिस स्टेशन में मैसेज भी कर सकती हैं, फैक्स भी कर सकती हैं, ठीक है, या कोई टेक्स्ट मैसेज भी कर सकती हैं, या EFIR भी दर्ज कर सकती हैं। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल भी आती है कि आपके यहाँ से ये ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, बताइए क्या बात है
0: जी।
1: ठीक है, तो डैट मीन्स कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये लॉ बनाया गया है। सपोज कि अगर एक पॉइंट और कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि जहाँ पे वारदात होती है आप उसी थाने में जाएंगे, लेकिन ये बात हमारे पुराने लॉज में थी। अब जो न्यू लॉज हमारा आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS
0: जी,
1: इसके अंदर एक प्रावधान और ये भी कर रखा है कि जहाँ पे घटना हुई है वहां पे तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे दूर है, उस घटना स्थल से दूर है, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन अपने गांव में रहता है, गांव में कोई घटना हो गई है, या उसका मकान हड़प लिया है, या कोई वारदात हो गई है, वो अब दिल्ली में है, आप कमाने के लिए आया है, अब वो गांव जाएगा तो इतने में तो सारे सबूत मिट जाएंगे, ठीक है, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो वो जहां अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी अपनी EFIR या वहां के लोकल थाने के अंदर भी अपनी कंप्लेंट या अपनी FIR दर्ज करा सकता है, ताकि उसको इंसाफ मिले। गांव पहुंचते उसके 2 दिन लग जाएंगे, तो ये प्रावधान यहाँ पे दे रखा है कि आप कहीं पर भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं कि सपोज कि उस पर्सन का जिस स्थान जो पर्सन जहाँ पे रहता है, जहाँ घटना हुई है, वहां पे थाने के अंदर कोई मोनोपोली है, ठीक है, या फिर कोई प्रेशराइज है किसी पॉलिटिशियन का, वो उसकी दर्ज नहीं कर रहे कंप्लेंट, तो किसी और थाने से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, इरिस्पेक्टिव एरिया। ये मेंशन किया गया है FIR के अंदर, इरिस्पेक्टिव एरिया, EFIR हो गया आपका, ऐसी बातें इसमें दर्ज की गई। तो बहुत ही अच्छे प्रावधान बनाए गए हैं हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, BNSS में
0: जी। और दोस्तों देखिए क्या है कि धाराएं होती हैं, आपके अधिकार होते हैं, उनसे जुड़ी धाराएं होती हैं। और जैसा कि बताया शीला जी ने कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, और वहां नहीं होती है तो आप कहीं से भी करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है शीला जी। और भी सवाल है, मैं आपसे करता रहूंगा, फिलहाल अपने दोस्तों को अभी एक गाना सुना देते हैं।
1: जी जी जरूर सर।
0: चलिए दोस्तों आप गाना सुनिए, गाने के बाद दोबारा से आता हूँ आज की मेहमान एडवोकेट शीला असवानी जी के साथ, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते में आज हमारे साथ एडवोकेट शीला असवानी हैं, हाई कोर्ट दिल्ली से। न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में बातें हो रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बातें पीछे बताई थी न्यू क्रिमिनल लॉस के बारे में। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो कम्युनिटी सर्विस है
1: जी,
0: इसके बारे में क्या लॉस हैं?
1: जी जी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन सर। कम्युनिटी सर्विस हमारा जो हमारे आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, अब उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता नाम से पता लग रहा है कि भारतीयों को न्याय देना। और इंडियन पेनल कोड का मतलब अब इंडियन पेनल कोड, दंड प्रक्रिया, दंड इसको मिलेगा भारतीयों को। तो एक तो नाम चेंज किया गया है कि हमारा आईपीसी हटा के हमारा अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता की नागरिक जो हमारे इंडियंस हैं उनको न्याय मिले। और इसके तो बहुत सी बातें, बहुत प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म किया गया है। इसमें एक रिफॉर्म और भी किया गया पनिशमेंट में, कम्युनिटी सर्विस। हमारी 5 टाइप की हमारी पनिशमेंट पहले थी और वही 5 पनिशमेंट यहाँ भी रखी गई है, साथ में एक पनिशमेंट और जोड़ दी गई है। 5 पनिशमेंट हमारी थी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया आपका, और आपका ये प्रॉपर्टी टू फॉरफीचर, फाइन्स हो गए, ठीक है। और इसमें एक पनिशमेंट और जोड़ दी, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, नाम कम्युनिटी सर्विस से लग रहा है कि सामुदायिक सर्विस करना, सेवा करना। तो सपोज किसी ने पहली बार चोरी करी है, ठीक है, और उसका जो चोरी का अमाउंट है वो लेस देन 5000 है, लेस देन 5 में 4999, लेस देन 5000 रुपीज से, और पहली बार चोरी करी है। तो कोर्ट बोले कि भाई देखो ये कहीं जेल में जाके कहीं बेस्ट क्रिमिनल बन के ना आ जाए, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसको रिफॉर्म करने के लिए कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस देगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया कि चलो उसके उससे पेड़ पौधे लगवा दिए भाई, इतने 100 पेड़ पौधे लगा दे जरा, ठीक है, और ये काम कर दो, वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड होते हैं, उनसे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, इतना टाइम दे रखा है, इतना टाइम स्पेंड कीजिए। मीन्स कम्युनिटी, जिसको कम्युनिटी को फ़ायदा हो, ऐसी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है अगर इसने फर्स्ट टाइम चोरी करी। और भी प्रावधान है इसके अंदर
0: जी,
1: ठीक है, इसमें ये ऐड किया गया कम्युनिटी सर्विस, ये बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है इसमें। दैट्स कम्युनिटी सर्विस एक तरह की पनिशमेंट ही है।
0: Okay.
1: ऐसा नहीं है कि हमारा ये भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। आप देखिए कि जुवेनाइल जो एक्ट है, बच्चों के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, कोड बनाए गए, उसके अंदर भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो अब इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी कुछ हमारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस दी जाती है।
0: जी, कम्युनिटी सर्विस क्या है और कम्युनिटी सर्विस आपको किस तरह के अधिकारों के साथ जोड़ती है? और देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। अब साथ में हमारे वकील साहिबा हैं तो आपको तो पूरी जानकारी है और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है शीला जी कि सवाल अभी ख़त्म हो गए।
1: नहीं, से पूछिए आप सवाल।
0: हाँ, मैं सवाल और भी पूछूंगा, लेकिन सवाल और जवाब के साथ साथ लोगों को गाने भी सुनवाते होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी एक गाना सुनते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं आपके साथ आपके कार्यक्रम सत्यमेव जयते में।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं सत्यमेव जयते। आज की हमारी मेहमान है एडवोकेट शीला असवानी। बात हो रही है न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। शीला जी, आपने अभी कुछ बातें बताई थी, बहुत अच्छी जानकारी थी वो। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया और पुलिस उसको सर्च करने के लिए उसके घर जाती है, तो उसको वीडियो बनाना या कोई ऑडियो बनाना, इस तरह से कवर करना, ये ज़रूरी होता है या वो ना करे तो चलेगा?
1: नहीं नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन जो ये बनाए गए हैं लॉ इसके ऊपर कि अगर कोई पुलिस सर्च करने जाती है किसी एक घर पे और उसमें सर्च में जो आर्टिकल्स निकलते हैं
0: जी,
1: उसकी पूरी ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी।
0: ओके,
1: ये बहुत ज़रूरी है सर। वो इसलिए क्योंकि कहीं पुलिस कोई प्लांट खुद ना कर दे, खुद ना वहाँ पे लगा दे आर्टिकल्स की हाँ ये रिकवरी हुई है वहाँ से, तो उसकी एक ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी कि हमने ये सामान रिकवर करा है, हमने ये आर्टिकल्स रिकवर करे हैं। और जो लिस्ट बनाएंगे उसकी भी ऑडियो वीडियो होगी उसकी, और प्लस जो दो विटनेस साइन करेंगे उनका भी रिकॉर्डिंग होगा। और ये पक्का है, ये पक्का उनको करना है, इससे वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते हैं। और ऐसा करने के बाद फॉरन विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के वो ये रिपोर्ट और ये रिकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड करेंगे डीएम साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब को, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को फॉरन फॉरवर्ड करेंगे, ताकि उस ऑडियो या वीडियो में कोई टैम्पर ना किया जाए।
0: लेकिन अगर पुलिस वाले गए हैं उनको सर्च करने के लिए और किसी भी तरह की वीडियो वो नहीं बनाते हैं, तब क्या होना चाहिए?
1: उन्होंने फिर राइट का उल्लंघन किया है सर, क्योंकि प्रावधान हमें यही कहता है कि उनको बनाना है
0: जी,
1: और जरूर बनाना है, 100% बनाना है। अगर वो ऐसे करते हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से ब्रीच किया है अपना, तो राइट्स तो वॉलेट हो ही रहे ना पब्लिक का, तो क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही ये प्रावधान दे रखा है, सेक्शन 105, तो ये प्रावधान दे रखा है, ये पुलिस वालों को करना ही करना है सर्च एंड सीजर के टाइम पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान दे रखा है।
0: जी
1: जी,
0: तो चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी है शीला जी। अब देखिए, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं लेकिन समय और ज्यादा नहीं है
1: जी,
0: इसलिए आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है।
1: मैं तो यही कहूंगी सर सबसे कि अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, जो सोता है वो खोता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट में, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें हमें तो अपने कानून के बारे में पता ही नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं, और कोई अगर पर्सन बोले कि मुझे तो पता ही नहीं अपने कानून के बारे में, तो ये बात गलत है, इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। आप अपने अधिकारों को जाने, आजकल तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उन पे भी अपनी क्यूरीज डाल के अपने क्वेश्चन, अपने आंसर सर्च कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल शीला जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद सर। कहना चाहूँगी कि रेडियो मानव रचना का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और रूबरू कराया ऑडियंस के साथ, थैंक यू सो मच सर।
0: जी, तो दोस्तों, अब फहीम भी आपसे इजाज़त चाहता है, लेकिन जाते जाते बस यही कहूँगा कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।
1: शुक्रिया।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

कई बार तुमने घूंघट भी खोल लिए, एक घूंघट के भीतर तुमने कोई ना पाया तो भी तुम्हें समझ नहीं आती, तब तुम दूसरा घूंघट खोलने में लग जाते हो। एक मुट्ठी झाग झाग सिद्ध हो गई तो मन कहे चला जाता है सारी ही झाग थोड़ी झाग होगी, एक घूंघट व्यर्थ हुआ दूसरे घूंघट में खोज लेंगे। ऐसा जन्म जन्मों से घूंघट उठाने का क्रम चलता है, किसी घूंघट में कभी किसी को नहीं पाया, सब घूंघट खाली थे। तुमने कभी किसी में किसी को पाया, पति में कुछ पाया, पत्नी में कुछ पाया, मित्र में कुछ पाया, सगे साथी में कुछ पाया, या सिर्फ घूंघट था? नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है वहां, लेकिन मन की आशा है, कहती यहां नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। इस झरने में पानी सिद्ध नहीं हुआ, फिर दूर और झरना दिखाई पड़ने लगता। तुम कब जागोगे इस सत्य से कि झरने तुम कल्पित करते हो, कहीं कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त सब अयथार्थ है, तुम्हारे अतिरिक्त सब माया है। यमराज की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ो। अगर जीवन को सचमुच पाना है तो मौत से, जहां जहां मौत हो वहां वहां जीवन नहीं है, इसको तुम समझ लो। जहां जहां परिवर्तन हो वहां शाश्वत नहीं है, और जहां जहां क्षणभंगुर हो वहां सनातन नहीं है, और जहां जहां चीजें बदलती हो वहां समय को मत गमाना, उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता है। उस न बदलने को खोज लेने की कला का नाम धर्म है। एस धम्मो सनातनो। विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को भरी हुई बाढ़, जिस सोए हुए गांव में अचानक नदी में बाढ़ आ जाए और लोग सोए सोए ही बह जाते हैं, ऐसे ही विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उठा ले जाती, सोए ही सोए बाढ़ आ जाती है और जिंदगी विदा हो जाती। तुम सपने ही देखते रहते हो और बाढ़ आ जाती। सारी काम वासना स्वप्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ऐस के बंदे सोते रहे फिर जागे भी तो क्या जागे, सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। एक तो जागते ही नहीं, सोए ही रह के बिता देते, और अगर कभी कोई सोचता भी है कि जाग गया तो सोचता ही है कि जाग गया, वो भी जागना जैसे सपने में ही जागना है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए, तो लोग अपने जन्मदिन को याद रखते, मृत्यु दिन की कौन चर्चा करता है। लोग जीवन पर नजर रखते, मौत की बात ही करनी बेहूती मालूम पड़ती। अगर किसी से पूछो कि कब मरोगे तो वो नाराज हो जाता, मरोगे के नहीं तो फिर तुम्हारा तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें दुश्मन समझ लेगा। पूछा कुछ गलत न था, जो होने ही वाला था वही पूछा था, लेकिन मौत की लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात से भी भय लगता है। फिर भी मौत तो है, उस तथ्य को इनकार न कर सकोगे। किसी भांति उस तथ्य को स्वीकार करो तो शायद इस जीवन से जागने की क्षमता आ जाए। जिसने भी मृत्यु को स्वीकार किया वो देखेगा मृत्यु कभी आती है ऐसा थोड़ी, रोज हम मर रहे हैं, अभी आती है, अभी आ रही है, अभी घट रही है, ऐसा थोड़ी कि कभी 70 साल के बाद घटेगी, रोज रोज घटती है।

जो उग चुका वो ढल ही चुका, जो उग गया है वो ढलने के मार्ग पर है। सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने की चेष्टा में संलग्न है। सांझ दूर नहीं है अगर सुबह हो गई, जब सुबह ही हो गई तो सांझ कितनी दूर हो सकती है। जिसको तुम भर जवानी कहते हो वो केवल आधे दिन का पूरा हो जाना है, आधी सांझ का आ जाना है। जवानी आधी मौत है, लेकिन कौन याद रखता है? जो याद रख लेके वही शिष्य है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत को दुश्मन मत समझना, जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत ही है, वो भी जान लेकर जाएगी। फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, दुनिया को पाने की चेष्टा में वो जो जीवन था उसे तूने मिटा दिया, और दुनिया के पाने की चेष्टा को ही तूने जिंदगी समझी, वो जिंदगी ना थी। भूल हो गई गाफिल सोए हुए आदमी, भूल हो गई जिंदगी ही दुनिया थी। इसे थोड़ा समझ लो। जिसे तुम दुनिया कहते हो, तुम्हारे बाहर जो फैलाव है उसे जिंदगी मत समझ लेना। अगर उस बाहर की दुनिया को ही इकट्ठा करने में लगे रहे तो असली जिंदगी गंवा दोगे, पीछे पछताओगे, समय बीत जाएगा और रोओगे, फिर शायद कुछ कर भी ना सकोगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मरते क्षण में शायद अधिकतम लोगों को यह समझ आती है। तू हविस में दुनिया की जिंदगी गंवा बैठा, मरते वक्त अधिक लोगों को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है। भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी, लेकिन तब समय नहीं बचता। मरते मरते दिखाई पड़ना शुरू होता है कि महल जो बनाए, धन जो इकट्ठा किया, साम्राज्य जो फैलाए, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। भीतर की जिंदगी को जान लेते तो दुनिया को पा लेते, बाहर की दुनिया को पाने में लग गए, भीतर की जिंदगी गंवा दी। बाहर और भीतर में उतना ही फर्क है जितना सत्य में और स्वप्न में। बाहर है स्वप्न का जाल, भीतर है साक्षी का निवास। जो दिखाई पड़ता है उस पर ध्यान मत दो, जो देखता है उस पर ध्यान दो। जो भोगा जाता है उस पर ध्यान मत दो, जो भोगता है उस पर ध्यान दो। आंख की फिक्र मत करो, आंख के पीछे जो खड़ा देखता है उसकी फिक्र करो। कान की फिक्र मत करो, कान के पीछे खड़ा जो सुनता है उसकी फिक्र करो। न जन्म की चिंता करो न मृत्यु की, चिंता करो उसकी जो जन्म में आता है और मृत्यु में जाता है, जो जन्म के भी पहले है और मृत्यु के भी बाद है। मरते क्षण में ये याद भी आए तो फिर क्या करोगे? जिनको पहले याद आ जाती है वे कुछ कर लेते। हिचकियों पर हो रही है, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। मरते क्षण में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि जिसको जिंदगी समझी। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, वो सारे स्वप्न, वे सारे गीत, वो सारा संगीत हिचकियों में बदल जाता है। हिचकियां ही हाथ में रह जाती है। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। इसके पहले कि सब कुछ हिचकियों में बदल जाए, और इसके पहले कि तुम्हारा साज तोड़ा जाए, भीतर के गीत को गा लो। इसके पहले कि मौत शरीर को छीने, तुम उसे जान लो जिसे मौत छीन ना सकेगी। इसके पहले

कि बाहर का जगत खो जाए, तुम भीतर के जगत में पैर जमा लो, अन्यथा तुम सोए हुए गांव की तरह हो, बड़ी हुई नदी की बाढ़ तुम्हें सोया सोया बहा ले जाएगी। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे, जीवन के गांव की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, ऐसे ही तुम इस जिंदगी में रहो। जीवन जो रस दे सके ले लो, मगर रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जागृत है। शेष तो उन भौरों की तरह है जो रस लेने में इस तरह डूब जाते कि उड़ना ही भूल जाते। सांझ जब कमल की पखरियां बंद होने लगती तब वे उसी में बंद हो जाते, उनके लिए कमल भी कारागृह हो जाते। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेके चुपचाप चल देता है, ऐसे जिंदगी को बिना कोई हानि पहुंचाए, यही अहिंसा का सूत्र है। अहिंसा का सूत्र इतना ही है कि रस लेने के तुम हकदार हो, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के नहीं। फूल को तोड़ के भी भोगा जा सकता है, वो भी कोई भोगना हुआ। भौरा आता है फूल पर, चुपचाप गुनगुनाता है गीत, रिझा लेता है फूल को, रस ले लेता, उड़ जाता, तोड़ता नहीं, मिटाता नहीं। भौरे की तरह मुक्त, भ्रमर की तरह मुक्त। बुद्ध कहते हैं जीवन के गांव में तुम जियो जरूर, लेकिन आबद्ध मत हो जाना, बंद मत हो जाना। हमारी हालत तो बड़ी उल्टी है, इससे ठीक उल्टी। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के मत हो जाना। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन हमारी हालत से ठीक उल्टी है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर भी जाएं हम तो भी गम नहीं मरते, कब्र में भी तुम पड़े रहोगे। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में, तब भी तुम सपने देखोगे, तब भी तुम उसी दुनिया के सपने देखोगे जिससे तुमने कुछ कभी पाया नहीं। तुम्हारी आंखें फिर भी उसी अंधेरे में खोई रहेंगी जहां कभी रोशनी की किरण न मिली। तो एक तो है ढंग, दुनिया उसके भीतर से नहीं हटती, और एक है सन्यासी का ढंग, वो जीता भी है तो दुनिया उसके भीतर नहीं होती। ये जीवन के विराट नगर के संबंध में भी सही है, और यही बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कहा कि गांव गांव जब तुम भीख भी मांगने जाओ, भिक्षाटन भी करो, तो चुपचाप मांग लेना, ऐसे ही जैसे भौरा फूलों से मांग लेता है, और विदा हो जाना। ले लेना जो मिलता हो, धन्यवाद दे देना जहां से मिले, अनुग्रह पूर्वक स्वीकार कर लेना। न मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मिलना चाहिए धन्य भाग, न मिले संतोष, और जो न मिलने पर संतुष्ट है उसे मिल ही जाता है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कि मिल जाने पर भी संतोष नहीं, तो मिल के भी नहीं मिल पाता, हम दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, सपने से भी सीखा जा सकता है, और मृग मरीचिकाएं भी बुद्धत्व का आधार बन जाती, भ्रम से भी जागने की कला उपलब्ध हो जाती। रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। न तो संसार का सवाल है, न संसार को छोड़ने का सवाल है, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे। इतने भर जानने की बात है कि हम यहाँ मेहमान से ज्यादा नहीं। जब तुम किसी के घर मेहमान होते हो, जाते वक्त तुम ऐसा थोड़ी कहते हो कि अब सारा घर तुम्हारे लिए छोड़े जाते, त्याग किए जाते। मेहमान का यहाँ कुछ है ही नहीं, घर में ठहरने का सौभाग्य मिल गया, धन्यवाद। अपना कुछ है नहीं, छोड़ेंगे क्या? इसलिए
त्यागी वही है जिसने ये जान लिया कि हमारा कुछ भी नहीं, वह नहीं जिसने छोड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसे तो अभी भी ख्याल है कि अपना था छोड़ा। अपना हो तो ही छोड़ा जा सकता है, अपना हो ही ना तो छोड़ना कैसा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ छोड़ने की भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि वो पकड़ने की ही भ्रांति का हिस्सा है। तुम तो पकड़ने की भ्रांति को ही समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं। अभी नहीं थे तुम, अभी हो, अभी फिर नहीं हो जाओगे। इस संसार को भीतर घर मत बनाने देना। तुम संसार में रहना, लेकिन संसार तुम में न रह पाए। गुजरना पाने से लेकिन पैर भीगे नहीं। जीना लेकिन भंवरे की तरह किसी को हानि न पहुंचे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है। क्या रस है, किस रस की बात कर रहे हैं बुद्ध? समझा दूं, क्योंकि डर है कि तुम कुछ गलत ना समझ लो। बुद्ध किस रस की बात कर रहे हैं, किस भंवरे की बात कर रहे हैं? तुम जिन्हें सुख कहते हो उनकी बात नहीं कर, तो वही रस है, क्योंकि जिसने वो जान लिया उसके लिए महारस के द्वार खुल गए। तो जीवन के हर फूल से और जीवन की हर घटना से, जन्म हो कि मृत्यु, और जीवन की हर प्रक्रिया से तुम एक ही रस को खोजते रहना और चुनते रहना। हर अवस्था तुम्हें जगाने का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए। घरों की गृहस्थी, बाजारों की दुकान, कोई भी चीज तुम्हें सुनाने का बहाना न बने, जगाने का बहाना बन जाए। तो तुमने रस ले लिया। मरने के पहले अगर तुमने इतना जान लिया उनको, महाजीवन को जान लिया, तो तुमने रस ले लिया। तो तुम यूं ही न भटके, तो तुमने ऐसी ही गर्द गुबार न खाई, तो रास्ते पे तुम चले ही नहीं, पहुंचे, पहुंचे भी तब तुम अचानक हैरान होगे, चकित होगे कि जिसे तुम खोजते फिरते थे वो तुम्हारे भीतर था। वो परमात्मा का राज्य तुम्हारे हृदय के ही राज्य का दूसरा नाम है। मोक्ष तुम्हारे भीतर छिपी स्वतंत्रता का ही नाम है। और क्या है जो अहंकार का टिमटिमाता दिया बुझ जाता है तो ऐसा नहीं कि अंधकार हो जाता है। उस टिमटिमाते दिए के बुझते ही महासूर्यों का प्रकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि जब वे गीतांजलि लिख रहे थे तो पद्मा नदी पर एक बजरे में निवास करते थे। रात गीत की धुन में खोए कोई गीत उतर रहा था, उतरे चला जा रहा था। वो एक टिमटिमाती मोमबत्ती को जला के बजरे में देर तक गीत की कड़ियों को लिखते रहे। कोई आधी रात फूक मार के मोमबत्ती बुझाई, हैरान हो, पूरे चांदा ही गीत था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि बजरे की उस छोटी सी कुर्सी में सब तरफ से सूरज, सब तरफ से चांद की किरणें भीतर आ गई। रंध रंध से वो छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चांद की किरणों को बाहर रोके हुई थी। तुमने कभी ख्याल किया कमरे में दिया जलता हो तो चांद भीतर नहीं आता? फिर दिया फूंक मार के बुझा दिया, चांद बरस पड़ा भीतर, बाढ़ की तरह सब तरफ से आ गया। रविन्द्रनाथ उस रात नाचे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक अपूर्व अनुभव हुआ, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं हम निर्वाण है। इधर तुम बुझे, उधर सब तरफ से परमात्मा या जो भी नाम दो भीतर प्रविष्ट हो जाता है। तो एक तो जीवन को जीने का ढंग है जैसा तुम जी रहे हो, एक बुद्धों का ढंग भी है। चुनाव तुम्हारे हाथ में, तुम बुद्धों की भांति भी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। और तुम दीनहीन भिखमंगों की भांति भी जी सकते हो जैसा तुम जी रहे हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती जिला नहीं रहा। तुमने ही न मालूम किस बेहोशी और नासमझी में इस तरह की जीवन में जानो जिनमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। मैं एक घर में मेहमान था, सामने एक मकान बन रहा था और एक छोटा लड़का वहां मकान के सामने पड़ी हुई रेत और ईंटों के बीच में खेल रहा था।
उसने धीरे धीरे, मैं देखता रहा बाहर बैठा हुआ, मैं देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ ईंटें लगा ली और ईंटों की जमाता गया ऊपर। फिर वो घबराया जब उसके गले तक ईंटें आ गई, क्योंकि वो खुद कैद हो गया। तब वो चिल्लाया कि बचाओ, मैं उसे देख रहा था और मुझे लगा यही आदमी की अवस्था है, ढंग से रखी है उसी ढंग से गिरा दो। तुम नहीं रखी है, तुम ही उठा सकते हो। कारागृह तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी और ने तुम्हें कारागृह में बंद नहीं किया है, खेल खेल में बना लिया है। खेल खेल में ही आदमी बंद हो जाता है, जंजीरों में उलझ जाता है। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में है। अब ऐसे मत चलो, अब जरा जाग के चलना हो जाए, अब जरा होश से चलो। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते। प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो। महाकाश्यप न हंसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा। महाकाश्यप ना भी हुआ हो, हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा। कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो, अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत, चुप बैठेंगे। शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते हैं। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मौन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं, बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूँ उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास न मत पढ़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी जानना जरूरी है, मैं चीनी बोलूं तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले, जो मौन का रस जानता था वही समझा, जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा, उसने बस भर आंख देखा, उसने सोचा नहीं कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था, ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोलकर बैठे थे, निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए,
परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए। महाकाश्यप कोई विचारक न था, वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को। जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे, ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूं फूल को, मात्र दृष्टा हूं, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चलाए रखोगे? हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी। तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में, बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे। जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे, वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने दो फूल देखे। दो फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी, एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे? क्यों हंसा महाकाश्यप? हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए हैं। मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन है। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूर्ता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई, कुछ किया नहीं हंसने में, और रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी न समझी, हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे इस मूर्ता पर हंसा है, और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला। जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया। जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई, उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपनिषद उस दिन मात हो गए। जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद जैन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए। कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था। महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। जैन फकीर प्रश्न पूछते, एक जैन फकीर हुआ बैठा था, शिष्य बैठे थे, एक बर्तन में पानी रखा था। उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है, ये बर्तन और ये पानी, बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो। अर्थात कृत्य से घोषित करो, जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे, हाथ में कोई फूल तो नहीं था। सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई, कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं। वो फूल के संबंध में सोचने लगे और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था। रसोईया, जो भिक्षु, जो सन्यासी रसोई का काम करता था, वो भीतर आया। उसने ये उदासी चिंतन से तने हुए लोग देखे, उसने पूछा मामला क्या है।
गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन जल भरे बर्तन

के संबंध में वक्तव्य देना है, कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है। और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था, लेकिन उस रसोई ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं। गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया। और वो बोला कि अब उठो, हो गई बकवास बहुत, भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल, वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता है, अब और क्या कहने को रहा। उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ। ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में, एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के। इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं तो जो हंसेगा उसको घर नहीं मिलेगा। अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुड़काएगा उसको घर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया, अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है, हजारों घटनाएं, लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे दिन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रखे, गुरु ने कोई सवाल दिया है जो हल नहीं होता। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो, हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती। और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गई, ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे। कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही। हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय ना रहा है। गुरु नाराज है। शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य का नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है, जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में माथे पर बल होते, जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते हैं, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती कि अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचान लिया। वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था, वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ। अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर देती थी। तो इस नए शिष्य ने पूछा फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया। उसने कहा वो तो मैं कभी ना पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला। उसने कहा भले मानुष पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे। अब कहीं कोई ये कर सकता है। दूसरे दिन वो गया, जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, आंख बंद कर ली, हाथ फैला दी जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने
अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसे आंख खोलते। उठ, भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछना। पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है, वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए। वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ। वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई। देखते ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना, देखते हंसा। ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन पर पड़ता ही न हो, ये देखते हंसा। हंसता या न हंसता, भूल उसे मिलना था। हंसी न हंसी तो संयोगी थी। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया। ध्यान रखना, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचोगे हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे। हंसने की वजह से नहीं दिया, हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता तब व्यर्थ हो गई। हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया। न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उड़ेल दिया होता। लेकिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूढ़ता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी न हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेसे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहा पोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क तर्क जाल, प्रश्नों प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि सोचने वालों ने गंवा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा हुआ है। जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम दस दूसरी बातों पर निकल जाते हो। मैं करता हूं इशारा चांद की तरफ, तुम उंगली पकड़ लेते हो। तुम उंगली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना, किस दिए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी ना आजादे फना, किस दिए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था,
या फरेबे चश्मे शौक सामने आकर निहां आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा न हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर निहां आंखों से मंजिल हो गई, आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार न हो तो मंजिल भी क्या करे, सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे। क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, और यदि ऐसा होता तो कैसा होता ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यर्थना नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता? अब इसका कौन उत्तर दे, इसका कौन उत्तर दे, और उत्तर का क्या अर्थ है? जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गवाया बड़ा महंगा है, क्योंकि उसी पल में सब कुछ उपलब्ध हो सकता था। दूसरा प्रश्न, बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा, लेकिन बुद्ध के देह विसर्जन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया बुद्ध धर्म अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बटने लगा। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बट गए। कृपया इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय कारागृह हो जाता है और ज्ञानी का संप्रदाय मुक्ति की एक राह है। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी, अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेते हैं, अज्ञानी मार्ग से ही बंध जाते हैं। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय है, लेकिन बड़ा गंदा हो गया। लेकिन गंदा हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब कोई नाव को सिर पर रख के ढोए तो इसमें नाव का क्या कसूर है? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओ कि लोग नाव को सिर पर रख के ढो रहे हैं? मूर्ख तो ढोएंगे ही, नाव न होती कुछ और ढोते। मंदिर मस्जिद न होते लड़ने को तो किसी और बात से लड़ते, कुछ और कारण खोज लेते। जिन्हें जाना नहीं वे मार्ग के संबंध में विवाद करने लगते, जिन्हें जाना है वे मार्ग का उपयोग कर लेते, और जिसने मार्ग का उपयोग कर लिया वो मार्ग से मुक्त हो जाता है। जिसने नाव का उपयोग कर लिया वो नाव को सिर पर थोड़ी ढोता है, नाव पीछे पड़ी रह जाती, रास्ते पीछे पड़े रह जाते, तुम सदा आगे बढ़ते चले जाते हो। संप्रदाय में अपने आप कोई भूल भ्रांति नहीं है, भूल भ्रांति है तो तुम में। तुम तो औषधि को भी जहर बना लेते हो, बड़े कलाकार, तुम्हारी कुशलता का क्या कहना। जो जानते हैं वे जहर को भी औषधि बना देते हैं, वक्त के काम पड़ जाता है जहर भी जीवन को बचाने के। तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा हो जाती है। असली सवाल तुम्हारा है। बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बटा, बटना ही चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होगा तो पेड़ ही पेड़ थोड़ी रह जाएगा, शाखा प्रशाखाओं में बटेगा। पेड़ ही पेड़ बड़ी ठूठ मालूम पड़ेगी, उस वृक्ष के नीचे छाया किसको मिलेगी जिसमें पेड़ ही पेड़ हो।
उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर, कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती, शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर है कि वृक्ष में हजार वृक्ष होने की क्षमता थी, किसी तरह एक में समा लिया है। खर्च भी कुछ नहीं है, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतने ही पक्षी बसेरा कर सकेंगे, उतने ही पक्षी घोंसले बना सकेंगे, उतने ही यात्री विश्राम पा सकेंगे, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी, धूप से तपे मानों के लिए आसरा होगा, सरल होगी। जो वृक्ष फूट रह जाए उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ, उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता, सभी जीवित चीजें फैलती हैं, सिर्फ मृत्यु सिकुड़ती है, मृत्यु सिकुड़ती है जीवन फैलाता है, जीवन विस्तार है, एक से दो, दो से अनेक होता चला जाता है। परमात्मा अकेला था फिर अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था, अगर मुर्दा होता तो अनेक नहीं हो सकता था। संसार को गाली मत देना, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आया तो समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं, तुम भी उसी की शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता ही नहीं, फैलता ही चला जाता है। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहा है। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पीर से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपका रहता, जैसे जैसे बढ़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था, वे सभी एक ही वृक्ष से जुड़ी थी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था, बुद्ध स्रोत थे। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। ये जरा हैरान की बात है, सारी मनुष्य जाति में बुद्ध ने जितनी संभावनाओं को जन्म दिया किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया। महावीर के वृक्ष में केवल दो शाखाएं लगी, दिगंबर श्वेतांबर बस, और उनमें भी कोई बहुत फासला नहीं है, क्षुद्र बातों का फासला है। कि कोई महावीर का श्रृंगार करके पूछता है, कोई महावीर को नग्न पूछता है। श्रृंगार के भीतर भी महावीर नग्न है और नग्न में भी उनका बड़ा श्रृंगार है, इसमें कुछ बड़ा फासला नहीं। उनकी नग्नता ही श्रृंगार है, अब और क्या सजाना है उनको? और सजाना तो ऐसे है जैसे कोई सांप पर पैर चिपका है, तो सांप अकेला बिना पैर के खूब चलता था, अब तुम और पैर चिपका के उसे खराब मत करो। ये तो उन पर और श्रृंगार करना ऐसे ही है जैसे कोई मोर को और रंगों से पोते, मोर वैसे ही काफी रंगीन था, अब तुम कृपा करके रंग खराब मत करो। महावीर की नग्नता में ही खूब श्रृंगार है, उन जैसी सुंदर नग्नता कभी प्रकट हुई तो फिर तुम्हारी मौज है, तुम्हारा मन नहीं मानता, इसलिए नहीं कि महावीर में कुछ कमी है, तुम्हारा मन बिना किए कुछ नहीं मानता, तुम कुछ करना चाहते हो करो भी क्या। महावीर जैसे व्यक्ति के सामने एकदम असमर्थ हो जाते हो, सुंदर कपड़े पहनाते हो, सुंदर आभूषण लगाते हो, ये तुम्हारी राहत है, तो महावीर का कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे सब वस्त्रों के पीछे भी वे अपनी नग्नता में खड़े नग्न ही है, ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। दिगंबर कहते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई, श्वेतांबर कहते हैं शादी हुई, क्या फर्क पड़ता है? दिगंबर कहते हैं उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जब शादी ही नहीं तो बच्चा कैसे हो? श्वेतांबर कहते हैं उनकी एक लड़की थी, पर क्या फर्क पड़ता है? महावीर में से क्या फर्क पड़ता है शादी हुई कि ना हुई? ये तो फिजूल के विस्तार की बातें हैं। महावीर के होने का इससे क्या लेना देना है? शादी हुई हो तो ठीक, न हुई हो तो ठीक, जिसको जैसी मौज हो वैसी कहानी बना ले, लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं होगा। जीसस
उसके भी दो शाखाएं फूट कर रह गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक।

कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। बुद्ध अनूठे अद्वितीय सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई। कहते हैं जितना दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म में ना हो। अगर तुम बुद्ध धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हार जाना होगा, क्योंकि सारे जगत में जो भी कहीं हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वो विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष, ये तो सौंदर्य की बात है, ये तो अहोभाव और उत्सव की बात है, इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है। ये तो इतना ही बताता है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी। ज्ञानी ने तो उस संभावना का उपयोग किया, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही, फिर भी एक ही तने से जुड़ी होती, विरोध कहां है? और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है। एक बुद्ध ही फैलते चले गए सब में, इससे कुछ अड़चन न थी, लेकिन अज्ञानी अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वो ये भूल ही जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं एक ही स्रोत से जन्मी। मैंने सुना है एक गुरु के दो शिष्य थे। गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहा था और दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट रखा था सेवा के लिए। बाया पैर एक ने ले रखा था, दाया पैर एक ने ले रखा था। गुरु ने करवट पड़ी तो बदली तो बाया पैर दाए पैर पर पड़ गया, स्वभाव तो झंझट खड़ी हो गई। गुरु तो एक है, शिष्य दो थे, दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा हुआ था। तो जब दाएं पैर पे बाएं पैर पड़ा तो जिसका दाएं पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर को, मेरे पैर पर पैर सीमा होती है सहने की, बहुत हो चुका, हटा ले। उस दूसरे का देखूं किसकी हिम्मत कि मेरे पैर को कोई हटा दे, सिर कट जाएंगे, मगर मेरा पैर जहां रख गया रख गया। ये कोई साधारण पैर नहीं, अंगद का पैर है। भारी झगड़ा हो गया, दोनों लठ लेके आ गए। गुरु इस उपद्रव सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने देखी ये दशा, उसने जब लठ चलने के ही करीब आ गए, लठ चलने वाले थे गुरु पर, क्योंकि जिसका दाया पैर था वो बाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था और जिसका बाया पैर था वो दाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था। गुरु ने कहा जरा रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे, ये दोनों पैर मेरे, तुमने विभाजन कैसे किया? अज्ञानी बांध लेता है और भूल ही जाता है कि जो उसने बांटा है वो एक ही व्यक्ति के पैर या एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। अज्ञानी ने उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब खतरा शुरू होता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है, क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती, जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया से संप्रदाय थोड़ी मिटाने हैं, अज्ञानी मिटाने हैं। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगे दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी। उस दिन गुरु बिना पैर के होगा, उसको फिर जैसे भिकमंगों को ठेले पर रख के चलाना पड़ता है ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होगा, न पक्षी बसेरा करेंगे न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगते हो शाखाएं न लगती हों उसका इतना ही अर्थ है कि जलन सूख गई, अब वहां जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका उसे, उड़ गया। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा? नहीं, ज्ञानी के लिए तो वो अब भी एकता में,
और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वो तब भी एकता में नहीं था जब बुद्ध जीवित थे, तब भी अज्ञानी अपनी तैयारियां कर रहे थे, तभी फिरके बटने शुरू हो गए थे। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब बांट लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है, अज्ञानी तो पहले भी अज्ञानी था, वो कोई अचानक थोड़ी अज्ञानी हो गया। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवित होने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, अज्ञान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध क्या कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, समझा सकता हूँ, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझने को ही जिद किए बैठे हो, अगर समझने के लिए तुमने जरा भी तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं दिखाई है, तो बुद्ध लाख सिर पीटते रहे कोई परिणाम नहीं हो सकता।

0: Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। जिंदगी का ये सफर तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूँ मैं। उस सवाल को हम दबा कर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफर तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफर में ये तलाशने की कोशिश की है। कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज हैं, वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती है कि वो अड़चन बन सकती है, और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों जरूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है, वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था, और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जागना जरूरी है।
2: जागना टू रियलिटी।
1: यस।
2: से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे, कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मून उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी, तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे। नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया, जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जागरूकता हो गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा ईजी हो जाना चाहिए।
1: देखो सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जागना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है? आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, ना किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है। हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को अपनी, हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहाँ, किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती
2: है, और कोई ना कोई एक अटैचमेंट है,
1: हाँ,
2: जो पकड़ी हुई है, वी हैव टू लेट गो,
1: लेट गो। लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, कि हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है?
2: We will have to go through a few steps. मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा हमें समझ पे भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या, आप देखो सवेरे से उठते हैं, इट बिगिन्स विद न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है, एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना है, ये करना है, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ यू आर गोइंग एट 120 तो यू विल नॉट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द जर्नी।
1: बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस।
2: इनसाइड में
1: अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं,
2: बहुत ज्यादा तेज है ना। आप देखो संकल्पों की गति इज अबाउट 25-30 थॉट्स पर मिनट, और आजकल हम बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, वी आर स्लाइटली हायर स्पीड। आप देखो सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना, आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया, स्टॉप। क्यों? जहां स्पीड बढ़ेगी वहां कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है?
1: बहुत फास्ट है,
2: बहुत फास्ट है। एक संकल्प उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है? क्यों कहा, अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर, एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर. तो अगर बहुत स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है. तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा नॉइज सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इंफॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन. जितना भरते जाएंगे उतना
1: हम खाली होते
2: जाएंगे. इट विल गो वेरी फास्ट.
1: इनफैक्ट मैंने हमने ये भी देखा है कि जैसे ही हम खाली होते हैं हम भागते

0: जैसे बैठे हैं एक सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए, जस्ट स्टॉप एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा है। एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम, वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा अभी ये करना है। वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ, इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे। बैठे हैं बात कर रहे हैं, बैठे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है। तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा, उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा। वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए। तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, एक मिनट, दो मिनट, कुछ मत अभ्यास करें कि कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है। जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है, तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक।
1: ओके,
0: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड, इट्स योर माइंड। अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी आपको ये नहीं करना ये करना है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना, कान सुनेगा मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा। सबके मन से बात कर सकते हैं तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते?
1: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं आई द सोल इज टॉकिंग,
0: क्या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी तो मुझे कोई और चीज के बारे में पता चला, अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा है, यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा। लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर कर कुछ और देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स। ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम, सुना तो था, कानों ने सुना था,
1: रजिस्टर नहीं हुआ।
0: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग and listening. I'm hearing, कान सुन रहे, listening,
1: समझ रहे।
0: तो that will only be possible अगर बीच बीच में हम check कर लें कि मन कहाँ है।
1: अच्छा, हम जब check कर रहे हैं तो जो विचार जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है?
0: अभी check करें अभी क्या चल रहा है, कुछ और चल रहा है, अपने आप से पूछे क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है, नहीं ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है, इसके बारे में कब सोचें? शाम को सोचेंगे घर जाने के बाद, ठीक है शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप। इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड। अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहा है
1: हिसाब से जो उसे समझ में।
0: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है तो वो अपने हिसाब से करेंगे, तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है। दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ। एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक, क्या सोच रहे थे? अच्छा ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये ओके, लिविंग इन द प्रेजेंट। किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए, घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है, जितना थोड़ा समय मिलता है इट शुड

0: क्वालिटी टाइम, यू नो वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है. मेंटली अभी भी मन सोच रहा है क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी या वट एवर. टेल द माइंड वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था, जो भी किया था कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद. एंड इट विल लिसन, गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन. माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना. अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
1: तब सोचेंगे.
0: यस, एंड इट इज सो परफेक्ट, वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा.
1: अच्छा, इट लाइक हियर यू.
0: या इट इज लिसनिंग. व्हाट इज इट? इट इज प्रोग्रामिंग. एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है. कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा. सेम टू द माइंड.
1: Good. It's a, like a good. Actually, we can always try it out.
0: Let's try it. करेंगे वो practice develop हो जाएगी and it will happen. एक बार अगर suppose उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा फिर it's done.
1: Okay. That's nice.
0: It's very simple. It's very simple.
1: So, okay. But
0: yeah, the thought should be, ये मेरे काम की चीज़ है ही नहीं. So stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा thought, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है. It's wastage of energy. Stop. 2 बार 3 बार finished. नहीं, अगर नहीं stop किया,
1: तो आता रहेगा और वो convert करेगा फिर destiny में.
0: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी chain आती है फिर उस thoughts के. इसलिए जहां अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी quality अगर दूसरी side पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
1: वापस ले आते हैं.
0: तो पूरा दिन waste नहीं होता. कई बार हम अपनी checking करते हैं लेकिन दिन के end पे, but by then the day is over.
1: So like it's a continuous process. It's a actually, you know, like it's a tip. We can all use it. It's a practical tip actually.
0: So simple है, बीच बीच में थोड़ा सा quiet हो जाए और अपने मन को देखे. दूसरी चीज जो बहुत simple हमें करनी पड़ेगी, attachments जो हमने देखी थी, let go. Let go करना पड़ेगा.
1: Now let go to the attachment basically.
0: Yes, to the attachment.
1: So that is like we'll have to go down, you know, like जो हमने पूरा process देखा कि जहाँ हमने ego की बात की, वो ऐसा behavior जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे ego को generate कर रहा है. बिकॉज अभी ये मिथ भी तो लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो
0: Absolutely.
1: हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो, लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे.
0: राइट.
1: तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस.
0: सो वी हैव टू लेट गो. इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे अभी भी, वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड. ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा. बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट. और बहुत चीज़ें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना
1: कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट.
0: दैट्स
1: वेरी डिफिकल्ट.
0: अच्छा या नेगेटिव भी.
1: हाँ,
0: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं.
1: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी,
0: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं. Who will let it go? कौन था? आप खुद ही देखो, आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है.
1: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है, इसका मतलब
0: अभी भी
1: कभी भी चाहूं रिवाइव कर सकती हूँ.
0: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे, आप अपने आप को कष्ट देते हैं.
1: बिकॉज वी गो थ्रू द सेम पेन,
0: सेम पेन, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एवरीथिंग.
1: एंड दैट केमिकल थिंग, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, यू नो, बिकॉज पेन इज समथिंग which people at times do start enjoying.
0: और आपको पता है, कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए, और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, आई जस्ट पिक अप समथिंग फ्रॉम द पास्ट.
1: पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ, करती रहती हूँ.
0: इतना सारा अक्यूमुलेटेड है कि फ्रेश टॉक अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में, कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा. कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, just 1 second is needed. आपने वो incident उठाया and that's it.
1: You get it.
0: You get that same pain and everything all over again. And then you're like, हाँ, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है. वो जो self victimization, self sympathy, फिर वो शुरू हो गई.
1: We want to change them. Yeah. And especially, you know, when we fall in love, then we care for the other person, or maybe, you know, like now I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe, you know, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect.
0: Want him to be. So, we all day, just when we get there, we try to write a script for others. You should do this, you should do that, you should sit like this, you should sit like this, you should say this, you should do this. We are writing the script. As much as we try to control others, there is pressure here. क्योंकि आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं. आप देखो, करके देखना, एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है. डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जैसे हैं. इट डजेंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे. अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिसिप्लिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे. आप बहुत ज़्यादा उसको पकड़कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं. आप इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दैट्स ऑल. उसके बाद वो जैसा है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट. उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, नहीं तो इट इज़ अ टर्मोइल. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, तो बी क्वाइट बीच बीच में. लेट गो जो भी अटैचमेंट्स हैं, एंड लेट पीपल बी. वो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. ये एक थॉट भी, ये जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. तो इट इज़ एक्सेप्टेंस. तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है. जैसे ही हम ये तीन चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना, वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा. हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद. यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी, और जैसे ही वो आने लगेगी, फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज़, वो सुनाई देने लगेगी. अंदर की आवाज़ मतलब, जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर होगा. एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन. अपनी सॉल्यूशंस खुद से. अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है. तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन, now I can see my own solution, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा. तो we will be able to start listening. अंदर वो जो हमारी intuition है, वो हमारे से बात करना शुरू कर देते हैं. And then we really wake up. क्योंकि we are awake, ये क्या हो रहा है. मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए, एक awareness क्या चल रहा है अंदर. अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते देयर विल बी एन अवेयरनेस. ओके, नो, दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक, चेंज. Fast.
1: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए, या पानी पी लीजिए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. वो हो ही नहीं पाता था,
0: वो हो नहीं पाता
1: जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा.
0: और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वाज यही कि गिव योरसेल्फ लिटिल गैप टू सी. लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं, गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप, राइट लेन पर उसको लेके जाना है. And it will go. So you wake up. You wake up to the process that's going on inside. आप continuously aware हो जाएंगे. जैसे किसी को criticize किया, तुरंत awareness होगी. क्या डर था मुझे? किसलिए मैंने इनको criticize किया? अच्छा, मुझे ये डर था.
1: तो process शुरू हो जाएगा अंदर तलाश में.
0: मुझे किस बात का डर था? नहीं, छोड़ दिया. तो फिर criticism बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, वो नहीं होगा अनलेस माय दैट इनर प्रोसेस गेट सिंप्लीफाइड. तो अब अवेयरनेस आएगी, अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
1: के बीच का जो
0: हार्मनी. अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है. एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज, जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप. वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है, एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है. हम जो कहते हैं ना जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपने इस तरह से क्यों बोला, जी मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है. आदत मतलब ऑटोमेटिक. अब हम ऑटोमेटिक नहीं है, आदत क्या होगा, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है, हर स्टेप पे चॉइस है. तो देयर विल बी नो हैबिट्स, एवरी टाइम यू विल बी
1: अ न्यू पर्सन. वाओ दैट्स नाइस एक्चुअली.
0: इवन यू विल नॉट नो कि आपका क्या रिस्पॉन्स, अब यू विल बी सरप्राइज्ड एट योर ओन रिस्पॉन्स. आप खुद हैरान होंगे कि इन्होंने इतना कुछ कह दिया, अच्छा मैंने गुस्सा नहीं किया, हाउ कम, पहले तो मैं गुस्सा कर देती थी, बट यू डिडंट रियलाइज दैट टाइम यू वर स्लीपिंग. अब आप उठ गए हैं, तो आदतें खत्म हो जाएंगी एंड आई विल बी अ न्यू पर्सन एवरी टाइम. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये चार बातें भी अगर हम ठीक से कर लें, लेट गो, लेट बी क्वाइट, स्टार्ट लिसनिंग, वेक अप एंड नो योर सेल्फ, जो हमने पहले भी देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका प्रोसेस है, कौन अंदर काम कर रहा है, और सारा दिन याद रखना मैं कौन. जब हम क्वाइट भी हो जाते हैं, क्वाइट होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन मैं कौन. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते. चेंज्ड, सो एवरी स्टेप वी विल बी एबल टू डू इट.
1: दिस अ होल प्रोसेस एक्चुअली. बट देन अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा, इट इज विद इन अस. यू नो, सबसे पहले आपने बात यही कही कि क्वाइट, शांति, एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है,
0: अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं लेकिन अंदर चुप. यू नो, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे, हमेशा ही आवाज है चारों तरफ, बट इट्स नॉट दैट नॉइज, इट्स इंटरनल.
1: इंटरनली यू नो लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो, एंड थर्ड इज लेट बी, लेट पीपल द वे दे आर. सो इन थिंग्स
0: बहुत लाइफ इजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है, बट देन इट डस टेक टाइम एक्चुअली.
0: यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज, आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
0: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है, दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल, ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ले जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं, और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें, और हम भी लेट गो कर दें, यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें. शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा,
0: they will come back.
1: और जो कभी था नहीं आपका उसको आप कितना भी रोक लीजिए.
0: तो ये सब फिलोसफिकली हमें पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल है. नमस्कार.

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णुवादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषणः। प्रथमं स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्ति अधिकं मुने सा बभार तदाहारं दिव्य रत्न समन्वितं वलयानि महारानी शुद्ध चामी करानि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधिवद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं, मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी। तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है। शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
2: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि
0: विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
0: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
0: बड़े आराम से।
1: हाँ,
0: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
0: लीला जी, आप याद करिए कि अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
1: हो जाते हैं।
0: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
0: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
0: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं,
0: अभी
1: दिन
0: भी
1: में, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
0: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे। जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम। ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
2: तभी से
1: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
2: सबसे बड़ा दान,
1: ये सबसे बड़ा दान
2: दान कहलाता है।
1: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तने प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो, प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षि समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षि सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिव जी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन, वाच्य महेश विषय अतीव असी तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र, कुल, नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर, तुम देख नहीं पाते।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: दोस्तों। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: है जंक्शन 107.8 एफएम फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: रेडियो मानवृष्णा 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांगा और लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूँ, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में।
3: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस अध्यात्म की बातें करते हैं तो और ही वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
2: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
3: बिल्कुल।
2: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
4: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
2: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ, और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्राम है आत्मबोध और हम श्री रामचरितमानस शुरू कर चुके हैं, यानी कि पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी विशेषताएं जानी। इसी के साथ आज भी बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ बीके प्रिया जी और ज्योति जी से। अच्छा बीके ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस हम आगे शुरू करें, उससे पहले मैं नमन वंदना देख रही थी। इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है
3: जी।
2: जिनको धिकारा जाता है यहाँ पर, उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत गहराई से जानने

0: की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
1: जी,
0: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है,
1: जी, जी, जी।
0: उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के बराबर। ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस सृष्टि में हम जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं, या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं, या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं, या फिर राक्षस हैं। उन्होंने उनमें बताया, जैसे कि राक्षसों की बात कही गई तो रावण में, रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई है। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें, या हम, जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं,
1: कोढ़िन
0: को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है, यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें, ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारी कोई कमी है, तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी, वो चार्ज हो जाती है और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के ये श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है। और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने।
1: जी, और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है, जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है जो मैंने इसी में ही देखी और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है तो उसके लिए राम नाम ही काफी है
2: जी।
1: इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है इस संसार से।
2: जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहां दो शब्द विशेष करा रहे हैं जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे
1: जी।
2: कि नाम और रूप, यहां दो चीजों की चर्चा हो रही है, तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने IQ लेवल, जो उस समय उनका लेवल था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है, जो समझ सकते हैं वो समझें, और जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि उनका IQ लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है, तो उन्होंने वहाँ इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं, और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है, जो र, आ और म को संबोधित कर रहा है
1: जी।
2: यहाँ र, आ और म ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात तो महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए जैसे अग्नि, सूर्य और चांद, ये उनसे भी पावरफुल है, और जो पूरी सृष्टि का ही जिसको कहे स्थापना, पालना और विनाश के लिए निमित्त बताए जाते हैं, ये उनसे भी बड़ा है। तो ये वो राम जो नाम लिया जा रहा है ये इतना पावरफुल है, इतना सृष्टिकर है कि अगर इसको हम, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं कि मरा मरा मरा मरा भी अगर हम बोलते हैं तो भी ये बाद में आकर आपको सुनाई राम राम राम देगा। तो ये इतना सृष्टिकर है कि अगर आप इसे उल्टा भी पढ़ते हो तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है,
1: इतना पावरफुल,
2: इतना पावरफुल है। लेकिन अगेन कि हमें नाम और रूप को पूरी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेते वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है पर मुंह, मतलब दिख मुझे सेब ही रहा है पर मुंह से मैं आम बोल रही हूँ, तो वो चीज फिर क्लैश होती है। तो वो चीज मुझे मेरे अंदर को संतुष्टता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। फल वो भी है आम और फल वो भी है सेब, लेकिन मैं चाहती सेब खाना हूँ पर मांग में आम रही हूँ तो फिर वो पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसको बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाम है वो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जो रूप जब हम नाम लेते हुए अपने मनस पटल पर धारण करते हैं, अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से, उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है, इसीलिए श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी, जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की ही है, यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है।
1: जी, यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी। ये बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है। और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, आप राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो हैं, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अलग हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है। क्या ये एक ही रूप हैं या ये अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूप हैं तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
0: जैसा कि चार राम की बात कही गई है तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेता, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगी श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है। कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनिन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाया कि समझूत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अकत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते हैं। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं।
1: हाँ जी,
0: भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप बन गए, भगवान को याद किया लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है, लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी, माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी न किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर ले किसी को डिनाई करके। तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेज दे तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी, लेकिन हमें दिखता रूप है तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं,
1: रूप में,
0: रूप में, नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं। जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में, तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
1: उजाले,
0: लेकिन जो उजाला है जो अंधकार को दूर करने वाला है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
1: जी हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से। बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
2: जी जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
1: बुलाना कैसे।
2: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, या आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए, और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री राम चरित्र मानस को भी समझना है कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा
1: है,
2: क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के है, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा। तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवत्व देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी, और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
1: भेजी
2: जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है।

0: वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महाऋषि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है। यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया। कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है। और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है, जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़, ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपनी पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंडसेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे मनस्पटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ, जो हम करते हैं नॉर्मली, हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनस्पटल है, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीभ से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है
1: बिल्कुल।
0: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है, तो जो जीभ से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
1: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें कहीं की उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जबान से निकलेगा और उसकी कहीं की फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें, आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है। और राम नाम या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है, बहुत खूब। ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत, और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशीष युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, तो श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, बहुत सारी कथाओं के बारे में। और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से जो विदुर हैं वो गए थे पांडवों के पास उनसे भेंट करने, जब धृतराष्ट्र ने उनको एक तरह से निकाल दिया था, और उनके जाने के बाद बहुत व्याकुल भी हो गए थे धृतराष्ट्र। जबकि ये सारी कहानी हमने जानी, मैत्री मुनि का अपमान दुर्योधन ने जिस तरह से किया, ये वाली कथा भी हमने जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से आगे की कथा जानते हैं। जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन की तपस्या जी के साथ युद्ध, पशुपाक्षस्त्र, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति।
0: जी,
1: तो अर्जुन हिमालय कटीले जंगल में जा पहुँचे, क्योंकि अर्जुन अभी वनवास में है, 12 वर्ष के वनवास में, क्योंकि उन्होंने लंघन किया था। और युधिष्ठिर जी जब द्रौपदी जी के साथ थे एकांत में, तो उन्होंने वहां जाके अपने अस्त्र लिए थे। इसलिए यही वो रखी गई थी कि कोई भी भाई के उसको लंघन नहीं किया जाएगा, यदि जो करेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास रहना
0: पड़ेगा।
1: इसलिए अर्जुन अभी वनवास है। तो अर्जुन हिमालय लांग कर एक बड़े कटीले जंगल में पहुंचे, वस्त्र दंड वृक्षाला कमंडली धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। बड़े बड़े ऋषि उन्होंने भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन की तपस्या से के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। शिव के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ अर्जुन के पास आए। भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आके देखा कि एक मूंग दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। संख्य बाणों से शुक्र का शरीर बिद गया और वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अर्जुन ने उनको मार डाला। ये शुक्र मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था, मैंने पहले ही इसे उसको मारने का विचार कर लिया था, फिर उसका वध क्यों किया? भील कह रहे हैं, अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते वह उन्हें पकड़ लेता। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए और अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू कर दिया। भील ने अर्जुन धनुष भी छीन लिया, तलवार का प्रहार किया, वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने से पहले ही छीन लिया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, दम घुटने लगा, लहू लुहान होके जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया, उन्होंने मिट्टी की एक योगी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया वही भील के सिर पर है। उन्होंने भील को चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। अर्जुन ने कहा, शरणागत को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। शंकर जी ने कहा, आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांधीर धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है, अब तुम इन्हें ले लो, तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पता अस्त्र दे दीजिए। फिर जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पशुपता अस्त्र हजारों त्रिशूल भयंकर गदाओं और सर्पाकार बाण उससे निकल पड़ते हैं, मैं उस पशुपत अस्त्र के भीष्म द्रोण कृपाचार्य और कुतुवादी कर्ण के साथ लड़ू। इंद्र यमराज कुबेर वरुण और वायु भी इस अस्त्र को धारण और प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है, मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, किंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ दें, अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास गए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। शंकर जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। यमराज जी ने मधुर वाणी में कहा, अर्जुन देखो सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं, आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो, तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है, अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ, मैं तुम्हें अपना दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वरुण ने कहा, मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता, घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था, तुम इसके द्वारा चाहे जिसे भी कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास शिकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, तुम मुझसे ये अंतर्ध्यान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो, इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, इसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। मातली सारथी ने अर्जुन को पास आके प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके इस प्यारे रथ पर सवार होकर शीघ्र ही चलिए। अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए, रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जाकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बिठा लिया और फिर अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से सिर चुंगा। अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया, उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्युलोक में आना चाहते थे, किंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। प्रिय अर्जुन अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो, साथ ही मृत्युलोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीख लो। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। उस दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाके कह मेरा संदेशा देना कि वे अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ चंद्रन स्नान किया। वो सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भी धारण कर लिए, सुगंधित पुष्पों की माला पहन के उर्वशी जब तक प्रकार से सज भर चुकी तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। वे कहने लगी, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है, मैं काम के वश में हूँ, बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन तो संकोच के मारे धरती में गड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से काम बंद कर लिए और बोले, हरे हरे ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो, देव स्वभाव भी मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा था, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था और गुरु वंश की यही आनंदमयी माता है, तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिली थी, मेरे लिए बड़ों से खीवी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी है। उर्वशी ने कहा, वीर हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा, जैसे कुंती माद्री इंद्रपति शक्ति मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम पूर्व वंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता है, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, तुम मेरी माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनते उर्वशी क्रोध से मारे कांपने लगी, उसने बहुत देरी करके अर्जुन को श्राप दिया, अर्जुन मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते, इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे।
0: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं अब किस तरह से उर्वशी ने जो है अर्जुन को एक श्राप दे दिया है, जिसके बारे में अभी लागलेखा दास जी ने बताया, और जिस तरह से बताया कि अर्जुन जो है वो 12 साल के वनवास पर हैं, और अभी जो हमने जाना इंद्र से उनकी भेंट के बारे में, शंकर जी से उनकी भेंट के बारे में, और उर्वशी जो हैं वो अर्जुन से मिलने जब गई और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ और किस तरह से उर्वशी ने अर्जुन को जो श्राप दिया उसके बारे में अभी लागलेखा दास जी ने बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे जानते हैं। जी,
1: अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और हंसते हुए कहा कि प्रिय अर्जुन, तुमने अपने धैर्य से ऋषि को भी जीत लिया है। उर्वशी ने जो तुम्हें श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में एक वर्ष तक छिप कर ये श्राप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। तो गंधर्ववासी चित्रसेन के साथ स्वर्ग के सुख लूटने लगे। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमस स्वर्ग से आए। उन्होंने देखा अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए, पर मनोमन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया। देवराज इंद्र ने लोमस मुनि की मन की बात जान ली और उन्होंने कहा, महर्षि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। ये अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यधारी देवता है। ऋषि में तो इसका अवतार हुआ है, ये सनातन ऋषि नर है। उसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। नल दमयंती की कथा, दमयंती का स्वयंवर और विवाह। महर्षि बृहदासव ने कहा, धर्मराज आपका ये कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं है, क्योंकि धर्मराज जो थे दुष्ट कहने लगे कि मैं बहुत दुखी राजा हूँ, जंगलों में भटक रहा हूँ और मुझसे क्योंकि मैं तुमसे अधिक दुखी और मंदभागे राजा का वृतांत जानता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाओ। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर महर्षि बृहदासव ने कहना आरंभ किया, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। उसने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए और हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके दिनों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वह उनका विदर्भ देश में गए। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठा, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है, यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़ कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। ऐसे निर्णय ले पाते कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। दमयंती एक एक करके देखकर सबको आगे बढ़ने लगी। स्वयंवर आरंभ हुआ। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के राजा इकट्ठे 5 बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया, ये राजा नल, ये राजा नल को नहीं पहचान सकी। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने पति रूप में वर्णन कर लिया है। शैलशाली लोग पालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दो, उसमें पुण्य लोग नरपति नल को पहचान ले। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलके गिरती नहीं है, माला कुमलाई नहीं है, शरीर पर नैल नहीं है, फिर है परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के शरीर पर छाया पड़ रही है, माला कुमलाई गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलके बार बार गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवता और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया और फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वही मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम जाओगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के घर से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ।
0: जी।
1: जिस समय दमयंती ने स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उसी समय उनके मार्ग में कलयुग और द्वापर की भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग कहाँ जा रहे हैं? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, जी वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भर कर कहा, ओ अब तो बड़ा अनर्थ हुआ, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको उसको दंड देना चाहिए। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इसी बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लोभी शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया और साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषिद्ध राजा के राज्य प्राप्त करो। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ खेलिया। उन्होंने उसी समय पासा खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते हुए हार जाते। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा और राजा नल बार बार हारते गए। पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए कुछ नहीं है, यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। फिर पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। एक दिन राजा नल ने देखा, बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा, इनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उनके ऊपर पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचा किए खड़े हो गए। पक्षी ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। मैं अब तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं, पक्षी ने जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कही। दमयंती ने कहा, यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें, मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहाँ सुख से रहिएगा। नल ने कहा, ये तुम्हारे पिता राजा है और मैं कभी राजा था, इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर पन्ने इधर उधर घूमते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। नल सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण मैं इतना दुख भी भोग रही है, यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी। राजा नल ने विचार किया कि मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना श्रेयस्कर है, परंतु फाड़ू कैसे, शायद ये जग जाए। ये धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़ कर अपना शरीर ढककर रख लिया। दमयंती ने नींद में थी, राजा नल उसे छोड़कर चले गए। शरीर में कलयुग उसका प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। ये अंततः वे अपने प्राण दिया, पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त की होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला, अजगर दमयंती को निगलने लगा। उसी समय दमयंती की आवाज एक व्याध के कानों में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था, वह दौड़ कर आया। उसने देखा दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह उसने चीर डाला। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तो उसने उसे शाप दे दिया, यदि मैं निश्चल वेश राजा नल को छोड़कर किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो ये पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर जाए। मिलिंती के मुंह से ऐसी बात निकलते याद के प्राण पखेरे उड़ गए। नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। तीन दिन तीन रात बीत जाने के बाद मिलिंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की साल और मृगशाला धारण किए हैं। ऋषि ने कहा, स्वागत है, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। सब शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। तो इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर धार हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। नल और दमयंती की कथा हम जान रहे हैं, किस तरह से उनका मिलन हुआ, किस तरह से वियोग हुआ, ये सारी कथा हमने अभी जान ली है। लेकिन अब वो पुनः दोबारा मिलेंगे या नहीं, किस तरह से मिलेंगे, ये कथा हम आगे जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। तो राघलेखा दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में महाभारत के इस प्रसंग को, नल दमयंती की इस कथा को आगे जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बहुत सारी बातें आज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है गुरु दीदी। जी हाँ, गुरु दीदी आ जाती है अपने अलग अलग टॉपिक्स के साथ और हम करते हैं उस पर चर्चा। बहुत सारी आज भी बातें होने वाली हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी गुरु दीदी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।
0: टाइम मैनेजमेंट ये जो है, मतलब शब्द जो है बहुत ही आसान लगता है हमें कि टाइम मैनेज कर लो हो जाएगा, लेकिन ये होता बड़ा डिफिकल्ट है अगर हम असल जिंदगी में हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करें तो। लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारे लिसनर को आज जरूर बता देंगे कि किस तरह से हम इजीली इफेक्टिवली अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं।
1: जी, तो साक्षी ये जो टाइम मैनेजमेंट का आज आपने टॉपिक लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और मुझे लगता है कि आज के समय में चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय है, चाहे वो वर्किंग हमारे जो कम्युनिटी है कोई भी हो, चाहे घर में हाउसवाइफ हैं, उन सभी को टाइम मैनेजमेंट जो है करना पड़ता है। और सभी से हम ये सुनते भी हैं कि टाइम नहीं होता, है ना? तो वो टाइम नहीं होता है तो टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है? तो टाइम के लिए बारे में पहले टाइम मैनेजमेंट का यही कहना चाहूंगी कि ये एक तरह से एक प्रोसेस है, या एक कह लीजिए कि हमारी तरह एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज इन द सेंस कि हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसमें हम ये देखें कि हमारी जो पूरे दिनचर्या की जो एक्टिविटीज हैं, जो पूरा दिन जो डेली रूटीन हमारा रहता है, उन सभी एक्टिविटीज को हम किस तरीके से कितना टाइम दे रहे हैं, वो प्लान करना, उन चीजों को कॉन्शियसली वो एफर्ट्स करना। तो अगर हम वो एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से लिस्ट डाउन कर लेते हैं, अगर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, और इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट।
0: बिल्कुल। तो गुरु दीदी मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी कि आज हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, हम बात करेंगे आज ना थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं अपने सेशन को, वो इसलिए ताकि हम जो है ये बता सके सभी को कि पहले इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग अगर कैटेगरीज हो जाती है तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हर किसी का टाइम को मैनेज करने का तरीका और वैल्यूज अलग अलग होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि अब स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो हमें बस इतना ही लगता है स्कूल से आओ और उसके बाद अपना खाना खाया, थोड़ी पढ़ाई कर ली और बस फिर उसके बाद होमवर्क करके सोने चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम को मैनेज करना, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है कि पेरेंट्स के साथ भी बैठे, तो बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे एक शेड्यूल जो है वो बना सके कि अच्छे से पढ़ाई भी हो सके, पेरेंट्स को टाइम भी दे सके, क्योंकि पिछले सेशन हमारे इसी बारे में था कि पेरेंट्स को टाइम देना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
1: देखो, क्योंकि आपने साक्षी सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए उठाया है
0: जी,
1: तो स्टूडेंट्स का अगर हम लोग उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सबसे अहम एक्टिविटी उनके लिए होती है उनकी पढ़ाई। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि दे शुड यूज प्लानर टू एलोकेट द स्पेसिफिक टाइम फॉर देयर स्टडी सेशन। जितने भी उनके जो स्टडी सेशन हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक प्लानर बनाएं, और प्लानर में क्या करना है उनको, दे हैव टू बैलेंस देयर सब्जेक्ट्स। कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमें आसान लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की अपनी एक डेडलाइन होती है कि उनको हमें मैक्सिमम समय देना है, उनको हमें ज्यादा समय देना है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, यूजुअली जब स्टूडेंट्स भी बात करते हैं तो जैसे अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स है या आप साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे रिक्वायर मोर टाइम, है ना? तो उनको हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हमें अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं कि हमें रोज में कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं, जब हम अपना प्लानर बना रहे हैं, तो उसमें हमें इंक्लूड करने चाहिए ब्रेक्स भी। और ब्रेक्स किस लिए, क्योंकि दीज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं या जो हम एक मोनोटनी जो कहते हैं कि हम बच्चे कहते हैं ना, हम पढ़ के बोर हो गए, पढ़ के मैम मम्मा थक गए, मैम हम थक गए, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे हैं, जो भी हम अपना टाइम टेबल बना रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में हमारा टाइम टेबल होता है,
0: करेक्ट,
1: एवरी सब्जेक्ट का जो है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स एक एलोकेशन होता है। इसी तरीके से जब बच्चे घर पर आ जाते हैं, अपना कुछ समय थोड़ा रेस्ट करने के बाद, अपने माता पिता के पास बैठने के बाद, उनका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड देन प्रिपेयर अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट डिफिकल्टी एंड कि सब्जेक्ट की डेडलाइन क्या है. कई बार होता है कि कुछ हमें अपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए. वो टाइम टेबल भी मैं यही कहना चाहूंगी कि टाइम टेबल बहुत लंबे समय के लिए नहीं बनाए. टाइम टेबल शुड बी फॉर 1 वीक और 15 डेज, उसके बाद फिर उसको रीशेड्यूल करें. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. तो वो आपका 1 वीक या 10 दिन के लिए वो टाइम टेबल बनाए और उसके बाद उसका रीशेड्यूलिंग करें.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए, इस तरीके से अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को तो आप बना के रख सकते हैं. इसके साथ देखिए, जब आप पढ़ाई का शेड्यूल बना लेंगे ना, तो मुझे लगता है उसके बाद टाइम थोड़ा सा आपके पास बच जाएगा. वो टाइम देना है आपको अपने पेरेंट्स को, वो टाइम देना है जो एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या आपको खेलने जाना है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने पार्ट किया, वो आप कर सकते हैं. तो जब आप ये पूरा दिन मैनेज करना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है स्टडीज में भी, जो रिजल्ट है वो बेहतर होने लगेगा. टाइम को मैनेज करना जितना हमें आसान है ये कहना, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल है. लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि चीजें देखिए हो नहीं सकती हैं. अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, तो हर चीज पॉसिबल है, है ना. तो चलिए अभी हम जानते हैं कि मैम, जैसे कि सवाल मेरा अगला है आपसे कि बात करें अभी यहाँ पर प्रोकेस्टिनेशन की बात करें, तो पहली बात तो ये प्रोकेस्टिनेशन होता क्या है इस बारे में, क्योंकि हमारे लिसनर को ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना है. अक्सर ये टर्म जो है हम बड़ा सुनते हैं आजकल, बड़ी पॉपुलर, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे ये होता क्या है.
1: प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जैसे हम कहते हैं ना आज नहीं तो कल, टालम टोल जैसे हम बात करते हैं, तो वही होता है. तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम अपने टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, इसीलिए हमें इन वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं थोड़े समय बाद कर लेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. अब आपका बहुत ही अच्छा सवाल रहा कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कि आपने कहा कि इसका मीनिंग बताइए, और बहुत लोग इसका सहारा भी लेते हैं. तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए. राइट, तो हमें अपने जो डेडलाइंस को सेट करना पड़ेगा कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमें उनको एक डेडलाइन सेट करना पड़ता है कि हमारे काम को कितना टाइम लगेगा या हम कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे. और कोशिश करना चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको पूरे फोकस के साथ करें. तो साक्षी, मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगी कि देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू यू नो इंक्रीज योर फोकस, कि हम अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन सा टेक्निक है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक. तो उससे जो है एक फोकस जो है वो इंक्रीज होता है. अदरवाइज भी अगर हम छोटे छोटे मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी हमारा फोकस जो है वो मेंटेन रहता है. और सबसे बड़ी बात कि हम टालम टोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी भी काम को जब हम कर नहीं पाते हैं तो हमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. बट जब हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं, जब हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें खुद को ही उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, रिवॉर्ड कर देना चाहिए. तो आई थिंक जब हम अपने को पैट करते हैं ना कि यस वेल डन, यू हैव डन इट, आई हैव डन इट, तो दैट मींस कि वी आर रिवॉर्डिंग आवर सेल्फ. और जब हम रिवॉर्ड अपने को कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी हो जाते हैं. तो उस केस में हम प्रोक्रास्टिनेशन की मदद नहीं लेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, टालम टोली की मदद नहीं लेंगे. जी हां, अक्सर ऐसा देखा जाता है, बच्चे बहुत करते हैं कि बच्चे जब हम पढ़ाई के लिए उन्हें कहते हैं कि अच्छा ये होमवर्क कर लो, अच्छा कल कर लेंगे. अगर सैटरडे संडे होता है ना तो इसमें ज्यादातर होता है. फ्राइडे बच्चा आता है स्कूल से, आता है और उसके बाद जब मम्मी कहती है कि अच्छा बेटा होमवर्क कर लो, तो कहते हैं कि ना मम्मा कल, पक्का कल हम करेंगे क्योंकि सैटरडे है. और उसके बाद होता है जब सैटरडे आता है तो मम्मा कल संडे है, कल भी तो छुट्टी है. और उसके बाद हर संडे मुझे लगता है सारी मम्मियां रात के टाइम बच्चों को लेके बैठी होती है कि नहीं अब तो करना ही करना है क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना है. तो ये इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ा उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिस वजह से बच्चे थोड़ा सा ज्यादा चीजों को करने में उनको आसानी महसूस होगी और वो ना सारा होमवर्क करके या कोई भी पढ़ाई करके या कोई भी वर्क करके, कोई भी काम करके, कोई भी खेल कूद करके उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनको पता है कि सामने से उन्हें इस चीज का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. और जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड में उनको आपको गिफ्ट ही देना है, आपका एप्रिसिएशन, आपकी बातें, आपकी मोटिवेशन भी उनके लिए एक रिवॉर्ड होगी। गुरु दीदी मेरा अगला सवाल, क्योंकि हमने अब बात करी स्टूडेंट्स की, अगली कैटेगरी हमारी जो ऑफिस गोइंग है, जो एम्प्लॉयज हैं, तो सबसे ना मुश्किल हो जाता है डेडलाइंस को हैंडल करना। हम अक्सर सुनते हैं कि डेडलाइन आ गई है लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है ना, ये डेडलाइन की वजह से ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो कैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को हैंडल कर सकता है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट करे तो किस तरह से आप उन्हें हेल्प करेंगे या क्या टिप्स उन्हें देंगे?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल साक्षी आपने पूछा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने जो मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनकी डेडलाइंस को वो कैसे मीट करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी जो हमें प्रोजेक्ट दिए गए हैं या जो हमें टास्क असाइन किए गए हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारा लीस्ट प्रायोरिटी का काम कौन सा है और हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा काम जा रहा है। तो वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो इमिडिएटली हमें प्रेजेंट करना है या हमें सबमिशन देना है उसको हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कि जिसके बिना हो सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर टास्क नहीं हम कर रहे हैं तो आगे के टास्क भी सफर होंगे या पूरे डिपार्टमेंट का टास्क सफर होगा। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉरमोस्ट थिंग एम्प्लॉय शुड डू इज कि वो अपने जितने भी टास्क हैं, जो अगर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं तो उनको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। एक बहुत ही सिंपलेस्ट है जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, तो उससे हमारे को हमारी ट्रैकिंग रहती है कि अगर हम गैंट चार्ट बना के चल रहे हैं कि हमारा क्या डेडलाइन है, हमने कितना अचीव कर लिया है। तो दैट इज अ वेरी कॉमन जो आजकल एम्प्लॉयज यूज करते हैं गैंट चार्ट को, तो उससे भी हम लोगों को पता चल जाता है कि हम कहां पर हैं, कितना हमने अचीव कर लिया या कितना हमको अचीव करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, आप एक आइसोलेशन में तो काम करते नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर्स टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ उन डेडलाइंस को या अपने प्रोजेक्ट को या जो मल्टीपल टास्क आपको असाइन किए गए हैं उनको आप कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आप डिस्कशन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सॉल्यूशन टू मीट दोस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजमेंट।
0: बिल्कुल। अच्छा गुरु दीदी, ये भी बहुत बार देखा गया है कि जब भी ये टाइम आता है, जैसे मंडे जब आता है तब हम क्या करते हैं कि ट्यूजडे हो जाएगा काम, वेंसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और ऐसे करते करते हम खुद ही अपनी डेडलाइन को, हम खुद ही एक जो लिमिट है बहुत ज्यादा उसको कर देते हैं कि हमारा जो वर्क प्रेशर है हम पे खुद ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: ये तो साक्षी वही वाली बात हुई जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात करी कि हम टालम टोल कि ठीक है आज तो हमारे पास टाइम है, अभी ट्यूजडे होगा, मंडे अगर हमको मान लीजिए कोई चीज फ्राइडे को सबमिट करना है तो हम कहते हैं कि ठीक है अभी हमारे पास एक दिन और है, दो दिन और है, तो हम वो टालम टोल करते रहते हैं। तो रादर दिस इज एक्चुअली अ सेल्फ प्रैक्टिस। हमारी ये अपनी टाइम मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने को कैसे मैनेज कर रहा है अपने टाइम को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी साक्षी, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी कि 24 आवर्स तो 24 आवर्स ही होते हैं ना, तो 24 आवर्स से ऊपर एक सेकंड भी हमें नहीं मिलता है।
0: करेक्ट।
1: तो उन 24 आवर्स को नॉर्मली व्हाट वी डू, वी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अब 8 आवर्स ऑफ वर्क, अगर हम वो 8 घंटे बिल्कुल अपने जद्दोजहद के साथ, अपने दिल के साथ, जो भी हमारे पूरे दिन का काम है अगर उनको हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट डे तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारा एक्यूमुलेशन नहीं होगा। और यही बात अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें कुछ सबमिशन करना है, मान लीजिए थर्सडे और फ्राइडे को, तो हम कहते हैं चलो ट्यूजडे को कर लेंगे, वेनेसडे को कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअल बिहेवियरल प्रैक्टिस है, जितना हम उस पे वर्कआउट करेंगे एज एन इंडिविजुअल तो हम इस चीज को कम कर सकते हैं कि हम अपने काम को पाइलअप ना करें। जब काम पाइलअप नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे माइंड में भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है, जब हमको लगता है अरे इतना काम हो गया, अब तो ये भी सबमिट करना है, वो भी सबमिट करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस
0: करेक्ट,
1: और उस स्ट्रेस में हम लोग अपना बिहेवियर भी खराब करते हैं, अपना एटीट्यूड भी खराब करते हैं, और एट द एंड हमको वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करें, कम्युनिकेट करें, एंड ट्राई टू डेलीगेट द थिंग्स एज मच एज यू कैन।
0: बिल्कुल बिल्कुल। गुरु दीदी, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे कि अच्छा, ये भी बहुत बार होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम ना डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं
1: जी।
0: कोई भी चीजें हैं, अच्छा कोई कुछ कह रहा है तो हम उनकी ना बात सुनने लग जाते हैं, उन बातों में हम कॉन्वर्सेशन में हम पार्ट लेने लग जाते हैं, अच्छा कुछ और कुछ कर रहा है तो हम वो करने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सके, क्योंकि ये जब डिस्ट्रैक्शन जो है बढ़ती रहेगी, टाइम हमारा वेस्ट होता रहेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
1: इसके लिए साक्षी, मैं एक छोटा सा आपको थंब रूल देना चाहूंगी, एक छोटा सा ही फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या करना है। देखो, हम नॉर्मली 8 घंटे ही अपने ऑफिस में बिताते हैं, राइट? और अगर हम उन 8 घंटों में अपने जितने भी हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हम एक अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि ये 3 घंटे अब सब लोग मन लगा के काम करेंगे, तो सब मन लगा के काम करेंगे, बीच में छोटा छोटा ब्रेक दें कि अभी ठीक है आधा घंटा है, अब आइए हम सब बैठते हैं और अपना बातें करते हैं और जो है काम करेंगे। पर कई बार ऐसे होता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि सभी का ही सेम टाइम ब्रेक का रहे या सभी का वही टाइम वर्क का रहे, तो उस केस में हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं, कुछ ऐसे एप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कोई आपके साथ जो आपका कुलीग बैठे हैं वो कुछ फोन पे कोई गेम्स खेल रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या ऊंचे ऊंचा आवाज में बातें कर रहे हैं, तो आप अपने जो हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं। अपने जो वर्क प्लेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन की जो चीजें होती हैं कि कई बार हम अपना जो वर्क प्लेस है ना वो ओवर क्राउडेड भी कर देते हैं। हमारा जो टेबल है वो जैम पैक्ड रहता है चीजों से, तो मुझे लगता है वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है कि कहीं हमारा पेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कहीं हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कहीं चार्जर गिरा हुआ है, कहीं और प्लग लगा हुआ है। तो मुझे लगता है वी नीड टू ऑर्गेनाइज दी वर्क प्लेस प्रॉपरली। दूसरा, हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज करें, और आजकल तो बहुत सारे एप्स भी आ रहे हैं जो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर सर्टेन नोटिफिकेशंस ऑन दी वेबसाइट, देयर आर नोटिफिकेशंस ऑन दी फोन दैट अ पर्सन इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि ऐसा देखा जाता है बार बार ना, अच्छा बहुत सारी ऐसे रील्स भी वायरल हो रही हैं कि चलिए हम तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ये इतना ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा अब 9 बजे का हमारा चेक इन हो गया है, उसके बाद 15-20 मिनट काम किया, एक चाय ब्रेक हो जाए। चाय ब्रेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, अपने काम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे, नहीं तो वो डेडलाइंस जो है बाद में आपके ऊपर प्रेशर आके मीटिंग्स में फिर उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा परेशानियां हमें झेलने को मिलती है, और फिर स्ट्रेस हो जाता है, और फिर हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। तो अगर ये सारा प्रोसेस नहीं चाहते आप, तो अपना टाइम आप थोड़ा सा मैनेज करिए और चीजें ठीक हो जाएंगी। अब एक ऐसी मैं कैटेगरी की बात करना चाहती हूँ जिनके पास टाइम तो है,

0: लेकिन ये डिवाइड नहीं कर पाती अपना टाइम. पूरा दिन उनको ये लगता है कि बस काम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है. उनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है. इनफैक्ट इतना भी नहीं कि वो अपना जो खाना है वो भी टाइम पर खा सके. और मुझे लगता है इस कैटेगरी को तो बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है. मैं बात कर रही हूँ होम मेकर्स की. तो बात करें कि अगर होम मेकर्स की बात करें तो ये जो है अपने पूरे काम में जो है एक के बाद एक काम में लगी रहती हैं. तो इनको मैनेज करना कितना जरूरी है और कैसे मैनेज हो सकता है?
1: होम मेकर की बात करें साक्षी, तो सबसे पहले तो मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहूंगी जो होम मेकर्स हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि दे आर दी वर्ल्ड बेस्ट मैनेजर्स. अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे बड़े मैनेजर्स होते हैं. बट उस मैनेजमेंट में वो कहीं ना कहीं टाइम को मिस कर जाते हैं. वो काम तो बहुत करते हैं, जैसे तुमने कहा कि सुबह से लेके शाम तक रात तक वो लगे रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम्स. क्यों? क्योंकि वो समय को कभी देखते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो तो घर में उनके पास समय ही समय है. तो वो समय को इतना जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो काम को इम्पोर्टेंस देते हैं. तो नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अपने शेड्यूल को फिर से लिस्ट डाउन करें. शेड्यूल तो वही है, सुबह उठेंगे, पहले बच्चों को तैयार करेंगे, घर का ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर घर को संभालेंगे. मतलब वो एंड द लिस्ट इज एंडलेस उनके लिए. बट दे हैव टू सी कि ये पूरा टाइम वो खुद ही लगे रहें वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उनको अपने फैमिली मेंबर्स को भी टास्क को डेलीगेट करना चाहिए. चेकलिस्ट बनाएं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है. और कोशिश करें, मोस्टली घर में गृहिणी जो होती हैं या जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो लाड प्यार में या कहते हैं कि बहुत एक जैसे कहते हैं दिल से जैसे काम करते हैं, तो वो हर चीज अपने हाथ से करना चाहते हैं. बट कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और समय तो वो कभी घड़ी देख के तो वो काम ही नहीं करते हैं. तो मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी उनको देना चाहिए कि टाइम मीन्स टाइम. तो उनको अगर सुबह ब्रेकफास्ट का काम खत्म करना है, आप देखो कभी भी नॉर्मली हमारे इंडियन सिस्टम में संडे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो मतलब दोपहर में ऑलमोस्ट 11:30-11 तक वो महिला जो है ना होम मेकर खड़ी रहेंगी किचन में कि अब सब लोग तैयार होकर आ जाए, नहा धोकर आ जाए और अब जो है वो ब्रेकफास्ट खाया जाएगा. वो सुबह 7 बजे से खड़ी रहती हैं जो अपने किचन में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेने के लिए सभी मेंबर्स जो हैं वो 11:30-11 तक टेबल पर आते हैं. दैट मींस कि हाउ मच टाइम शी हैज डिवोटेड इन द किचन. और जबकि वो जरूरत नहीं थी, वो 1 घंटे में भी काम खत्म हो सकता है. तो वो टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है कि होम मेकर्स के लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें, और मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और अपने को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है. जब हम लोग कहते हैं कि अपने घर के कामों को कैसे मतलब संजो कर रखें, और थोड़ा सा अपने लिए भी उनको टाइम निकालना बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए घर में. देखिए ऐसा होता है, बहुत बार हम ये देखते हैं कि अच्छा मैं ये चाहती हूँ आप गुरु दीदी ये जरूर बताएं कि एप्रिसिएशन भी कितना ज्यादा वर्क करता है एक महिला के लिए, जब वो जो होम मेकर है उनके लिए. क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो लगी रहती हैं, उनको कोई ये भी नहीं पूछता है कि आपने कुछ खाया नहीं खाया है, या जो वो पराठे दे रही हैं क्या उनके लिए वो खाना बचा है या नहीं बचा है. और उसके बाद ये होता है कि जब सब कुछ हो जाता है तब वहां पर क्या आता है कि उनके लिए कि खाना नहीं बचा है. अब वो कहती है कि अब मुझे दोबारा खाना बनाना भी नहीं है, वो बस अच्छा 2 ब्रेड पड़ी होगी, 1 रोटी पड़ी होगी, मैं ये खा लूंगी मेरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाती है. तो इन चीजों को किस तरह से और बेटर किया जा सकता है फैमिली में, ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनका जो लाइफ पार्टनर है, और इनफैक्ट जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी अगर एप्रिसिएशन मिले, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है. यू नो होम मेकर्स के लिए एप्रिसिएशन जो है ना बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको कहीं और से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उनको अपने वो घर वालों से ही एप्रिसिएशन मिलेगा. और अगर कभी आपने देखा होगा, नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि आप तो पूरा दिन घर पे रहते हो, करते क्या हो. अब वो करते क्या हो अगर एक दिन वो महिला घर में सिर्फ बैठी रहे और कोई काम ना करें, तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो करते क्या है. यू नो इसके लिए पीछे एक स्टोरी भी है जो आई थिंक हम सब लोग सुनते हैं कि जो एक बड़ी महिला थी, उनके उन्होंने हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि तुम करती क्या हो सारा दिन. तो नेक्स्ट डे उस महिला ने क्या किया कि सुबह उठी और वो कुछ काम नहीं किया उन्होंने, तो जब शाम को जब हस्बैंड घर में आए तो उन्होंने जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो कुछ बर्तन गिरे हुए हैं, कुछ बैग स्कूल बैग इधर गिरा है, सॉक्स इधर गिरे हैं, बच्चे स्कूल से आए थे तो उनको खाना नहीं मिला, पूरा किचन जो है वो फैला हुआ था।
0: बिल्कुल।
1: तो तब उन्होंने बोला कि क्या हो गया आपने, मतलब आप कुछ प्रॉब्लम है? तो बोले हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो मैंने सोचा आज कुछ नहीं करते हैं। तो ये वो रियलाइज कराना चाहती थी कि भाई हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो बच्चों से एप्रिसिएशन मिले, चाहे उनके बेटर हाफ से उनको एप्रिसिएशन मिले, चाहे उनके घर में इन लॉज हैं या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं उनके तरफ से एप्रिसिएशन मिले, वो एप्रिसिएशन उनका एक रिवॉर्ड होता है। और क्योंकि वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए, तो उनको वही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। और सभी का ये रोल है, सभी का ये कर्तव्य है, सभी का ये फर्ज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, कि हमें होम मेकर का काम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे आर दी बेस्ट मैनेजर्स इन दी वर्ल्ड और बहुत काम करते हैं, उनके बिना अगर काम नहीं करें तो शायद हस्बैंड एक दिन भी बाहर ऑफिस के लिए नहीं जा सकते और बच्चे भी जो है अपना खुशी खुशी ना तो पढ़ाई कर सकते हैं ना स्कूल जा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। मैं यहाँ पर बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट करने में उन्हें इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि जैसे अब क्या होता है, बच्चे हैं स्कूल गए, उन्होंने सारा घर समेटा, अब इतने में सारा टाइम निकल जाता है घर ठीक करने में, बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं और फिर से क्या होता है कि उनकी बुक्स उनकी कॉपीज फिर से उहेल जाती हैं, फिर उन्हें काम करना होता है और उसके बाद टाइम हो जाता है कि हस्बैंड जो है अब ऑफिस से आ गए हैं, अब उनका काम समेटना। ऐसे करते करते जो टाइम है, अगर ये जो काम है छोटे छोटे ये हस्बैंड हो गए या फिर जो बच्चे हैं वो खुद समझ जाएं और खुद करने लगे तो हो सकता है कि जो होम मेकर्स है उनके पास अपना खुद का टाइम जरूर निकले। गुरु दीदी हमने बात करी है स्टूडेंट्स के बारे में, ऑफिस वर्कर्स के बारे में बात करी हमने, होम मेकर्स के बारे में, लेकिन अब एक जरूरी बात और वो आती है हमारे बड़े बुजुर्गों की। देखिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना हमारे, उनको हमें लगता है कि वो तो फ्री हैं, बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ बैठ जाइए अपना अखबार जो है वो पढ़ लीजिए या आप थोड़ा न्यूज देख लीजिए, लेकिन कभी कभार होता है कि उनको भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो अब बात करें कि किस तरह से वो अपना डेली रूटीन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि कभी वो होता है कि जल्दी टाइम से उठ जाते हैं, वॉक कर ली अब वो बैठे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा टाइम हो जाना, किसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना भी होना एक प्रॉब्लम साबित होता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: साक्षी, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, मुझे लगता है कि उनका टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है ना
0: जी।
1: तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि हमारे दादाजी या हमारे इन लॉज उनका एक टाइम टेबल बिल्कुल सेट है कि वो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद अपना नहा धोकर वो पूजा पाठ करेंगे, फिर वॉकिंग के लिए भी जाएंगे, फिर वो अपना जो भी, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली कई बारी मेडिकेशन भी होता है, डॉक्टर्स के पास जाना होता है, तो दे हैव अ सेट टाइम टेबल। एंड मैं उन घर में जो भी हाउस होल्ड हैं जो ज्वाइंट फैमिलीज में रह रहे हैं जहां पे ओल्डर एडल्ट्स रह रहे हैं, मैं उन सबको ये एक बताना चाहूंगी कि जो उनका टाइम टेबल है वो बहुत अच्छा रूटीन होता है। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को फॉलो करें, वो अपने समय के बड़े पाबंद थे और आजकल की जनरेशन बल्कि पाबंद नहीं है, तो हमें उनको बल्कि फॉलो करना चाहिए कि वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है ना, जो उनका एक फॉर्मूला होता था हमारे बड़े बुजुर्गों का, आई थिंक अगर हम लोग वो आज फॉलो कर लें तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की समस्या के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें बड़े बुजुर्गों को फॉलो करना चाहिए और वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, बिकॉज दे हैव अ यू नो डेली प्लानर, वो एक अपना कैलेंडर, उनका एक सेट रूटीन होता है। आप देखो कभी भी बड़े बुजुर्गों को अगर आप उनको टाइम को कुछ भी उनके रूटीन को अगर इधर उधर करने की कोशिश करोगे तो वो अनकंफर्टेबल भी रहते हैं और वो मना कर देंगे, कहेंगे नहीं ये हमारा पूजा का समय है, ये हमारा ब्रेकफास्ट का समय है, ये हमारा सोने का समय है। दे हैव अ प्रॉपर रूटीन। तो मुझे लगता है वो डेली प्लानर, डेली रूटीन या जो कैलेंडर उन्होंने सेट किया है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पार्क में जाके थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ बैठना या शाम को मंदिर या गुरुद्वारे जाना या उन्होंने लाफिंग क्लब जो आजकल पार्क्स में बहुत आजकल एक प्रथा चली
0: correct,
1: हुई है
0: correct.
1: उसको ज्वाइन करना या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ योगा क्लासेस लेना या मेडिटेशन की क्लासेस लेना, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है और ये होना भी चाहिए. और अगर कहीं पे लगता है कि बहुत एज बढ़ती चली जा रही है और हम टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो उस केस में दे कैन यूज देयर फोन्स टू फॉर द रिमाइंडर्स, क्योंकि आजकल फोन में बहुत सारे अच्छे ट्रैकिंग एप्स भी आ गए हैं, तो दे कैन सेट द रिमाइंडर्स कि अभी इनको दवाई खानी है, अभी इनको सोना है, अभी इनको खाना खाना है, अभी इनको बाहर घूमने जाना है या टहलने जाना है. तो वो अगर हम लोग फोन पे ट्रैकिंग अपना रख लेते हैं तो ओल्डर एडल्ट पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वो भी अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. और मैं यहाँ कहूंगी कर सकते नहीं, वो करते भी हैं.
0: करते भी हैं बिल्कुल. तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा अच्छे से जो है वो टाइम को मैनेज कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी है टाइम को मैनेज करना. तो आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जो बाल है ऐसी सफेद नहीं हुए, ये हमेशा एक तकिया कलाम होता है हर बुजुर्ग का कि ये बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है.

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। देखिए दोस्तों, कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार की जिंदगी में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद उसको वो कामयाबी मिलती है जिसका उसको इंतजार होता है, जिसका सपना उसकी आंखें देखती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि जिसने गरीबी और गुमनामी में बिता दिया अपना पूरा करियर, लेकिन फिर एक फिल्म ने रातों रात बना दिया स्टार, आखिरी सांसों के बीच मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये कौन है कि जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बताऊंगा उनका नाम भी बताऊंगा, उनकी जिंदगी से जुड़े सारे किस्सों को आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1989 की। 1989 का वो साल और एक दिग्गज शायर और सॉन्ग राइटर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। फिल्म साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के पूरे 10 गानों ने धूम मचा दी थी। मेरे रंग में रंगने वाली, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई कबूतर जा जा जा, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, यानी कि ये सभी गाने मुंबई से लेकर गांव अंचलों तक गूंजने लगे थे। लेकिन इन गानों में अपनी कलम से जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसका नाम है असद भोपाली। असद भोपाली की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बात आज मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मछली।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। दोस्तों, बात हो रही है अशोक के पेड़ के बारे में, और पीछे बात चल रही थी कि अशोक के पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत फायदेमंद होती है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी छाल से आपके चेहरे पे जो मुहासे होते हैं, जो दाग होते हैं, यानी कि त्वचा से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें ये कारगर साबित होता है। इसके अलावा सांस संबंधी बीमारियों की अगर हम बात करें तो इस पेड़ यानी अशोक के पेड़ से इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अशोक के पौधे का सेवन सांस संबंधी बीमारियों में राहत पाने के लिए भी अच्छी तरह से किया जाता है। इसमें अशोक के पेड़ के जो बीज होते हैं ना, बीजों को पीसकर एक चूर्ण तैयार किया जाता है, जिसका सेवन पान के पत्ते के साथ किया जाता है, और इसका रोजाना सेवन करने से सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनसे आपको राहत मिल जाती है, और सांस लेने की जो आपकी क्रिया होती है उस सांस लेने की क्रिया को भी ये और बेहतर बना देता है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, अशोक के पेड़ को अगर आप घर में लगाते हैं तो ये आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, वातावरण के लिए, सभी के लिए शुभ होता है। अशोक का पेड़ घर में लगाना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि अशोक का पेड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है। अशोक का पेड़ देखने में तो सुंदर लगता है, साथ ही ये घर में सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। जिन घर में वास्तु दोष होता है उन्हें घर में अशोक का पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है, और आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने घर के सामने अशोक के पेड़ को लगाना पसंद करते हैं, और ज्यादातर लोग अशोक के पेड़ को अपने घर के आसपास, घर के दाएं बाएं या पीछे कहीं भी लगाते हैं क्योंकि इस पेड़ से एक नहीं अनेक फायदे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई चीज आपको अगर फायदा करती है तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं। अशोक के पेड़ से कुछ होने वाले नुकसान भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: पर।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता। दोस्तों, अशोक के पेड़ की बात हो रही है, बहुत सारे फायदे आपको मैंने बता दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज आपको फायदा देती है तो उसका दूसरा पहलू नुकसान भी हो सकता है। अशोक के पेड़ की अगर हम बात करें तो अशोक के पेड़ से मिलने वाले बहुत से फायदे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यही दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान या दुष्प्रभाव भी हैं जो स्वास्थ्य को विशेष रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अशोक के पेड़ का इस्तेमाल कुछ दिशाओं में हानिकारक माना जाता है। इन परिस्थितियों में हो सकते हैं अशोक के पेड़ के सेवन करने से नुकसान। हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें अशोक का सेवन। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें अशोक के पेड़ से मिलने वाले किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में इनका सेवन करते हैं तो आपको बहुत से नुकसान या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सीने में दर्द हो सकता है, सांस आपकी फूल सकती है, नींद आने में आपको परेशानी हो सकती है और बहुत ज़्यादा थकावट भी आपको महसूस हो सकती है। सभी परेशानियां हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को अशोक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी इसका सेवन मना किया गया है। देखिए दोस्तों, अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और वो अंदर शरीर में जाकर किसी प्रकार की परेशानी का भी कारण बन सकते हैं। गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो ऐसी महिलाओं को अशोक के पेड़ से बनी किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ अगर कोई और व्यक्ति जो पहले से ही किसी बीमारी से संबंधित दवाइयां ले रहा है उसे भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर में इन्फेक्शन या एलर्जी संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद इसका सेवन कर सकती हैं, अगर आपका डॉक्टर आपको राय देता है तब। देखिए, खास तौर से मैं महिलाओं से अभी बात करना चाहता हूं, मासिक धर्म के दौरान अशोक के पेड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि मासिक धर्म के वक्त बहुत ज्यादा खून बहने पर अशोक के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है, लेकिन ऐसा करने से मासिक धर्म और भी बिगड़ सकता है। इसीलिए इसका उपयोग किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। अगर अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर या फिर रोज सुबह उसके पत्तों का सेवन मासिक धर्म के दौरान किया जाता है तो इससे मासिक धर्म में अनियमितता आ सकती है। साथ ही अशोक के पत्तों का इस्तेमाल धार्मिक और मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। अशोक के पेड़ को सबसे शुद्ध और पवित्र पेड़ माना जाता है। हिंदू धर्म में अशोक को शुभ माना जाता है और अशोक का पेड़ घर में गुरुवार और शुक्रवार को लगाना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए अशोक के पेड़ को हमेशा इन्हीं दिनों में लगाना फायदेमंद माना जाता है। वक्त जाने का हो चला है, लेकिन जाते जाते आपसे बात करना चाहता हूँ अशोक के पेड़ की कुछ और खूबियों के बारे में। देखिए साथियों, अशोक के पेड़ का उपयोग पथरी के दर्द को दूर करने के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए और साथ ही बदन में होने वाले दर्द में भी सहायक होता है। अशोक के पेड़ में बहुत से ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो दिल संबंधित बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं। अशोक के पत्तों या फूलों का सेवन करने से शरीर में जो खून होता है उसका सर्कुलेशन और भी सुचारू रूप से चलने लगता है। साथ ही ये आपकी याददाश्त या दिमाग के लिए भी बेहतर माना जाता है। तो इतनी सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं अशोक के पेड़ के बारे में, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा, अपना ख्याल रखना। और जाते जाते सभी दोस्तों को फहीम का राम राम सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करते हैं। कभी आपके लिए हम लेकर के आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे बात लेकर के आते हैं, तो इस बार हम बात लेकर के आए हैं, जो टॉपिक इस बार का है वो है कल्चर और हमारा ट्रेडिशन। देखिए भारत देश की अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग जो है वो रहते हैं, और बहुत सारे देखिए कल्चर को अलग अलग लोग जो है फॉलो करते हैं। हर सीमा रेखा के बाद एक अलग अंदाज होता है, खान पान चेंज होता है, और खाने का रंग और रूप और जो टेक्सचर है, और कपड़ों का रंग रूप हो गया, घरों का रंग रूप हो गया, सब अलग अलग बदल जाता है। आज हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ खड़ी बोली तो बोली जाती है लेकिन माँ की रोटियाँ बड़ी बड़ी नरम नरम है और बड़ी स्वादिष्ट है। लेकिन इस जो प्रांत है, ये जो राज्य है, इसका रंग रूप की अगर बात की जाए तो बड़ा अनोखा है, रंगीला है। बहुत मेहनती लोग भी रहते हैं, किसान हैं, तो वहीं खिलाड़ी भी इसी मिट्टी से निकले हुए हैं। मैं आज बात कर रही हूँ हरियाणा की। जी हाँ, आज है हरियाणा दिवस और 1 नवंबर को ये दिवस जो है मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जब हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई, पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। आज हम इसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं, हरियाणा दिवस की बात कर रहे हैं, आज इसके इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में, खान पान, लोगों के बारे में, कहानियों के बारे में, ज़मीनों के बारे में बात करेंगे बहुत सारी। और इस प्रोग्राम में ना आज हमारे साथ एक और खास गेस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। आप इनकी आवाज़ को पहचानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार भी इन्हें करते हैं, ये और कोई नहीं बल्कि हैं आरजे सागर, जो कि ना सिर्फ एक रेडियो जॉकी हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और साथ ही एक फिटनेस कोच भी हैं। तो सबसे पहले तो सागर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर एंड इट्स सच एन ऑनर टू सिट हेयर ऑन दिस सीट। जनरली हम शोज होस्ट करते हैं बट आज एक गेस्ट के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं।
0: बिल्कुल। तो सागर, आप हरियाणा से हैं और मैं आज हरियाणा नहीं कहूँगी इसे, मैं हरियाणा ही कहूँगी, क्योंकि ये जो खड़ी बोली है ये ना सिर्फ देखिए हमें ये एहसास दिलाती है देसी होने का, बल्कि मेहनती और साथ ही साथ जो खिलाड़ी इस मिट्टी से जन्मे हैं उसका भी एहसास कराती है, महसूस कराती है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और चाहती हूँ कि उसके जवाब आप दें। वैसे तो इस तरफ आप होते हैं हमेशा, माइक के शोर औरते होते हैं और हमेशा से आप सवाल पूछते हैं, लेकिन आज आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आपकी इजाजत हो तो हम मैं शुरू करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा एक बहुत छोटी सी चीज में ऐड करना चाहूंगा, वो हरियाणा नहीं होता है, वो होता हरियाणा ही है, अणा ही होता है वो
0: जी,
1: बट क्योंकि वो इतना खड़ी बोली है कि लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते, तो इसलिए वो हरियाणा बोल देते हैं। जैसे पुणे बोलते हैं, पुणे नहीं होता है, पुणे होता है, वो वहां का एक वर्ड है। सो लाइक दिस इट्स हरियाणा। यस प्लीज।
0: बिल्कुल। तो सागर, मेरा पहला सवाल आपसे, आज हरियाणा दिवस है और इस दिन को, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके मायने क्या है आपके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा आपने साक्षी। मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज का वो दिन था 1966 को जब पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य जन्मा था, जो कि है मारा हरियाणा। ठीक है, अब ये मेरे लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, वो कल्चरल चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर हैं, बचपन से हमने देखी हैं, तो मेरे लिए हरियाणा एक तरीके से आप कह सकते हैं इश्क है। ठीक है, हमारा पहनना, खाना, बोली जो है, अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो हमारे लिसनर समझ नहीं पाएंगे, बट दो तरह की हरियाणवी बोली जाती है, एक तो ब्रिज टच होती है जो पलवल फरीदाबाद बल्लभगढ़ में बोली जाती है, कहाँ जा रहे हो रे, कहाँ को है रे तू, अच्छो कहा नाम लाला तेरो। ठीक है, ये की होती है जो हरियाणा फरीदाबाद पलवल एरिया में होती है। एक होती है रोहतक की तरफ, सोनीपत तरफ, अरे कितका है तू, के नाम है तेरा। ठीक है, वो ज्यादा खड़ी हो जाती है, लोगों को लगता है कि वो बहुत रूड है, बट वो रूड नहीं है, वो हमारा एक्सेंट है, वो लहजा वैसा है, वो बोलते बहुत भले ही कितनी पोलाइट में बात करें, चा पीवेगी। ठीक है, अब ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग यू अ टी, लेकिन आपको सुनाई ऐसा दे रहा है कि अरे भाई के मारेगा वारेगा क्या, क्योंकि वो है, वो एक्सेंट ही वैसा, डायलेक्ट ही वैसा है हमारा. तो नो डाउट हरियाणवी मेरे लिए तो भाई देखिए बहुत खूबसूरत एक चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के जो मेरे लास्ट डेज हों वो भी मैं हरियाणा में ही व्यतीत करूँ, बिल्कुल अपने ट्रेडिशन के बीच में.
0: बिल्कुल. तो ऐसा होता है ना कि जब हम अलग राज्य से आते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बिहार से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो केरला से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गोवा से आ रहे हैं, और आके दिल्ली में या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं, दिल्ली NCR में आते हैं जॉब करते हैं. अच्छा ये होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जब लास्ट डेज होंगे जैसे कि आपने कहा, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर अंत के अगर वो कुछ खास दिन हो तो वो अपनी मिट्टी में ही गुजरने चाहिए. मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि जब हरियाणा की बात आती है, वो शब्द जब भी आप सुनते हैं, चाहे हम मूवीज में देखते हैं या हम कहीं कहीं सुनते हैं, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जब आप ये शब्द सुनते हैं, जब आप अपने राज्य के बारे में सुनते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है या दिल में सबसे पहले क्या आता है वो बताएं.
1: दूध दही, पहलवान, अखाड़े, कुश्ती, पुलिस, फौज, किसान, स्वांग, रागणी, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूवीज में, खासतौर पर बॉलीवुड में, जिस तरीके का हरियाणा दिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो उसका शायद 1% भी नहीं है. अगर आप हरियाणा सही मायने में देखने चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर मेले होते हैं, जैसे देवउठनी ग्यास होती है एक हमारे यहाँ पर, उसके मेले लगते हैं. ठीक है, और ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं साक्षी, जब गांव में मेले लगते हैं, स्वांग होते हैं, होली होती है हमारे यहाँ पर. तो मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से फेमिलियर हैं, पेटीकोट होता है, एक ओढ़ना होता है और एक कमीज होती है.
0: करेक्ट,
1: औरतें पहनती हैं वो कमीज के नीचे पेटीकोट होता है और ओढ़ना पहन के, और वो नाचती है, और जैसे वो घूमर घूमर गाने में दिखाया है ऐसा एक वो बनता है, वो फॉर्मेशन होता है. और मर्दों का जो होता है वो कुर्ते पजामे या कुर्ते धोती होते हैं, नगाड़े बजते हैं, और डांस होता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में. मतलब आप लोग जैसे अमूमन पंजाब में उसको अखाड़ा बोला जाता है, अभी तो कॉन्सर्ट का एक कल्चर आ गया है. पहले अलग शब्द हुआ करते थे, हमारी गैदरिंग की अलग चीजें हुआ करती थी. उस टाइम पर हरियाणा में रागणियां हुआ करती थी, सोशल इश्यूज को जो आवाज दिया करती थी. जैसे एक मुझे रागणी याद आ रही है, अरे पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहाँ से लाएगा, दवा मिलेगी पैसे से तू प्राण कहाँ से लाएगा. इस तरीके से बहुत ऐसी मतलब सोशल चीजें हुई हैं जिनको आवाज दी गई, और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 40-50-60 साल पुरानी बात है. हरियाणवी कल्चर का ओरिजिन ऐसे हुआ है, तो वो तमाम चीजें जो हैं आती हैं जहन में, वो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं, मेरी मसल मेमोरी ही हरियाणा में, मेरे जब से होश संभाला है वो उसी तरफ है, तो वो बहुत सारी चीजें मुझे याद आती हैं. जी
0: देखिए, जब आप सागर को जब आप सामने से देखेंगे, बाय फेस देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये इतना देसी आदमी है या इतना देसी है, क्योंकि पहनावा, रंग रूप बहुत बदल जाता है जब हम शहर में आते हैं. हम यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने पहनावे को चेंज करते हैं, लेकिन भाई दिल से मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देसी है, और ये जो बोली है ये जरूर आपको लगे कि ये रूड हो सकती है, लेकिन भाई कभी कभार ना बड़ी प्यारी भी लगती है. कई सारे ऐसे मैं जैसे आपने कहा कि 1% भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जैसे कुछ भी दिखाया जाता है तो बड़ी खुशी होती है. अच्छा कोई भी अगर हरियाणवी लैंग्वेज में आके कुछ भी कहता है तो बड़ा प्यारा लगता है कि अच्छा हम मतलब अक्सर दिल से निकलता है कि ये बोली अगर सीख जाए तो मजा आ जाएगा. और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप अपने बच्चों को, जो भी अभी मुझे सुन रहा है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे हैं लैंग्वेजेस सीखते हैं, लेकिन कल्चरल जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अपनी जो घर की धरोहर, अपनी जो लैंग्वेज है, आप उन्हें ज़रूर सिखाइए. आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो गाँव की लैंग्वेज है ये नहीं सीखेंगे, गाँव के हम रीति रिवाज नहीं सीखेंगे, लेकिन ये दिल से कभी नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि दिल से तो देसी है, वही दिल से जो है वो आगे भी बढ़ता है. और लाइफ में अचीव करने के लिए ना आपको दिल से देसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक एक्सपीरियंस उससे मिलता है. चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. आज मेरे साथ है आरजे सागर, तो बात कहीं यहीं पर होंगी, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। ये खास प्रोग्राम लेकर के आ जाते हैं और इस बार का टॉपिक है कल्चर ट्रेडिशन। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज है हरियाणा दिवस। आज इस दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के ही एक कलाकार। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजे सागर। आप आरजे सागर की आवाज को सुनते हैं हर रोज रेडियो मानव रचना पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी आरजे सागर एक फिटनेस कोच भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान है, देसी कलाकार है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सागर, अब आपसे अगला सवाल मैं पूछती हूँ। आपने अभी रागनी की बात करी थी, आपने घूमर की बात करी, सांग की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए कि ये सांग क्या है, क्योंकि अब मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली से आती हूँ, बट आई एम अ बंगाली, तो बंगाल का कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इनके बारे में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के बारे में इतना नहीं पता है, रागनी क्या है या घूमर अच्छे से आप बताएं और सांग क्या है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों में, जो पुराने लोग हैं उनके दिलों में तो जगह ये बनाए हुए हैं, जो नए लोग हैं उनको समझाएं और उनको ये याद दिलाएं, उनके दिल में ये जगह बनाएं कि ये जो है ये भी आर्ट फॉर्म्स हैं और इसके लिए भी हमारे दिल में जगह होनी चाहिए और हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राज्य से है।
2: जी जी जी, सांग का अगर आप सही मायने में देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वांग, पर क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हर चीज को हम ट्वीट करते हैं। स्वांग का अगर आप लिटरल एक मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो होता है इमिटेशन। तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको यही नजर आएगी, चाहे आप बंगाल से हैं, आप पंजाब चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह पर हमने अपने अपने कल्चरल साइड को एम्फेसिस करते हुए, अपनी वैल्यूज को दिखाते हुए, कोर प्रिंसिपल्स को दिखाते हुए अपनी फॉर्मेशन करी थी इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स। तो स्वांग उसी का नाम है। आप कह सकते हैं मिमिक्री भी उसमें होती है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, डांस भी होता है, थिएटर भी होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट। बंगाल में भी होता होगा, भारत के हर राज्य में आपको नजर आएगा। तो हरियाणा में उस थिएटर को, उस मिमिक्री को, उस एक्सप्रेशन का, मैं बोलूंगा उस एक्सप्रेशन को स्वांग नाम दिया गया है। रागनी इज स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एक तरह से कॉन्सर्ट हुआ करता जो बहुत लोकल लेवल पर हुआ करता था, लेकिन रागनी का जो पॉइंट था वो ये था कि गैदरिंग हो, बुजुर्ग बैठे और जो सोशल इश्यूज हैं उनको आवाज दी जाए गाने के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो तो अगर मैं नॉर्मली एक बात बोलूंगा वो आपके जहन में शायद ना रुके, लेकिन अगर मैं वही बात गाना गा के बोलूंगा और गाना आपको अच्छा लगेगा तो वो बात आपके जहन में रुक जाएगी, चाहे वो धुन के माध्यम से रुके या उन शब्दों के माध्यम से रुके। जैसे एक और रागनी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा इन, माँ के जाए भाइयां मैं भी प्यार ना रहा। सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि आपस में भाई अगर लड़ रहे हैं, माँ के जाए भाइयों में मतलब एक माँ से जो जन्मे हैं भाई उनमें अब प्यार नहीं रहा, वो आपस में फूट पड़ चुकी है, लालच बीच में आ चुका है, फिर आगे उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, खोलते हैं। रागनी का ये फॉर्म हुआ करता था, स्वांग ये हुआ करता था, इट्स लाइक गैदरिंग। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा साक्षी, वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना, हम एक साथ नहीं जन्मे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ठप ठप हम ऊपर से गिरे हैं, हम इवॉल्व होकर के यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं कि हरियाणा में स्वांग क्यों है, पंजाब में अखाड़ा क्यों है, या बंगाल में थिएटर क्यों है, या महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें होंगी वो क्यों है, तो आपको इवोल्यूशन पूरा पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कई हजारों सालों तक ट्राइबल कल्चर से निकल के आए हैं, हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हमें एक साथ रहना है। हम लोगों ने दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, सोशलाइज करना बंद कर दिया है, जो कई हजारों सालों से हमारे खून में, हमारे जेनेटिक्स में रहा है। अब बीते कुछ 10-15 सालों से ये चेंज हो गया है, तो उस टाइम पर भी इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन करते हुए कि आपकी मानसिक हालत अच्छी रहे, अच्छी बातें आप सुने, अच्छी संगत में आप रहें और चार लोग अपनी बातें शेयर कर सके ताकि कुछ नया बन सके, प्लस कोई अपने अंदर में घुट ना रहा हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम आर्ट फॉर्म्स बनाई गई थी, गाना, थिएटर, मिमिक्री या ठहाके लगाते थे, हंसी मजाक किया करते थे, वो सब चीजें, तो उसी का रिजल्ट है स्वांग रागड़ी या और जो भी दंगल हुआ करते हैं हरियाणा में, कबड्डी भी हुआ करती है, कुश्ती भी हुआ करती है और बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट यही है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप ट्राइब के साथ जुड़े रहे वहां पर।
1: तो देखिए बदलाव तो काफी सारे हैं और अब मैं यहाँ पर, अब हरियाणा की हम बात करें, इतना सब कुछ है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए भी हरियाणा जो है वो जाना जाता है, चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात करें या फिर हम साक्षी मलिक की बात करें, कई सारे जो भाई शूटर हम अभी बात करें, मनु भाकड़ की बात करें,
2: तो गीता बबीता दंगल बनी है,
1: दंगल बनी
2: है, बजरंग पुनिया है, बहुत सारे लोग
1: हैं। तो कितने लोग जो है इस मिट्टी ने जने हैं और कितने सारे जो है वो अब भी बन रहे हैं प्लेयर्स लाखों की तादाद में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जैसे अब बात करें एक मॉडर्न साइड की भी हम बात करें, गुरुग्राम तो एक मॉडर्न सिटी है और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक अलग हो गया राज्य है, लेकिन अगर मॉडर्न टच की भी बात की जाए तो वो गुरुग्राम आ जाता है। या फरीदाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक लग्जरी भी दिखने को मिलती है। तो आपके नजरिए में ये जो परिवर्तन है ये क्या बदलाव लेकर के आया है और लोगों की सोच पर भी इसका कैसा असर रहा है?
2: देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा सच है जो होता ही होता है, ठीक है, अच्छे के लिए हुआ है, रोजगार मिले हैं लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा में जैसे गुरुग्राम हरियाणा का एक हिस्सा है, ठीक है, और एक मेजर जगह है, अब गुड़गांव में अगर कोई इंसान हरियाणवी बोलता है तो एक तरीके से उसको जज कर लिया जाता है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसी भूमि में जन्मा है, उसी की जमीन पर वो सारी चीजें बनी है, तो वो वहीं का एक बाशिंदा है, ठीक है, वो अपनी भाषा बोल रहा है क्योंकि वो तो कई सदियों से वहां पर रहा है। लेकिन ये एक चीज है कि वो कल्चरल साइड वहां पर नजर कम आती है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हरियाणा के किसी भी गांव में आंख बंद करके घुस जाइए, सुबह 3 बजे से लेकर के 5 या 6 बजे तक किसी भी गांव में, मैं कह रहा हूं यहां पर बैठकर, आपको हर गांव में उसके एंट्रेंस पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे और ये पागल बच्चे होते हैं, जुनूनियत होती है, ठीक है, ये या तो मिलिट्री में जाना चाहते हैं या ये पुलिस में जाना चाहते हैं या एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई उन्हें सूझता ही नहीं है। और इसका एक रीजन है साक्षी, एक तो कुरुक्षेत्र से श्रीमद् भागवत गीता निकली है,
1: बिल्कुल,
2: ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में दिए थे, ठीक है, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, तो ये भूमि है, प्राउड की भूमि है, ये क्षत्रियों का एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरीली 4 जो है जातियों को अजगर बोला जाता है, उनको अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ठीक है, ये क्षत्रिय हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, इसलिए आज भी आपको यहाँ पर वो नजर आएगा कि आज भी यहाँ के लोग वो वाली चीज रखते हैं, मतलब आपको लगेगा अकड़ू है, बट एक हरियाणवी ऐसा मैं कहूंगा खून में एक चीज है मोस्टली जो आपको नजर आएगा कि वो प्राइड के लिए लड़ते हैं, जब भी देश की बात आएगी वो आगे आपको खड़ा मिलेगा, चाहे वो एथलेटिक्स की बात है, फौज की बात है, पुलिस की बात है, और ये मैडनेस जरूरी भी है अपने देश को लेकर के। तो हाँ, ये बात सही है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कल्चर को भी अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूं, मदर नेचर का बहुत नुकसान हुआ है साक्षी, हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन बहुत भर भर के किया है, उसका प्रमाण ये हो रहा है कि आज ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है ऑलरेडी। आज आप देखेंगे तो कितने सारे जानवर है, बंदर आपको नजर आते हैं, डॉग्स आपको नजर आते हैं, ये आपको नजर आते हैं तो आपको दिक्कत तो होती है, लेकिन रूट कॉज तक कोई जाना नहीं चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता है कि इनका घर उजड़ा कैसे, क्या हुआ इनके साथ, पहले कहां रहा करते थे। तो वो एक मदर नेचर ने जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दुख देती है थोड़ा सा मुझे, कि अगर आप एक फ्लैट बना रहे हो, 4 अगर आप पेड़ काट रहे हो तो आप 10 पेड़ और कहीं लगाइए, ताकि बैलेंस बना रहे, ये एक चीज है।
1: देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, आरजे सागर मेरे साथ है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं, और कल्चर के बारे में, राज्य के बारे में, हरियाणा के बारे में, और भी कुछ बहुत सारी बातें जानेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे सागर, जो कि एक बहुत ही खास एक्सपर्ट बनकर आज हमारे शो में आए हैं, क्योंकि हरियाणा से हैं। और जब हरियाणा की दिवस की बात हो और कोई हरियाणवी हमारे साथ, कोई देसी कलाकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सागर, आपसे हमारी बातें चल रही हैं, मैं अब अगला सवाल जानना चाहूँगी यहाँ पर। अब जैसे कि आपने अभी कई सारी चीज़ों पे बात करी है, आपने अरावली की भी बात करी है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है या बंदर हो गए, हम देखते हैं, हम इरिटेट ज़रूर हो जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं, हम जाना चाहते हैं वहाँ तक। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब बड़कल झील की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बड़कल झील भी एक टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है। पानी जो है इसमें दोबारा से जो है उसको रिजुविनेट किया गया है अच्छे से, और मार्केट्स भी लगाई जा रही है, और एक बहुत बड़ा सरकार का भी प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, आने वाले टाइम में हरियाणा की शान बनने वाला है।
1: जी अगेन मैं इवोल्यूशन पे जाना चाहूँगा कि हम लोग इवॉल्व होकर के यहाँ तक आए हैं, तो इतनी सदियों तक हम लोग रहे हैं जंगलों में, हम लोग रहे हैं नेचर के क्लोज, ठीक है। नेचर के बिना मुमकिन नहीं है यहाँ पर जीवन, ठीक है। और ये बात आप सभी लोग खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव हो, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ एक चीज़ करिएगा, कहीं पहाड़ों में चले जाइएगा, जंगलों में चले जाइएगा, किसी बीच किनारे जाकर बैठ जाइएगा, कहीं भी फॉर्म ऑफ नेचर ढूंढिएगा और वहाँ एक दिन या दो दिन व्यतीत करिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप हील्ड महसूस करेंगे। वो हीलिंग बेसिकली होती है, रीजन बीइंग कि हम लोग उसी एक मदर नेचर से निकल कर के आए हैं, इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक स्टेप है। मतलब मैं तो अगर आप रेडियो मानव रचना का टैक्सी नंबर 107.8 सुनते हैं शाम को 5 से 8, तो मैं तो कितने यहाँ पर सालों से यही बात कह रहा हूँ, इसकी गुहार लगा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से बोलता हूँ कि भैया नेचर को बचाइए, आपके आसपास होनी बहुत जरूरी है। और ये भगवान अगर आप मानते हैं तो आपको इन तत्वों को समझना होगा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये मिला करके जो है, इनके बिना जीवन मुमकिन नहीं है। और इनमें से कोई एक भी तत्व अगर हट जाएगा इस पृथ्वी पर से, तो जीवन खतरे में आ जाएगा, वो संतुलन खराब हो जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है कि अगर एक झील बनाई जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, मोरओवर लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा वहां पर आने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रोजगार बहुत जनरेट होगा, काफी लोगों को नए साधन मिलेंगे। और ये खाली फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, यूपी से भी ऐसे मैंने अपडेट्स देखे हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा कुंड खोदे गए हैं, जिनका जहाँ पर तालाब बनाए जाएंगे और वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट अगर अभी हो रहा है तो लकीली, मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर दिस।
0: दुरुस्त है लेकिन जरूर हो,
1: बिल्कुल।
0: मैं सागर आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। अब हरियाणा की बात हुई है और देखिए, आप फीमेल्स की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आप जानना चाहती हूँ, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या फिर आप औरतों की बात की जाए, एथलेटिक्स जैसे कि उसमें विनेश फोगाट हो गई या फिर साक्षी मलिक हो गई, उन्होंने सोसाइटी में बदलाव लेकर के वो आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि एक ऐसे राइजिंग स्टार, क्योंकि ये एक ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है, तो जहाँ पर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गाँव में, कस्बों में ये भी सुनाई देता है कि लड़कियाँ चूल्हा चौका करें, घर से बाहर ना निकलें, तो वहीं ऐसी लड़कियाँ भी हरियाणा से बाहर निकली हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो क्या बदलाव कल्चर में भी क्या लेकर के आएगी, क्योंकि हरियाणा के कल्चर में एक ये भी छोटी सी बात ज़रूर आती है कि चूल्हा चौका है लेकिन ज्यादा घर से बाहर नहीं, लेकिन अब ये सोच जो है वो बदल रही है, तो इसमें आप कितना बिलीव करते हैं।
1: जी जी जी, फिर एक बार मैं इवोल्यूशन की तरफ चलना चाहूंगा। हम लोग हंटर गैदर्स हुआ करते थे, तो हुआ ही करता था इवोल्यूशन के टाइम में, क्योंकि प्रथाएं सारी वहां से बनी है साथ।
0: जी जी,
1: तो जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब ना मिले, मैं सबको सलाह दूंगा, प्लीज एक किताब है सेपियंस, पढ़िएगा। इवोल्यूशन को जितना आप पढ़ेंगे आपको आज की सारी दिक्कतों के समाधान वहां पर मिल जाएंगे। हम लोग क्या किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, एक जमाना था, उस टाइम पर हमने नहीं सीखा था खाने को उगाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, फार्मिंग नहीं हुआ करती थी, तो हंटिंग किया करते थे। औरतों का काम था बच्चों की देखभाल करना, जो हम खाना लेकर के आ रहे हैं उसको पकाना, खाने योग्य बनाना और उसको सबको सर्व करना। मर्दों का काम हुआ करता था बाहर जंगल में निकलना, ठीक है, जंगली जानवरों से अपने परिवार को बचाना, खाने का जुगाड़ करना, ठीक है, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जुगाड़ करना। और इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि जेंडर बेसिस पर किया गया, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी। कट टू द पॉइंट, आज हम आते हैं ये प्रथाएं उसके बाद यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आई, बट अब क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो ये प्रथाएं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अभी बीते दिनों हरियाणा के एक गांव का मैं सुन रहा था किस्सा कि कोई महिला वहां पर सरपंच जो है वो चुनी गई, तो वो महिला ने क्या किया, सबसे पहली चीज वहां पर जो की गई वो की गई घूंघट हटाने की। तो पूरे गांव ने एक साथ घूंघट हटाया वहां पर, विच इज अ गुड थिंग। मतलब स्लो प्रोसेस है बट आ रहा है धीरे धीरे चेंज। पहले हुआ करता था यकीनन कि चूल्हा चौका करना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को पालो और खाना बना करके दो। लेकिन हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आप अलग से एम्फेसिस कर रहे हो कि हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक सच ये भी है कि आप एट द सेम टाइम ये मान रहे हो कहीं ना कहीं कि वुमेन जो है वो कमजोर है, लड़कियां कमजोर हैं। मेरी ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, जिसको जो काम आता है अपनी स्किल के आधार पर उसको वो काम दे देना चाहिए। यही असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा आपकी, अगर वहां पर कोई लॉजिकल बहस हो रही है या कोई ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो रही है, तो वहां पर भी उस फीमेल को उतना ही मौका दिया जाए जितना एक मेल को दिया जा रहा है। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी ये जो लड़कियां कर रही हैं, हमारी छोरियां हरियाणा से उठ के जो नाम कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, इससे और बहुत सारी लड़कियों को जो है इंस्पिरेशन मिलती है। मोर ओवर पेरेंट्स भी जो है वो इंस्पायर होकर के अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, ये चेंज हो रहा है।
0: बिल्कुल। तो सागर, कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक लिसनर का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्कूल जो है वो बीच में छोड़ दिया था।
1: हाँ।
0: तो मैंने उनसे रीजन पूछा, उन्होंने कहा कि बस अब एज हो गई है और मम्मी ने कहा है कि अब थोड़ा खाने वाने बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि अब आगे अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है आपको शादी करनी है और आपको अपना घर संभालना है। अच्छा, कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही अपना बातें कर रही थी रेडियो पे और कई सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, हेल्थ के बारे में बताती हूँ, और ऐसे ही मैं कुछ बातें कर रही थी तो कुछ टाइम बाद उस लड़की का फिर से मेरे पास कॉल आया। उन्होंने, लिसनर ने मुझसे कहा कि मैम थैंक यू। तो मैंने उनसे पूछा थैंक यू किस लिए, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसे सुनते हैं, और आज फिर से मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी को इंस्पायर करना है, चाहे बहुत ही छोटी सी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, लेकिन हाँ कुछ बातें अगर आप तक पहुंचती हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए। इसी के साथ साथ सागर, जैसे कि आपने अभी कल्चर के बारे में भी कहा कि घूंघट की प्रथा हो गई या चूल्हा चौका हो गया, ज़रूर मेरा मानना ये भी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे ये भी लगता है कि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो कुछ प्रथाएं ऐसी होती है ना कि जो महिलाओं पे जचती भी है, लेकिन इसमें अब जो कदम से कदम जो है महिलाएं भी मिला रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर हम अभी लखपति दीदी की भी बात करें तो चाहे उनका पहनावा है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया, और साथ ही उन महिलाओं को भी लेकर के चल रही हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, उन्हें भी काम करा रही हैं, और वो लड्डू या बहुत सारी ऐसी मिलत से चीज़ें बनाना और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे जो महिलाएं हैं हरियाणा की, वे आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से बढ़ती रहें और ऐसे ही पूरी दुनिया को इंस्पायर करती रहें, ना सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को। चलिए सागर, एक छोटा सा ब्रेक, इजाज़त हो आपकी तो मैं लेना चाहूँगी, और आगे कुछ और बस कुछ सवाल और हैं जो मैं जरूर जानना चाहूंगी। फिलहाल का ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। आज मेरे साथ है आरजे सागर। बहुत सारी सागर आपसे बातें हमारी चल रही है। आज हरियाणा दिवस है और इस मौके पर हरियाणा के बारे में हम बात करें, यहाँ के कल्चर के बारे में, फोक म्यूजिक, डांस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने दो रागिनी जरूर हमें बताई है। अच्छा, जब रागनी की या गीतों की बात होती है या कोई भी एक आर्ट फोक कल्चर की बात होती है, सबसे नज़दीकी अगर गीतों में से अगर मैं बात करूं, आपके दिल के कौन सा जो गीत है वो नज़दीक है, जो आप सभी को बस चंद दो लाइनें सुनाना चाहेंगे यहाँ पर?
1: हरियाणवी गीत
0: जी।
1: दिलराज कौर एक हुआ करते थे सिंगर
0: जी।
1: उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए थे, मैं अपने बचपन में सुनता था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पिताजी उस टाइम पर सुना करते थे उनको, और बचपन से वो आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। तो एक गाना है, हालांकि फीमेल पर्सपेक्टिव से वो गाना गाया गया है, लेकिन आर्ट फॉर्म का कोई जेंडर नहीं होता, तो कोई भी उसको गा सकता है। जैसे मेरा चुंदड़ मंगा दे रे ओ नंदी के बीरा तन्ने न्यू ढूंगे पैरा ओ नंदी के वीरा। बेसिकली वो अपने पति को एड्रेस कर रही है, नंदी के वीरा मतलब मेरे ननद के भाई। ठीक है, तो वो इस तरीके से है। एक और है, वो है का, हाँ, रे मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबी छोरी ने, अरे रे मेरी बहू बना दे राम गुलाबी छोरी ने। मस्ती के साथ गाते थे उन गानों
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो ये मस्ती है वाइब जो है ये अभी स्टूडियो में भी बिल्कुल बरकरार है। सागर, कुछ और भी सवाल है, मतलब काफी अच्छा तो लग रहा है आप हमारे साथ है, लेकिन जाने का भी टाइम हो रहा है, तो कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ से अब फ्यूचर की ओर देखें, अगर आप हरियाणा को अब देखें, तो आने वाले सालों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हरियाणा और कैसे डेवलप होना चाहिए, या कल्चरली तौर पर फोक आर्ट म्यूजिक के तौर पर, और किस तरह से आप क्या एंगल किस एंगल से देखते हैं हरियाणा को?
1: मुझे ऐसा लगता है जो होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कोर वैल्यूज को रखते हुए मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एथलीट्स हैं, कुछ बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, तो उनको स्टेडियम्स मिलने चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ताकि देश के लिए और ज़्यादा मेडल्स हम लोग लेकर के आ पाएं। इसके अलावा स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोरओवर, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा आज भी इंडिया का हिस्सा है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन जो हमारी है भारत की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग। उसमें बहुत बदलाव होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। क्योंकि साक्षी, ये बहुत दुखद बात है कि एक किसान इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टार्टअप के तौर पर देखिए कि अगर कोई आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वही बंद फैक्ट्री में है, बिकेगा, आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, आप उसको अंदर बंद करके रखेंगे तब। लेकिन एक किसान की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, वो अपनी लिटरली सारी मेहनत से जो है बीज लेकर के आता है, पूरी मिट्टी खोदता है, बीज बोता है, फसल उगती है, और उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चौड़े में पड़ी हुई है, ओपन में। अब धूप अगर ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, बारिश ज्यादा हो जाएगी बर्बाद हो सकती है, ठीक है, हो सकता है फसल ना होगे, हो सकता है कीड़ा लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना स्टेक पर है, आप सोचिए कि रातों रात सब खत्म हो जाता है एक बाढ़ से या सूखा पड़ जाने से। और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक रात में फसल उगा सकते हैं, वापस से उसको 6 महीने 7 महीने का वो जो लूप है उसको रिपीट करना पड़ेगा, वही मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक पेन पॉइंट रहता है हरियाणा के लिए भी, क्योंकि वो मेरा स्टेट है, मैं यहां जन्मा हूं, लेकिन ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश की बात करूंगा, जहां भी फार्मिंग होती है हर जगह पर इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि फार्मर्स प्रिडिक्ट कर पाए वेदर कैसा होने वाला है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, और क्या फसलें मैं उगा सकता हूँ, कितने टेन्योर में वो उग सकती है। मुझे लगता है कि ये अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर, मैं ये भी चाहूंगा कि जब मेरे बच्चे हों, मैं उनको सब सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, जो भी होगा दुनिया में सब सिखाऊंगा, एट द सेम टाइम हरियाणवी सिखाऊंगा, स्वांग बताऊंगा, रागड़ी सुनाऊंगा, ताकि ये जो कल्चर है ये कैरी फॉरवर्ड हो सके, ये यहाँ पर गायब ना हो।
0: बिल्कुल। तो सागर, आपके साथ आज बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हरियाणा दिवस को और ज़्यादा एक महत्व अगर जो मिला है, और साथ ही आपने हर एक चीज़ के बारे में बड़ा खुल के बताया है, चाहे वो रागनी की बात की जाए, गीतों की बात की जाए, यहाँ के कल्चर की, एवोल्यूशन पीरियड से लेके अभी तक की सारी जानकारी आपने दी है। मैं तभी दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो आखिरी एक लाइन हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: दूध दही का खाना, यो है हमारा हरियाणा। ये है जी, यही है हमारा है। है ही ये प्रोसेस, ऑर्गेनिक है, इसीलिए आपको हट्टे कट्टे यहाँ पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि खाना बहुत ऑर्गेनिक है और वो बचपन से डाला जाता है। मतलब पिज्जा नहीं खाते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे घर में टमाटर और मिर्च की चटनी बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है चूल्हे के ऊपर, और उसमें जो मक्खन होता है वो निकाल के ताज़ा रखा जाता है और उसके ऊपर वो चटनी रख के खाई जाती है। अरे साहब कभी आइए, अंगे खाइए दूध के साथ, आपको हम दिखाते हैं कि मज़ा क्या होता है। आप भूल जाएंगे तमाम चीज़ केक का स्वाद, आप भूल जाएंगे तमाम पिज्जा, और आपको मिलेंगे जो फायदे। तो ये है जी हमारा हरियाणा।
0: बिल्कुल यही है हमारा हरियाणा, और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो चलिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मैनवरेश 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किडनी के बारे में। देखिए, हम अक्सर ना अपने हार्ट के बारे में बात करते हैं, ब्रेन के बारे में बात करते हैं, फिटनेस के बारे में, वेट ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, अपने डाइट के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑर्गन जो दिन रात काम करता है, लेकिन हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, हम उसी के बारे में बात नहीं करते हैं, और वो है हमारी किडनीज। हैरानी की बात यह है कि किडनी से जुड़ी हुई जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो शुरुआत में वार्निंग नहीं देती है, लेकिन सिम्टम्स जब सामने आते हैं तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितेश शर्मा, चेयरमैन नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू साक्षी फॉर हैविंग मी।
2: डॉक्टर, सबसे पहला सवाल हमें सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि किडनी हमारे बॉडी में क्या काम करती है और ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
3: जी, जैसे कि आपने कहा कि किडनीज बहुत साइलेंटली काम कर रही हैं, बिना कोई आवाज़ किए, बिना कुछ बोले हुए, लेकिन हमारे शरीर में वो बैलेंस जो मेंटेन करती हैं, दे हेल्प टू मेंटेन एवरी ऑर्गन्स फंक्शन। और लेमैन भाषा में बात करें तो वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रही हैं, ब्लड को फिल्टर करके जो डेली हमारे टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो यूरिन को यूरिन के रस से बाहर निकालती हैं। तो एक नॉर्मल बैलेंस पूरे एनवायरनमेंट का मेंटेन करने के अलावा वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मेन ऑर्गन है। हमारे बीपी को मेंटेन करना किडनी का मेन फंक्शन है। इनफैक्ट जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो बीपी बढ़ना शुरू होता है। तो बहुत बार ये आदमी सोचता है कि बीपी बढ़ा हुआ है तो हार्ट की बीमारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं समझते कि बीमारी किडनी की है, और जब बीपी बढ़ता है तो हार्ट को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे खून में हीमोग्लोबिन जो है वो किडनी में एक हॉर्मोन है एरिथ्रोपोएटिन जो बनाता है। सो जब किडनीज वीक होती हैं तो खून की कमी या अनीमिया होना भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा किडनी का एंडोक्राइन फंक्शन है जिसमें कि वो बोन हेल्थ भी मेंटेन करती है। सो कैल्शियम फॉस्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है वो किडनी से रिलेटेड है। और जब किडनीज वीक होती हैं तो हड्डियाँ भी कमजोर होने लगती हैं, और एडवांस किडनी डिजीज में तो एक छोटी सी चोट के साथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन, वो बीपी, हीमोग्लोबिन मेंटेनेंस एंड बोन हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर, आजकल किडनी डिजीजेस जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों बढ़ रही हैं?
3: एक तो है कि हमारे पास अभी हेल्थ चेकअप्स बढ़ते जा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो किडनी की बीमारी अर्ली स्टेज में पिकअप भी हो जाती है। बट इससे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में डायबिटीज़ की मात्रा या पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, एंड वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड हमारे किडनी डिजीज़ में नंबर वन कारण आज की डेट में डायबिटीज़ बन गया है। सो एक डायबिटीज़ के मरीज़ को ऑलमोस्ट 25-30% रिस्क है किडनी की बीमारी होने का इन देयर लाइफ टाइम। सो इफ वी हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड, वी ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज पेशेंट्स। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किडनी को ख़राब करता है। और जो आजकल की लाइफस्टाइल है जिसमें कि हमारा जंक फूड का कंजम्पशन, रिफाइंड फूड का कंजम्पशन, सॉल्ट इनटेक बहुत बढ़ गया है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, एक्सेसिव वेट गेन है, स्मोकिंग है, ये सब बीपी बढ़ाते हैं और किडनी को भी खराब करते हैं।
2: बिल्कुल।
3: अब अवेयरनेस के अलावा ये जो हमारे रिस्क फैक्टर्स है मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेके, ये किडनी की बीमारी को बढ़ा रहे हैं। बाकी यूजुअल कारण है जैसे कि जिनको फ्रीक्वेंट किडनी स्टोन्स बनते हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज है, और कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं जो बाय बर्थ होती हैं, वो भी किडनी खराब करती हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर, वो कौन से अर्ली साइंस हैं जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं?
3: वैसे तो किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर है, 10 में से 7 मरीजों को पहली बार किडनी के डॉक्टर के पास तब आते हैं जब उनकी किडनी फेल हो चुकी होती है, और उसका मुख्य कारण यही है कि इनके अर्ली स्टेजेस में कोई लक्षण होते नहीं, एंड यूजुअली जब लक्षण आते हैं तो किडनी ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। बट कई बार कुछ सटल साइंस होते हैं, जैसे कि रात को कई बार पेशाब के लिए उठना, जो कि नॉर्मल नहीं है। आमतौर पर जब हम सोते हैं तो सीधा सुबह ही उठते हैं या मे बी एक बार उठते हैं, तो बट जब किडनीज वीक होती हैं तो वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाती, एंड लगभग सेम क्वांटिटी ऑफ यूरिन दिन में भी और रात में बनता है, इसीलिए पेशेंट्स एक बार, दो बार और तीन बार उठना शुरू होते हैं। दूसरा है, अगर किडनी में अर्ली स्टेज ऑफ डैमेज शुरू हो रहा है तो फिल्टर्स प्रोटीन लीक करना शुरू करते हैं, तो ब्लड के अंदर का प्रोटीन यूजुअली फिल्टर होके यूरिन में नहीं आता, लेकिन जब ये डैमेज शुरू होता है किडनी में अर्ली स्टेज में, फिल्टर का साइज बढ़ जाता है, प्रोटीन लीकेज शुरू होती है, तो पेशाब में झाग आनी शुरू होती है। तो कई बार पेशेंट्स कहेंगे कि जब मैं जाता हूँ फ्लश करता हूँ तो झाग फिर भी ऊपर नजर आ जाती है, सो दैट इज एन अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज। एंड इसके साथ साथ कई बार पैरों में सूजन आती है, खास करके शाम तक जब पेशेंट अपने घर आते हैं तो उनको अपने एंकल्स के आसपास स्वेलिंग नजर आती है। एडवांस स्टेजेस में ये स्वेलिंग बढ़ते जाती है, सांस फूलने लगता है, कमजोरी आनी शुरू होती है, धीरे धीरे भूख कम होनी शुरू होती है और एक्चुअल वेट लॉस शुरू हो जाता है। बट ये ज्यादातर सिम्टम्स लेट स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज वाले सिम्टम्स बहुत कम है, इसीलिए हम डिजीज को मिस कर जाते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर, बहुत लोग ये मानते हैं कि ज्यादा पानी पीने से जो है किडनी बनी रहती है, अच्छी रहती है और कोई डिजीज फिर नहीं होती है, तो क्या इस बात में सच्चाई है?
3: ये सबके लिए तो ट्रू नहीं होगा, बट हाँ, ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि बार बार किडनी के स्टोन बन रहे हैं, उनके लिए तो ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है ताकि उनका यूरिन डाइल्यूट रहे, और उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप इतना टारगेट वाटर इंटेक रखें कि 2 से 2.5 लीटर यूरिन 24 घंटे में बने। अब गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, सर्दियों में कम, टू अचीव दैट काइंड ऑफ यूरिन आउटपुट। दिन के टाइम पे तो हमें याद रहता है हम इतना पानी पिए कि हर 1.5-2 घंटे में यूरिन जाते रहें, लेकिन जब नाइट टाइम है और हम सो जाते हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, और स्टोन फॉर्मर्स के लिए ये सबसे क्रूशियल टाइम है, इसलिए हम उनको ये सलाह देते हैं कि सोने से पहले हैव अ कपल ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर, टारगेट हो कि रात को 2 बार यूरिन के लिए उठना पड़े, तो जब भी आप यूरिन के लिए उठें फिर पानी पी के सोएं। आई नो आपकी स्लीप इसमें ब्रेक होती है, लेकिन अगर ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, स्टडीज ने ये दिखाया है कि दिस इज द बेस्ट थेरेपी टू प्रिवेंट रिकरेंट स्टोन्स। अदरवाइज बहुत रेयर सिचुएशंस में कहेंगे कि हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, इनफैक्ट अगर किडनीज वीक होती हैं और हम ज्यादा पानी पीते हैं वो यूरिन इतना बना नहीं पाती हैं तो स्वेलिंग बढ़ेगी या सांस फूलेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, एक हेल्दी एवरेज इंसान को जो एडल्ट है उसको कितना पानी पीना चाहिए?
3: हमारे देश में जहाँ की गर्मियाँ भी बहुत होती हैं और सर्दियाँ भी, तो एक फिक्स्ड वाटर इंटेक देना हमारे लिए सही नहीं होगा। हमारे बॉडी में एक बहुत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भगवान ने दिया जिसको थर्स्ट या प्यास बोलते हैं, तो जब हमें प्यास लगती है मतलब कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है, हमें पानी पी लेना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंट स्टोन फॉर्मर है उनके लिए तो हाई वाटर इंटेक डेफिनेटली रिकमेंडेड है, लेकिन बाय एंड लार्ज थर्स्ट के हिसाब से अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमारी किडनीज के लिए और ओवरऑल ठीक है। बट अगर किसी की किडनी कमजोर है उसको डेफिनेटली कम पानी पीने की सलाह दी जाती है, खास करके जब स्वेलिंग आ रही होती है। तो अगर इन केसेस में हम पहले कहते हैं कि नमक की मात्रा कम करें, अगर हम कम नमक खाएंगे तो हमें प्यास भी कम लगेगी, और नमक और पानी मुख्य कारण है सूजन होने का।
2: बिल्कुल डॉक्टर, अगर अर्ली डिटेक्शन की बात करें या फिर कुछ टेस्ट की बात करें जो किडनी के होने चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे आप सभी को?
3: बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक तो पहले ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट है, तो बीपी मेजर करेंगे, बीपी बढ़ा हुआ होगा इट इज अ वार्निंग साइन, इट कुड बी अ साइन ऑफ किडनी डिजीज। दूसरा है पेशाब का एक टेस्ट जिसको एल्ब्यूमिन या प्रोटीन बोलते हैं, तो यूरिन एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की जांच हमें बता देगी कि किडनी की बीमारी अर्ली स्टेज में है, उसका फंक्शन खराब होने से पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं। तीसरा टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें कि क्रिएटिनिन का ब्लड में जांच की जाती है, और इस क्रिएटिनिन की रिपोर्ट के साथ एक फॉर्मूला लगा के हम एस्टिमेटेड किडनी फंक्शन बता सकते हैं, और आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स में वो रिपोर्टेड भी होता है। एंड फाइनली अगर हम एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं तो हम बाय एंड लार्ज हर किडनी की बीमारी को पकड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर, अब बात करते हैं पेन किलर्स की, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो केमिस्ट के पास जाना और पेन किलर्स ले लेना। पेन किलर्स और सेल्फ मेडिकेशन किडनी के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है?
3: जी, पेन किलर्स आर अ वेल नोन सोर्स ऑफ किडनी डैमेज, इनफैक्ट अक्यूट किडनी डिजीज भी करते हैं और क्रॉनिक भी। तो अगर आपको दर्द हो रही है और उसका कारण पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं और पेन किलर खा रहे हैं तो वो गलत है, और ये फ्रीक्वेंटली पेन किलर्स आसानी से मिल भी जाते हैं विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, वो मैनी टाइम्स फ्रीक्वेंट इंजेक्शन ऑफ पेन किलर्स किडनी खराब कर देता है, और अगर किसी की किडनी पहले से ही कमजोर है उसके लिए तो ये बहुत खराब है। तो हमारी सलाह यही होगी कि आप अगर कोई दर्द है, क्रॉनिक है, तो आप एक डॉक्टर की सलाह लें, अपने आप जाके कोई भी पेन किलर ना खाएं। सेफ पेन किलर्स भी हैं जो लिए जा सकते हैं अगर आपकी किडनी वीक है, लेकिन सबसे पहले आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए कि आपकी दर्द का कारण क्या है और उसके कारण का इलाज कराएं।
2: बिल्कुल डॉक्टर, अब बात करते हैं खाने के बारे में, डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो जो किडनी के पेशेंट्स हैं किन किन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ग्रेप्स या आम, क्योंकि अब सीजन है, आम का सीजन है, तो नहीं खाने चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है?
3: जी, यू आर राइट। इसलिए बना किया जाता है क्योंकि इन सब फ्रूट्स में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, एंड किडनी ही हमारा मेन ऑर्गन है जो हमारे शरीर से पोटेशियम बाहर निकालता है। तो जब किडनीज वीक होती हैं तो ब्लड में पोटेशियम बढ़ना शुरू होता है, और वो बढ़ा हुआ पोटेशियम दिल के लिए खराब है। तो पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन एक चीज़ है जिसमें कि फ्रूट्स में सेब, पपीता, अमरूद या नाशपाती में रिलेटिवली कम पोटेशियम होता है, तो ये ऑन अ डेली बेसिस 100 से 150 ग्राम तक हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, और खास करके जो सिट्रस हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें सबसे ज़्यादा है, तो ये तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए हम सलाह देंगे। और बाकी के फ्रूट्स हो गए, जैसे कि आम की आपने बात करी, कोई हम बिल्कुल ही डंडा लेके तो नहीं खड़े हो जाएंगे उनके पीछे, बट कहेंगे कि चलो 3-4 दिन में एक स्मॉल स्लाइस ऑफ मैंगो आप ले लीजिए, लेकिन उस दिन फिर आप कोई और फ्रूट ना खाएं।
2: बिल्कुल।
3: इसके अलावा जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, सूप्स, इन सब में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ये अवॉइड करने चाहिए। वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो उनको हम सलाह देते हैं कि पहले चॉप करके पानी में उबालें, पानी फेंक के फिर उसकी सब्जी बनाएं। टमाटर कच्चा ना खाएं, जो खाने के कुकिंग में हल्का डलता है वो अलाउड है उनके लिए।
2: जी,
3: पोटेशियम के अलावा जो मेन रिस्ट्रिक्शन है एक किडनी के पेशेंट के लिए वो नमक की है, सॉल्ट इनटेक। तो उसमें ये सजेशन होता है कि आप 3-4 ग्राम नमक पूरे दिन में खाएंगे, जो कि बहुत कम है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो एडेड सॉल्ट, टेबल सॉल्ट हटा दीजिए, ऊपर से नमक ना छिड़किए। जो हाई सॉल्ट कंटेंट्स हैं जैसे कि अचार, चटनी, भुजिया, जंक फूड, ये ना खाएं। और घर का खाना जब बन रहा है, एक मरीज के लिए अलग से खाना बनाना लाइफ लॉन्ग बड़ा मुश्किल होता है, तभी के वो खाने में पहले आधा नमक डले यूजुअल से, पेशेंट अपना खाना अलग करके बाकी लोग उसमें नमक चाहे तो डाल लें। और नमक सफ़ेद ही रखें, काला या सेंधा नमक ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और जो किडनी के पेशेंट्स के लिए हानिकारक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग द प्रोटीन इनटेक, क्योंकि जनरली जब पता चलता है किडनी वीक है तो सब लोग कहते हैं अपने खाने में प्रोटीन ख़त्म कर दीजिए, लेकिन वो गलत भी है, क्योंकि हमारा जो इंडियन डाइट है वो प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन खाने में दाल और मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ के कोई प्रोटीन का इंटेक होता नहीं है, और ये हाई क्वालिटी प्रोटीन भी नहीं है। तो अगर हम एक कटोरी दाल ले रहे हैं, 200-400 ml मिल्क ले रहे हैं, और एक कटोरी दही के दिन में ले रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन है नहीं, और वो इनफैक्ट ख़त्म करके हम अपनी हेल्थ को और ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हम मैल न्यूट्रिशन पैदा करते हैं। सो एक्सेस प्रोटीन का मतलब नॉन वेजिटेरियन है, वो हम डेली बेसिस पे नहीं अवॉइड एडवाइस करेंगे, कहेंगे कि हाँ आप कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी में ले लें, बट जो वेजिटेरियन प्रोटीन है आप उसको बंद ना करें।
2: बिल्कुल डॉक्टर, अब बात करते हैं डायलिसिस की, तो किस स्टेज पर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है?
3: जो एडवांस किडनी डिजीज है जिसको हम एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं, जब किडनी का फंक्शन 10% या उससे नीचे चला जाए, तब सिर्फ दवाइयां हमारे हेल्थ के लिए पूरी नहीं पड़ती हैं, हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाए, लक्षण आने शुरू हो जाए, पेशेंट दवाइयों के बावजूद कमजोर हो रहा है या सांस फूल रहा है और धीरे धीरे वेट लॉस भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डायलिसिस शुरू करना अनिवार्य हो जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है। अगर डायलिसिस लेमैन भाषा में समझाएं तो वो एक मशीन किडनी का काम कर रही है, अपने ही खून को प्यूरिफाई करके वो वापस शरीर में भेज रहे हैं, और ये एक सेशन 4 घंटे का होता है हीमोडायलिसिस में, और हफ्ते में 2 या 3 दिन किया जाता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज में हम इसको शुरू कर रहे हैं तो ये पूरी जिंदगी चलता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर, अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की और किडनी डायलिसिस की, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा?
3: जी, ट्रांसप्लांट इस बीमारी का बेस्ट इलाज है, डायलिसिस से तकरीबन हर तरीके से वो बेहतर है। अगर हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ देखते हैं, एक डायलिसिस शुरू करने के बाद पेशेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हेल्थ में फिर भी लैकिंग होती हैं, परहेज रिस्ट्रिक्शंस फिर भी रहते हैं, और लाइफस्टाइल के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑलमोस्ट 6 घंटा अपना निकालना पड़ता है ट्रैवलिंग को लेके, और इधर उधर ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाता है। जो कि एक किडनी ट्रांसप्लांट मरीज होगा उसको एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल हेल्थ मिल जाती है और वो बाकी सारे काम बड़े आसानी से कर लेता है एक नॉर्मल इंसान की तरह, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक डायलिसिस के पेशेंट के लिए। फिर बात आती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने साल और जोड़ रहे हैं। तो अगर हम दोनों में सर्वाइवल्स का डिफरेंस देखते हैं तो 10 साल के सर्वाइवल अगर एक डायलिसिस के पेशेंट में देखें तो वो लेस दैन 20% है। मोर देन 80% जो मरीज हैं डायलिसिस के वो 10 साल पूरे होते नहीं देखते हैं। जबकि किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी का सर्वाइवल एट द एंड ऑफ 10 इयर्स इज ऑलमोस्ट रीचिंग 80% नाउ। और लास्टली जो बात आती है और है तो बहुत इंपॉर्टेंट इज द कॉस्ट ऑफ थेरेपी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे मरीज अपने पेशेंट अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं।
4: करेक्ट।
3: उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है या कोई अनपैनलमेंट नहीं है। तो एक साल की जो डायलिसिस की लगभग कॉस्ट है उसमें आप अपफ्रंट किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एक साल पूरा कर लें तो ट्रांसप्लांट का खर्चा डायलिसिस से कम होना शुरू होता है और जैसे ही 5 या 10 साल की हम बात कर रहे हैं आप कॉस्ट ऑफ थेरेपी ट्रांसप्लांट की डायलिसिस के मुकाबले आधे से भी कम हो जाती है। सो ना कि वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है बट वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ भी होता है।
4: बिल्कुल डॉक्टर, अब सवाल आगे मैं नेक्स्ट जो पूछने वाली हूँ वो ये कि जो डोनेट कर सकता है, एक डोनर जो है, क्या वो उसके बाद भी एक हेल्दी लाइफ जी सकता है डोनेट करने के बाद?
3: जी बिल्कुल। इतने साल हो गए, 75 साल से ज़्यादा की लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं और हमारे पास पूरा डेटा है जो दिखा रहा है कि जो ऑर्गन डोनर्स हैं दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ एंड अ नॉर्मल हेल्थ। तो एक जो डर है कि अगर हम किडनी दे रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे या कोई लंबा इलाज चलेगा, वो बिल्कुल गलत है। टेस्ट होते हैं सारे, ना कि सिर्फ किडनी के बट हर ऑर्गन के, और अगर हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और हमारे पास 2 नॉर्मल किडनी हैं तो अगर हम एक किडनी अपने नियर एंड डियर को दे रहे हैं तो आने वाली ज़िंदगी में हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं आता है। कोई लंबा इलाज नहीं चलता, कोई परहेज नहीं है। इनफैक्ट सर्जिकल एडवांसेस की वजह से आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो चीरा भी बहुत छोटा लग रहा है, दर्द भी बहुत कम होता है और ऑपरेशन के 3rd दिन आप नॉर्मल डाइट पे चलते फिरते घर वापस भी चले जाते हैं एंड यू कैन रिज्यूम योर वर्क इन 10-15 डेज एट द मोस्ट। और कोई दवाई नहीं खानी है, कोई परहेज नहीं है। बस इतना सलाह है कि हाँ, जैसे कि पेशेंट भी हैं हमारे फैमिली में चेकअप कराएंगे, आप भी साल में एक बार अपना चेकअप कराते रहिए। बट ये डर जो है ये अननेसेसरी है। ऑर्गन डोनेशन के बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको उसकी वजह से डरना पड़े।
4: बिल्कुल डॉक्टर, अगर फैमिली में मैचिंग डोनर ना मिले तो पेशेंट को क्या ऑप्शन है उनके पास फिर?
3: जी देखिए, अगर तो कोई मेडिकली फिट डोनर नहीं है फिर तो हमारे पास ऑप्शन डिजीज डोनेशन या कैडेवरिक डोनेशन का होता है जिसमें कि एक वेट लिस्ट बनती है। और अगर कोई ब्रेन डेड केस है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो गई है या स्ट्रोक हो गया है और वो कभी भी उठने नहीं वाले हैं, जो कि हम कोमा कहते हैं, मगर उनके ऑर्गन्स अगर ठीक काम कर रहे हैं और फैमिली चाहती है तो किडनी के अलावा लिवर, हार्ट, लंग, आईज, ये सारे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स एज वेल, एंड यू कैन गो एंड सेव 7-8 लाइव्स। और अगर आपने कहा कि कोई मैचिंग डोनर नहीं है, इनफैक्ट मैचिंग में हम यूजुअली ब्लड ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसप्लांट तो यही रहा था कि जैसे कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, लेकिन पिछले कई सालों से अब हम रेगुलर बेसिस पे ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल या मिसमैच ट्रांसप्लांट भी करते हैं जहाँ की ग्रुप डिफरेंट होता है। इनफैक्ट पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट इंडिया में ये रेगुलरली हो रहा है और अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल हायर कॉस्ट इन द बिगिनिंग, आज की डेट में दोनों मैच्ड एंड मिसमैच्ड ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स एंड रिजेक्शन रेट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं। तो पहले ये होता था कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा तो ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा, लेकिन आज की डेट में हम ब्लड ग्रुप मिसमैच्ड ट्रांसप्लांट भी इक्वली गुड रिजल्ट्स के साथ कर पाते हैं।
4: बिल्कुल। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
3: जी बहुत सारे मिथ्स हैं, लोग डर जाते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत रिस्ट्रिक्शंस होगी, उनका ट्रैवलिंग बंद हो जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको रेगुलर चेकअप्स जैसे एडवाइस किए जाते हैं बाय द एक्सपर्ट वो करना चाहिए। चेकअप्स के साथ साथ अपनी दवाइयां हैं क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है जब कोई किडनी लग रही है, वो रेगुलरली खाते रहना है, दवाइयों को मिस नहीं करना, दवाइयों में लापरवाही नहीं और चेकअप्स में नहीं। बट इसके अलावा एक हेल्दी हाइजीनिक लाइफस्टाइल, साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा खाना, ये फॉलो करने की ज़रूरत है। बाकी अपने फैमिली के साथ जैसे आप रेगुलर रहते हैं वो रहते हैं, आप काम पे भी जाएंगे अपने जैसे यूजुअल जाते हैं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको लाइफस्टाइल हैम्पर करेगी, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग अ हाइजीनिक एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्टिकिंग टू योर मेडिकेशंस एंड रेगुलर चेकअप्स।
4: बिल्कुल डॉक्टर, आखिरी में जो आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि हमारे लिसनर्स के लिए 5 गोल्डन रूल्स आप ज़रूर बताएं किडनीज को ठीक रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, वो ज़रा बताएं।
3: एक तो है, अगर आपको बीमारी नहीं है तो मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कि हमें रिस्क फैक्टर्स जो किडनी की बीमारी के हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, गिविंग अप स्मोकिंग हो गया, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड अ बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स हैं उनके लिए हाई वाटर इनटेक रिकमेंडेड है, अदरवाइज आप नॉर्मल इंसान की तरह प्यास के हिसाब से पानी लेते रहें। लेकिन बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ने पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस ना कि सिर्फ पेशेंट के लिए हैं बट उसकी पूरी फैमिली के लिए हैं, जब हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। और अर्ली डिटेक्शन में जो हमने सिंपल से टेस्ट बताए गए हैं वो अगर रेगुलर बेसिस पे होते हैं, स्पेशली जहाँ हाई रिस्क सिचुएशन है जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्टोन्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, बीमारी को हम जल्दी पकड़ें, अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। आजकल अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, और अगर हम लेट स्टेज में पहुँच जाते हैं तो डायलिसिस से पहले हम ट्रांसप्लांट को चुनें। और ट्रांसप्लांट की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग सोचते हैं कि डायलिसिस हो जाए फिर मैं ट्रांसप्लांट के बारे में सोचूंगा, लेकिन हमारी सलाह होती है अगर हम सही टाइम पर डिसीजन ले लें तो हम सीधा ट्रांसप्लांट कराएं, जिसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं, हम डायलिसिस पर ना जाएं। एक तो हम डायलिसिस का खर्चा बचा लेते हैं, लेकिन स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि 10 साल के रिजल्ट्स में जिन लोगों ने प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट किया है उनके हेल्थ बेनिफिट्स और 30% बेटर देन दोज पेशेंट्स हु हैव बीन ऑन डायलिसिस।
4: डॉक्टर, आज बहुत सारी आपसे बातें हुई हैं, आपने कई सारी जानकारी साझा करी है, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप रेडियो मानव रचना के स्टूडियो आए और इतनी सारी जानकारी साझा करी।
3: थैंक यू सो मच साक्षी।
4: और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही बहुत सारे बातें जानकारी लेकर के हम, यानी कि रेडियो मानव रचना जो है वो आता है आपके पास, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होती रहेगी आपसे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।
5: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर। आज कहूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। शो की बात करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस के तौर पे हम इस शो को आपको समझाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले इस पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कैसे वो ऑपरेट कर रही हैं, क्या उनके पीछे का प्रोसेस रहा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री, जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो बात करेंगे बिना किसी देरी के, फिलहाल मैं आ चुका हूँ, इतना ही आपसे कहना है, मेरा सलाम कबूल करिए। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद मेडटेक की बात होगी, क्योंकि आज की जो कंपनी है वो मेडटेक में डील करती है। पहले इंडस्ट्री आपको समझाएंगे, उसके बाद फाइनली विल मूव ऑन टू द कंपनी, वो बताएंगे कौन सी है। तो आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके पहले हम उस

एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम रेफर करेंगे, जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तमाम तरह की चीजें, जैसे डिवाइसेस हो गए, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई। कुल मिलाकर मोटिव ये होता है कि डायग्नोस कर पाए, डायग्नोस करना, ट्रीट करना, मॉनिटर करना मेडिकल कंडीशंस को, ताकि लोग ठीक रहे, ओवरऑल वेलबींग हमारी काफी अच्छी रहे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है, लिटरली वाइड रेंज मिल जाती है, चाहे आप बात करें किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, चाहे आप बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, या फिर जो आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेलीमेडिसिन के, कि अपने घर पर बैठकर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम अपने घर बैठ के दवाइयां ऑर्डर कर रहे हैं, तो दवाइयां हमारे डोर स्टेप तक जो पहुंच रही हैं, वो भी आप मेडटेक में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग है इस इंडस्ट्री में, वो हम सब कुछ मेडटेक में कंसीडर करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सरल वे में लेकर आना। अगर किसी इंसानों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से उसको डायग्नोस करना, अगर किसी चीज की स्टार्टिंग बॉडी में हो गई है, जो आम तौर पे होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं पूरी बॉडी का चेकअप करके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं, जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स आ गए हैं, सर्जिकल रोबोट्स जो काफी एक्यूरेसी के साथ, काफी प्रिसीजन के साथ जो है सर्जरी करते हैं, जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, डैमेज भी कम से कम होता है, और जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एंड एमआरआई मशीन्स, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो अचीवमेंट या फिर माइलस्टोन है हमारे लिए, कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसके एक एक सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, अच्छे से रीड कर पाना। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, और ये सब कुछ हमें दिया है मेडटेक इंडस्ट्री ने, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी कंपनी है वो इसी इंडस्ट्री में डील करती है, कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं मेडटेक इंडिया में क्या है एग्जैक्टली। देखिए, मेडटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसके पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है, मतलब लिटरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ेगी, और उसके हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। देन इसके बाद क्रोनिक डिजीज या फिर कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हमने आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, या 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या 16 साल की उम्र में एक बच्चे को थायराइड हो गया, मल्टीपल चीजें। स्ट्रेस बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो गया है हमारी लाइफ में, जिससे कोप अप करने के लिए हमें जरूरत होती है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस एक इंडस्ट्री को इतना तेजी से ग्रो करा रही हैं, और ये बहुत इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। अगर दूसरे वे में इसको देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर होती जा रही है, हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती आ रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, प्लस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो काफी सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो मेडटेक हब बनाता जा रहा है इस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में, मतलब पूरे एशिया में अगर आप उसको फिगर आउट करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एशिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्थ केयर का, लेकिन इंडिया उसमें बहुत स्किल्ड कंसीडर किया जाता है, मतलब हमारे यहाँ पर लिटरली एक स्ट्रांग बेस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी लिटरली बहुत अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक स्टार्टअप लेकर चल रहा है और वो उसको फिक्स कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले हैं। ऐसी मल्टीपल इनोवेशंस हमने देखी है इस हेल्थ केयर सेगमेंट में, जिन्होंने लिटरली लोगों की हेल्प करी है और हमारी ओवरऑल वेलबींग काफी अच्छी की है। सो दिस इज मेडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया, जो बहुत तेजी से आप कह सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज हम इस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे यहाँ पर, और अभी तक हमने मेडटेक इंडस्ट्री को समझ लिया है। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आएंगे, जो आप कह सकते हो कि सब पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री का एक इनसाइट लेने में। अब हम बात करेंगे की सेगमेंट्स की, मेडटेक इंडस्ट्री के की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब उन वर्टिकल्स को मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे कि जहां पर कोई स्कोप है या जहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में हम इस इंडस्ट्री को बाइफर्केट कर सकते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, इसमें हम कंसीडर करेंगे MRI, CT scans, X-rays और जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स

होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और एक ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमारी काफी मदद करते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अब पॉसिबल है कि हम उसको एनालाइज कर पाएं और फिगर आउट कर पाएं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हमने कर ली। देन सेकंड वर्टिकल जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस। इस सेगमेंट में आपको तमाम रेंज देखने को मिलेगी उन डिवाइसेस की जो हमारी हेल्प करते हैं, लाइक जो हमारे क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की जब जरूरत होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या स्टेंट्स जो आमतौर पर देखा जाता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है, जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो स्टेंट डाले जाते हैं सो दैट कि ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा ना हो और जो ब्लॉकेज है वो भी ना हो और इजीली जो है लोग वहां से कोप अप कर पाए उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो उनके सामने आई है। देन पेसमेकर्स जो इसी एक वर्टिकल में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप में वो वर्टिकल है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत आम हो चुका है, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और ये लिटरली बहुत प्राउड वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात है कि यार अभी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई है। जैसे मल्टीपल टाइम्स हमने आपको अपने शोज में ये बात बताई है कि कोई इंसान गया माउंटेन ट्रैकिंग पे या माउंटेन क्लाइंबिंग पे और वहां पर जाकर उसको अचानक से कुछ फील हुआ, कोई पैनिक वाली सिचुएशन या अचानक से उसके या जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत शूट अप कर गया या ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा बहुत जगह से मल्टीपल टाइम्स अपडेट आए हैं कि स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी उसने नियर बाय रेस्क्यू टीम को एक मैसेज भेजा, एक SOS का मैसेज गया और इंस्टेंटली रेस्क्यू टीम वहां पर आई, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और उस बंदे ने मतलब अपनी कॉन्शियसनेस वो खो चुका था। उस बंदे ने कोई मैसेज इंटेंशनली नहीं भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी उसने वो सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सिग्नल गया, रेस्क्यू टीम आई, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, यकीन मानिएगा। सो वियरेबल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, लाइक ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने में एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने में, इसी के साथ हार्ट रेट हमारा अगर इरेगुलर हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने में। देन इसके बाद फोर्थ वर्टिकल आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिमोट डायग्नोसिस को इनेबल करती है। जैसे COVID-19 के बाद से स्पेशली हमने देखा है कि वर्चुअल कॉल्स या थ्रू जो है वर्चुअल डिवाइसेस हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब रिमोटली कंसल्टेशन हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं हुआ करता था वीकेंड का वेट किया करते थे और इतने में बीमारी बढ़ती रहती थी, या किसी पर्टिकुलर डे का वेट किया करते थे तब तक बीमारी को वो झेला करते थे, तो उनके लिए काफी सुविधा हो गई है। आधा घंटा एक घंटा निकाल के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे दवाइयां भी आ जाएंगी, बहुत सिंपल है। तो इस एक चीज ने लिटरली बहुत अपलिफ्ट किया है इस एक मार्केट को। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ IT एंड AI। इसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में हम इस चीज को देख सकते हैं कि पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंड इसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी पास्ट में और अभी जो बॉडी साइन दे रही है वो क्या साइन दे रही है या किस एक दिशा की तरफ जो है हमें वो लेकर जा रही है। इससे पेशेंट को टाइमली ट्रीट किया जा सकता है और बीमारी की रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। सो ऑल दीज आर दी की सेगमेंट्स जो मेडटेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, सेकंड हमने आपको बताया मेडिकल डिवाइसेस, थर्ड बताया वियरेबल टेक्नोलॉजी, फोर्थ बताया टेलीमेडिसिन एंड फिफ्थ बताया हेल्थ IT एंड AI। अब देखिए इनमें से किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक वर्टिकल, हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बशर्ते हम उन चीजों की जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझ पाए। अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा ओवरऑल, हमने फिर इंडस्ट्री को समझा कि इंडिया में इसका स्टैंड क्या है अभी, फिर हमने समझा की सेगमेंट्स को, उन वर्टिकल्स को जिनमें ये इंडस्ट्री डील करती है या फिर जिनमें आप इसको बायफर्केट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम की ड्राइवर्स की। की ड्राइवर्स यानी कि जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है। तो पहला की ड्राइवर आता है राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स। अब देखिए जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड करना। मोरओवर जिस तरीके से हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हर रोज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए दिन खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेक्ट किया जाता है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के साथ या उस एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ कोप अप करना, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट्स की सच में जरूरत होती है और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे में जो राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स हैं वो लिटरली हमारी काफी हेल्प कर रही हैं इस एक इंडस्ट्री को आगे भी ले जाने में और साथ साथ नई चीजों की तरफ हमें पुश करने में, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट या नई इंप्रूवमेंट या कुछ नया इनोवेटिव हम लेकर आए। जैसे आमतौर पर भी देखने को मिलता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये बहुत ही आम चीजें हो गई है, आमतौर पर देखने को मिल जाती है। पहले रेयरली हुआ करता था और एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था कि इस एज में हो सकता है, लेकिन आज ये बोल पाना बहुत गलत होगा कि इस एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि हमने 10 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हमने 14 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत इरेगुलर है, हमने 16 साल के बच्चे को देखा है जिसको थायराइड है। ऐसे आप किसी एज ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस प्लस ये कॉम्पिटिटिव मार्केट्स जो हमारी होती जा रही है, इन सब की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। लकीली हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकेंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, एज अ की ड्राइवर जो इस इंडस्ट्री को रन करता है। पहला तो मेक इन इंडिया एक मूवमेंट है जो हम अपने ही देश में अपनी चीजें बना पा रहे हैं, अपने ही देश की चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड आता है डिजिटल इंडिया, जिसने बहुत हेल्प करी है, मतलब जो हम स्पेशली बात करेंगे टेलीमेडिसिन की, कि लोग अपने घर पे बैठ के कंसल्ट कर पा रहे हैं, तो वो हो पाया है डिजिटल इंडिया मूवमेंट की वजह से। देन उसके बाद आता है आयुष्मान भारत, जिसमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है मेडटेक इंडस्ट्री को, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफ़ी मदद मिलती है, नई इनोवेटिव चीज़ें मिल रही हैं और लोगों के पास एक्सेस है हेल्थ केयर का। पहले हुआ करता था कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस था, लेकिन जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, जब से हम लोग टेलीमेडिसिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से रिमोट एरियाज में भी बैठकर लोग दिल्ली या मुंबई या कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की ड्राइवर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एआई बहुत ही अब कॉमन चीज हो गई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नई है हमारे लिए, हालांकि इतनी पुरानी नहीं हुई है, बट स्टिल हमने बहुत तरक्की कर ली है इस एक फील्ड में। मशीन लर्निंग, आईओटी, इन्होंने मेडटेक इंडस्ट्री को लिटरली बहुत एक नया आप कह सकते हो मुकाम दिया है, क्योंकि नई एडवांसमेंट, नई चीजें लेकर आना, अर्ली स्टेज में चीजों को डिटेक्ट कर पाना, प्लस उसको काफी पर्सनलाइज्ड वे में देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ से इंडिया में मेडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स को काफी लुभा रही है ये एक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पा रही है। देन उसके बाद लास्ट जो आप की ड्राइवर कहेंगे इस एक इंडस्ट्री में, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। लोग भी अब जागरूक होते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग जो है अब जाने लगे हैं, साथ साथ लोग अब समझ पा रहे हैं कि यार अर्ली स्टेज में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने डिटेक्ट कर लिया, सो इट्स गुड फॉर अस। शायद इसी वजह से लोग स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर या जो भी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको वेयर करना पसंद करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो अर्ली स्टेज पे उन्हें वो साइन मिल जाए और आगे चलकर वो परेशान ना हो जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो। तो ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है, फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स। और इसमें अब हम बात करेंगे करंट टेक्नोलॉजीज की। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप करंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं इस एक इंडस्ट्री की, जस्ट इन केस अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला है एआई एंड मशीन लर्निंग, जो आमतौर पर हर एक इंडस्ट्री के साथ अब हम एसोसिएट कर रहे हैं और हर जगह पर हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसमें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 3D प्रिंटिंग। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिससे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का पूरा एफर्ट वहां पे जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए। मतलब लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट खो देते हैं किसी ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज में, एक्सीडेंट में, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम उसी चीज के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि यार कोई रिप्लेसमेंट दे दो, लेकिन एक्यूरेसी की कमी हुआ करती थी। बट लकीली अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं 3D प्रिंटिंग की वजह से कि काफी एक्यूरेट, मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार ये सच में रियल है या फेक है, मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। इम्प्लांट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं।
सर्जिकल जो चीजें आ गई हैं उन्होंने काफी हेल्प करी है लोगों को। कुल मिलाकर लोग जो फ्रीली कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं वो करने में काफी हेल्प करती है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद थर्ड वियरेबल डिवाइस, जिसकी हमने बात करी थी, जो हमारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करता है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसका डेटा हमें प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस दिशा में काम करना है और एग्जैक्टली क्या काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टॉप नॉच डॉक्टर्स से कंसल्ट कराने में। इवन दो आप अगर एक लिमिटेड बजट लेकर चल रहे हो तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्टर हैं, उनके रिव्यूज क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहां पर मिल जाता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर जाना है, किस डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करना है, जिससे आपकी फिजिकल विजिट जो है वो बच जाती है और आप टाइम भी अपना काफी सेव कर लेते हो। आपको किसी पर्टिकुलर डे या वीकेंड का वेट नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल रोबोट्स क्योंकि एक नया ट्रेंड बन चुका है और इससे काफी मदद मिलती है एक्यूरेटली ऑपरेट करने में, साथ साथ रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। एंड इसी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो काफी हेल्प करते हैं प्रिसाइज ऑपरेशन करने में या मेडिकल प्रोसीजर्स जो है उनको काफी सेफ और एक्यूरेट बनाने में। देन उसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें देखिए मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है हेल्थ डेटा को, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, सरकार को भी काफी मदद मिलती है, साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी काफी मदद मिलती है और अगर किसी को भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ डेवलप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है तो उनको काफी मदद मिलती है, एक डेटाबेस उनके हाथ में है। सो ये हैं वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग हैं और जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप इन फील्ड्स में, इन टेक्नोलॉजीज में देख सकते हो। आई होप इट वर्क्स। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो नीड क्या है इसकी इंडिया में। देखिए सबसे पहली चीज एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे देश की आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है। रूरल एरियाज मतलब लिमिटेड एक्सेस, चाहे वो किसी अच्छे टाउन के या अच्छे शहर के कितने ही करीब क्यों ना हो या कितना ही दूर क्यों ना हो, स्टिल देर आर लिमिटेशंस, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंसान तक इनका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी चीजों को फिक्स कर सके बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। देन टेलीमेडिसिन उसमें एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है एंड मेडटेक के जो बाकी सॉल्यूशंस हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइस हो गए, ये सब उस गैप को फिल करते हैं। इसलिए जरूरी है इंडिया में मेडटेक के ऊपर काम करना। सेकेंड अफोर्डेबिलिटी। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं बात करूं एक ब्रॉडर व्यू में तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना है या डायग्नोस करना है तो कम टाइम में अच्छे से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम वो कर सकते हैं बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है, इतना इन्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया है उस एक फील्ड में, जिसकी वजह से काफी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, जिसको जहां पर नीड है वो उसको ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड क्वालिटी ऑफ केयर। अब एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, वेरिएबल डिवाइस आ गए हैं, AI ड्रिवन सॉल्यूशंस आ गए हैं, इससे ओवरऑल हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मतलब अब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड, आगे चलना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको कंसीडर करना चाहिए कि ये हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पैंडेमिक रिस्पॉन्स। COVID-19 के बाद से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उस टाइम पर भी, उसके बाद भी हुई, जहां पर मेडटेक ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया उस क्राइसिस के टाइम पे भी, जहां पर डॉक्टर्स के साथ वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस करते थे एंड उसके बाद भी, क्योंकि वो एक चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम बहुत ट्रेंडिंग एक चीज बनी, बहुत बड़ी एक चीज निकल के सामने आई। देन उसके बाद सब कुछ हमने देखा कि डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स हमें मिल गए एंड टेलीमेडिसिन का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए। कुल मिलाकर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सहूलियत हो गई, पेशेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। इट्स अ विन-विन सिचुएशन। हुआ क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी को वहां पर अलाइन किया गया और उससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नई शेप मिली।
सो दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि इसकी नीड है ये हमारे पास। इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला, मतलब काफी हमने एक्सेस को इम्प्रूव होते हुए देखा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस है अब हेल्थ केयर का। हमने देखा कि बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स जो है वो ज्यादा एम्पावर हो गए हैं पहले से, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं, हमने देखा कि एफिशिएंसी काफी इम्प्रूव हो गई है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो ऐसे मेडटेक जो एक पूरी इंडस्ट्री है उसने हमारी लाइव्स की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको काफी इम्प्रूव किया। आइंड्रा सिस्टम्स बेंगलुरु बेस्ड एक मेडटेक स्टार्टअप है, 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। AI का इस्तेमाल करती है ये कंपनी, और पर्टिकुलर यहाँ पर एक कॉज है जिसको लेकर बहुत जानी जाती है पूरी इंडस्ट्री में, और वो है सर्वाइकल कैंसर। इनके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सर्वस्त्रा है जहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है सर्वाइकल कैंसर की, और अर्ली स्टेज पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर डिटेक्ट किया जा सकता है दैट मींस कि अर्ली स्टेज पर उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पर हमारे हाथ से गाड़ी बहुत दूर तक जा चुकी होती है। सो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट्स हैं जो AI पावर्ड हैं, जैसे ऑटोमेटेड स्ट्रेनर्स हैं, टेलीपैथोलॉजी सिस्टम्स हैं जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक इस तरीके से लेकर आए हैं कि सोशल इम्पैक्ट ये लेकर आ सके। अच्छा, बहुत खास चीज़, बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका जो मिशन है जिसकी वजह से इस कंपनी में इन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। और ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, बेंगलुरु क्योंकि इंडिया का सिलिकन वैली जो है कंसिडर किया जाता है। बट स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी हेल्थ केयर में स्टार्ट नहीं हुई थी। इनिशियली जो इस कंपनी के फाउंडर्स हैं मिस्टर आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा, वो कंसल्ट करते थे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जहां पर सब्सिडी लीकेजेस हुआ करते थे मिड डे मील स्कीम में स्कूल्स की जो हुआ करती है। सो इन्होंने एक टचलेस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जो अटेंडेंस की ट्रैकिंग करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये इनका पहला एक प्रोडक्ट था जो सक्सेसफुल हुआ। उस टूल का नाम था दृष्टि, जहां पर इनकी जो जान पहचान है वो AI से हुई, और मार्केट जो है इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी और मार्केट जो है वो इनको समझने लगी। तो ये सब चीजें हुई, देन उसके बाद फंडामेंटली चीजें इन्होंने अपनी ठीक करी सारी, और उसके बाद ये फर्दर ग्रो करते गए, और 2014 में कुछ इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उनके हेल्प से लाइक विल ग्रो है, एंड्रा है जो है वो शिफ्ट हुई टू मेडटेक, जो एक अलग ही स्टोरी है, मतलब एक पूरी नई जर्नी इनकी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अभी तक का पॉइंट ये कि 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई जहाँ पर इन्होंने पहले सरकार के बिहाफ पर काम किया, एक ऐसा इन्होंने डिवाइस बनाया जो अटेंडेंस को ट्रैक करता है ताकि किसी तरीके का घपला ना हो सके मिड डे मील स्कीम में जो स्कूल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। फिर 2014 में जब तक ये मार्केट को समझ चुके थे, AI मॉडल्स को समझ चुके थे, डेटा को समझ चुके थे, फिर इन्होंने अपना मेडटेक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया विद द हेल्प ऑफ विलग्रो एंड कुछ और इंक्यूबेटर्स थे। तो इसके पीछे का जो आइडिया था वो हम आपको बता चुके हैं, टू यू नो मेक क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर हम बात करें तो लगभग 60,000 लोग लिटरली, मतलब हाई कॉस्ट की वजह से या लेट डायग्नोसिस की वजह से एनुअली अपनी जान गंवा देते हैं, ये इनकी कंपनी के हिसाब से एक आंकड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और वहां पर इन्होंने AI को इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इनके बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिस्टर आदर्श नटराजन की। ही इज द CEO एंड आप कह सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आइंद्रा। इन्होंने अपनी MBA की डिग्री अचीव की है IIM बेंगलोर से, जो आप कह सकते हैं इंडिया टॉप बिजनेस स्कूल्स में इसको कंसिडर किया जाता है, जहां से इनकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हुई इन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। और आइंद्रा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल कंपनीज में इन्होंने काम किया, ठीक है, जहां पर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं IT में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में है। काफी सारी अचीवमेंट्स हैं इनके खाते में जिनके बारे में मुझे लगता है कि रेलिवेंट नहीं होगा आपको बताना। तो इनका काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, हमेशा से एक स्मूथ एक्सपीरियंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पर मेजर एक इनका माइलस्टोन आप कहेंगे मिड डे मील स्कीम को एक्सपोज उन्होंने किया, जहाँ पर बच्चों को जो चीज़ें वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पा रही थी, वो खाना, वो जो मील्स उनके लिए बनाई जाती हैं वहाँ पर काफ़ी सारे घपले हो रहे थे, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। हालांकि इनका होम टाउन मैंशन नहीं है, बट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम कि डीपली रूटेड इन बेंगलोर,
क्योंकि काफी एक्सपीरियंस जो है वहीं पर इन्होंने गेन किया है। उसके बाद थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। एविड रीडर है, एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, ही लव्स टू ट्रैवल, स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, इस तरह की चीजें, और पैशन हम देख सकते हैं डीप टेक एंड सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। दूसरा नाम आता है अभिषेक मिश्रा, ही इज द को फाउंडर एंड आप ये कह सकते हैं बैकबोन ऑफ आइंद्रा सिस्टम्स, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ NIT जालंधर। एक और बहुत ही खास इंस्टीट्यूशन जो कि पंजाब में मौजूद है जालंधर में, तो वहाँ से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो की। इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है इन कंप्यूटर विजन एंड AI, वो सारी चीज़ें बहुत पहले से समझते आए हैं, जिसकी वजह से ये टीम बहुत अच्छी बन पाई। तो इनका भी बहुत क्रूशियल एक पिवोटल रोल है इन डेवलपिंग आइंद्राज इनिशियल AI प्रोडक्ट्स दृष्टि, एंड लेटर देन इसके बाद फर्दर जो इस कंपनी का एक बैकबोन कंसिडर हम करते हैं सर्वस्त्रा, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो करता है टूल, उसको इन्होंने बनाया। सो दैट्स हाउ यू नो दे आर जस्ट वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स। इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है इन AI एंड कंप्यूटर विजन, अर्ली प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते हैं इनके स्कूल डेज से, बहुत पहले से टेक को लेकर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं और उन सब प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं जहाँ पर टेक को लाया गया, जिसकी वजह से स्केलेबल AI सॉल्यूशन से बना पाए, चाहे वो मिड डे मील की हम बात करें या फिर अभी जो है हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। देन इसके बाद एक और टीम मेंबर हैं काफ़ी टैलेंटेड, मिस्टर चैतन्य, एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इनका जो पैशन है वो रोबोटिक्स में है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस में है, जहाँ पर ये हार्डवेयर वाली चीज़ें जो हैं वो सारी देखते हैं। ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ऐसे करके तीन लोगों की टीम है जो बन के आई। इनिशियली दो लोग थे जो मेन विजनरी आप कह सकते हैं, जिनकी वजह से कंपनी स्टार्ट हुई, आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा। तीसरा नाम हमने अभी आपको बताया जो बाद में जुड़े इनके साथ, लेकिन काफी इनकी मदद हुई उससे, मिस्टर चैतन्य। आइए थोड़ी सी बात करते हैं की ड्राइवर्स की, भाई कौन से वो ड्राइवर्स हैं जिनके बलबूते पर ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। पहली चीज है डीप टेक्नोलॉजी, इनका जो AI का यूज है, कंप्यूटर का जो विजन है, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत फास्टर वे में डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन एरर्स को कम कर सकते हैं और जो टर्न अराउंड टाइम होता है टेट उसको भी काफी कम कर सकते हैं। इनका फोकस है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, जहां पर ये ऐसे पोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अफोर्डेबल भी हों और एक्सेसिबल भी हों, जैसे विजन एक्स है, एक इंटेलिस्टेन है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो डायग्नोस कर सकती हैं इन अनडिजर्व्ड एरियाज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी वजह से इनका तीसरा की ड्राइवर काफी खास हो जाता है, सोशल इम्पैक्ट। एज अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है ये कंपनी, बट यहाँ पर एक मिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान ये बचा रही है, यहाँ पर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वैसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कभी सुना है या बात की है, या केवल एक नाम सुना है उसके बियॉन्ड आप नहीं जानते होंगे, बताइए जरा हमें 8010078107 पे। इसके बाद फिफ्थ इनका जो आप कह सकते हैं की ड्राइवर है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने काफ़ी सारी यू नो ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है अपनी, जो हेल्थ केयर में काफ़ी आगे हैं, काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज हैं, और इनकी टीम ऑब्वियसली काफ़ी टैलेंटेड है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज हमने आज की इस पूरी कहानी से काफ़ी कुछ सीखा है। अब इसी नोट पर हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। तो दो लोग जो अलग अलग चीजों को समझते हैं, विजन लेकिन सेम रखते हैं, वो मिलकर के आए, उन्होंने कंपनी खड़ी करी, मार्केट को समझा, गैप को समझा, एंड देयर नथिंग लाइक अ परफेक्ट प्रोडक्ट। हमेशा स्कोप होता है चीजों को बेहतर बनाने का। ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है आपको एज अ थंब रूल लिख लेनी चाहिए कहीं पे, क्योंकि जितने भी केस स्टडीज यहाँ पर हमने डिस्कस किए आज तक, सब में ये चीज निकल के आती है, कॉमन होती है कि आपके कुछ फेलियर्स होते हैं, मल्टीपल चीजों के अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं और वहां पर जाकर आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आने लगती है, तो सारे एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। अब इसी नोट पर कि ये शो को आप लोगों को अच्छे से समझा पाया मैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल शो है, इजाजत चाहूंगा आपसे, फिर मुलाकात होगी फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम दोस्तों। मैं आरजे सागर आ चुका हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम, पसंदीदा उन लोगों का जिनको घूमने फिरने में मजा आता है और एक वर्चुअल टूर जिनको मिल जाता है तो चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो जहाँ पर बंदा वापस से हाजिर है लेकर एक और खास जगह आपके लिए, यहाँ पर एक और खास जगह को आज हम उठाएंगे, उसको हम यहाँ पर अनकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको बता पाए कि क्या क्या है वहां पर, जगह कौन सी है और बहुत ही खुशनुमा जगह लेकर आए। यकीन मानिए अगर आप एक बार वहां चले जाएंगे ना, वहां के होकर रह जाएंगे और आकर मुझे तो आप शुक्रिया अदा कर रहे होंगे ढेर सारा। वेल, कौन सी जगह है, कहां पर चलने वाले, तमाम आपके सवाल होंगे, आई नो इनके जवाब आपको मिलेंगे। अच्छा, जब भी बात घूमने फिरने की होती है और जितने भी लोग उत्तराखंड का मनाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून एंड नैनीताल, भीमताल के अलावा जगह सोच पाते हैं। आई एम श्योर काफी कम हो जाएगा रेशियो अगर ऐसे फिल्टर हम लोग लगाएंगे तो। बट उत्तराखंड बहुत बड़ा है, उत्तराखंड में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो फिर से आया हूँ मैं लेकर एक और खास जगह। चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं जगह का नाम क्या है। तो जहाँ पर जगह का नाम है धरचूला। धरचूला एक बहुत ही खास, बहुत ही अंडररेटेड सी जगह है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, आप गूगल करके अभी के अभी देखिए, किसी मूवी के सीन से कम नहीं लगती है जगह। ऐसा लग रहा है लिटरली आप किसी सिनेमा में जी रहे हो। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी हैपनिंग प्लेस, मतलब मजा ही आ जाए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं, पंचचोली पीक्स के बहुत प्यारे व्यूज मिलते हैं, बिल्कुल पैनोरमिक व्यूज। इसी के साथ आप वहां पर खड़े होंगे, कैलाश मानसरोवर है वहां पे छोटा कैलाश यात्रा का रूट है। तो जब आप वहां पर खड़े होंगे ना, यू फील लाइक कि आप कहीं आ गए हैं, किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में आप एंटर कर गए, किसी बबल वर्ल्ड में। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपके मजे आने वाले हैं। आपको कैलाश मानसरोवर का कम से कम आपने नाम ही सुना है और आपका जाने का मन है, यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारी यहाँ पर आपको कल्चरल चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारे अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात बताई गया है कि जगह बहुत बहुत ज्यादा पीसफुल है, क्राउड बिल्कुल कम है, कमर्शलाइजेशन बहुत कम हुआ है यहाँ पर, मदर नेचर अपने बेस्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जगह बहुत खुशनुमा है, बहुत मजे आने वाले हैं आज के सफर में। तो हो जाइए तैयार, बांध लीजिए अपने अपनी कुर्सी की पेटियां। देखिए, वैसे तो कहने को बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में जो इंसानों ने बनाई है, लेकिन इंसानों की वो खूबसूरती, इंसानों के द्वारा बनाई गई उन चीजों की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है जब आप देखते हैं मदर नेचर की खूबसूरती। तो ऐसी खूबसूरत जगह है हमारे पास जिसका नाम है जौलजीबी। जौलजीबी फॉल करती है धारचूला में, थोड़ा सा अलग आपको जाना पड़ेगा, पर इस जगह पर जाने के बाद आप शायद पूरा दिन यहाँ पर बिताना चाहेंगे, आपका मन नहीं करेगा एक दो घंटे में वापस आ जाएं। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा खास कुछ है भी नहीं, सिर्फ कुछ पहाड़ है, नदी है, खुले मैदान है, दैट्स इट। पर ये चीजें इतनी खुशनुमा है ना, वहां पर इतनी अच्छी है, आप लिटरली वापस नहीं आना चाहेंगे, आप कम से कम एक दिन वहां पर रहना चाहेंगे। दरअसल जौलजीबी जो है वो दो नदियों का एक संगम है, एक है गोरी नदी, एक है काली नदी। गोरी नदी में गोरे पत्थर होते हैं और काली नदी में काले पत्थर होते हैं, और ये किसी इंसान ने नहीं डाले हैं, ये मदर नेचर ने खुद से वहां पर डाले हैं। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन, पर ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो ये दो नदियां हैं जो छोटे छोटे राहों से निकलती हैं और यहां पर आकर मिलती हैं, और यहां पर आकर जब वो मर्ज होती है ना, जो वो पॉइंट है संगम वाला, वो बहुत प्यारा है। मतलब इट फील्स लाइक आप वहां पर लाइफ मेडिटेशन कर रहे हैं खुली आंखों से। आप बैठकर जो देख रहे होंगे ना, जो पीसफुल मोमेंट्स वहां पर आप जी रहे होंगे, वो आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो पहाड़ है, मतलब नदियां पहाड़ों के बीच से निकलती है और पहाड़ बिल्कुल हरे भरे पहाड़ है। पहाड़ों के ऊपर घने आपको जंगल देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के नीचे से नदियों होकर निकलती है जो आगे जाकर मर्ज हो जाती है, दो नदियां। इसी के साथ उस नदी के किनारे पर एक खुला मैदान है जहां पर कुछ लोग रहते हैं, फार्मिंग करते हैं। खुले मैदान में बहुत सारी घास उगी हुई है और कुछ फसलें वहां पर उगाई जाती हैं। ऊपर आपकी नजरें जाएंगी, नीला आसमान, खुला आसमान जिसपे कभी कभी सफेद बादल आ जाते हैं, और अगर रात को आप वहां रुकते हैं तो आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और आपको चंदा मामा दूर के बहुत पास नजर आते हैं वहां से। तो इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन मैं इस जगह का नहीं दे सकता हूँ, और अगर आप सच में मदर नेचर से प्यार करते हैं, अगर आप सच में एक वांडरलस्ट हैं, तो आपको पता होगा जो मैंने बोला है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको दिया है, इससे आपको क्या फील मिलने वाला है। एंड इफ यू गॉट इट, प्लीज गो एंड विजिट दिस प्लेस। नाम इस जगह का जॉल जेबी, और ये जगह फॉल करती है हमारे उत्तराखंड की बहुत ही अंडररेटेड लेकिन बहुत ही खास जगह के अंदर। नाम है इसका धरचूड़ा। तो अगली जगह आती है ओम पर्वत। ओम पर्वत मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्पेशली हिंदूज के लिए बहुत खास जगह बन जाती है। यहां पर इस जगह को दो तीन नामों से पुकारा जाता है, ओम पर्वत, छोटा कैलाश, आदि कैलाश। जी हाँ, ये वही जगह है। तो ओम पर्वत बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं मन्नतें लेकर, और वहां पर जाकर ऐसा मानते हैं कि पूरी हो जाती है। देखिए, जो बड़े वाला कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में है, लेकिन डिट्टो सेम टू सेम ये पर्वत है, ये माउंटेन है। बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं, एक हफ्ता, दस दिन, बारह दिन इजिली यहां पर बिताते हैं लोग, और यहां पर जो उन्हें सुकून मिल रहा होता है भाई, ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लिटरली वो सुकून, वो पीस। हालांकि कुछ चैलेंजेस वहां पर जुड़े होते हैं, जैसे कि बर्फीले तूफान वहां पर आते हैं, जैसे कि हाई एलिवेशन पर होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बस आइए और आकर वहां चले जाइए। आई वुड सजेस्ट एक बार ट्राई करिए, एक बार पढ़िए इसके बारे में। ओम पर्वत इस जगह का नाम है, और ये जगह बहुत ही खास है, बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं विजिट करने के लिए। कोई एक वजह नहीं होगी इस जगह को डिस्क्राइब करने की, बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से लोग यहां पर जाते हैं। कुछ ऐसे भी दीवाने होते हैं जिनको ट्रैकिंग करने में मजा आता है, ऊपर जाकर पहाड़ों के ऊपर समय गुजारना पसंद है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े वाले माउंट कैलाश नहीं जा पाते हैं, तो वो ओम पर्वत जाना पसंद करते हैं, क्योंकि डिट्टो सेम टू सेम है। हाँ, वो थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा सा कम है उससे। इसी के साथ और बहुत सारी वजहें हैं, अलग अलग लोग यहां पर जाते हैं अलग अलग मोटिव लेकर, पर एक चीज सबको मिलती है वहां पर, एंड दैट इज पीस। आपको भी जरूर मिलेगा अगर आप जाते हैं तो एक बार ओम पर्वत के बारे में पढ़िएगा जरूर। एंड मैं भी ये सोच रहा हूँ कि धरचूड़ा इतनी अंडररेटेड जगह है और उसमें इतना बड़ा एक पहाड़ है जो माउंट कैलाश है दूसरा, तो लिटरली मतलब कुछ तो गड़बड़ है हमारे बीच में, जो लोगों को पता ही नहीं है इन जगहों के बारे में। वेल, अब आपको पता चल गया तो आप जरूर बताइएगा अपने आसपास के लोगों को, अगर वो जाने का प्लान करते हैं और वो कहते हैं हमें कुछ एडवेंचरस करना है, तो ओम पर्वत जरूर रेकमेंड करिएगा। छोटा कैलाश या आदि कैलाश, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। धरचूड़ा के सफर में अगर अगली जगह की बात करें तो वो है एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। उन लोगों के लिए बिल्कुल जन्नत के तौर पे काम करेगी ये जगह, जिनको वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है। चाहे बात आप एनिमल्स की करें, बात आप वेजिटेशन की करें, आपको बहुत एक अच्छी खासी यहाँ पर रेंज मिल जाती है, बहुत वाइड एक रेंज आपको मिल जाती है अगर आप जाएंगे तो। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो जगह मौजूद है, ये मौजूद है बिल्कुल एक हिल टॉप के ऊपर, तो एक हिल आपको चढ़ के जानी पड़ेगी। वहां तक जाना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपके उस जाने के सफर को भी कंसीडर करूँ ना, तो वो भी अपने आप में एक जगह है, क्योंकि वो सफर बहुत खुशनुमा है। फिर उसके बाद जब आप यहां तक पहुंच चुके होंगे, तो ऊपर जाकर जब आप बादलों के करीब खुद को पाएंगे, यू विल फाइंड कि पीस कितनी प्यारी चीज है और कितना इजीली हमें मिल जाती है। इट्स जस्ट कि हमें वो एनवायरमेंट चाहिए होता है, हमें वहां तक पहुंचना होता है। कई बार शहरों में जो भागदौड़ भरी जिंदगी हम लोग जीते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कुछ प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा टाइम भी निकाल पाते अपने लिए, हम थोड़ी भी देर नहीं देते खुद को कि हम पीसफुल टाइम बिता पाए, 10 मिनट 20 मिनट हम आराम से बैठ पाए, इतनी ध्यान से सोच पाए चीजों को। लेकिन जब आप इतनी शांत जगहों पर जाते हैं जहां पर आपकी आंखों को भी सुकून मिल रहा होता है, इतनी सारी हरियाली होती है, इतने अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं, और आपके कानों को भी सुकून मिल रहा होता है, वो बर्ड्स जब चर्पिंग कर रहे होते हैं, या वो प्लांट्स और जो वहां पर ट्रीज होते हैं उनके पत्तों के हिलने की जो आवाज होती है, वो आपके कानों को राहत दे रहे होते हैं, सुकून पहुंचा रहे होते हैं, और आप बस थॉटलेस होते हैं, कोई थॉट नहीं होता आपके दिमाग में, आप आराम से बस उस जगह को निहार रहे हैं। सो ये होता है पीस। अब भाई जाइएगा जरूर एस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। शो में अगर बात करें अगली जगह की, तो अगली जगह है चिरकिला डैम। चिरकिला हालांकि धरचूड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, पर यह जगह बहुत खास है। एक तो बहुत ज्यादा आपको यहां पर डेप्थ नजर आती है, जब आप इस डैम के ऊपर खड़े होंगे तो आप बहुत नीचे जब देखेंगे तो आपको अलग सा कुछ अनुभव होने वाला है। मोर ओवर ये डैम जो है ये बनाया गया है काली नदी के ऊपर। काली नदी, हालांकि मैंने अभी आपको गोरी नदी और काली नदी के बारे में बताया था, दोनों ही नदियां एक जगह पर आकर मिलती हैं, एक जगह संगम होता है उनका, लेकिन काली नदी जो है वो देवी काली को डेडिकेट की जाती है, एंड ये रिवर नेपाल से होकर निकलती है। तो इस रिवर में जब आप आगे जाकर पाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जहां पर 1500 किलोवाट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, इतनी कैपेसिटी है यहाँ पर। डैम की अगर आप बात करेंगे तो 1 किलोमीटर लंबा यहाँ पर डैम बनाया गया है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। जल्दी स्टेट गवर्नमेंट वो आपको देने वाली है, उसके ऊपर काम चल रहा है। बट स्टिल द प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, चिरकिला डैम। और शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर लोकल मार्केट्स के बारे में। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, हालांकि यहाँ पर आपको बहुत कम दुकानें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर लोकल हैंडमेड चीजें खरीदने के। एंड हर बार अपने शो में मैं इस चीज को प्रमोट करता हूँ, वोकल फॉर लोकल। जहाँ पर हम अगर कभी भी कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां पर जो लोकल लोग होते हैं, जो हैंडमेड चीजें लेकर आते हैं, हमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेंडर्स ऐसे नजर आएंगे जो नेपाल से भी आते हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी चीजें बेचते हैं जो हैंडमेड बना के लाते हैं। इसी के साथ ज्वेलरी, क्लोथिंग, परफ्यूम्स एंड कॉफी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इनमें अच्छी बात यह होती है कि इनमें से मोस्टली जो चीजें होती हैं वो हैंडमेड होती हैं। जैसे क्लोथिंग की आप बात कर लें, ज्वेलरी की आप बात कर लें, वहीं पर लोगों ने बनाते हैं एंड उन्हीं से उनका सर्वाइवल चलता है। तो जाइए और जाकर एक्सप्लोर करिए, और कुछ अच्छा लगता है तो लेकर जरूर आइएगा। ऐसे करके आप वोकल फॉर लोकल को भी प्रमोट कर रहे होंगे, मोरओवर आपको भी काफी अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ यूनिक आप अपने लिए ला रहे होंगे। तो इतना ही था हमारा आज का शो। अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें। गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, जिसमें बात करते हैं हम ट्रैवलिंग की, बात करते हैं घूमने फिरने की, बात हम वो करते हैं जिनसे आपके दिल को सुकून मिलता है। और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 के साथ, जो है आपके शहर फरीदाबाद का और आपका अपना रेडियो स्टेशन। तो मैं देखिए, पहले मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता दूं। वैसे हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनको पता होगा, बट न्यू लिसनर्स को बताना चाहता हूं कि ये जो शो है हमारा, ये पूरा का पूरा बेस्ड ट्रैवलिंग के ऊपर, जहाँ पर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। हम कोई भी एक पर्टिकुलर जगह उठाते हैं, उस जगह के बारे में बात करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं और क्या कुछ है आप जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वहाँ पर। साथ साथ मैं आपको बताऊं तो इस शो को जो हमने स्टार्ट किया था, वो मोटिव ये था कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अंडररेटेड भी हैं बट वो बेस्ट है और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, तो जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करने का काम हम यहाँ पर करते हैं। बहुत कुछ हमने देखा, बहुत सारे व्लॉगर्स देखे, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हम लोगों ने, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहें रह जाती हैं लोगों से, लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में। अब जब लोगों को नहीं पता है तो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब जो वो गैप है ना, कि आपको तो नई जगहें एक्सप्लोर करनी है, अच्छी अच्छी जगहें आपको जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे, तो उसी गैप को फुलफिल करने का काम हम यहाँ पर करते हैं इस शो के माध्यम से। तो फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर एक और मजेदार सा शो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक और जगह की, और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी जगह है, कहाँ पर आपको जाना चाहिए वहां पर, और क्या कुछ आपको मिलने वाला है, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, एंड आकर आप अपना फीडबैक जो है वो कैसे शेयर करने वाले अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, और जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है यार, उनका भी मन बनेगा वहां पर जाने का। तो बताएंगे आपको कहां पर आज जाने वाले हैं, और जिस जगह का मैंने जिक्र किया कि आज बहुत खास रहने वाली है, तो जगह है गुजरात में। गुजरात में आप सभी को याद हो तो एक बार भूकंप आया था और उस भूकंप से एक पूरा का पूरा शहर था जो उजड़ के रह गया था। उसके आसपास की जगह है जहां पर आज हम चलने वाले हैं, ये जगह बहुत खास है। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जगह फॉल करती है और यहाँ पर बहुत कुछ है आपको जो देखने वाला है, बहुत कुछ है लिटरल। अगर आप एक्सप्लोरर है ना, अगर आप वाकई में चाहते हैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ नया हो आपके सामने, वो जो चीजें जिनसे आप बोर हो चुके हैं वो रिपीट ना हो, तो ये जगह आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। जगह का नाम है कच्छ। कच्छ की तरफ आज हम चलने वाले हैं। वैसे इस कच्छ की बात करूं तो एक काइंड ऑफ आइलैंड की तरह है ये, जो पूरा का पूरा टॉर्टल शेप में है, जहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सा अनुभव जो मिलने वाला है। यहाँ पर इतिहास की बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर आपको मदर नेचर के बहुत प्यारे प्यारे रूप देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर ओवरऑल कुछ मिक्स से आपको इमोशंस होने वाले हैं, बहुत प्यारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पर जो हाईली रिकमेंडेड टाइम होता है वो होता है फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ऊपर से यहाँ पर जब थोड़ी भी हवा चलती है ना तो रेत उड़ती है। सो अगर आप यहाँ पर जाने का प्लान करते हैं

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, और इस टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। और अभी तक अगर आपको फील गुड फील लाइव वाला फैक्टर नहीं मिला है तो चिंता मत करिए, क्योंकि हमारा जो शो है ना, ये ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर बहुत सारा, मतलब लिटरली बहुत सारा, भर भर के हमें वो फील गुड वाला फैक्टर मिलता है। तो फील गुड वाला फैक्टर आप तक डेफिनेटली डिलीवर हम करने वाले हैं। मेरा नाम है सागर, या फिर आप मुझे मुसाफिर भी कह सकते हैं। और अगर इन बिटवीन आपको कोई अपनी फरमाइश का गाना चलवाना हो, या कोई बात है जो मुझसे करनी हो, या कुछ और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी हो, सो 8010781078। ख्याल जब भी वादियों का आता है तो मन करता है कि सुकून, शांति, पीस, नेचर के साथ कनेक्शन, जहां पर हम बिल्कुल थम चुके हो, जहां पर बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन ऐसा होता कहां है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट चीजें होती है। जब भी हम वादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर हमें बहुत सारा क्राउड देखने को मिलता है, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी मिल जाते हैं देखने को। देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पार्ट ये है कि बहुत सारी ऐसी भी वादियां हैं जहां पर आप बिल्कुल आइसोलेशन में जाकर वो जो आपकी खुद की कंपनी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब यहां पर एक गैप है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो जगह कौन सी है जहां पर आप इस तरीके से जा सकते हैं, तो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? करेक्ट है। तो ऐसे में हम यहां पर लेकर आते हैं वो सभी अंडररेटेड जगह है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, और जहां जाकर आपको वाकई में वो सुकून जो आप ढूंढने निकले हैं वो मिलने वाला है। और ऐसी हमारी आज की जगह है जिसका नाम है मशोबरा। अगर आप मशोबरा जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आउटशाइन कराती है, जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरशेड, जैसे कि यहाँ की जो पानी की सप्लाई है वो शिमला जाती है। यानी कि अगर आप शिमला में जाकर पानी पिएंगे तो आप पानी एक्चुअल में वो पी रहे होंगे जो मशोबरा से निकला होगा। यहाँ पर एक रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी है जो बहुत ही उम्दा है, और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज है जो यहाँ पर नहीं है, वो है क्राउड। बिल्कुल ये ओवर क्राउडेड जगह नहीं है, बहुत ही प्यारी सी जगह है, आपको जाकर बहुत अच्छा लगने वाला है। आप जो क्वालिटी टाइम सोचकर जा रहे हैं, जब वहां वादियों का मजा लेने जा रहे हैं, वो आप यहां पर ले पाएंगे। देखिए, शिमला के काफी करीब मौजूद है, ऑल्दो शिमला बहुत फेमस एक हिल स्टेशन है। शिमला जैसे ही हमारे पास मनाली भी है, और भी ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो फेमस है। लेकिन क्या ये जरूरी है जिस इंसान को सुकून मशोबरा में जाकर मिलने वाला है उसको शिमला में भी मिल जाए? बिल्कुल नहीं। हर इंसान का अलग टेस्ट होता है, हर इंसान को अलग चीजें चाहिए होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्राउडेड जगहें पसंद है, जिनको लोगों के बीच जाना, उनसे बातें करना, उनसे दोस्ती करना, उनके साथ फोटोज क्लिक करना, नए नए रिश्ते बनाना पसंद है। तो उनके लिए ये जो फेमस जगह है वो

ये एक ऐसी जगह है जहां पर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरशेड है, मतलब यहां से जो पानी की सप्लाई है वो शिमला जाती है। बट सिर्फ इतना काफी नहीं है, यहां पर जाकर बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। देखिए पॉपुलर है पूरे कॉन्टिनेंट में, ये बिल्कुल हम एग्री करेंगे इस चीज से। बट इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारे आपको ऐसी सराउंडिंग्स मिलती है जहां पर जाकर आपको सुकून मिलता है, लाइक कि हरे भरे जंगल, घने जंगल आपको यहां पर जाकर मिलते हैं। साथ साथ अगर अपने टाइम को आप एक बर्ड वॉचिंग में कन्वर्ट करना चाहते है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, बर्ड वॉचिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और सबसे अमेजिंग फैक्टर जो मुझे लगता है वो है यहाँ का वेदर, जो मतलब 12 के 12 महीने आपको सुकून देने वाला है। बहुत उम्दा यहाँ पर मौसम रहता है, मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और अगर यहाँ पर स्नोफॉल हो तो मतलब सोने पे सुहागा, आपकी निकल पड़ी लिटरली, तो बहुत मजेदार ये जगह है। एंड हाँ, वेदर का जो आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने वाला है वो ये है कि आप अपने कैंपिंग बैग्स जो है पैक करके निकल सकते हैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। तो बस निकल जाइए अपने बैकपैक्स लेकर और जाकर एंजॉय करिए, करिए कैंपिंग दोस्तों के साथ वहाँ पर, बोनफायर के साथ साथ गिटार प्ले करिए, गाने गाइए, जो भी आपको ठीक लगे आप वो करिए। बट हाँ, अपनी दूरबीन अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा अतरंगी सा जानवर वहां से गुजर रहा हो जिसको शायद आपने कभी मैगजीन पे देखा हो या फिर टीवी पर देखा हो, और आज वो लाइव आपके सामने है। तो अगर दूरबीन नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ऐसे में दूरबीन अपनी अपने साथ लेकर जाए, साथ साथ बंदरों का ख्याल भी रखे क्योंकि वो चुपके से आते हैं, सामान उठाकर ले जाते हैं। तो ये जगह है रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, जहां पर बहुत सी अतरंगी चीजें होने वाली है, नेचर मिलने वाला है, एक लार्जेस्ट वाटरशेड आपको देखने को मिलने वाला है। मुझे पता है आपको इंतजार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हो रहा है, अगली जगह है ही इतनी मजेदार। तो जिस जगह का मैंने जिक्र किया उसका नाम है क्रैगनैनो। क्रैगनैनो एक पिकनिक स्पॉट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली ये एक पूरा विला है जो एक टाइम पर शेवलियर नाम के एक इंसान थे जो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर थे इटली से, और उन्हें इंडिया का कल्चर इतना पसंद आया कि वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने एक विला बना दिया। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो अपनी रूट्स को भी कैसे छोड़ते ना, तो इसीलिए उन्होंने अपने इस विला को नाम दिया जो उनका टाउन था इटली में उसके नाम पर, यानी कि इटली में एक टाउन है क्रैगनैनो, उसी के नाम पर इस विला को जो है रखा गया। ऑल्दो जगह बहुत ही अमेजिंग है, आज यहाँ पर लोग जाते हैं, स्टे भी करते हैं, और बहुत ही मजेदार फील जो है लेकर आते हैं। विला आपको लिटरली ऐसा लगने वाला है, बताऊं तो जैसे सिंगापुर में कभी आपने देखी हो कुछ इमेजेस जहां पर स्नोफॉल होती है, तो बहुत ही अमेजिंग एक मौसम हो जाता है, और घरों के ऊपर जो बर्फ गिरती है तो बहुत अच्छा सा लगता है। सो लिटरली ये वैसा है, और सही बता रहा हूं, इसको आप किसी ऑर्डिनरी विला की तरह कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि ये एक अच्छी खासी हाइट पर मौजूद है, यानी 7700 फीट की ऊंचाई जो है इसकी है। यहां से आपको बहुत ही घने जो है पाइन और ओक के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यहां पर बहुत ही अमेजिंग आपको घर बने हुए देखने को मिलते हैं, साथ साथ यहां पर आप बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को जो है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक जैसे कि यहां पर आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो यहां पर आपको ऑप्शंस देती है, आप उनको जाकर एक्सपीरियंस करें। तो जगह का नाम है क्रैगनैनो, यहां पर भी जरूर जाइएगा। एंड जब जाए तो एक मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूं, अपना फोन अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर कैप्चर करने वाले होंगे। मशोबरा की बात हो रही थी, मशोबरा के सफर पर आज हम निकले हैं, तो मशोबरा में एक बहुत ही ग्रैंड होटल अवेलेबल है जहां पर आप जा सकते हैं। होटल का नाम है वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल। देखिए मैं अपने शो में होटल्स की बात तो नहीं करता हूं, आप यही सोच रहे होंगे, डेफिनेटली आज भी मैं नहीं करने वाला था, लेकिन इस एक जगह ने मुझे मजबूर कर दिया। आप यहां पर स्टे करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट हां यहां आप एक बार जाकर बाहर से जरूर देखिएगा इस होटल को, क्योंकि होटल बहुत ही कमाल है, और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। ऑरिजिनली एक टाइम पर ये रेजिडेंस हुआ करता था वहां के लॉर्ड किचनर, जो खार्टाउन के लॉर्ड किचनर थे उनका, और इस बिल्डिंग को बहुत पहले बनवाया गया था। एग्जैक्ट डेट मेरे सामने यहां पर नहीं है, लेकिन 1993 में इसमें आग लग गई थी। ये इस होटल का जो है एक मैं कह सकता हूं कि अलग पार्ट है। आग लग जाने के बाद इसको वापस से जो है रिस्टोर किया गया, सारी चीजें जो भी आर्किटेक्चर उस टाइम पर लगाए गए थे, यानी कि सपोज इसको 1800s में अगर बनवाया गया था, 1993 में अगर इसमें आग लगी, तो 150 साल पुराना आर्किटेक्चर वापस से रिस्टोर किया गया। ये इस होटल की जो है यूनिक चीज है। ऑल्दो अगर आज की बात करें तो एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स का। यहां पर आप जा सकते हैं, और यहां पर बाहर एक ना गार्डन मौजूद है जो बहुत ही अमेजिंग है, लाजवाब है। लिटरली जब आप यहां पर खड़े होंगे आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हैं, आपको लगेगा कि यार मैं मतलब कहीं आ गया हूं, और आपको प्राउड वाला फील जो मिलने वाला है
कि यार मैं कोई किंग विंग मतलब कोई ऐसा बाहुबली शाहुबली हो गया जो इतनी बड़ी जगह पर खड़ा हो। ये मोमेंट आपको ये होटल देता है, साथ साथ यहाँ पर खड़े होकर आपको जो व्यू मिलने वाला है वो पूरे शहर का मिलने वाला है। एक बर्ड आई व्यू अगर आपको चाहिए पूरे शहर का तो वो भी आपके लिए एक रीजन हो सकता है जो आपको यहाँ पर ले जाए और यहाँ जाकर आप खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो। वेल, इसी साथ अगली जगह की अगर बात करूं, जगह का नाम है जाखू टेम्पल।

हनुमान जी का टेम्पल है, जब भी बात शिमला की होती है, जिक्र जब भी शिमला का किया जाता है, तो सबसे पहले एक जो इमेज हमें दिखाई जाती है और हमारी नजर में भी आ जाती है अगर कभी हम शिमला गए हैं, तो वो है हनुमान जी का बड़ा सा एक स्टैच्यू। बिल्कुल आनी चाहिए क्योंकि यूनिक पॉइंट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हनुमान जी का जो स्टैच्यू है वो यहाँ पर मौजूद है। बट सिर्फ इतना काफी नहीं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ऑफ कोर्स है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लाइक जब आप यहाँ इस मंदिर तक पहुंच रहे होंगे तो आप बहुत सारे नेचर के बीच से होकर गुजरेंगे और जब आपको उन पहाड़ों की खुशबू और उन पेड़ों की खुशबू आपकी नाक के जरिए होते हुए आपके दिल तक पहुंचेगी तो आपको सुकून मिलने वाला है। वो जो फील ऑफ फुलफिलमेंट है वो आपको मिलने वाला है इस जगह पर जाकर। तो यहाँ पर जाइएगा और आकर मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा। वेल बहुत सारे लोग हैं जो होकर आए होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स ये शिमला में मौजूद है, जाइएगा जरूर, लेकिन अगर नहीं गए हैं अभी तक। और अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है महासु पीक एंड फेयर। अगर आप लिटरली बहुत छोटी छोटी चीजों को और जो कल्चरल चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करने के बहुत बड़े फैन हैं तो ये जगह आपके लिए है। इवन मैं कहूंगा ये जगह आप ही के लिए है, बिल्कुल ये जगह आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मई के महीने में जाएंगे तो आपको बेस्ट वर्जन उस चीज का मिलने वाला है, यानी कि बेस्ट जो चीजें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है महासु जटारा, जो होता है थर्ड ट्यूसडे ऑफ मई, जो भी मई का थर्ड ट्यूसडे होता है उस ट्यूसडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं, साथ साथ यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपका मन मोह लेंगी, जैसे कि वहाँ के ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स, जैसे कि वहाँ का ट्रेडिशनल डांस, और सिर्फ वहाँ का नहीं अलग अलग जगहों का। अगर आप हरियाणा से हैं और आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। साथ साथ अगर आपको किसी और स्टेट का अगर डांस वहाँ पर देखना है या कोई और कल्चरल चीज देखनी है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे पेंटिंग बनाने के शौकीन है या फिर उन्हें तीरबाजी का शौक है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी यहाँ पर कराई जाती है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं, पर जगह का नाम आपको अभी लिखना होगा महासु पीक एंड फेयर। यहाँ पर जाइएगा, मई के महीने में आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बट स्टिल अगर आप वो एक चीज जो है आपको नहीं एक्सप्लोर कर लिया तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास मशोपुरा में एक्सप्लोर करने को। अगली जगह पर हम चल रहे हैं जिसका नाम है रिट्रीट बिल्डिंग। ये छारा में मौजूद है। एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करूं मशोपुरा से थोड़ी सी दूरी पर है ये, बट हाँ एक टाइम पर ये जो है इंडियन प्रेसिडेंट का रेजिडेंस हुआ करता था। इसको 1850 में बनवाया गया था और जब इसको बनवाया गया था ये एक मेजर अट्रैक्शन था जो लोगों को विवश करता था कि वो दूर दूर से घूमकर जाएं और शिमला जाकर या फिर इस एरिया में जाकर स्टे करें। ये बहुत बड़ा एक टाइम पर अट्रैक्शन हुआ करता था और आज भी अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आज वो अट्रैक्शन नहीं है, बट हाँ आज शायद आप उससे उतना कनेक्ट ना कर पाए। जो चीजें आज आपको वहां पर देखने को मिलती है वो शायद आमतौर पर आपको देखने को मिल जाती है शहरों में। यूजुअली क्या होता है क्योंकि आर्किटेक्चर अब जो है काफी, मैं कहूंगा कि उसको काफी जो है एक्सपोजर मिल चुका है, बट यहां पर जाइए पुराने टाइम का आर्किटेक्चर जो आपको देखने को मिलेगा वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। वेल अगर इसके हाइलाइट्स की बात करूं तो यहां पर वुडन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है विद दज्जी वॉल कंस्ट्रक्शन। ये एक टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था। आप जाइए और जाकर देखिए। और पर्सनली अगर बात करूं तो प्रेसिडेंट भी ना ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करते थे कि वो अपना टाइम यहां पर गुजारे, इसलिए समर हॉलीडेज का वो वेट किया करते थे उस टाइम पर और यहां पर आकर वो रहते थे। आप जाइए जाकर देखिए, आपका जो भी अनुभव हो मुझे बताइएगा। वेल अगर आप हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आपका अनुभव बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि पर्सनली मैं करता हूं नेचर और हिस्ट्री से, और यहां पर दोनों ही चीजें हमें मिलती है। नेचर के बीच में ऐतिहासिक चीजें हमें एक्सप्लोर करने को मिल रही है। अब आपको देखना है जाकर कि आपको कैसा लगा। अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है तत्तापानी। तत्तापानी अपने नाम से बहुत कुछ आपको क्लियर कर रहा है। तत्तापानी बेसिकली एक गांव है जो 60 किलोमीटर दूर है शिमला से, मतलब मशोबरा से इतना दूर नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट इतना आपको 40-50 इतने पड़ने वाला है। बट अगर आप इतनी दूर गए हैं तो यहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है भगवान शिव का वरदान है वहां पर एक तालाब को, वहां पर गर्म पानी आता है 12 के 12 महीने, और लोकल विलेजर्स से अगर आप पूछेंगे तो उनके हिसाब से ये बेस्ट प्लेस है पूरे रीजन में अगर आपको जो एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पर जाकर यूजुअली लोग बोलते हैं ऐसा कि उनका जॉइंट पेन, उनका और कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है। तो भाई आप भी जाइए और जाकर देखिए कैसा आपको लगता है। इसी के साथ साथ एक और जगह जिसका नाम है शाली तिब्बा। शाली तिब्बा एक और विलेज है जो शिमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और मशोबरा की बिल्कुल जड़ में मौजूद है। यहां से आपको बहुत अमेजिंग व्यू मिलता है। सो व्यू के लिए आप यहां पर जा सकते हैं। 360 डिग्रीज व्यू आपको यहां पर मिलता है कुफरी का, फागू का, शिमला का, नारकंदा हिल्स का।
2873 मीटर्स की हाइट पर यह जगह मौजूद है और यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर लोग जाते हैं और जाकर पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ये थी वो सभी जगहें जो मशोबरा में हमें कवर करनी थी। आई गेस हम कर चुके हैं सारा कुछ कवर। सो अब आपका वक्त है वहां पर जाने का। आप जाइएगा और आकर मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेल देखिए, मैं एक होस्ट हूँ, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो रिसर्च करके लाता हूँ, कोशिश करता हूँ अलग अलग फ्लेवर्स उसमें डालने की। माइट भी कुछ चीजें आपको इनमें से पसंद आएंगी और कुछ चीजें शायद आपको नहीं आएंगी पसंद, क्योंकि वो आपके टाइप की नहीं होंगी। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे टेस्ट हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें जो है कवर करनी होती है। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई जगह आपको आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिली होगी। वेल फिलहाल मेरा वक्त हो चला है शो को यहाँ पर खत्म करने का, तो मैं चलता हूँ दोस्तों। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर शो को। तब तक के लिए गुड बाय।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। इस वक्त आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम के साथ, जो कि है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी और शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये शो बहुत स्पेशल हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। रीजन बीइंग, यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजों की बात करते हैं जिनके बारे में अमूमन बात नहीं होती है, या फिर ये कहूँ कि अगर आप किसी तरीके से कोई ऐसा राबता नहीं रखते हैं यू नो लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जाहिर सी बात है इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए बनी तो होंगी पर आप उनसे वाकिफ नहीं होंगे। इसी एक उद्देश्य के साथ हम इस शो को लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानव प्रश्न यूनिवर्सिटी से अमूमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हैं और जो अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पर आते हैं, हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ यहाँ पर बैठते हैं और कोशिश सिर्फ एक कि आपको हम एक जागरूक नागरिक बना सकें और आपके लिए क्या क्या चीजें इस देश में मुहैया कराई जाती हैं आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके बारे में डिस्कशन कर सके। आज फिर एक बार हाजिर हैं हम यहाँ पर लेकर एक और खास शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आदित्य सर जो हैं अगेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानव प्रश्न यूनिवर्सिटी से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और आज हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। खासतौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द बातें घूमेंगी और मैं आपसे सलाह ये भी देना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप भारतीय एक नागरिक हैं, कभी भी आपको जीवन में मौका मिले, एक बार भारतीय संविधान को पढ़िएगा जरूर। उसमें क्या लिखा गया है, क्या वो चीजें हैं, कैसे वो आज भी आपके लिए रेलिवेंट है, तमाम चीजें आपको समझ में आएंगी। इट्स लाइक द सोल ऑफ आर डेमोक्रेसी, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नाउ ऑन दिस नोट, बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे आदित्य सर का और अपने शो को स्टार्ट करेंगे। सो हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
2: हेलो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। पिछली दफा हमने शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी और आज दोबारा मुझे मौका मिल रहा है आने के लिए, सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग।
1: जी सर, हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा। यू एज एन एक्सपर्ट मुझे प्लीज ये बताइए कि हर एक नागरिक के लिए, हर एक सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना कितना जरूरी है? जस्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन।
2: सर, टू आंसर दैट क्वेश्चन, सबसे बुनियादी चीज जो एक नागरिक कर सकता है वो ये है, क्योंकि देश के बनने के बाद जो पहला काम हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने किया था वो यही किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश चलाना है तो हमें एक रूलिंग डॉक्यूमेंट तो बनानी पड़ेगी, और वो सिर्फ गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ सरकार की मदद के लिए नहीं है, वो सबसे पहले अपने सिटीजन्स को राइट्स देते हैं कुछ, उनसे ड्यूटीज की कुछ उम्मीदें रखते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि इस देश के तंत्र चलेंगे कैसे। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो अमूमन तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि आपके हक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इस डॉक्यूमेंट ने आपको दिया है, और जिस वक्त में ये बना था डॉक्यूमेंट वो भी वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1947 ऑनवर्ड्स हमने बनाना शुरू किया था जब दुनिया भर में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, हम बहुत सारे सिविल राइट्स को लेकर जागरूक हो चुके थे, वेस्ट से हमने बहुत सारे आइडियाज़ लिए, हमने एशिया की बहुत सारी कंट्री से आइडिया लिए, तो हमने फिर अपने लिए एक देश बनाया। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये देश कैसे हमारा है, कितना हमारा है और कहाँ पे दूसरों के राइट्स शुरू हो जाते और हमारे ख़त्म हो जाते।
1: जी, बहुत सुंदर। जब हम लोग बात भारत की करते हैं, हम लोग बात डेमोक्रेसी की करते हैं, हम लोग बात संविधान की करते हैं, तो एक फ्रेज बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, अमूमन कहा भी जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन स्टेटमेंट?
2: सर, ये जो लाइन है यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। एक्चुअली एक पूरा प्रीफेस है, जैसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 1 से पहले ही शुरू हो जाता है, जो कि हमें बेसिकली एक डिक्शनरी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की। ये समझ, मतलब आई डोंट नो ये कितना अप्रोप्रिएट होगा, बट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डेटिंग प्रोफाइल होता किसी डेटिंग ऐप पे, तो ये उसका बायो होता, क्योंकि ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स बताता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि हमारा देश है कैसा, हमारे देश ने किन किन चीज़ों को चुना है अपने लिए। मैं अभी आगे इस सेशन में इसी की बात ज़्यादातर करूँगा कि कैरेक्टर हमने अपने देश का कैसा चूज़ किया है। तो हमने सबसे पहले हमारे पावर के सोर्स की बात की है कि इस देश को इसकी शक्ति, इस देश को इसके कानूनों की शक्ति कहाँ से मिलती है, और जवाब आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि इस देश में जो भी पावर का सोर्स है वो हम लोगों से ही मिला है। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि हम एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनेंगे जहां वोटिंग होगी, जहां पे कानून यानी रूल ऑफ लॉ होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर को हम सबसे पावरफुल मानते हैं या चीफ मिनिस्टर को पावरफुल मानते हैं, तो इनकी भी जो अथॉरिटी है वो हमारे ही थ्रू होके जा रही है. तो वी द पीपल दो चीजें बताती है, सोर्स ऑफ पावर भी और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी. क्योंकि अगर मैं रीड आउट करूं तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाटएवर व्हाटएवर. यानी कि ये संविधान हमने खुद को दिया है. हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उनको 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त दिया और कहा कि हमें एक संविधान चाहिए इस देश को चलाने के लिए. सो वी द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको हमेशा रिमाइंड कराता रहता है कि ये ताकत हमने खुद को खुद से दी है.
1: सो वंडरफुल, सो वंडरफुल. वी में आपको साथ साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलता है. आप एक इंडिविजुअल नहीं रह जाते हैं, आप एक भारत के नागरिक बनते हैं, जहां पर पूरे समूह को, पूरी ट्राइब को, पूरे देश को आपको एक साथ ध्यान में रखकर सोचना होता है. और वही एक सही विचारधारा हो सकती है व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री. कि फॉर एग्जांपल, अमूमन अपने शोज में हम लोग बात करते हैं सिविक सेंस की, जिसके बारे में बीते कुछ टाइम से बहुत तेजी से कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही
2: हैं.
1: कहीं पर कुछ भी कर देना, गंद फेंक देना. अभी बेंगलुरु का एक किस्सा मैं देख रहा था परसों, वहां पर यह हुआ था कि एक जगह पर बिल्कुल हाईवे पर साफ सुथरी जगह है, वहां पर 4 लड़के आए, आके अपना कुछ गार्बेज डंप किया और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने डांस कर रहे हैं. ठीक है, दे वर हैविंग दिस इल्यूजन कि दिस इज कूल. नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट इट, कि जब हम एज अ कंट्री सोचते हैं तो हमें बेसिक सारे क्लियर रखने होते हैं. उसके लिए हम सबको यूनाइटेड होकर सोचना होता है. वी टॉक अबाउट इट मे बी इन सम अदर शो, बिकॉज सिविक सेंस इज अगेन अनदर बिग इशू जिसके बारे में बात होनी चाहिए. और एनीवेज, मूविंग ऑन सर, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ टर्म्स सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जैसे प्रीएम्बल में इनको इस्तेमाल किया गया है?
2: सर, ये कुछ इनिशियल शब्द हैं जो कि हमारे प्रीएम्बल में इस्तेमाल होते हैं. इनमें से तो कुछ पे आज की तारीख में झगड़े भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, जैसे भी हो रहा हूँ. ये इनिशियल ड्राफ्ट में 2 शब्द नहीं थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट. इनकी बात मैं थोड़ा अलग से करूंगा. बट ये जो सारे शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से डिफिकल्ट शब्द भी हैं, तो इनको एक सरल मायने देना चाहूंगा मैं. सॉवरेन बस ये कहता है, क्योंकि हम तुरंत ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए थे, तो जो पहली चीज़ हमने खुद के बारे में कही वो ये थी कि हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट हैं. सॉवरेन शब्द का यही मतलब है कि हम स्वाधीन हैं, हमें बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है. कोई क्राउन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो हमें चला रही है. यूनियन ऑफ इंडिया एक सॉवरेन स्टेट ऐसे बना. फिर हमने बात की कि हम किस प्रकार की गवर्नेंस चाहेंगे. क्या यहाँ रूल ऑफ पीपल होगा, या फिर जैसे राजा, राजा के बाद राजकुमार ही राजा बनता है, वो वाला सिस्टम अपनाएंगे, या कोई तीसरी चीज़ करेंगे. तो हमने कहा नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स भी हैं. तो हमने कहा कि हम डेमोक्रेसी को एम्पावर करेंगे, और इसलिए हमने एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चुना अपने लिए, डेमोक्रेसी, जैसे हम जमहूरियत भी कहते हैं. और रिपब्लिक जो शब्द है ये उसका एक्सटेंशन ही है. रिपब्लिक कहता है कि हमारे जितने लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, सेलेक्टेड लीडर्स नहीं होंगे. यानी कि एक चुनाव के बाद हमें पता चलेगा, अच्छा लोगों ने इनको एक जनमत दिया और फिर वो बनते हैं. तो रिपब्लिक मींस हैविंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये वो चीज़ है. अब मैं जो जो बचे कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स हैं उन पे आना चाहूँगा. सेक्युलर और सोशलिस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ह्यूमेन शब्द हैं, इंसानियत की तरफ ही हमें ले जाते हैं. लोगों को एक गलत फहमी है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आपको हर धर्म का सम्मान कर रहा है, हर धर्म का पालन करना है. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता है. द स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन. सरकार का कोई रिलीजन नहीं, और वो किसी रिलीजन को ना प्रमोट करेगी ना डिस्करेज करेगी. स्टेट शैल नीदर प्रमोट और डिस्करेज एनी रिलीजन. सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट टू द पीपल? जनता क्या करेगी? आपका जो भी धर्म है आप उसे उसका पालन कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आपको बाकी धर्मों का पालन करना. हाँ, कुछ लॉज हैं डिफेमेशन के या हेट स्पीच के, या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि खराब माहौल हो जाए समाज का, आप किसी और समाज के या रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट सेक्युलरिज्म द वर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉर गवर्नमेंट. सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा. छुट्टियां अगर मनेगी एक साल में तो सारे हॉलीडेज की मनेगी. इसलिए आप देखते भी होंगे कि पीएमओ से जब ट्विटर पे विशेष आती हैं तो सारे रिलीजन की आती हैं. तो वो है सेक्युलरिज्म. और आखिरी और सबसे प्यारा वर्ड है सोशलिज्म. ये दोनों वर्ड 1972 अमेंडमेंट यानी 1976 के बाद ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. सोशलिज्म का मतलब ये है कि हमारे देश की जो भी पूंजी है वो इक्वली डिवाइड होगी लोगों में. सोशलिज्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म का ही दूसरा छोर है, ऑपोजिट छोर है. तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके 5 लोगों के ग्रुप की हाउस पार्टी हो रही है जिसमें से एक काफ़ी अमीर

0: खानदान से आता है, एक मिडिल क्लास से आता है, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो हम सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है और उस हिसाब से हम उसका योगदान लेंगे भी और उसको सपोर्ट देंगे भी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे सोशलिस्टिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, जो नरेगा है या महात्मा गांधी नरेगा स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड करें और क्लास के बेसिस पे, इनकम क्लास के बेसिस पे, इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये गोल है। और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, यानी कि हम थोड़े से कैपिटलिस्ट हैं, थोड़े से सोशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल भी है और रैन बसेरे भी हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्पेक्ट्रम को कवर करने की कोशिश की है, एटलीस्ट हमारे प्रीएम्बल के थ्रू की है। तो ये पांच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, इट्स एन इस्लामिक स्टेट। तो कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना रिलीजियस नेचर डिफाइन कर लिया है। हमने कहा 1947 के बाद हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश में सारे रिलीजन के लोग रह सकते हैं।
1: सो वंडरफुल। सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट द मीनिंग ऑफ सेक्युलर वर्ड कुड बी कि वो जो लीडर हैं जो सरकार को चला रहे हैं, दे कैन हैव देयर ओन बिलीव्स बट दे कांट बी बायस्ड।
0: जी, मतलब अगर मैं इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको हिंदू धर्म का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट जितने भी सरकारी काम होंगे, सरकारी ऑर्डर होंगे, जो कानून बनते हैं, उनके थ्रू कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, सरकार के काम हो रहे हैं, सरकारी काम में कोई, जैसे कि कल को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गजट ऑफ इंडिया से एक पर्टिकुलर धर्म के जो फेस्टिवल्स के हॉलीडेज हैं उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिक फंड से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही हेल्प मिलेगी, ऐसा कानून नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कैरेक्टर डिफाइन किया। बट हाँ, ये जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, ये इंसान भी तो हैं, और इंसान है तो अपने प्राइवेट लाइफ में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, अपने प्राइवेट लाइफ में जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो जिस धर्म के आप हैं, जो भी पालन करना आप कर सकते हैं। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब आप स्टेट की हैसियत से आते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें।
1: सो सर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बोलना गलत होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं
0: जी,
1: या फिर इसको सही तरीके से अगर पोर्ट्रे किया जाए तो ये बोला जा सकता है शायद कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो अभी करंट प्रधानमंत्री?
0: जी जी जी जी,
1: तो ये नहीं बोला जा सकता है कि आप उस औहदे को नहीं बोल सकते?
0: नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन भारतीय सरकार किसी धर्म को का पालन नहीं करती है, ना प्रमोट करती है, ना डिस्करेज करती है। जैसे कि कल को कोई वैकेंसी आती किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें ये कैवियट नहीं लगाया जा सकता कि एबीसी धर्म के लोग तो अप्लाई कर सकते हैं बट डीईएफ के अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट फंक्शन है और गवर्नमेंट फंक्शन में हमने इंश्योर किया कि सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे। तो एक जो मिसकंसेप्शन इस वर्ड का, जो कि मोस्टली ऑनलाइन दिखा है पिछले 5-10-15 साल में, जब से इंटरनेट ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ है, लोगों को लगता है कि आप पे एक बर्डन डाल दिया है हमारे संविधान ने कि आप सारे धर्मों का पालन करें, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म मतलब कि आप अपना काम करें, सरकार किसी के साइड नहीं है, सरकार किसी धर्म का मतलब किसी धर्म को अपोज भी नहीं कर रही है, प्रमोट भी नहीं कर रही है।
1: सो वंडरफुल। दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनकी समझ हम सब में आ गई तो आधी से ज़्यादा जो हमें सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज दिखाई देती हैं, बहस के जो मुद्दे दिखाई देते हैं, जो मतभेद आपको दिखाई देते हैं, वो शायद अवॉइड हो सकते हैं इन छोटी सी चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया या भारत या इंडिया, तो वहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर कर रहे हैं, भले ही आप इंटेंशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आता है वहाँ पर। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रोड मैप बना करके हमें दिया है, मुझे लगता है वही एक सही विकल्प है, अगर सही तरीके से शांतिपूर्वक अगर हमें तरक्की के रास्ते पर चलना है, वृद्धि के रास्ते पर चलना है। ऑन दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम आदित्य सर से बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस करना है हमें, और मुझे भी हर बार यहाँ पर इस शो में खासतौर पर इतना कुछ नया जानने को मिलता है। हर बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने फील्ड्स के मास्टर होते हैं, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आता होगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव समथिंग वी यू वांट टू शेयर विद अस, मे बी विद मी और मे बी विद आदित्य सर, सो यू कैन लेट अस नो ऑन 8010781078। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। बिना किसी देरी के अपने शो को हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, मिस्टर आदित्य, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर फंडामेंटल्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले बेसिक्स ही क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे चल के शायद और लेयर्स को हटा पाएंगे। लेट्स टेक इट अहेड एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, किस तरह का जस्टिस जो है वो एम करता है टू बी सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
1: सर ये जो शब्द है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्चुअल है। जस्टिस कभी भी कोर्ट रूम से दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज को ये अडिग विश्वास रहता है कि जस्टिस वही है जो वो क्लेम कर रहे हैं, और जस्टिस को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, वो केस टू केस बेसिस पे चेंज होता है। तो इसीलिए जो हमारे ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने तीन पैरामीटर हमको फिक्स करके दे दिए कि जस्टिस हम इन तीन कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करेंगे, उम्मीद करेंगे या कोशिश करेंगे। वो तीन कॉन्टेक्स्ट थे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब मैं एक एक पंक्ति में इन तीनों का मतलब बहुत ही सरल है बता देता हूँ कि सोशल जस्टिस समाज में आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी आपकी पहचान है, चाहे वो आपके नाम से लेके हो, आपकी जाति से लेके हो, आपके धर्म से लेके हो, सोसाइटी में जो आपका स्टेक है, क्लास के बेसिस पे भी एक्चुअली, वहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए आपको। जस्टिस यानी कि अगर आपके साथ कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, यानी कि 300 साल 400 साल पहले 500 साल पहले आपकी जाति के साथ कोई वॉयलेंस हुआ हो, और आज उस फलस्वरूप उसके ऐसा है कि आपके सरनेम को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे आपको आप पब्लिकली क्लेम नहीं कर पा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को, तो ये जो पहला पार्ट है जो सोशल जस्टिस है वो ये कहता है कि समाज में आपकी हिस्सेदारी में हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, कास्ट पर से एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है। ये बेसिकली कोशिश है कि जितने मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, चाहे वो कास्ट की वजह से हों, जेंडर की वजह से हों, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से हों, बहुत सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पैदा नहीं होते हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं देखे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और इंटरनलाइज करना मुश्किल होता है। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करें तो हम सबकी इंक्लूजन की बात करेंगे, सब को इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना नहीं चाहिए बट है कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज इससे निकले हैं, जैसे जितने जेंडर जस्टिस वाले लॉज हैं जिन पर आज बात होती है कि औरतों को क्यों प्रेफरेंस मिलती है, वो एक अलग बहस है अपने आप में, वो भी इसी से आया है। जितने भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि एक्चुअली किसी और दिन हम बात करें, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ही नहीं, वो सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिए गए रिजर्वेशन हैं जो कोइंसिडेंटली कास्ट को मिल गए हैं, तो वो भी इसी के थ्रू मिले हैं। तो ये सब सोशल जस्टिस के पार्ट। इकोनॉमिक जस्टिस फिर आ जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मान लीजिए मैं और आप एक ही संगठन में काम कर रहे हैं, अगर हमारा वर्कलोड सेम है, अगर हमारी क्वालिफिकेशन सेम है, तो हमारे पेमेंट में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें सेम पैसा मिलना चाहिए। और ये इशू दोनों लेवल पे काम करता है, ये कई बार हायरार्की इन एन इंस्टीट्यूशन पे भी काम करता है, और मोस्टली जब ये बात उठी है हाल फिलहाल नहीं, 10-20 साल पहले ही, वो थी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में कि सेम पोस्ट पे अगर एक लड़की काम कर रही है और एक लड़का काम कर रहा है तो पे डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि आपको आपके लेबर का या कॉन्ट्रीब्यूशन का एक जस्टिफाइड इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। अगर एक मजदूर काम कर रहा है एक मिल में, ये बहुत ही एक्सट्रीम यूरोपियन थॉट है वैसे, कि जितना जो ओरिजिनल सीईओ कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, मिल का वर्कर भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए जब प्रॉफिट्स आते हैं तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। हमने इक्वल डिविजन वाली ऐसी कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, बट ये कॉन्सेप्ट यही है कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका देश के इकोनॉमिक्स में या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक्स में, आपको एक फेयर प्रोपोर्शन उसका मिलना चाहिए। और जो आखिरी फॉर्म ऑफ जस्टिस हमने कहा पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहता है कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस देश में, जो मोस्टली हम अपने इलेक्शंस के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू रेगुलेट करते हैं, उसमें भी सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। यानी कि पहले तो जैसे कि हमेशा से ऐसा नहीं था कि सारे वोट्स के वैल्यू बराबर थे। जो कॉन्सेप्ट हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कि 18 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हैं सबके वोट की वैल्यू बराबर है, दैट वॉजेंट ऑलवेज द केस। पूरी दुनिया में वुमेन वोट को कई बार 3 वुमेन वोट को एक मेल वोट से इक्वेट किया जाता था। हम अगर बात करें स्लेवरी वाले वक्त की, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, जब मिले तो वो भी फ्रैक्शंस में मिले थे, यानी एक इंडिविजुअल को बेसिकली स्टेटमेंट ये था कि तुम एक हो पर एक इंसान से कम की हैसियत है तुम्हारी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डिंग में या पावर स्टेक होल्डिंग में। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा सबके पास, और सबके पास ये राइट भी होगा कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, आप वोट दे रहे हैं आप चुनाव लड़ भी सकता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट ये हमारा स्टेटमेंट था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने दिया कि हम इन तीन प्रकार से जस्टिस इंश्योर करेंगे।
0: बहुत सुंदर। जो अभी आपने यहाँ पर ये पूरी बात हमें बताई है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी हमें समझाई है कि किस किस तरीके से हम इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन एक सवाल है जो अभी अभी मेरे जहन में आ रहा है जिसके बारे में डेफिनेटली मैं बात करना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट लिबर्टी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? एंड वन मोर थिंग, डू यू बिलीव कि लिबर्टी को गलत तरीके से समझा जाने लगा है कुछ लोगों के द्वारा?
1: जी, लिबर्टी से ही शब्द निकलता है लिबरल, और लिबरल आज के वक्त में कई जगहों पे, कई देशों में, कई सोशल मीडिया फोरम्स पे गाली के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसका एक अपभ्रंश इस्तेमाल किया जाता है जो मैं यहाँ कोट नहीं करूँगा, बट लिबरलिज्म एक सोचने का तरीका है बस, जो जिसका ऑपोजिट क्या है, जिसका ऑपोजिट है फंडामेंटलिज्म, रूढ़िवादी, यानी कि चीज़ें जैसे चलती आ रही हैं वैसे ही चलेंगी, ये फंडामेंटलिज्म कहता है। लिबर्टी या लिबरलिज्म ये कहता है कि अगर गुंजाइश है बेहतरी की तो उस ओर बढ़ना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, बोलना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे भी लिबर्टी जैसे शब्द को चार वर्ड्स में या चार पॉइंट्स में हमारे प्रियम्बल ने ही डिफाइन कर दिया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप तो हमारे राइट टू रिलीजन में आ गया, जो मैंने सेक्युलरिज्म में कहा ही था कि आपका जो भी फेथ है, जैसे आपको वर्शिप करना है आप कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं इसमें, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्पेस में आपको अपना धर्म जैसे भी एक्सरसाइज करना आप कर सकते हैं, घर में जो भी करना हो, पब्लिक स्पेस पे आप नहीं कर सकते। हम पब्लिक स्पेस में भी करने की इजाज़त देते हैं हमारे देश में, चाहे वो पूजा आरती करनी हो, अजान पढ़ना हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो तो फेथ एंड वर्शिप है, अब आते हैं थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ की लिबर्टी। तो अगर हम इसके पीछे आइडिया ये था कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सवाल पूछना, बातचीत होना खास तौर पे बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि क्या सही है क्या नहीं है और बेहतर क्या हो सकता है। जब तक आप काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं सुनेंगे आप इको चेंबर में फंस के रह जाएंगे। और क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, खान पान, तो हमने कहा कि सबकी बात सुनना ज़रूरी है और इसके लिए एक प्रोविज़न देना ज़रूरी कि भाई तुम बोल सकते हो जो भी बोलना चाहो। तो ना सिर्फ हमारे प्रीएम्बल में ये वर्ड हमने डाला लिबर्टी, हमने आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात की कि आप बोलो जो भी बोलना है आपको। फिर ये हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस लाए हैं बाद में। जो पहला चेंज हमने लाया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक ये था कि हमने कहा कि नहीं नहीं बोलना है जो बोल सकते हो, पर हम कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे इस पर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। उसमें भी गुंजाइश छोड़ी कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है ये सब। तो लिबर्टी बेसिकली आज़ादी का ही एक दूसरा सिनोनिम है, जो कि कहता है कि अब हम जो चाहे बोल सकते हैं, अपने मन की बात बोलेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नेंस में ये आज़ादी नहीं थी हमको। सो लिबर्टी उसी को सिंबलाइज करता है बेसिकली।
0: सो वंडरफुल। अब यहाँ पर लिबर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, आज़ादी जब हम ये शब्द सुनते हैं, तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो जाता है कि आज़ादी आपको मिल जाती है पब्लिक प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करने की, या कहीं पर यू नो कुछ भी फेंक देने की? या एक दो किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर आप बताइएगा क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। एक केस हुआ था अभी हाल फिलहाल, जहाँ पर एक लड़की बीच वेयर जो कपड़े होते हैं उनको पहन करके दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, उसका एक वीडियो बना, वो वायरल हुआ और DMRC की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और वो एक विवाद का मुद्दा वहां पर बना सोशल मीडिया पर, पूरी उसकी ट्रेल चली थी।

0: मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा, अगर लिबर्टी को मायने यहाँ पर रखा जाए तो ठीक है, लड़की अपनी फ्री विल के हिसाब से जो उसको ठीक लगा वो कर सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आप एक ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसे एटमोसफेयर में हैं आप, जहाँ पर हर एक एज ग्रुप के लोग जो हैं ट्रेवल कर रहे हैं, सो योर लिबर्टी शुड नॉट बी समथिंग लाइक एन एम्बेरसिंग फील फॉर समवन एल्स जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग एक वहाँ पर थे स्पेशली। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, बींग एन एक्सपर्ट, प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे इसको देखा जाए।
1: सर, आपने अपने प्रश्न में ही लगभग इसका जवाब दे दिया है। हाँ। हमारी लिबर्टी कॉन्टेक्चुअल है, वो संदर्भ पे डिपेंड करती है, और जिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की मैं बात कर रहा था उसमें से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑब्सिनिटी, यानी कि अश्लीलता आप नहीं फैला। कल को अगर मैं चाहूँ कि मैं एक मूवी बनाऊँ और उसे थिएटर्स में दिखाऊँ या डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँ, गवर्नमेंट मुझे इसकी परमिशन कभी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री स्पीच है मेरा या एक्सप्रेशन है मेरा, ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड है, जिसका नाम है ऑब्सिनिटी। मैं नहीं फैला सकता अश्लीलता इस समाज में। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि अश्लीलता है क्या, जिसका जवाब बहुत सारे केस लॉज में ये आया है कि ऑब्सिनिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट, सर्कमस्टांसिस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेटअप, यानी कि आप किस समाज में हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो जगह कौन सी है, क्या वो यही बीच वेयर अगर किसी बीच पे पहना जाता तो कोई आउटरेज नहीं होता, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट है उस जगह के लिए, वो माना गया है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में लोग कंफर्टेबल नहीं इस चीज़ को लेके, आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में लोग हेजिटेंट फील कर रहे हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज, उनका भी तो राइट टू लाइफ है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, तो उनका राइट जो मैंने शुरू में कहा था कि आपका राइट कहाँ खत्म होता है और दूसरों का कहाँ शुरू हो जाता है, पब्लिक स्पेसेस में आप अपने बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स को गिव अप कर देते हैं, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है क्योंकि सबको साथ रहना। तो ऑब्सीन क्या है, वो आपके इमीडिएट सराउंडिंग, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कम्युनिटी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस आइसोलेटेड केस को उठाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ये उस महिला का जो भी एक्शन है वो लिबर्टी के दायरे में आता है। मुझे लगता है कि उस पर लीगल एक्शन अगर लिया जाता है या उसे रिस्ट्रेन किया जाता है तो वो सही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी मोरालिटी अपनी जगह सही होगी, आपकी मोरालिटी सिर्फ वहाँ प्रिवेल नहीं करती है, वहाँ 100 लोग और हैं जो सेम व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, सेम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब की जो कंबाइंड मोरालिटी है वो प्रिवेल करती है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को पर्टिकुलरली देखूं तो फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस और कम्युनिटी के हिसाब से उसने जो किया वो गलत। अब यही अगर हम एग्जांपल जो मैंने शुरू में बोला था, अगर बहुत सारे दुनिया में न्यूड बीचेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये अलाउड है या एक्सेप्टेड है कि आप वस्त्र पहने ही नहीं, वहाँ पे वो एक कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि हाँ हमने एक अलग स्पेस बनाया है जिसका यही पर्पस ही है। वहां पे जाके कोई इंसान ये नहीं क्लेम कर सकता उस बीच पे जाके कि तुम लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट ही है, वहां की इमीडिएट सराउंडिंग मोरालिटी वही है। तो हाँ, मोरालिटी क्या है ये आपके आसपास के लोगों पे ही डिपेंड करता है।
0: ठीक है, यहाँ पर एक और मुझे रेफरेंस याद आ रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। बीते दिनों एक विवाद हुआ था हमारे देश में, जहां पर एक रियलिटी शो था, कॉमेडियंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करते थे, और वहाँ पर एक सज्जन जो कि बहुत जाने माने पॉडकास्टर हैं भारत के, उन्होंने आकर के एक टिप्पणी कर दी थी और जिसको लेकर पूरा एक विवाद हुआ, कोर्ट कचहरी वो सारा मामला हुआ। अगर उस केस को ध्यान से देखा जाए और उसको यू नो बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंड किया जाए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि उस इंसान ने वो पब्लिक नहीं किया हुआ था कॉन्टेंट, वो जो कंटेंट था वो केवल मेंबर्स के लिए था। ठीक है, मेंबर्स कौन लोग होंगे? जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी, एक चीज है। दूसरी चीज है कि वहां पर आपको पैसे देके जाना है। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक बीच जैसी चीज जो एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक स्पेस बनाया गया है, सिमिलर फंडामेंटल वहां पर लागू होता है कि उन्होंने भी एक स्पेस वहां पर क्रिएट किया था, एक क्लोज्ड कम्युनिटी का, कि आप आके हमारा कॉन्टेंट देख सकते हैं। अब यहां पर किसी एक इंसान ने कुछ किया कि उस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड किया या डाउनलोड किया और उसको उठा के ओपन मीडिया में, एक ओपन स्पेस में डाल दिया। आपके हिसाब से क्या यहां पर मैं पूरा कल्प्रिट उस इंसान को मारूंगा जिसने वो शो ऑर्गेनाइज किया, या मैं उस इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे वहां पर कंसीडर करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, कि जिसने उसे क्लिप को प्राइवेट स्पेस से निकाल करके पब्लिक स्पेस में डाल दिया?
1: सर, मैं यहाँ एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा फिर एक लीगल ओपिनियन दूंगा।
0: प्लीज। हाँ,
1: पर्सनल ओपिनियन ये कि उस कॉमेडियन की 1% की भी गलती नहीं थी इस पूरे एक्ट में।
0: हाँ।
1: और मेरा लीगल ओपिनियन भी यही है कि उसकी 1% की गलती नहीं थी। क्यों? फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन जो केवीएस आपने यहाँ पे डिस्क्लोज किया, कि जितने लोगों ने भी वो कंटेंट एक्सेस किया अपनी मर्जी से किया, उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपका फ्री विल होना जरूरी है, जो हम कैसे इंश्योर करते हैं, ये कह के कि आप 18 से ऊपर के हैं, ठीक है, वो भी उसने इंश्योर किया। तीसरा, जो भी कंज्यूमर उस शो को एक्सेस करने जाता है वो नेचर ऑफ दैट शो को समझता है। अगर मैं आस्था चैनल पे किसी धार्मिक शो को देखने जा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मुझे कैसा कंटेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप या जॉनर के कॉमेडियन के कंटेंट को कंज्यूम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि किस टाइप का कॉन्टेंट होगा। तो क्या अपने तरफ से उसने सारे रीजनेबल मेजर्स लिए? बिल्कुल लिए। आप एक इंसान को कहाँ तक अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो? आप उन्हीं चीजों के लिए अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो जो वो रीजनेबली देख सके और उसके लिए बंदोबस्त कर सके। उसने रीजनेबली देखा कि उन लोगों के लिए ये कंटेंट होगा जो मेरे हार्डकोर फैंस हैं, जो मेरे ह्यूमर से अवगत हैं और जिनको मेरे शॉक वैल्यू से मजा आता है। अब उस कंटेंट को बाहर ले जाने या उस कंटेंट को पब्लिश करना, मुझे लगता है एक चीज होती है स्केप गोटिंग, आप किसी को बलि का बकरा बनाते हो। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोज केस, अगेन नाउ दिस इज पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ दोज केसेस, क्योंकि आप बहुत आने वाले दिनों में देखेंगे कि मोरालिटी या ऑब्सिनिटी को लेके कोई कानून आने वाली है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कंटेंट को लेके, यानी यूट्यूब के कंटेंट को लेके। तो कई बार किसी कानून को लाने से पहले उसकी लॉबिंग या ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जाता है, और ये ग्राउंड वर्क तभी क्रिएट किया जा सकता है जब आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें जनता के सामने कि देखिए आज के दौर में मोरालिटी एक प्रॉब्लम है, आज के दौर में देखिए आज की यूथ कैसी बातचीत कर रही है। तो वो प्रॉब्लम हाईलाइट करना मुझे लगता है स्टेप वन है। स्टेप टू ये थे कि एक लीगल एक्शन हो गया और कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सेंटर को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मोरालिटी और अश्लीलता को रेगुलेट किया जाए, और बहुत जल्द अगले 1-1.5 साल में आप देखेंगे ऐसा कानून आ जाएगा। क्या उसने कुछ गलत किया? अमेरिकन लॉज जिनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोरो करके आर्टिकल 19 बनाया हमने, वो भी ऐसा नहीं कहते कि उसने कुछ गलत किया। इंडिया के अभी तक जितने केस लॉज के जजमेंट्स आए हैं वो भी ऐसा नहीं कहते। तो मेरे हिसाब से तो उसने कुछ गलत नहीं किया था। अगर पनिश करना था किसी को तो आप उसको करें जिसने वो कंटेंट वायरल किया पे वॉल के अगेंस्ट जाके। एक तरीके से तो उसने कमर्शियल राइट्स का वायलेशन किया उस आदमी का, मतलब जो भी रेवेन्यू उसको जनरेट होता एक एक्स्ट्रा यूजर या व्यूअर से वो उसे छीना गया। सेकेंडली, अगर आप जिम्मेदार होल्ड ही कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को जिम्मेदार होल्ड कीजिए। एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी पेरेंटिंग की नहीं है, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि मैं चीज़ें बोलूंगा उसमें से अगर कुछ ऐसा है जो क्रिमिनल नेचर का हो या फिर डिफेमेटरी नेचर का, उसको आप स्क्रैप आउट कर दीजिए। बट पेरेंटिंग इज नॉट द जॉब फॉर अ कंटेंट क्रिएटर और आर्टिस्ट, खासकर तब जब वो खुद लेबल करके बोल रहा है कि मेरा कंटेंट 18+ है।
0: सो वंडरफुल। बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर हो पाएँ, ताकि सही तरीके से एक आप कह सकते हैं कि वो बायस्ड वाले जो चश्मे हमारी आंखों पे लगे हुए हैं हम उनको हटा करके देख पाएं कि व्हाट्स द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, क्योंकि मूलभूत आधार वही है हमारा, ठीक है। तो उसी परस्पेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो आधे से ज़्यादा लेबल्स जो आपने और मैंने लगा रखे हैं वो अमूमन हमारे आसपास के लोगों ने हमें दिए हैं, हमने बनाए दिए हैं। वो कानून नहीं बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, भारत देश नहीं बोलता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है एक चीज को, और यही उद्देश्य है इस शो को लेकर आने के पीछे। फिलहाल एक और बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ आयते सर यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस करी हैं, और कुछ और चीजें हैं जो मेरे जहन में सवाल हैं और जो वाजिब भी हैं आज की डेट में, करेंगे डिस्कस। बट फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: बिल्कुल जानना चाहूंगा। पहली चीज, पहला सवाल ये रहेगा कि पुलिस का काम जस्टिस डिलीवर करना तो नहीं है, पुलिस का काम है लॉज को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस डिलीवर करने का काम है कोर्ट। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पुलिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं उनको बाईपास करते हुए एक पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पर हावी होने लगता है करंट सिनेरियो में, ऐसा क्यों होता है?
1: ये सबसे कठिन प्रश्न है जो आपने पूछा है, क्योंकि इसका जवाब भारतीयता में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। जहाँ पे ये ह्यूमन नेचर हमारा, हमारे चौराहे पे भी अगर झगड़ा हो जाता है तो हम
0: हाँ
1: एक घेरा बना के देखने लगते हैं वहाँ पे। हमें
0: हाँ
1: हमें अपन हम अपना स्टेक ढूंढ लेते हैं,
0: हम्म,
1: कितना भी एलियन मैटर हो, हम अपना कोई ना कोई स्टेक उसमें ढूंढ लेते हैं। और एक एक आवाज़ है हम सबके जहन में जो कि कहता है कि हमारा जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो सबसे सही सेंस ऑफ जस्टिस है। और मज़े की बात भी यही है और प्रॉब्लम की बात भी है कि सबको यही लगता है कि उनका सेंस ऑफ जस्टिस सही है। एक और ह्यूमन कंपल्शन है ओपिनियन फॉर्म करने का, जो कि इंडियंस में ज़्यादा मुझे दिखा है कि जितनी जल्दी हो सके एक ओपिनियन फॉर्म करना ज़रूरी है। जबकि कायदे से जितना देर आप लगा सकते हैं एक ओपिनियन फॉर्म करने में उतना बेहतर है, क्योंकि चीज़ें परत दर परत खुलती जाती हैं तब आपको बेहतर पता होता है। तो हमारे यहाँ ये कल्चर, और मैं सिर्फ लोगों को ब्लेम नहीं करूँगा, ये कल्चर मीडिया से भी बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हुआ है। क्योंकि पब्लिक ट्रायल तो होते थे, लोगों से उम्मीद की जा सकती है ओपिनियन रखना, बट मीडिया ट्रायल जब से शुरू हुए हैं, जब से हमारे पास 24 आवर्स न्यूज़ चैनल का कॉन्सेप्ट आया इस देश में, 25 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, 24 घंटे आप न्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं। उतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या उतना रिलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने फिलर के तौर पे क्या किया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों पे इम्पोज करना शुरू कर दिया। ये हमें लगता है इसके बहुत सारे विक्टिम्स हर साल हमको दिखते हैं। एक चीज़ है जिसको हम अगर हम जहन में रखें तो फायदा होगा हमारा, वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये जो फ्रेज है ये हमने अपने क्रिमिनल ट्रायल में यूज़ किया है शुरू से, कि जब तक किसी के खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसको निर्दोष मानेंगे। विल प्रिज्यूम एनी वन टू बी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये माना जाता है। और हमारे यहाँ ठीक उल्टा होता है इसका, कि कोर्ट ने अगर बोल भी दिया कि ये नॉट गिल्टी है तो हमने 2 साल तक जो इमेज बना रखी है उस इंसान की उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ये क्यों होता है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है कि क्या सिर्फ इंडियंस ऐसा सोचते हैं या पूरी दुनिया ऐसा ऑपरेट करती है। बट मुझे लग मैंने बचपन से लेकर आज तक यही देखा है हर जगह, चाहे वो झगड़े हो, किसी JCB की खुदाई चल रही हो या फिर कुछ भी हो, शायद वो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जिसका रूट कॉज मोटा मोटा मैं समझ पाता हूँ कि हम लोग ना बहुत इमोशनल हैं, हम हर चीज़ के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ी दुविधा की बात भी हो सकती है। बिकॉज वन वी टॉक अबाउट अ कंट्री वी शुड टॉक अबाउट रैशनैलिटी।
1: सर मैं यहाँ पे इंटरवीन करूंगा क्योंकि आपके स्टेटमेंट से एक बल्ब जल गया मेरे दिमाग में। जी हाँ, हम अंडरडॉग्स को सपोर्ट करते हैं और हम इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अपने खिलाफ हुए इनजस्टिस से रिलेट करते हैं वहां पर। तो अगर हमें ये कोई बता दिया, कन्विंस कर दे निचले लेवल की इसके खिलाफ इनजस्टिस हुई है, तो हम तुरंत आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ से। तो इसके पीछे कोई इल मोटिव नहीं है, बट हमें बस वो पेशेंस बरतनी है कि हमें कैसे पता कि कौन विक्टिम है, हमें कैसे पता। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोर्ट एक डिक्टम पाएगी। इतना इंटरेस्ट है आपका तो उस जजमेंट को पढ़ लीजिए, 400 पेजेस की जजमेंट होती है, सब लिखा होता है उसमें।
0: एंड जब भी आपको ऐसा लगे अपने जहन में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ फॉगी फॉगी हो रहा है, ये इमोशन ज़्यादा हावी हो रहे हैं, हमेशा मैं कहूँगा कि जो फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एंड डेवलपमेंट रैशनैलिटी से होती है, इसलिए रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल होके हम बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मानकर चलिए कोई बहुत बड़ा केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोर्ट के जो वहाँ पर चीफ जस्टिस हैं उनके सेंटिमेंट्स कुछ अगर बोल रहे हैं लेकिन वो कानून के अपोज हैं, तो आप सोच कर देखिए अगर सेंटिमेंट्स के आधार पर वहाँ पर जजमेंट दी जाने लगे तो क्या क्या हो सकता है इस देश में और क्या होगा फिर दुनिया का। इसलिए ज़रूरी है इस एक चीज़ को समझना। दोस्तों बातें हमारे पास बहुत सारी हैं आदित्य सर, जो लिटरली मतलब जब इनसे बात करता हूँ मैं एक टॉपिक उठाते हैं और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन समय बहुत हमारे पास सीमित है तो आज के शो को यहाँ पर हमें कंक्लूड करना होगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अपने आप से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं अभी जो यहाँ पर मुझे अभी नहीं पूछ पाऊंगा बिकॉज ऑफ दिस टाइम बाउंडेशन। बट फिर एक बार कोशिश करेंगे आदित्य सर को बुलाएं और एक और पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे ही इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करें। सो ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच आदित्य सर फॉर कमिंग।
1: थैंक यू सर। थैंक यू।
0: थैंक यू। और दोस्तों इसी नोट पर वक्त है शो को यहाँ पर खत्म करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए हैं। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मुझसे, आदित्य सर से, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो यू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, प्लीज हमें

10707, इस नंबर पर लिखकर भेज दीजिए। आई विल ट्राई कि हम यहाँ पर उसको एड्रेस कर पाएं और एक और शो हम यहाँ पर बना पाएं। फिलहाल चलूंगा, इजाजत लूंगा आप लोगों से, इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खैरियत से रहिएगा। दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें होती हैं सेहत के बारे में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन इस हेल्थ को बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, और कोशिश तब होगी जब आपको सही कोई एडवाइस देगा। सो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और आज हम ऐसे ही कुछ विषय पर बात करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए या फिर मोटापे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ नई दवाइयों के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र का। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी फॉर हैविंग मी हियर एट रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम।
0: जी, तो सबसे पहले सर आपसे सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कौन सी दवाइयाँ क्या यूज होंगी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहला सवाल यही है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, जिसको आजकल डायबेसिटी कहा जाता है, क्या है ये, आपस में कैसे कनेक्शन है इन दोनों का?
1: जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टर्म चल रहा है डायबिसिटी, जो कि कोई नया टर्म नहीं है, काफ़ी पुराना टर्म है। डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, और इट इज़ ए नॉट ए न्यू टर्म, इट इज़ ए ओल्ड टर्म, बट ये कह सकते हैं आप कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के केसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ओबेसिटी भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारी कंट्री के लिए डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बोथ। अब आप देखेंगे कि जिनको ओबेसिटी होती है उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनको हम बोलते हैं कि जो कि इन्फेक्शन के बिना होती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और जिनको ओबेसिटी होती है रिस्क ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी रिसेंटली बहुत सारी हमारे देश में 3-4 दवाइयाँ आ गई हैं, और इस देखा होगा आपने काफ़ी हाइप भी, और सोशल मीडिया के थ्रू भी उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो दे आर इंटरलिंक्ड सिंस लॉन्ग, बट ये कह सकते हैं कि अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न भी और हमारी कंट्री के लिए भी कंसर्न है, तो हमको डायबिटीज़ को भी कम करना होगा और ओबेसिटी को कम करना होगा। तो अगर हम ओबेसिटी पे काबू पा सकते हैं तो 100% हम डायबिटीज़ के केसेस को भी कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी ओबेसिटी जिनको है उनको डायबिटीज़ का खतरा नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है, और ओबेसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म लेकर आती है, क्योंकि आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, जो कि टिक टिक कर रहा है और कभी भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। डॉक्टर साहब, डायबिसिटी की बात जब आप कर रहे हैं, ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग अब इसके बारे में बात करने लगे हैं, अब ओबेसिटी से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से आगे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ये हमें विस्तार से बताइए।
1: जैसे कि अगर किसी को एक बार आपने देखा होगा, एक तो जेनेटिक एंगल भी होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें रिस्क ऑफ वेट गेन का खतरा होता है, जिसमें जिनकी मदर्स को डायबिटीज़ होता है, तो आप देखेंगे उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बच्चों को भी ज़्यादा होता है, और उनका वेट गेन की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली भी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पिछले मैं बोलूं कि 25-30 साल में, तो जो हमारी लाइफ अर्बन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले रूरल लाइफस्टाइल ज़्यादा थी, पहले लोग रूरल में ज़्यादा रहते थे, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि देखते हैं कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, जिसको एक बार वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपका वेट गेन एक सीमा से बाहर चला गया है, आपका BMI बहुत ज़्यादा हो गया है, कि जो आपका देखें BMI 25 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का 30 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे देश में अभी ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी 25 करोड़ लोगों को हमारे देश में ओबेसिटी है, डाटा में ले देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जिसको एक बार जिसका वेट गेन हो जाता है, तो उसको वापस वेट को लूज करना इतना आसान नहीं है, इट इज इजियर सेड देन डन। तो आपको सारी बातें पता होती हैं, आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन उसको फॉलो करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है। दैट इज वाई वी ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो अगर आप अपने वेट को कम कर पाते हो, तो आप इसको, जो हम बात करें बीमारियों की, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज आती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू आता है, फिर फैटी लीवर आता है, फिर हाइपरटेंशन आता है, फिर किडनी के इश्यूज आते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन के इश्यूज भी आते हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप एक अपने वेट को, कोई व्यक्ति कंट्रोल करने पे ज़्यादा ध्यान दे, फिजिकल एक्टिविटी करे, सीडेंट्री लाइफ को छोड़े, और अवेयर भी रहे, और आप देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको पता भी चलता रहता है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डॉक्टर के पास जा पाएँ, लेकिन अगर आप अवेयर रहते हैं और आप आज की टेक्नोलॉजी को सही दिशा में यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने वेट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुद आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, इससे पहले की जो सारी चीज़ें होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेस अदर देन मेडिसिन, वो आप घर पे कर सकते हैं। तो अगर ये कोई करता है तो ये सारी बीमारी जो मैंने भी नाम लिया इनसे बच भी सकता है और उसकी लाइफ अच्छी रह सकती है।
0: बिल्कुल, यानी बीमारियां बहुत सारी हैं और खुद को बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो आज ही ये जो आप छुट्टियों में सामान मंगा लेते हैं और घर की सीढ़ियां उतरना नहीं चाहते हैं, रोड तक जाना नहीं चाहते हैं, पार्क में पहुंचना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीजों को थोड़ा सा साइड रखिए, थोड़ा वॉकिंग शुरू कीजिए, ताकि आपका ये जो बढ़ रहा वेट है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जो शर्ट का साइज है वो कब 40 से 42 और 44 पहुंच गया है सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे की वजह से, वो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। ओबेसिटी क्या है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और बातें करेंगे आगे कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के माध्यम क्या है और डायबिटीज की दवाइयाँ और किन किन तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में जो बहुत बढ़ रहा है, जरा सा स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके बारे में करेंगे चर्चा इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, और इस ऐप के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आप ये पूरा पॉडकास्ट कभी भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और ऑल इज वेल में आज हम बात करें हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के और यूजेस के बारे में। क्या क्या नया कुछ हो रहा है मेडिकल फील्ड में इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, इस पर भी बात करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, डायबिटोलॉजिस्ट हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत सारी बातें हम ओबेसिटी के बारे में आपसे कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ओबेसिटी जो है वो अनगिनत बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन अब ओबेसिटी की बात जब हम करते हैं तो सपोज मेरा वेट 60 kgs है, मेरी हाइट के अनुसार, मेरी हाइट है 5'5" और अगर मैं 50 to 60 kgs के बीच में हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ओबीस कब बनूंगी या कब ओबीस की कैटेगरी में आ जाऊंगी, ये कैसे पता लगाया जा सके?
1: जैसा कि आपने कहा कि हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब कहते हैं कि ओबेसिटी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पता चले कि मेरा वेट मेरे हाइट से ज़्यादा या मेरे जो मेरा होना चाहिए अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके पास फ़ोन होता है और उस फ़ोन में सबके पास आजकल नेट होता है जो कि हर चीज़ में देखते हैं हम, और इसको हम अच्छे वे में अपनी हेल्थ पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो BMI होता है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो सबसे कॉमन बहुत ही बेसिक होता है, अगर किसी कोई अपना BMI देखता है तो BMI देखने का तरीका वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है, वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मली होता है BMI नॉर्मली 18 to 24 होता है, नॉर्मल BMI। अगर किसी का BMI 24 से ज़्यादा हो जाए, कि सपोज उसकी हाइट और वेट को हम देखें और अगर उसका BMI जो है 24 से ज़्यादा हो जाता है, 25 के ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ओबेसिटी में आ रहा है। लेकिन इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि कितना BMI ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा किसी का BMI अगर 27 से ज़्यादा हो जाता है तो वो सीवियर ओबेसिटी में होता है, अगर किसी का 30 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही मॉर्बिड कंडीशन हो जाती है और अपने आप में एक डिजीज़ है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हम बातें करते हैं कि दवाई किसको लेनी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, तो जिनका BMI 27 से ज़्यादा और जिनका 30 से ज़्यादा हो, तो उन लोगों के लिए जो नई दवाइयाँ आई हैं वो लोग इन दवाइयों का उपयोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। मैं ये बात पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि कोई दवाई एकमात्र मैजिकल बैंड नहीं होता है कि आप दवाई लें और आप अपनी चुटकियों में सब ठीक हो जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ये जितनी भी दवाई आ रही हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं, खासतौर पे मेडिसिन वाले और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कि आप इन दवाइयों के साथ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट पे उतना ही ध्यान दें जितना आप पहले दे रहे थे। तो अगर कोई सोचता है कि मैं दवाई ले लूंगा और ये नहीं करूंगा तो कभी वेट कम नहीं होगा, तो ये बेसिकली मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर किसी का BMI 27 से ज्यादा होता है तो, और उसको कोई एक ऐसी बीमारी होती है जो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, लिपिड का इशू हो, डिसलिपिडीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, या कोई और ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, वो लोग इस दवाई के लिए, दवाई लेने के लिए उनका इंडिकेशन होता है, वो ले सकते हैं, या जिसका BMI 30 से ज़्यादा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ द काउंटर वाली दवाई नहीं है कि आप जाएं और अपने से ले लें, ये दवाई आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पे, और डॉक्टर को भी ये सारे बैकग्राउंड को देखना होगा और ये भी देखना होगा कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं।
0: बिल्कुल। अब दवाइयों की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो बात छेड़ी है कि ये दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए या बहुत अपने आप जाके नहीं लेनी चाहिए, मिलेंगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं कुछ दवाइयाँ, जिसमें आप मुंजारो की बात कर लीजिए, ओज़ेम्पिक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत में आ चुकी है और आ रही है और लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत पतले हुए हैं हाल ही में, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एकदम ड्रास्टिक चेंज उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई दिया है, लेकिन वो चेंज बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा है, पतले हुए हैं नो डाउट, पर चेहरा जो है वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि स्किन और मसल्स पे इसका इफेक्ट शायद पॉजिटिव उतना नहीं पड़ा है जितना ओवरऑल वजन पे पड़ा है। तो ये दवाइयाँ जो हैं, ये इंजेक्शन्स हैं, दवाइयाँ हैं, क्या इनका इस्तेमाल है, क्या कॉस्ट है, ये मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी।
1: मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैम, जिससे कि लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ कि बेसिकली दवाई हैं क्या। जैसा आपने बोला कि ओज़ेम्पिक, विगोवी और मौनजारो, ये तीन दवाइयाँ काफ़ी न्यूज़ में हैं और रिसेंटली ओज़ेम्पिक भारत में लॉन्च भी हुई है, जिसको कि अब डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले हमारे देश में मौनजारो और विगोवी को ओबेसिटी के लिए और मौनजारो को डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी दवाइयाँ 2025 में रिसेंटली न्यूज़ में भी आई हैं और ये मोस्टली लॉन्च भी 2025 में ही हुई हैं, लेकिन ये 2017 से, मैं आपको बताऊं, ओज़ेम्पिक का उपयोग 2017 से डायबिटीज़ में किया गया है और पहले इसको डायबिटीज़ के लिए ही उपयोग किया गया था। जब इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था, जिसका ट्रायल, स्टेप ट्रायल हुए थे, इसमें भारत के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया था, तो स्टेप ट्रायल में ये पता चला कि ये दवाई शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ वेट को भी कम करती है, क्योंकि ये दवाई जिस तरह से काम करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन के के हार्मोन्स पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं GIP और DIP। ये दो हार्मोन है, ग्लूकोगोन दैट इज ग्लूकोगोन इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन हार्मोन्स, ये हमारे एपिटाइट को सप्रेस करती है।
0: यानी आपको भूख लगनी कम हो जाती है,
1: आपको भूख लगनी कम हो जाती है, बिल्कुल सरल भाषा में आपका पेट जल्दी भर जाता है। और ये आपके जो इंसुलिन के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं, या आप कह सकते हैं ग्लूकागोन जो होता है, जो कि शुगर को ज़्यादा रिलीज करने के लिए एक तरह से रिलीज ज़्यादा कराता है लीवर से, ये शुगर के रिलीज को रोकती हैं लीवर से, और मेन ये आपके ब्रेन में एपिटाइट को सप्रेस कर देती हैं, और अर्ली सेटाइटी या अर्ली फुलनेस हो जाता है। तो जब ये पता चला कि ये
0: थोड़ा सा खाना खा के आपका पेट भर जाता है,
1: तो ये दवाइयाँ आपकी अर्ली सेटाइटी करती है, तो आदमी कम खाता है, और उससे उसको ये, लेकिन ये नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक करती हैं, बेसिकली ये हार्मोन्स हैं ये तीनों दवाई, तो ये नेचुरल मिमिकर हैं जो आपकी बॉडी में, तो ये वैसे ही काम करती हैं जैसे ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स काम करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि इसको करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसका डोज कैसे लेना है, कितना लेना है, जो कि हम बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी होता है। और ये डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगी तो विगोबी और ओजेम्पिक दोनों एक ही कंपनी की, और एक ही दोनों के अंदर एक ही कंपोजिशन है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
0: जी,
1: विगोबी और ओजेम्पिक सेम कंपोनेंट है, ओजेम्पिक लो डोज है और विगोबी हाई डोज है उसी दवाई का। तो आप बात करें ओजेम्पिक जो है वो लो डोज में डायबिटीज के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को, और किडनी के पेशेंट को उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ट्रायल्स में पता चला कि जो मरीज को ओजेम्पिक इन बीमारियों के साथ दिया जाता है, उनको हार्ट का रिस्क, उनको किडनी का रिस्क कम हो जाता है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट कम हो जाता है, और उनको इन बीमारियों से भविष्य में खतरा कम रहता है, इसलिए ये दी जाती है ओजेम्पिक लो डोज में। और हाई डोज में जब इसको यूज़ करते हैं वो विगोबी में करते हैं, जो कि ओबेसिटी और वेट लॉस को कम करने में काम आती है। और आपने एक बात बोली कि ये ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक दवाई में ऑफ द रिकॉर्ड मिलती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोनजारो ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है, और ओजेम्पिक और
0: अलाउड
1: ऑन द प्रिस्क्रिप्शन है।
0: जी
1: और ये अलाउड है भारत में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में आपको पता है कि लीकिंग होने की संभावना, देखो जब कोई दवाई आती है तो उसके बारे में हाइप होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को मिल जाए और मेरा वेट कम हो जाए, तो वीगो मुंजारो जो है ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी मिलती है, तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट आप कभी नहीं समझ पाएंगे, ये डॉक्टर ही समझ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट इन दवाइयों के लेने से पहले होने चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ हैं, ओरली मेडिकेशन ले सकते हैं या ये इंजेक्शन है?
1: जी आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आखिर ये दवाई लेनी कैसे है, इनका फॉर्मुलेशन कैसे है। तो अगर आप बात करें इनमें बेसिकली ओजेम्पिक जो है इसका अंदर का जो कंपोजिशन है वो सीमाग्लूटाइड है, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ओरल फॉर्म में रिबिल्सस एक फेमस ब्रांड नेम भारत में है, जो कि ऑलरेडी ओरल फॉर्म में चल रहा है और पहले से उपलब्ध है। लेकिन अभी जो ये दवाइयों की जिनकी बात हो रही है हमारे देश में, जिनकी चर्चा हो रही है, वो सब इंजेक्टेबल फॉर्म में आई हैं, हम कहेंगे कि सबक्यूटेनियस फॉर्म, जैसे कि हम इंसुलिन को देते हैं मैम, वैसे ही आई हैं। तो ये अभी इनका उपयोग वंस इन ए वीक होता है, मैं थोड़ा अगर बताना चाहूँ तो वंस वीकली सबकट इनका उपयोग किया जाता है, और हर मंथली दवाई का डोज को बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल। तो इसमें हर पेशेंट की पर्सनल प्रोफाइल अलग होती है, उसको आपको एक प्रोफाइलिंग करना होता है, जैसे कि हर व्यक्ति की क्या बीमारीज हैं, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, और उसको और कौन सी बीमारियाँ बैकग्राउंड में, किसी को अगर किसी को हार्ट का इशू है, किसी को पेट का इशू है, किसी को आँखों का इशू है, तो ये सब चीज़ देख के ही दवाई लेनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो कि ये असेस कर पाए, उसको पता होगी कौन कौन सी बीमारियों में इन दवाइयों को नहीं दिया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ठीक है ये दवाइयाँ, कि उनके लिए ही बनी है तो उनको आराम पहुँचाएंगी, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे, लेकिन जैसे हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे, अब उनको डायबिटीज़ है या नहीं है ये नहीं पता, उनको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं पता, लेकिन वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है बीच में, अब ये कितना सत्य है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये कहा गया है कि ओजेम्पिक लेने से इन सब के वज़न जो है वो कंट्रोल हुए हैं, लेकिन क्या ये दवाई अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है आप ले सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं और आपकी भूख कम हो गई है, सो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आपकी भूख ही कम हो गई है, आप जितना 2000 कैलोरीज 2200 कैलोरीज जो हमें दिन की लेनी होती है, अगर आप उसकी जगह 1500 कैलोरीज ले रहे हैं, सो कैसे आप अपनी बॉडी को ठीक रख पाएंगे?
1: जैसे कि आपने कहा कि इन दवाइयों का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी मेडिसिन आपका वेट लॉस कैसे करती है, तो अगर हम बात करें इन दवाइयों की, ये वेट लॉस आपके, ये आपकी फैट को अगर लॉस, आपको अपनी फैट को अगर लॉस करना है और आपको फैट को कम करना है, तो ये ध्यान रखें कि ये मसल लॉस भी करती हैं साथ में। अगर आप इनको अनइंटेंशनली ले रहे हैं और आप कॉन्शियस नहीं है, तो आपका मसल लॉस भी साथ में होता है। अगर इन दवाइयों को लेते वक्त आपका मसल लॉस होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मसल लॉस आपका नहीं होना चाहिए। तो जब आप वेट लॉस करते हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें आपको डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपकी प्रोटीन को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और रिकमेंडेड प्रोटीन इन दवाइयों के साथ नहीं लेते हैं, तो आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर आवर मसल्स, इट इज अ मस्ट। तो अगर आप एक डाइटिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके साथ साथ एक डॉक्टर, इन तीनों को मिला के अगर आप ये काम करते हैं और दवाई लेते हैं, तभी आपने जैसा कहा कि क्योंकि अगर आप इन दवाइयों को बंद करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिगेन, वेट रिगेन भी बहुत फास्ट होता है। जो आपने पूछा कि ये आपकी एपिटाइट को कम कर देती है,
0: बढ़ा देंगे
1: तो एपिटाइट कम कर देती है, तो आपका तो एपिटाइट कम हो गया, तो आपको तो पता चलता नहीं है कि आपको कितना क्या खाना है, आपको तो लगता है कि मेरा पेट तो भर चुका है। इसलिए इसमें जो आपने देखा कि ICMR ने लेटेस्ट बोला कि जो बैलेंस्ड डाइट है उसको आपको फिर भी फॉलो करना है। जो आप, हम बोलते हैं कि हमारी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समान मात्रा में, जो एक प्रोपोर्शन होता है वो होना चाहिए। और ये 100% आपको डॉक्टर और डाइटिशियन कोऑर्डिनेशन के साथ, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक्चुअली जो जो कोच होता है, जो डाइट फिजियोथेरेपी है बोलेंगे कि आपकी एक्सरसाइज के लिए, उसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो मैं कहूँगा कि जो ये दवाई ले रहा है उसको एक कंसल्टेशन अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी लेना चाहिए, जिससे वो ये समझ पाएंगे कि दवाइयों का उपयोग आखिर कैसे करें। तो इन दवाइयों का उपयोग बहुत ही संतुलित और बहुत ही नियमित तरीके से और बहुत ही सतर्क होकर करने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, यानी कोई भी दवाई जो बॉडी में जाती है उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है, और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो बुखार की दवाई भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपका बुखार ठीक करने के अलावा वो बाकी बॉडी के पार्ट्स पर भी कुछ असर तो जरूर डालती है। जो भी चीज हम खाते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, उसका इफेक्ट होता है। तो ऐसी दवाइयां जो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कुछ कारणों से, रील्स देख देख के आप उनके बारे में जान गए हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ इनका इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही है बहुत सारी उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं। पहला डायबिटीज, दूसरा ओबेसिटी और तीसरा हाइपरटेंशन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को खराब करने की ताकत रखती हैं अगर सही तरीके से मैनेज ना की जाए। बात करते हैं डायबिटीज की और डायबिटीज के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर साहब, ओज़ेम्पिक मौनज़ारो के बारे में तो आपने बात कर ली है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी एक तो इनकी कॉस्ट, वो बहुत जरूरी है लोगों को बताना क्योंकि हमने बहुत सुना है कि बहुत महंगी दवाइयां हैं। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो अभी तक नजर में आए, क्योंकि हाल ही में इतना चर्चा में रहा है कि लोगों ने कहा है कि ये मत लो, ये इससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ जाती हैं। सो क्या ये वाकई सच है?
1: जैसे कि बात कर रहे हैं कॉस्ट की और साइड इफेक्ट्स की, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके साइड इफेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी दवाई को लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, चाहे हम वो पैरासीटामोल ही ले लें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दवाइयों के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, अगर मैं इनको क्लब्ड कर दूँ एक साथ की कॉमन साइड इफेक्ट, तो सबसे कॉमन इनके GI साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब आपके पेट से रिलेटेड होते हैं। वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं हम, परसिस्टेंट एब्डोमेन पेन हो सकता है। तो जिनको खासतौर पर पेप्टिक अल्सर होता है या छाला होता है, अगर पेशेंट समझ पाएंगे इस चीज़ को, तो उनको इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और दूसरा, इसके जो थोड़े डेडली साइड इफेक्ट या मैं कहूँगा थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, वो पैंक्रियाटाइटिस जिनको होता है या जिनको गॉल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, और किसी किसी में जिनको आपका कैंसर, थायराइड का कैंसर भी कुछ दवाइयों के स्टडीज़ में पाया गया कि ये थायराइड कैंसर भी कर सकती हैं। तो इनको एक बार थायराइड के बारे में भी डॉक्टर को देखना चाहिए कि थायराइड उनका ठीक है, उनको थायराइड का कोई इशू नहीं है,
0: साथ साथ उसको भी मॉनिटर करते रहें।
1: क्योंकि कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट थायराइड कैंसर भी पाया गया था, इनका कोरिलेशन था आपस में। और एक आई जो है, आपकी आई एग्जामिनेशन बिफोर दीज मेडिसिन, यू शुड गेट इट डन। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखे, और वो आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री जो मैंने कहा मेडिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड टेक इट। और आपने कहा कि कॉस्ट, तो मैं कहूँगा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक दवाई इनमें किसी को भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास महीने का इनका होता है
0: मंथली,
1: और वंस इन ए वीक के लेनी होती है। तो और इसका डोज जब आप बढ़ाते हो दवाई का, इंक्रीमेंटल डोज जब आप लंबे समय में लेते हो, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ भी सकता है।
0: लेकिन 15,000 से 20,000 मान लें,
1: 15,000 से 20,000 मान लें। अच्छी बात यह है कि थोड़े समय के बाद इसमें से दो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो जाएंगे, तो हमारे देश में इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है कि कॉस्ट को कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है ये इट्स लाइक ए गोल्ड माइन, ओबेसिटी इन इंडिया इज लाइक गोल्ड माइन। तो दो कंपनियों की दवाई है वो भी इसमें बहुत कंपटीशन कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। तो दूसरा ये कि इसकी आप इसको शुरू कर देते हो तो आपको ये लंबे समय लेनी है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेके अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम जो स्टडीज हुई है, आपको 1.5 साल के आसपास लेते हो तो आपका 10 से 15 किलो वजन कम होता है, ये मैं स्टडीज के आधार पर बता रहा हूँ।
0: 1.5 साल के बाद
1: 15 किलो वजन कम होता है। एंड कंडीशन इज दैट यू शुड डेफिनेटली मेंटेन योर लाइफस्टाइल एंड यू शुड बी डूइंग ऑल द अदर थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड विद दिस मेडिसिन।
0: यानी सिर्फ दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी होगी, डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा। और न्यूट्रिशन की बात जैसे हम कर रहे थे कि न्यूट्रिशन, जब आपकी भूख कम हो जाती है तो न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा, तो डाइटिशियन आपको बता सकता है कि कितना प्रोटीन और कितना आपको कार्बोहाइड्रेट
1: लेना चाहिए। और आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो और एक बार जब ये दवाई आपके वेट को कम ले आती है, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लायक हो जाते हो, क्योंकि जिसका ज़्यादा सीवियर ओबेसिटी होती है वो रनिंग भी नहीं कर सकता, पार्क में जा भी नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दवाई जब आपका वजन कम करती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, उन्हें ढूंढें और उनसे सलाह लें, खुद ही दवाइयाँ लेके खुद ही डाइट ना प्लान कर लें, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, उनसे सलाह नहीं लेंगे, इन दवाइयों का उल्टा असर आपकी बॉडी पर हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई डायबिटीज़ की और ओबेसिटी की, तो डायबिसिटी की बात हमने इन शॉर्ट कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, लोगों के लाइफस्टाइल ख़राब हो चुके हैं, रात को देर तक जागते हैं, कई लोग तो काम ही रात को करते हैं। इसके अलावा खाना पीना जो है वो बाहर का बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें सॉल्ट बहुत आ गया है, इसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। अब ये हाइपरटेंशन किस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए।
1: जैसे आपने कहा कि जो डायबिटीज और ओबेसिटी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ओबेसिटीज की वजह से हाइपरटेंशन की भी संभावना होती है, आपका बीपी भी ज़्यादा बढ़ सकता है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका बीपी, पेशेंट को लगता है कि मेरा बीपी बढ़ गया है तो मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो लेटेस्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि स्टेज वन हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें बीपी आपका 130/139 ऊपर का होता है और नीचे वाला बीपी आपका 90 से कम होता है लेकिन 80 से ज़्यादा होता है। मैं ये स्पेसिफिक इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पेशेंट अपना बीपी देखता है तो उसको पता होता है कितना आ रहा है। तो अगर आपका बीपी स्टेज वन हाइपरटेंशन है, और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सॉल्ट इनटेक, हमारी कंट्री में वैसे भी हिडन सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हमारे पिकल्स में, पापड़ में, और हमारे फास्ट फूड्स में, और बहुत सारी तली भुनी चीज़ें जो हमारे हमारे कल्चर में, हमारी मम्मियाँ, हमारे दादी

0: गाइडलाइंस कहती है कि आप अपनी पिल्स के बर्डन को अवॉइड कर सकते हैं और आप बीपी को बिना पिल्स के भी मैनेज कर सकते हैं और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपको बीपी की दवाई की जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि आप अपने बीपी को ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में ला चुके होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने पूछा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका बीपी एक साइलेंट किलर होता है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपके बीपी के वार्निंग साइंस नहीं आते हैं। इसलिए बीपी को एनुअली या मैं कहूंगा हर 6 महीने में एक बार चेक होना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल, यानी थोड़े थोड़े टाइम में ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करते रहें। डॉक्टर साहब, वार्निंग सिचुएशन क्या होती है ब्लड प्रेशर के केस में? जैसे लोगों का बीपी कई बार 150 तक पहुंच जाता है, कई बार 140 पे ही लोग बहुत घबरा जाते हैं, सो वार्निंग सिचुएशन क्या होती है?
0: इसको मैं एक तरह से ये कहना चाहूंगा कि ये बेसिकली एक डिजिटल नंबर है, या एक जो नंबरिंग को अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 3 अलग अलग समय पे 140/90 या 140/90 के ऊपर चला जाता है तो 100% उनको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और वो बीपी की दवाई लेने के लिए उनको लेनी पड़ती है। तो किसी का भी बीपी अगर 140/90 या इसके ऊपर जाता है तो उनको दवाई के लिए बीपी की दवाई लेनी पड़ती है। या किसी को सीवियर हेडेक होता है, दिखने में तकलीफ होती है, पैरों में दर्द होता है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है या चेस्ट पेन होता है, मैंने जैसे कहा कि साइलेंट किलर है, जनरली ये सिम्टम्स आते नहीं है। तो अगर आपका बीपी डॉक्टर आपको एक बार ये बता देता है कि आपको बीपी के चेंजेस हैं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट करके हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बीपी के साथ अंगों को नुकसान तो नहीं हो गया, जिसको हम ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। तो अगर किसी के ऑर्गन डैमेज हो गया तो उसको तो बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने कहा कि वार्निंग साइंस बहुत कम आते हैं, जनरली पता चलता ही नहीं है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो ही पता चलता है। इसमें भी ये बात है मैम कि कई बार इसमें अलग अलग टर्म है, कि एक होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपका बीपी बढ़ता है लेकिन घर पे नहीं बढ़ता है। एक होता है मास्क हाइपरटेंशन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जब आप डॉक्टर के वहां जाते हो तो नहीं बढ़ा हुआ होता है लेकिन घर होते हो तो बढ़ा हुआ होता है।
1: ऐसा क्यों होता है?
0: ये पेशेंट आके बोलते हैं, आपने सुना कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क हाइपरटेंशन। अब इनको पता लगाने के लिए अलग अलग बीपी, जो बीपी भी एक तरह से आपके साथ गेम खेलता है हाइड एंड सीक का, तो इसको पता लगाने के लिए और आपके अंगों को कभी नुकसान ना हो और बीपी 100% है कि नहीं, ये जानने के लिए हमारे पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ABPM। तो अगर कोई भी पेशेंट 48 घंटे के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या ABPM घर पे करता है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर रात को जंप तो नहीं कर रहा है घर पे, जो कि डॉक्टर के पास नहीं कर रहा है, मास्ड हाइपरटेंशन। तो आप इसमें अलग अलग तरह के जो बीपी होते हैं उनको भी पता लगा सकते हो और वो पेशेंट लॉन्ग टर्म तक अपनी जो डैमेज करता है बीपी उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको डॉक्टर एडवाइस करें एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उनको करना चाहिए, जो आपने पूछा भी। और बार बार घर पे ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करना चाहिए, 2 बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो एंजाइटी घबराहट से भी बीपी बढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे शुगर होती है तो चेक करते हैं या बीपी होता है तो बार बार चेक करते हैं, तो उससे स्ट्रेस से भी मुझे लगता है इन चीजों पे काफी वाइटल्स पे,
0: जैसे मैं फाइट फियर एंड फ्लाइट, ये तीनों चीजें हमारा वो वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कि आपकी घबराहट में एक्टिवेट होना है। तो अगर आप घर पे 2 बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो और आपका बीपी बढ़ता है तो उसका हम बोलते हैं होम कफ हाइपरटेंशन।
1: Okay.
0: तो आपको बीपी 2 बार ही चेक करना है और मुझे लगता है आपको बीपी जब आप कंफर्टेबल 10 मिनट रिलैक्स होके बिना सोचे हुए बैठे हुए हैं तब आपको करना चाहिए, कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल, तो बीपी को बार बार चेक ना करें, डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें और अगर कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो प्लीज उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन सबके बारे में आपने विस्तार से बताया। उम्मीद है कि जो फेस्टिवल सीजन है, बाकी जो हमारे पूरे देश में साल भर अलग अलग त्यौहार रहते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें बनती हैं वो तो लोग खाएं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज को ना छोड़ें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, तीनों जो आपने बीमारियाँ बताई हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं और लाइफस्टाइल को ठीक रखना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। सो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। ऑल इज वेल में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और सुनते रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगला जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो न सिर्फ मानवता फैलाता है लेकिन मानव अधिकारों की जानकारी भी आप तक पहुँचाता है। ये अलग अलग चोले पहनकर कोशिश एक ही करते हैं कि दुनिया तक न सिर्फ बहुत सारी जानकारी पहुंचे, लेकिन उसी के साथ साथ ये पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके अधिकारों को पहुंचाना उन तक और साथ के साथ उनके अधिकार उन तक मिले, इसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत सी एसोसिएशन है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। और अगर आप सभी जानते हैं तो आपने गेस कर लिया है कि आज मानवता की राह पर हम किनके साथ चलने वाले हैं। दोस्तों, एक खास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो न सिर्फ मानवता की राह पर चल रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक सीख भी है। आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से। एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के, करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। एडवोकेट अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू भावना जी, आपने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया बहुत अच्छी बात है।
1: अशोक जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ये एक बड़ी खूबसूरत सी एसोसिएशन है, ढेर सारे लोगों की मदद कर रही है, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ये एक नेत्रहीन की लाठी है, उन सभी लोगों को राह दिखाने की कोशिश कर रही है जिन्हें राह पता नहीं है। मुझे बताइए कि ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है?
2: भावना जी देखिए, सोशलिज्म तो मैं रग रग में भरा हुआ है, 1985 से मैं इस सोशलिज्म के कार्य में व्यस्त हूँ, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मैं महसूस कर रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश के लोगों को देश की भाषा में और देश की बेसिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सके। इसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ साथियों ने मिलकर ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट एसोसिएशन का 2020 में गठन किया है और पिछले 5 सालों से हम लोग इसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मानवाधिकारों के प्रति बेसिक जानकारी हो, क्योंकि हमारे देश में जो मानवाधिकार हैं पूरे विश्व से कम 50 साल बाद जाकर लोग अलर्ट हुए हैं मानवाधिकारों के प्रति। अभी भी बहुत से लोगों को अपने मौलिक अधिकारों का तो पता है लेकिन मानवाधिकारों का नहीं पता कि मानवाधिकारों के अंतर्गत हमें किन किन विषयों की आज़ादी है, हम किन चीज़ों को समर्थ हैं सरकार से प्रशासन से लेने में। तो इस बात की हम अलख जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से हमने मांग भी की है कि मानवाधिकार विषय को बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए
1: जी।
2: ताकि बच्चे शुरू से ही जब वो अपनी केजी नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड क्लास तक पहुंचे तो उनको इन चीजों की अवेयरनेस हो जाए कि ये मानवाधिकार हमें मानवाधिकार आयोग से मिले हुए हैं।
1: सो भाई देखिए, अगर हम असल में देखें तो ह्यूमैनिटी हम तभी फैला पाएंगे ना जब हमें अपने ह्यूमन राइट्स पता होंगे। सो एज ए ह्यूमन हमारे अधिकार क्या है, व्हाट आर आवर राइट्स, रिस्पांसिबिलिटी तो हमें पता है कि हम एक इंसान हैं और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, पर कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, उसके साथ साथ हमारे कुछ मानव अधिकार भी हैं, और क्या हम इन मानव अधिकारों को अचीव कर पा रहे हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में क्या हमें अधिकार मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कौन सा ऐसा दरवाजा है जिसे हम खटखटा सकते हैं, कहाँ जाकर हम इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है ना ये आपको बताता है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। कोशिश कर रहा है लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की, और एक बहुत ही खूबसूरत सी, लेकिन कहना चाहिए बहुत ही अच्छी सी पहल है। इस पहल के साथ आप सभी भी जुड़ सकते हैं। कैसे, पूछूंगी ये सवाल, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।
3: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
4: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
3: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत

कमाल बनाए, ऊपर अकेली लेबल अंदर नकली घी और चाय, टॉप लीन का बदल के नंबर टेरी लीन बनाए, या बेईमानी तेरा हाथ रा बोली।

सन्यासी काम है चलते रहना, मौका है वीर बना लो हाथ न मरते रहना, हाथ की चूड़ी पांव की पायल या हो गले का गहना, मार के मंत्र ढूंढना कर देवगर तू कहना।

का जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ। ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब मुझे बताइए कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हैं, एक अच्छी बड़ी टीम है आपकी, और आप सभी मिलकर कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके मानव अधिकार पता लगे। सो इसके तहत किस प्रकार के इनिशिएटिव्स आप लेते हैं?
1: देखिए भावना जी, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरूक करें कि उसका किस चीज के प्रति। इंसान का जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत से ऐसे अधिकार हैं, जैसे हर इंसान को दुनिया में आने का अधिकार है, उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। मृत्यु के उपरांत उसका संस्कार प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये भी उसका एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो इस दुनिया में नहीं रहा।
0: जी।
1: कोई भी व्यक्ति उसको दाह संस्कार को नहीं रोक सकता किसी भी सूरत में। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में उसको पढ़ने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का अधिकार, ये सारे अधिकार मानवाधिकारों की श्रेणी में आते हैं। और ये तभी तक लोगों को अवेयरनेस मिलती है जब वो इसके बारे में जागरूक होंगे, तभी जान पाएंगे ना कि मेरा क्या अधिकार है और मुझे किस वक्त पर कौन से अधिकार का प्रयोग करें।
0: देखिए भाई, ये वाकई सही है, और इसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अब ये इनिशिएटिव्स कैसे लिए जाते हैं? सो ना सिर्फ जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन सभी लोगों को भी बताने की कोशिश की जाती है जिन्हें इन अधिकारों के बारे में जानकारी है ही नहीं। यहाँ पर मैं एक जरूर बात सोच रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो मात्र इलिटरेट हो या फिर उनकी आजीविका कम हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, आपके अंदर विजडम भी है और आपके पास पैसा भी है, पर क्योंकि आपको इन अधिकारों की जानकारी नहीं है, सो कहीं ना कहीं इन चीजों का खनन भी हो जाता है। सो कैसे पता लगे इसके बारे में और किस तरीके से आप इसे पूरा जान सकते हैं, ये बहुत सारी बातें बताई जाती हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन द्वारा। सो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश कर रही है, कैसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब बड़ा अहम सवाल है, आपकी एसोसिएशन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल रही है, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें अपने मानव अधिकारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। भाई, राइट टू स्पीच तो सबको पता है, लेकिन आज के जमाने में कहां पर बोलना है और कहां पर चुप रह जाना है, किन चीजों के बारे में बोलना है, कितनी फ्रीडम आपको जरूरी है पढ़ने की, लिखने की, साथ के साथ इस अपने ही देश में फ्री रहने की भी आपके पास ये अधिकार है, पर बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीली रह भी नहीं सकते हैं, कभी जाति के या फिर आप कहिए कभी धर्म के कारण अलग अलग चीजों में बांट दिया जाता है, संप्रदायों में बांट दिया जाता है। सो आप लोग किस तरीके से ये परसेप्टिव्स बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग लोगों की मदद करते हैं?
1: देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अपना बाजू घुमाने का अधिकार है, लेकिन जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है वहाँ से आप बाजू नहीं ले जा सकते ना।
0: यस,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्ट ईच अदर, आप अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने आप को स्वतंत्र भी रखिए और सामने वाले जो आपका व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा करना भी आपका उत्तरदायित्व है।
0: जी,
1: जब तक हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होंगे, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा नहीं जान कर पाएंगे, तो हम समाज में जागृति नहीं ला सकते।
0: जी,
1: मैं चाहूँ कि मैं किसी के अधिकार का हनन करूँ और दूसरा मेरे अधिकार की रक्षा करे, ये पॉसिबल नहीं है ना।
0: एक्चुअली
1: तो हम लोग यही ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कि आप लोग स्वच्छंद रूप से घूमिए, अच्छे बाग के माली बनिए, अच्छे फल फूल लगाइए, लेकिन सुगंध लेने का अधिकार सभी को दीजिए, ताकि देश का हर नागरिक स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए स्वच्छंद रूप से जी सके, उसमें किसी भी तरह का धर्म, जाति या लिंग भेद नहीं होना चाहिए।
0: वाकई बिल्कुल सही कहा। और अगर हम देखें सो हमारे देश की एक बहुत बड़ी परेशानी यही है कि बहुत सारे धर्म हमारे देश में हैं, और जब हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करता है सो उसका सारा का सारा दारोमदार ये होता है कि भाई मेरा धर्म सर्वोपरि है। बट जब हम दूसरों के बारे में सोचें तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बैलेंस जरूर मेंटेन किया जाए, क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है ना हमारे देश में,
0: जी,
1: उसमें सबसे बड़ी ये है कि हर बंदे को अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने का अधिकार है, लेकिन उसको दूसरे के धर्म की आलोचना करने का अधिकार नहीं है।
0: yes.
1: उसको अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखनी है, उसकी पूजा पद्धति जो भी है उसको अडॉप्ट करने का उसको अधिकार है, बजाय उससे दूसरे की किसी भी भावना को ठेस ना पहुंचे और उसके किसी चीज में खलल पैदा ना हो, तो ये जरूरी है।
0: सो दोस्तों, जब हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं सो ये बात जानना बहुत जरूरी है, और आज मुझे लगता है एडवोकेट अशोक जी ने एक बड़ी अहम बात कही है कि हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम अगर अपने दिल से उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, हमारी प्रैक्टिस है, कई बार वो हमारी सिर्फ एक फेथ भी हो सकता है, लेकिन हम उसे फॉलो कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है और ये हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसके कारण हम किसी को यानी किसी और को ना तो हम परेशान कर सकते हैं और ना ही उसके कारण हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है या आपका धर्म खराब है। सो ये सब कुछ कहीं भी अलाउड नहीं है, खास तौर पर हमारे देश में। सो अगर आप इस देश में खूबसूरती से जीना चाहते हैं, अपने अधिकारों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि आपके अधिकारों के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का पहला कदम ले लिया है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन ने, और इस अलग को लेकर चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, ये कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फील गुड, फील लाइव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ। अशोक जी, आप एक लायन है, यानी आप लायंस क्लब संस्था के साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे समय से, और उसी के साथ साथ आप ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन में एक्टिवली काम कर रहे हैं। पेशे से आप एक एडवोकेट तो हैं ही, मुझे ये बताइए आप इतना सारा धर्म का काम और साथ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं?
1: मैम, ये बस आप लोगों की दुआ है कि परमात्मा ने कार्य सौंपा है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर जिस नेक कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं
0: जी,
1: अगर वो हमसे बेहतर तरीके से हो सकता है तो हो जाता है
0: जी।
1: मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं, बहुत लोग बहुत बहुत काम इकट्ठे करके चल रहे हैं, कोई 10 काम कर रहा है, कोई 5 काम कर रहा है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि जिस भी कार्य में जुड़ा हूँ उसको अपना 100% दूं, ताकि उस उद्देश्य को सफल कर सकूं जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया है।
0: अशोक जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि लोग दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, या तो पावर या पैसा। लेकिन अगर मैं आपको कभी भी देखती हूँ, तो आप हमेशा मानवता की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। यानी ना तो आप इस चीज को देख रहे होते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं इससे और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, या मुझे और बहुत ज्यादा नाम कैसे मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप लोगों तक हमेशा अच्छी सलाह, अच्छी जानकारी और शायद उनकी मदद करने में लगे रहते हैं। सो ये भावना कहाँ से आती है?
1: ये मैम, अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मेरे दादाजी जब पाकिस्तान से आए थे
0: जी,
1: जब विभाजन हुआ था हमारे देश का
0: जी,
1: तो उनके जो सोच थी वो बहुत कुछ वहाँ छोड़ के आए थे
0: जी,
1: इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ये बात की प्रेरणा दी कि बेटा, ये कुछ चीजें साथ नहीं जाती, साथ सिर्फ वही जाएगा जो आपने अपने नेक कर्मों से कमाया है। क्योंकि आज तक भी वो उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज तक भी जिला मुल्तान में उनके बहुत से संपर्क के साथी हैं, जिनके कई बार कॉल और फेसबुक पे मैसेज या मैसेंजर पे मेरे पास आते रहते हैं कि हम आपके दादाजी को बहुत स्मरण करते हैं।
0: वाह।
1: तो ये चीजें जो मेरे मन में घुसी, तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज के किसी भी उस व्यक्ति तक काम आ सकूं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। आप जानते हैं कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, हम लोग करते हैं सरकार से कि सरकार हर कदम पे पहुंचे, नहीं पॉसिबल है। आप मीडिया से जुड़े हैं, मैंने भी काफी साल मीडिया में काम किया है, हम लोग प्रशासन को जगाने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन को हर द्वार तक नहीं पहुंचा सकते
0: जी।
1: लेकिन सोशल संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जो हमारे संपर्क में साथी होते हैं, ये छोटी छोटी गलियां मोहल्लों में हर जगह से जुड़े होते हैं, इन्हें पता होता है कि किस व्यक्ति को किस जगह पे क्या जरूरत है
0: जी,
1: तो उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकारों की अलग हम जगा ही रहे हैं
0: जी।
1: हम छोटे छोटे बच्चों को जो जिनके स्कूल में किसी की फीस नहीं भरी जा रही, उसकी फीस भरने में मदद करते हैं, किसी के पास गर्म कपड़े नहीं है उसको कपड़े देने का प्रयास करते हैं, किसी के पास पुस्तकें नहीं है तो उसमें उसकी मदद करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी में मदद करते हैं। आज हमारा संगठन देश के 40 जिलों में इन कामों में लगा हुआ है।
0: जस्ट इमेजिन, मतलब सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि इमेजिन करिए, इतनी सारी जगह पर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीजें पहुंच पाए जो एक्चुअली हर इंसान का एक सपना होता है। सो एक अच्छी जिंदगी हर किसी का सपना होता है, बट परेशानी ये है कि अच्छी जिंदगी हर किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, हम थोड़ी सूझबूझ से, थोड़े अपनी मेहनत से और थोड़े से शेयरिंग से ये पॉसिबल कर सकते हैं। सो देखिए, भगवान ने जब देने के लिए शायद हाथ बढ़ाया, सो उन वो इक्वली हर किसी को बहुत कुछ चीजें नहीं बांट पाए, और ये पॉसिबल भी नहीं होता है। सो हुआ क्या कि किसी के झोली में बहुत ज्यादा और किसी के झोली में बहुत ही कम, और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इससे वंचित रह गए। लेकिन जिसके पास ज्यादा है, भगवान ने कभी भी नहीं रोका है कि आप उसकी झोली ना भर पाए या उसकी झोली में थोड़ा सा ना डाल पाए जो वंचित रह गया या जिसके पास कम है। सो आई थिंक अशोक जी इस खूबसूरत सी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर उस इंसान तक पहुंच जाएं जिसे उनकी, या फिर कहना चाहिए किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है, और ये अपने आप में वहां मदद बनकर पहुंच कर लोगों की बहुत सारी सहायता कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM के साथ। Feel good, feel light.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी के साथ, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, अब एक अहम सवाल, आपकी ये जो ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन है, आप इसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, बट जिस प्रकार से आप 40 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली एसोसिएशन काफी बड़ी है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। सो कितनी बड़ी टीम है आप?

0: जिसमें कि बच्चों के दांतों का चेकअप होगा, जिन बच्चों के पास पेस्ट या ब्रश नहीं है उनको पेस्ट और ब्रश वितरित किए जाएंगे ताकि लोग अपने दांतों की संभाल कर सके। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं।
1: भाई बहुत ही अच्छी बात है 1500 डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की टीम होना, जो ना सिर्फ अपने कीमती समय में से, अपनी व्यस्त जिंदगी में से समय निकाल रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि इतनी बड़ी टीम के साथ कितना खूबसूरत और नेकी का काम किया जा रहा है। अशोक जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मान लीजिए कि कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, कोई वॉलंटियर करना चाहता है या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है और अगर हाँ तो कैसे?
0: और इसके लिए मैम हम कुछ ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं है, जो भी व्यक्ति के मन में भावना है कुछ दीन दुखियों की सेवा करने की, तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेलकम है उसका, हमारे साथ आए जुड़े। आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है और उसमें हम, अगर आप चाहे तो हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं
1: जी।
0: फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके वो हमसे संपर्क कर सकता है, फिर उसके बाद जिस भी तरीके की वो हमें सहायता करना चाहे खुल के कर सकता है और हम उसके माध्यम से भी उसको सेवा कार्यों में जोड़ सकते हैं।
1: सो अगर आपको लग रहा है कि आप मोटिवेट हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी में पा तो बहुत लिया, चलिए कुछ दे कर भी आते हैं, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्यों ना हम आगे बढ़कर किसी की मदद करें। सो अगर ऐसी भावना आपके दिल में आ गई है तो आरजे भावना आपको इनवाइट कर रही है कि आइए कदम बढ़ाइए ह्यूमैनिटी की तरफ, यानी मानवता की तरफ, और आप भी जुड़ सकते हैं नेशनल इस खूबसूरत सी पहल के साथ जो अब हमारे देश के करीबन 40 डिस्ट्रिक्ट्स में है, ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन। सो एक नेशनल इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के साथ आप जुड़ सकते हैं और इसके लिए अगर आप देश के किसी भी कोने में हमें सुन रहे हैं सो आप जरूर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 8010781078 पर। जी हाँ, मानवता की राह पर मैं आपके साथ हूँ, आप हमें मैसेज करिए और बताइए कि क्या आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर ऐसे ही मानवता के ढेर सारे काम करना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक और छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाना, जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने ढेर सारी बातें की एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी से, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के। अशोक जी, ढेर सारी बातें की, बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट कर दिया। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना सब कुछ जो पा लिया है जीवन में, इसे लेकर तो जा नहीं पाएंगे। सो चलिए कुछ यहीं पर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। सो जाते जाते सभी लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे आप?
1: देखिए, मैं चाहता हूं कि परमात्मा ने अगर हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने एक सामाजिक दायरे से, अपने पारिवारिक दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल के देने का सामर्थ्य है, तो कुछ ऐसा दे के जाइए, कुछ ऐसा करके जाइए जिससे ये समाज और ये मानवता आपको याद रखे। कल को आने वाले वक्त में लोगों को इस नाम से जाना जाए कि वो, देखिए, इंसान तो चला गया पर वो ये काम करके गया, और वो काम हमेशा युगों युगांतर तक जीवित रहना चाहिए। ऐसा जरूर हर इंसान को अपने लाइफ में एक कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे वो किसी के काम आ सके, किसी के आंसू पोंछ सके और किसी निरीह व्यक्ति की रक्षा कर सके।
0: कितना खूबसूरत सा संदेश है। देखिए, ये तो फैक्ट है कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कभी हम ऊंचाई पर होते हैं और कभी ऐसा होता है कि जीवन उथल पुथल भरा होता है। पर ऐसे में याद रखिए कि जब आप ऊंचाई पर हैं और जब आपके पास समय है, आपके पास निधि है, आपके पास किसी भी प्रकार का साधन है, तो आप लोगों की मदद जरूर करिए, जिससे उथल पुथल भरी जिंदगी पहली बात तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो वो समय बहुत खूबसूरती से कट जाएगा। और आपके पास और कुछ नहीं लेकिन लोगों की दुआएं, प्यार और साथ जरूर होगा। और इसीलिए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सिर्फ और सिर्फ लोगों से कंपटीशन करते हैं, आइए फिर से याद रखें कि हम इंसान हैं, थोड़ी सी मानवता फैलाएं। तहे दिल से धन्यवाद एडवोकेट अशोक चोपड़ा जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, आपने हम आपके माध्यम से हमारी संस्था बहुत लोगों तक पहुंचेगी और मैं चाहूंगा कि लोग हमसे जुड़े और हम इस संस्था को और आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।
0: वाकई। सो दोस्तों, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, मानवता की राह पर चलना है ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन के साथ। वक्त है आपसे इजाजत लेने का। सो मैं आरजे भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत, होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। Feel good, feel light.

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसमें मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जो न सिर्फ सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, लेकिन उनकी खुद की एम्पावरमेंट की एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी है। इस जर्नी को मैं आप तक लेकर आती हूँ और महिलाओं तक ये संदेश देने की कोशिश करती हूँ कि महिलाओं को अपने जीवन में किस तरीके से सशक्तिकरण को इम्बाइब करने की जरूरत है। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक आर्टिस्ट है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये गुरु हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था पद्मभूषण डॉक्टर राजा राधा रेड्डी ने 1976 में, और ये उसकी पहली डिसाइपल भी हैं। सो इस स्कूल की पहली 3 डिसाइपल्स में से रही हैं कौशल्या रेड्डी। लेकिन इसके अलावा इनका नाम हमेशा से जुड़ा रहेगा उस परंपरा सीरीज के साथ, जो एक एनुअल परंपरा सीरीज है जो हर साल 1998 से नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस न्यू दिल्ली का हिस्सा बनी रही है। और इन्होंने न सिर्फ हमारी कला और संस्कृति को इस पूरे देश तक पहुंचाया है, लेकिन विश्व के अलग अलग कोने तक पहुंचाया है। तो आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। हार्टी वेलकम टू यू कौशल्या जी।
2: नमस्कार भावना, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: कौशल्या जी, द प्रोग्राम इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड यू आर ए ट्रूली एम्पावर्ड पर्सन। So knowing you, meeting you and today interviewing you is a pleasure. I want to know what according to you is women empowerment. How do you perceive it?
2: मुझे लगता है कि कोई हमें empower करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पे ही depend करता है कि how we conduct and how we place yourself in our life and how we allow people to respect us and make us do and accept us the way we are. अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आप में बिलीव करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स को जानना चाहिए एंड उसी प्रकार से अपने आप को जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करना चाहिए। किसे हमें बताने की जरूरत नहीं है।
1: So sweet, I think this is so very clear. This is real empowerment. An empowered woman would say that you should know how people should respect you, and if you feel that you are not respected equally or you are not respected in any place, I don't think that place belongs to you. And this is real empowerment where women really know how to live their lives on their own without the support, or rather saying without compromising with their happiness. जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, यानी आपको एक बड़ा बेहतरीन सा गाना सुना रही हूँ। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट में। आपको भी पता है महिला सशक्तिकरण मेरे दिल के कितना करीब है। हमारे रेडियो मानव रचना का लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट यानी एक लंबे समय से इस कार्यक्रम को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। ढेर सारी सशक्त महिलाओं से आप मिलते हैं। न सिर्फ वो सशक्त महिलाएं अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटती हैं, आपको उनके बारे में बताती हैं, लेकिन साथ के साथ हमें जीवन को सही ढंग से कैसे जीना है इसकी भी सीख हमें दे जाती हैं। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, कौशल्या रेड्डी जी। वैसे तो ये एक गुरु हैं और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी जो एनुअल परंपरा सीरीज है वो हमारे नई दिल्ली और कहना चाहिए उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौशल्या जी, अब अगला सवाल। विमेन आर ऑलवेज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ चैलेंजेस। How do you define which are the challenges that currently we are facing? You know, though we are saying we have a lot of opportunities, we have access to a lot of things, but yet, you know, there are a lot of challenges that we have to face.
1: मुझे लगता है कि जैसे कि when we are truly we are empowered, but at the same time, male chauvinism बहुत बड़ा चीज है हमारे society में। इसमें क्या होता है कि कई दफा हम लोग दबाव में आ जाते हैं as a wife, as a daughter. एंड इसमें क्या होता है कि यू हैव टू लर्न कि किस तरह उस दबाव में ना पड़ते हुए अपना बात क्लियर रखें और उस आदमी जो हमारे लाइफ में है या चैलेंजेस जो हमारे लाइफ में है उसको किस प्रकार से उस आदमी को बताएं या उस इंसान को बताएं या उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी पोजिशन आवर सेल्फ। इट इज अबाउट अपने आप में बिलीव करना, खुद कॉन्फिडेंट रहना और किसी के दबाव में ना आना, ना कोई सिचुएशन के दबाव में आना।
0: ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मतलब सबसे पहली चीज कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है,
1: वेरी इम्पोर्टेंट।
0: बट द चैलेंजेस कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो महिलाओं में नहीं नजर आता है। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अपने ऊपर भरोसा कर पाती हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये भरोसा मिलता ही नहीं है, ये सपोर्ट उन्हें मिलता ही नहीं है। क्या कहेंगी आप?
1: ये सही कह रहे हैं आप कि ज्यादातर हमारे सोसाइटी में यही कहते हैं कि यू नो लेडीज शुड बी गिविंग इन, हम हैं होम मेकर्स, ध्यान देना चाहिए, लेडीज यू नो संभालती हैं ज्यादातर, मेन आर नॉट यूज टू एडजस्टिंग। ये सब तो कहने के लिए ठीक है, बढ़िया है, बट इस वक्त फिलहाल जिस प्रकार से हमारी एजुकेशन हो रही है और जिस प्रकार से हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जॉब में हो कोई भी करियर में हो, हमें दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, दैट वो इंसान जो हमें रेस्पेक्ट करें, जो इंसान हमारे काम को रेस्पेक्ट करें, हमें एक व्हाट यू कॉल दर्जा दें, वो जरूरी है। उस दबाव में ना पड़ते हुए वन कैन इंडिपेंडेंटली वेरी कंफर्टेबली लिव। सो आई वुड से कि बी इट इज नाइस बट येट एट द सेम टाइम डोंट गिव इन।
0: सो स्वीट एक्चुअली। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि भाई रिस्पेक्ट डिराइव करना आना चाहिए, आपको ये तरीका आना चाहिए कि आप किस चैलेंज को चैलेंज समझ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली एक चैलेंज है तो उसे भी मोल्ड करके उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है। बस तो जरूरत ये है कि आप उस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रहे हैं।
1: बट आप देखो भावना,
0: यस
1: लेडी, इनफैक्ट अगर लेडी का रोल जो है, नारी का रोल जो है, वही सबसे बड़ी मैनेजर है।
0: यस,
1: लाइफ में मैन कहाँ पे इतना कर रहा है, आदमी ने कितना एडजस्टमेंट किया है। एक माँ, एक बेटी के तरह हमने एडजस्ट किया है। एक नया घर में जाते हैं शादी करके, पूरा माहौल अलग रहता है, उसमें हम एडजस्ट होते हैं, उस आदमी को भी संभालते हैं जो अपनी माँ के ज्यादा दबाव में या इन्फ्लुएंस में रहता है। देयर सो मच अ लेडी, द काइंड ऑफ लेडी मैनेजमेंट कर सकती है, नो अदर पर्सन कैन। द काइंड ऑफ द स्किल वी हैव, नो अदर ह्यूमन बींग हैज।
0: सो ट्रू। सो भाई सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम ही सुपीरियर हैं। ये जो सुपीरियर जेंडर है ना, ये महिलाएं हैं। सो जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें ऐसा लगेगा ये समाज, ये सारी कुरीतियां या फिर ये सारी चीजें, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन जिस दिन आपको पता लग जाएगा आप सुपीरियर जेंडर हैं, आपके लिए लाइफ और भी आसान हो जाएगी। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। दरअसल ना ये कार्यक्रम जो है महिला सशक्तिकरण का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वी के जरिए हम ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं जब एक साथ आ जाती हैं तो वो चीजों को बहुत हद तक बदल पाती हैं, यहाँ तक कि समाज को भी। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, कौशल्या रेड्डी जी। कौशल्या जी, अब हम जानते हैं यू've been actually transforming life and I've seen one thing, अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, so in all the phases of life if you see in rest of any profession we've seen that there is lot of inequality, but I think artists and dance and music, rather I should be saying culture, this is the only place where everybody is equal. So how have you empowered so many women? You have been an integral part of Natya Tarangini Kuchipudi Dance School. How has been your journey and how was it, you know, to impart this beautiful art to so many other women?
1: भावना, एक बात तो आपको बता दूं क्लियरली, पूर्व काल लाइक 1960s और 70s में ज्यादातर मेल मेंबर्स वर डांसिंग।
0: वाओ,
1: धीरे धीरे, और मेल मेंबर्स ही फीमेल रोल्स प्ले कर रहे थे। आप देखिए ना, आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, इस वक्त फिलहाल ओनली गर्ल्स आर डोमिनेटिंग द आर्ट फील्ड एंड गर्ल्स आर टेकिंग द मेल रोल्स, उल्टा हो गया अभी।
0: यस,
1: एंड देखिए डांस और म्यूजिक के थ्रू जो अपने क्लासिकल आर्ट्स है ना, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक तो अपना गाथाएं के बारे में बताते हैं, बड़े हीरोज एंड ग्रेट स्टोरीज बताते हैं, महाभारत हो या द्रौपदी हो, सीता मैया हो, जो भी है, ऑल दिस यू नो, दे से हाउ दे हैंडल इट, हाउ दे वेंट थ्रू द हार्डशिप्स एंड दे कॉन्कर्ड इट करके। एंड टू, इसमें कॉन्फिडेंस, dance, music, it gives you a lot of confidence in society, the way you move, the way you conduct yourself, it has a major role when you have these educations in it. So classical arts play a very important role in a lady's confidence in conducting herself society mein and on stage. एंड सो मैनी पेरेंट्स आजकल चाहते हैं कि हर बच्चा, आप बिलीव नहीं करोगे कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस सिखा रहे हैं कंपेयर टू अर्लियर। सो दैट इज बिकॉज दे बिलीविंग कि बच्चे में एक कॉन्फिडेंस, एक बच्चे में एक सोसाइटी में अपने आप को कंडक्ट करना एंड अब सोसाइटी में अपना सर उठा के जीना सिखाता है आर्ट्स। So that way, I'm very lucky that I'm heading this Natya Tarangini now. And उसी के द्वारा हम लोग अपने कलाओं को बहुत बढ़ावा देते हैं, जैसे परंपरा कर रहे हैं, 29 साल है ये साल परंपरा का। And we have always great masters आके यहाँ पे नई दिल्ली अपने कैपिटल में परफॉर्म करते हैं। The whole idea is best of the best अपने राजधानी को लेके आए और अपने सोसाइटी को दिखाएं। आजकल यूथ, अपने यंगस्टर्स बहुत कुछ अपनी कलाएं के बारे में, अपने गाथाओं के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानने चाहते हैं, अपने संस्कृति के बारे में जानने चाहते हैं। सो दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ये मुझे मौका दे रहे हैं वो।
0: वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली कौशल्या जी, दिस इज वन बिग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव एंड डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू होल्ड। जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है आपको सुनाने का एक और बेहतरीन सा गाना, बट आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइक।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी और आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। अब मजेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं के लिए जब कभी भी हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स की बात करते हैं तो न सिर्फ ये हमारे ट्रेडिशन को रिवाइव करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन साथ के साथ अगर आपने देखा हो तो नृत्य के जरिए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जो आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी है महिलाओं के लिए। सो महिलाएं बड़े स्ट्रेस्ड रहती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक हो सकती है उन्हें हील करने की। क्या कहेंगी कौशल्या जी आप? आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टेक्निक।
2: भावना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रेसर है, स्ट्रेस बस्टर है। क्योंकि देखिए ना, तब आप डांस कर रहे हैं या म्यूजिक कर रहे हैं, आप वो एक घंटा या दो घंटे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस वक्त आपको किसी भी प्रॉब्लम का, कोई चीज का कोई ख्याल ही नहीं आता, इवन कोई थॉट ही नहीं आएगी आपके मन में। यू आर एक्चुअली, कहते हैं ये जो कला जो है, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग स्पेशली डांस, कहते हैं कि इट यूनाइट्स यू विद द ऑलमाइटी, भगवान के साथ आप एकत्र हो जाते हो। तो भगवान के साथ एकत्र हो के आपका कोई ना परेशानी, ना कोई व्हाटएवर वरीज हो या प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज उस एक दो घंटे में आपका लिए टोटली आप फ्री हो उससे। इसमें क्या होता है, मन की शांति, एक आराम, सम काइंड ऑफ तृप्ति, हैप्पीनेस आ जाती है। सो इससे बढ़िया कलाओं के, क्रिएटिव आर्ट से बढ़िया और कोई चीज है ही नहीं। द बिगेस्ट, मैं कहूँगी, स्ट्रेस बस्टर खाली अपनी क्रिएटिव आर्ट्स में है। एंड दैट वे, दैट इज द रीजन, इवन कोविड के समय वी वर वेरी हैप्पी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट जनरेशन हमसे डांस सीखा, अभी सेकेंड जनरेशन भी आ रहे हैं उनके बच्चे।
1: वाओ,
2: बिकॉज दे बिलीव इन सच अ थिंग कि इसमें कुछ सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, आनंदम है आर्ट्स में।
1: एक्चुअली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक महिला को एजुकेट करते हैं, इफ अ वुमन गेट्स एजुकेटेड, शी एजुकेट्स द एंटायर फैमिली, शी कैन एजुकेट द एंटायर सोसाइटी, एंड डेफिनेटली दैट गोज फॉर अ कंट्री। सो अगर आप कहीं परिवार की चार पांच महिलाओं को भी कोई खूबसूरत सा आर्ट फॉर्म सिखा देते हैं, तो आप सोचिए कि वो घर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशंस को कितनी खूबसूरत डांस फॉर्म से कनेक्ट कर सकती है। हमारे कल्चरल और क्लासिकल ट्रेडिशंस को जिंदा रखने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। सो मुझे लगता है नॉट ओनली इट हेल्प्स शेप देयर फ्यूचर, बट ऑल्सो इट हील्स देम एंड मेक्स देम मोर कॉन्फिडेंट। सो शायद कहीं ना कहीं हमें हर किसी को, मैं तो ये कहूंगी आप महिलाएं या पुरुष, किसी ना किसी तरीके के किसी डांस फॉर्म या किसी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के साथ जुड़े जरूर रहिए, और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत से एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी से, जो एक रिनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, जो गुरु और आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। अब हम बात करने वाले हैं उस परंपरा सीरीज के बारे में जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आने वाले समय में आप ये परंपरा की खूबसूरत सी सीरीज खुद विटनेस कर सकते हैं। सो हमारे नई दिल्ली में नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस 1998 से चला आ रहा है। सो आपसे जानना चाहूंगी कौशल्या जी, ये परंपरा सीरीज दरअसल क्या है, कौन सी परंपराओं की हम बात कर रहे हैं और किस प्रकार से आप अलग अलग आर्टिस्ट को यहाँ तक लेकर आती हैं?
1: देखिए, परंपरा आप तो जानते हो, इट इज कैरिंग ऑन एंड टेकिंग फॉरवर्ड
0: जी।
1: एंड इसमें जो है हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, डांस, कर्नाटक साउथ का म्यूजिक एंड साउथ का डांस, एनी डांस फॉर्म, एनी म्यूजिक। बेसिकली परंपरा हम लोग नाट्य तरंगिनी ओनली प्रमोट एंड प्रेजेंस क्लासिकल आर्ट्स। पहले अर्लियर जैसे अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी थी, अमजद खान साहब थे, ये सब परफॉर्म किए हैं। एंड इसमें क्या है कि ऑडियंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाके उनको एक्सपोज करें, उनको आनंद दें। देखिए, आप सभागार जाके बैठ जाते, वो दो घंटे में जो सुकून, हैप्पीनेस यू फील उस वक्त, दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू गिव टू द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी

0: Shrijetan Parvati, and Rahul Acharya, a very stunning solo performer hai. So and Jugalbandi hai, jo north aur south ka jo hai, tabla aur mudang ke beech mein percussion ka Jugalbandi. Different variety of programs laate hain taki society mein logon ko iska aanand uthane ka mauka mile. And hame bhi bahut acha lagta hai ye karne ke liye. Ek some kind of a very happy feeling hai to bring this to the thing. Ye aisa lagta hai jaise hum apne ghar mein shaadi kar rahe hain har saal. So this is the beauty and the aanandam and the happiness we get.
1: So imagine kariye na ki agar aapko ye mauka chukna hi nahi hai. So is baar ke is khaas festival ka hissa aap bhi ban sakte hain. Aur best part ye hai ki na sirf hum apne क्लासिकल आर्ट से जुड़ रहे हैं लेकिन साथ के साथ हम अपने ट्रेडिशंस को रिवाइव कर रहे हैं. और खूबसूरत बात यह है कि जैसे कौशल्या जी ने कहा कि आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं, आप ऑडिटोरियम में जाते हैं और उसके बाद इस खूबसूरत से आर्ट फॉर्म को जब आप देखते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं उस ऑलमाइटी के साथ, आप उस डांस के साथ, उस रिदम के साथ, उस म्यूजिक के साथ, और आप बड़ा ही डिस्ट्रेस्ड और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को शायद कला और किसी न किसी तरीके के इन फॉर्म्स के साथ जुड़े जरूर रहना चाहिए, तरीका कोई भी हो सकता है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. ले रही हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक. फील गुड फील लव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। आज हम बात कर रहे हैं कौशल्या रेड्डी जी के साथ, जो एक रेनाउंड कुचिपुड़ी आर्टिस्ट हैं, गुरु हैं, आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल। कौशल्या जी, ढेर सारी बातें हमने आपसे की, इनफैक्ट वी केम टू नो अबाउट द नेशनल फेस्टिवल परंपरा सीरीज विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सीरीज। बिसाइड्स दैट, नाट्य तरंगिनी कुचिपुड़ी डांस स्कूल हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल सिंस 1976, विच इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ, आई शुड से, यू नो, नॉर्थ इंडिया, विच इज नॉट ओनली गिविंग आउट ब्यूटिफुल क्लासिकल आर्ट बट इट इज एक्चुअली एम्पावरिंग लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द सोसाइटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। बट बिफोर यू लीव, वॉट इज वन मैसेज यू वॉन्ट गिव आउट टू ऑल?
1: आई वुड से, व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, believe in yourself. That is what is going to make you achieve and make you happy in life. So be happy, be content in life. That is the most beautiful thing that you can gift yourself.
0: Hey, वाकई खुशी एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया में कहीं ढूंढने जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर इसे महसूस करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। तो खुश रहना बहुत जरूरी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपने आप को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म से जोड़े रखिए, जो ना सिर्फ आपके लिए आराधना का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन साथ के साथ डिस्ट्रेस होने का, खुश होने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। बहुत अच्छा लगा कौशल्या जी आज आपसे बात करके, ना सिर्फ इन आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता लगा, जो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं समाज के लिए उसके बारे में पता लगा, और साथ के साथ बहुत सारे लोगों तक इस खूबसूरत से नेशनल फेस्टिवल के बारे में पता लगा। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना, आई होप मेरा टूटा फूटा हिंदी साउथ इंडियन हिंदी वॉज ओके।
0: डेफिनेटली इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड यू हैव रीच्ड द हार्ट्स ऑफ द लिसनर्स।
1: थैंक यू
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार? रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये प्रोग्राम जो पूरे घंटे का होता है जहाँ आप लोगों से द एनिमल वर्ल्ड में मैं बहुत सारी बातें एनिमल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ, कुछ उनसे जुड़ी किस्से कहानियाँ भी आपके साथ में शेयर करती हूँ और इसी के साथ ही होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। जी हाँ, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ लेकर के ढेर सारे गाने और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही डेंजरस बर्ड के बारे में। ये बर्ड कौन सी है ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी डेंजरस बर्ड के बारे में सुना है? अगर आपने कुछ पढ़ा है या सुना है या कभी कोई किस्से कहानी आपने सुनी है तो आप हमसे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपने किस बर्ड के बारे में सुना है। हो सकता है जिस बर्ड के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आपने भी उसी के बारे में ही सुना हो, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। हमारा नंबर है 8010781078। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी बर्ड के बारे में या किसी एनिमल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जिस एनिमल की फरमाइश की है मैं उसके बारे में बताऊं, तो आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कीजिए। आप टेक्स्ट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप के ज़रिए से ये जानकारी भेज सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM पर और प्रोग्राम है द एनिमल वर्ल्ड। और द एनिमल वर्ल्ड में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसी बर्ड के बारे में जो कि बेहद खतरनाक होते हैं। जी हाँ, जब भी हम बर्ड का नाम लेते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, छोटी सी है ना वो चिड़िए और जो बर्ड्स हैं वो हमें महसूस होता है, हमें उनकी वो उनका जो चेहरा है वो याद आता है। लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं इस दुनिया में जो बहुत ही ख़तरनाक होती है, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। डरावनी आंखें, उभरा हुआ सर, मगरमच्छ की तरह ये ख़तरनाक दिखने वाला जो ये पक्षी है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक बर्ड में माना गया है और इसे कहते हैं कैसोवेरी। जी हाँ, और ये ना सिर्फ इंसानों को गहरी चोट पहुंचा सकता है बल्कि जान भी ले सकता है। जी हाँ, एक से ज़्यादा मामले ऐसे सामने आ भी चुके हैं इसको लेकर के, और ये अपने बड़े और नुकीले पंजों से मारकर बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है, इसलिए इसे ख़तरनाक पक्षी माना जाता है। तो कैसोवेरी के बारे में हम बात करें, क्या आपको आज से पहले इस पक्षी के बारे में मालूम था? अगर नहीं तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरह ये ख़तरनाक, यानी किस कदर ये हम सब के लिए ख़तरनाक हो सकता है। चलिए इसके बारे में और ढेर सारी बात करेंगे, उससे पहले इंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी बर्ड के बारे में बता रही हूँ जो कि हर मामले में बेहद खतरनाक है, और इसका नाम है कैसोवेरी। ये आमतौर पर वैसे कहते हैं कि काफ़ी शर्मीले और मायावी होते हैं, वैसे खुद ये इंसानों से दूर रहना चाहते हैं, उनके सामने ये नहीं आना चाहते हैं, इसलिए इनसे कई बार डरने की जरूरत नहीं भी होती है। लेकिन इनकी जो संरचना है, जो बनावट है, वो तो खतरनाक है ही, मतलब आपको ये देखने में ही खतरनाक लगेंगे। अगर इनके भीतर से, अगर इनके अंदर से इंसानों का डर अगर निकल जाए तो ये और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। जंगल में कैसोवेरी मिल जाए तो उस वक्त आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उस वक्त आप अलर्ट रहिएगा। ये अपने अंडों और चूजों की रक्षा करने के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं और इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। फिर वो चाहे इनसे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, साइज में जितना बड़ा होता है इनको फर्क नहीं पड़ता है, बस ये हमला कर देते हैं। कैसोवेरी हमला करने से पहले गड़गड़ाहट की आवाज निकालते हुए गर्दन और सिर को नीचे करते हैं और ये चेतावनी दे रहे होते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ वरना मैं हमला कर दूंगा। तो ये इनकी चेतावनी होती है। इनके नाखून, अगर मैं आपको बताऊं तो एकदम खंजर जैसे होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और पता ही है कि ये कितने लंबे नाखून, जो एक बार अगर धंसे तो वो कितने दूर तक, कितने गहरे जख्म कर सकते हैं। अगर ये किक मार दे तो इससे कई हड्डियां टूट सकती हैं सिर्फ इनकी एक किक से। और कहते हैं कि कैसोवेरी को जब इंसान कुछ खिलाते हैं तो उस समय ये ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इन्हें कुछ खिलाएंगे तो ये हमारे पालतू हो सकते हैं, या हम इनको प्यार कर सकते हैं, हम इनके सर पर हाथ फेर सकते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि कितना ख़तरनाक है। तो कैसोवेरी अगर आपको दिखता है तो आप दूर रहिए, अलर्ट रहिए, कब आप पर हमला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से जंगली होते हैं और इन्हें दोस्त समझने की गलती तो आप भूल कर भी ना कीजिएगा। तो आप दूर से देखिए लेकिन आप अलर्ट रहिए इसके लिए, और कुछ भी खिलाइए पिलाइए नहीं इसे, वरना ये आप पर हमला कर सकता है। तो कैसोवेरी के बारे में चलिए और बहुत सारी बात करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने। तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसोवेरी बर्ड के बारे में। देखिए, हर किसी को पक्षी पसंद होते हैं। आसमान में उड़ते हुए देखना और उनकी आवाज़ों को सुनना हर किसी को पसंद होता है। वैसे तो पक्षियों की प्रजातियाँ बहुत सारी होती हैं और हर पक्षी अपने आप में खास होता है। किसी की आवाज़ बहुत मीठी होती है तो किसी का रंग बहुत शानदार होता है, कोई बहुत खूबसूरत दिखता है तो किसी का आकार इतना छोटा होता है कि देखकर ऐसे ही वो बड़ा प्यारा लगता है। तो कई तरह के पक्षी हैं और उनमें से कुछ पक्षी जो बेहद शांत होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। और ऐसा ही एक आक्रामक पक्षी जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड में, यानी कि इससे बचने की ज़रूरत है। इंसान हो या बाकी कोई प्राणी, बाकी कोई जीव, सभी को इससे ख़तरा होता है और अपनी आत्मरक्षा के लिए ये उस पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। और यही कारण है कि कैसोवेरी का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है। ख़तरनाक पक्षी का खिताब जो है वो इसको दिया गया है। जी हाँ, वैसे ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में पाए जाते हैं और इस पक्षी के शरीर के ऊपर नीले रंग के धब्बे होते हैं। और इनके वज़न की बात करें तो मादा कैसोवेरी का जो वज़न है वो 59 किलोग्राम तक होता है और नर कैसोवेरी का वज़न 34 किलोग्राम तक हो सकता है। और ये पक्षी अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और ये तैरना बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ ही इनके खाने की बात करें तो ये मछली खाते हैं और पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। तो ये पानी के आसपास दिखते हैं क्योंकि मछली जो है वो इनका मुख्य भोजन होती है। तो इस तरह से अपने परिवार के साथ ये पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। चलिए, इनसे जुड़ी और ढेर सारी जानकारी आपको दूंगी और साथ के साथ अभी चलिए एंजॉय करते हैं एक और गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रश 107.8 ऑफ अंबर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड। और आज के प्रोग्राम में एक ऐसे पक्षी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हर मायने में बहुत खतरनाक होता है जी हाँ, और इसका नाम है कैसोवेरी। और ये अपने अंडों की रक्षा करता है जिस वजह से ये और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। इनकी आँखों की बात करें तो ये बहुत खतरनाक होती है और इन्हें देखने पर ही हमेशा ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमला कर सकता है। इनकी आंखें इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इनके सिर पर कुछ उभरा हुआ होता है जो देखने में किसी मुकुट के जैसा लगता है। और ये जो उनके सर पर होता है ये दरअसल इसलिए होता है ताकि इनके सर पर कोई चोट ना लगे। और इस पक्षी को ये काफ़ी प्रोटेक्शन देता है ताकि इनका सर जो है वो बचा रहे और किसी भी तरह की कोई चोट इनको ना लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम पे लोग इन्हें पाला करते थे, बट ये बहुत खतरनाक होते हैं। और ये पक्षी कबूतर या मुर्गियों की तरह छोटा या पालतू नहीं बल्कि आकार में बड़ा और बेहद खतरनाक होता है। और ये अपने अंडों के आसपास भी किसी को आने नहीं देता है, और अगर कोई गलती से पहुंच गया तो उसको चोट लगना तय है जी हाँ। तो ये हर मायने में खतरनाक है। चलिए इनसे जुड़े कुछ और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी रेडियो मानव रश 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है द एनिमल वर्ल्ड। और आज हम बात कर रहे हैं कैसोवेरी बर्ड के बारे में, जो बर्ड ज़रूर है लेकिन ये ख़तरनाक बर्ड है और इसका आकार भी बाकी बर्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये अपने अंडों की रक्षा के लिए घोंसलों को भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और जब इनके बच्चे अंडों से बाहर जब तक नहीं आ जाते तब तक ये ज़्यादा खाना भी नहीं खाते हैं। जी हाँ, ये कम खाने में गुजारा करते हैं। तो ये अपने अंडों की रक्षा के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं अपने घोंसले को छोड़ करके, और फिर चाहे कोई भी आ जाए उनसे ये लड़ने को पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो इस तरह की खूबियाँ इस बर्ड में, जिसका नाम है कैसोवेरी, इसके अंदर पाया जाता है। क्या आप कोई फैक्ट जानते हैं इससे जुड़ा, कुछ ऐसा जो आपने पढ़ा हो, तो हमसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सिर्फ कैसोवेरी के बारे में ही नहीं, आपने कोई भी एनिमल के बारे में कुछ भी ऐसा पढ़ा हो और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। तो इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम द एनिमल वर्ल्ड।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया
1: सच
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रिश 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और अब मैं सुनाने वाली हूं आपको अगला गाना और लेने वाली हूं आप लोगों से इजाजत, क्योंकि मेरे चलने का वक्त हो गया है। तो आज का सफर यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा, और बताने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8010781078। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। देखिए दोस्तों, कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार की जिंदगी में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद उसको वो कामयाबी मिलती है जिसका उसको इंतजार होता है, जिसका सपना उसकी आंखें देखती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि जिसने गरीबी और गुमनामी में बिता दिया अपना पूरा करियर, लेकिन फिर एक फिल्म ने रातों रात बना दिया स्टार। आखिरी सांसों के बीच मिला फिल्म फेयर अवार्ड। अब ये कौन है कि जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बताऊंगा उनका नाम भी बताऊंगा, उनकी जिंदगी से जुड़े सारे किस्सों को आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1989 की। 1989 का वो साल और एक दिग्गज शायर और सॉन्ग राइटर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। फिल्म साल 1989 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। इस फिल्म के पूरे 10 गानों ने धूम मचा दी थी। मेरे रंग में रंगने वाली, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आजा शाम होने आई कबूतर जा जा जा, कहे तो से सजना तोहरी सजनिया, यानी कि ये सभी गाने मुंबई से लेकर गांव अंचलों तक गूंजने लगे थे। लेकिन इन गानों में अपनी कलम से जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसका नाम है असद भोपाली। असद भोपाली की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बात आज मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर। ये मौसम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने लिखे, लेकिन उनका जो जीवन था बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं जिनको सुनने के बाद हम ताज्जुब करते हैं, क्या वाकई में ये गीत असद भोपाली ने लिखे थे? अभी जिस फिल्म के बारे में आपसे बात कर रहा था, फिल्म मैंने प्यार किया, जिसमें सलमान खान थे, भाग्यश्री थी और इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। इसी फिल्म का एक गाना था कबूतर जा जा जा, इस गाने को भी असद भोपाली ने ही लिखा था। लेकिन दोस्तों, इस तरह के गीत लिखने वाले के जिसके सभी लोग दीवाने थे, लेकिन अपनी कलम से इतना जादू फूंकने वाला फकीर गीतकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था गरीबी और गुमनामी में 40 साल बिताने के बाद जिंदगी को अलविदा कहने की आस में ये कलाकार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन अफसोस, गुर्बत में 40 साल काटने के बाद ये कलम का सिपाही अवार्ड लेने स्टेज पर नहीं जा सका। तो आज इसी गीतकार की जिंदगी की पूरी कहानी आपके साथ मैं साझा करूंगा। इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी एक गाने में कर दी थी। असद भोपाली की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। पूरी जिंदगी झोंकने के बाद अंतिम समय में उन्हें उसका फल मिला। बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये घुमारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, 100 से भी ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गीत लिखने वाला ये कलम का जादूगर अपनी जिंदगी की भविष्यवाणी जीते जी करके चला गया। हम बात कर रहे हैं सलमान खान को सुपरस्टार बनाने वाले गीतकार असद भोपाली की। असद भोपाली ने अपनी जिंदगी पर एक गीत लिखा था, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। दोस्तों, इन गानों में दिल की कसक झोंकने वाले असद भोपाली हिंदी सिनेमा के ऐसे फनकार रहे जिन्हें जीते जी कभी भी मेहनताना नहीं मिला। 10 जुलाई 1921 को भोपाल में मुंशी अहमद खान के घर असद की किलकारी गूंजी थी और पुराने भोपाल की तहजीब में पले बड़े असद भोपाली बचपन से ही जहीन दिमाग के इंसान रहे हैं, काफी समझदार थे। स्कूल के दिनों में भाषाओं की जो तालीम है वो खूब मन से ली और पर्शियन, अरबिक, उर्दू और अंग्रेजी पर मास्टरी हासिल कर ली। लेकिन बचपन के बाद आती है जवानी, जवानी के दिनों की भी बात होगी, असद भोपाली की जिंदगी की बात होगी, असद भोपाली के लिखे गीतों का जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है आज असद भोपाली के बारे में, जिन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा में एक से खूबसूरत गीत दिए हैं और उन गीतों को आज भी याद कर लो तो वो गीत नए नए से लगते हैं। जवानी के दिनों की कुछ बातें आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। अपनी जवानी के दिनों तक असद मिर्ज़ा गालिब के फैन हो गए थे आज के हमारे शायर यानी कि असद भोपाली। खूब शेर व शायरी और साहित्य में डूबे रहने वाले असद भोपाली ने खुद भी शायरी का पेशा अपनाया। असद भोपाली 21 साल की उम्र से ही मुशायरों में शिरकत करने लगे थे और बहुत सारे मुशायरों में लोग उनको खुद बुलाया करते थे और अपने शेरो सुखन से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। जब असद भोपाली अपनी शायरियां पढ़ते थे तो लोगों की तालियों की जो गड़गड़ाहट थी ना, उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचाती थी। इन्हीं तालियों के बीच असद की जवानी बीतने लगी और फिल्मी दुनिया में काम करने का ख्वाब भी पनपने लगा। असद जब 28 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें पुकार लगाई। तारीख थी 5 मई और साल था 1949 का। भोपाल में कोई बड़ा मुशायरा हो रहा था और इसमें 28 साल के असद भी शिरकत कर रहे थे। अब जब इस मुशायरे में असद भोपाली ने अपनी शेर व शायरी को लोगों तक पहुंचाया तो उसका असर लोगों पर क्या हुआ, जरूर बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि भोपाल में एक कोई बड़ा मुशायरा होने वाला था। वहां पर 28 साल के असद भोपाली भी पहुंचे थे। असद भी स्टेज पर आए और अपनी शायरी सुनाई। ऑडियंस में बैठे फजली ब्रदर्स और निर्देशक हसनैन को उनकी शायरी बेहद पसंद आई और उन्होंने असद भोपाली को अपनी फिल्म यानी कि दुनिया के लिए 500 रुपए देकर साइन भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसी फिल्म के गाने पहले आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन आरजू बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और असद को मुंबई की माया नगरी का बुलावा आ गया। इसी सिलसिले में असद मुंबई पहुंच गए और दुनिया फिल्म के गानों से अपने करियर की शुरुआत कर दी। इस फिल्म के दो गानों के जरिए, रोना है तो चुपके चुपके रो और दूसरा गाना था अरमान लूटे दिल टूट गया, असद ने अपने हुनर का प्रमाण दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी का हुनर उसके खुद के छुपाने से नहीं छुप सकता। ऐसा ही असद भोपाली के साथ हुआ। साल थी 1951। 1951 में बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म यानी अफसाना के लिए किसी गाने लिखने वाले गीतकार को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात असद भोपाली से हो गई। उन्होंने असद भोपाली को इस फिल्म के गानों की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि आप ही मेरी फिल्म अफसाना के गाने लिखेंगे। और उनके इस ऑफर को असद भोपाली ने कबूल भी कर लिया। आगे क्या हुआ आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी असद भोपाली के बारे में कि एक बार उनकी मुलाकात बीआर चोपड़ा से हो गई, जो अपनी फिल्म बना रहे थे अफसाना, और इस फिल्म के गाने लिखने की जिम्मेदारी असद भोपाली को दे दी और असद भोपाली ने इस ऑफर को मंजूर भी कर लिया। दोस्तों, असद ने अपने हुनर के पिटारे से 6 गीत निकाले और फिल्म को हिट करा दिया। इस फिल्म के सभी गानों ने धूम मचा दी। यहीं से असद भोपाली की कलम की कला चारों तरफ गूंजने लगी। हालांकि असद के करियर का ग्राफ तो बढ़ने लगा, लेकिन तत्कालीन दिग्गज गीतकारों जैसे मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, राजेंद्र कृष्ण, कुमार बाराबंकी और प्रेम धवन की छाओं में असद भोपाली का जो हुनर था ना, वो दबा रह गया। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में 400 से ज्यादा गानों को अपनी कलम से निकाल दिया। असद भोपाली करीब 40 साल तक फिल्मों में गाने लिखते रहे, लेकिन कभी भी उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मुंबई के छोटे से घरों में असद भोपाली का जीवन बीत गया और फिल्म में उनके लिखे नगमे लोगों को दूर दराज तक ठंडक पहुंचाते रहे। असद भोपाली ने खुद ये माना कि जिंदगी ने उनके साथ न्याय किया, लेकिन ऊपर वाला किसी भी मेहनत का फल निराशा में नहीं देता। असद भोपाली साल 1989 आते आते काफी बीमार रहने लगे थे और लकवे से ग्रसित हो गए थे, लेकिन इससे पहले असद भोपाली ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए 10 गाने लिखे थे और उन गानों को पूरे भारत में लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैंने प्यार किया के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गीतकार असद भोपाली के बारे में। असद भोपाली ने बेहतरीन बेहतरीन गाने लिखे, बीआर चोपड़ा जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया और इसके अलावा और भी लोगों के साथ काम किया असद भोपाली ने, और उनके गीत फिल्मों को हिट करा दिया करते थे। उदाहरण के तौर पर फिल्म मैंने प्यार किया को ले लीजिए। ये फिल्म असद की जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। जब इन गानों को तैयार किया गया और सलमान खान के करियर की दूसरी फिल्म में डाला गया तो कमाल हो गया। ये फिल्म तो सुपर हिट हो गई, लेकिन ये फिल्म यानी मैंने प्यार किया सलमान खान को रातों रात स्टार बना गई। फिल्म के सभी गाने लोगों के दिलों में बस गए, लेकिन इतने सालों के बाद भी इन गानों को उतना ही प्यार मिलता है और असद भोपाली को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असद भोपाली को लकवा हो चुका था और वो अवार्ड लेने नहीं जा पाए थे। वाकई में दोस्तों, असद को कभी भी वो मुकाम नहीं मिला, वो शोहरत और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और ये बात असद को खाए जाती थी। इसीलिए असद ने साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म एक नारी दो रूप में अपने दिल की कसक एक गाने में निकाल दी। गाने के बोल थे,

0: ना साज तराना ढूंढेगा।
1: इसी गाने में असद भोपाली कहते हैं कि साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। साल 1990 में संगीत का ये सितारा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन असद भोपाली की ये गीत इतने सालों के बाद भी उनकी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं और कहते हैं कि फनकार चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बहुत सारी यादों का सिलसिला। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: कहिए क्या सुनेंगे आप
2: रेडियो मानव रचना रेडियो मानव रचना
3: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं आपकी बात आरएमआर के साथ इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करते हैं कभी आपके लिए हम लेकर के आते हैं जेंडर इक्वालिटी पे बात लेकर के आते हैं तो इस बार हम बात लेकर के आए हैं जो टॉपिक इस बार का है वो है कल्चर और हमारा ट्रेडिशन देखिए भारत देश की अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर कल्चर है ट्रेडिशन है और अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग जो है वो रहते हैं और बहुत सारे देखिए कल्चर को अलग अलग लोग जो है फॉलो करते हैं हर सीमा रेखा के बाद एक अलग अंदाज होता है खान पान चेंज होता है और खाने का रंग और रूप और जो टेक्सचर है और कपड़ों का रंग रूप हो गया घरों का रंग रूप हो गया सब अलग अलग बदल जाता है। आज हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है जहाँ खड़ी बोली तो बोली जाती है लेकिन माँ की रोटियाँ बड़ी बड़ी नरम नरम है और बड़ी स्वादिष्ट है लेकिन इस जो प्रांत है ये जो राज्य है इसका रंग रूप की अगर बात की जाए तो बड़ा अनोखा है रंगीला है बहुत मेहनती लोग भी रहते हैं किसान हैं तो वहीं खिलाड़ी भी इसी मिट्टी से निकले हुए हैं। मैं आज बात कर रही हूँ हरियाणा की जी हाँ आज है हरियाणा दिवस और 1 नवंबर कि वो ये दिवस जो है मनाया जाता है ये दिन मनाया जाता है और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1966 ये वो दिन था जब हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना। आज हम इसी दिन के बारे में बात कर रहे हैं हरियाणा दिवस की बात कर रहे हैं आज इसके इतिहास के बारे में कल्चर के बारे में खान पान लोगों के बारे में कहानियों के बारे में ज़मीनों के बारे में बात करेंगे बहुत सारी और इस प्रोग्राम में ना आज हमारे साथ एक और खास गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं आप इनकी आवाज़ को पहचानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत प्यार भी इन्हें करते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हैं आरजे सागर जो कि ना सिर्फ एक रेडियो जॉकी हैं एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और साथ ही एक फिटनेस कोच भी हैं तो सबसे पहले तो सागर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सो मच साक्षी फॉर योर काइंड वर्ड्स इट मींस अ लॉट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर एंड इट्स सच एन ऑनर टू सिट हेयर ऑन दिस सीट जनरली हम शोज होस्ट करते हैं बट आज एक गेस्ट के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं।
3: बिल्कुल तो सागर आप हरियाणा से हैं और मैं आज हरियाणा नहीं कहूँगी इसे मैं हरियाणा ही कहूँगी क्योंकि ये जो खड़ी बोली है ये ना सिर्फ देखिए हमें ये एहसास दिलाती है देसी होने का बल्कि मेहनती और साथ ही साथ जो खिलाड़ी इस मिट्टी से जन्मे हैं उसका भी एहसास कराती है महसूस कराती है। मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ और चाहती हूँ कि उसके जवाब आप दें वैसे तो इस तरफ आप होते हैं हमेशा माइक के शोर औरते होते हैं और हमेशा से आप सवाल पूछते हैं लेकिन आज आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ तो आपकी इजाजत हो तो हम मैं शुरू करना चाहती हूँ।
4: बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने कहा एक बहुत छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वो हरियाणा नहीं होता है वो होता हरियाणा ही है अणा ही होता है वो
3: जी
4: बट क्योंकि वो इतना खड़ी बोली है कि लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते तो इसलिए वो हरियाणा बोल देते हैं जैसे पुणे बोलते हैं पुणे नहीं होता है पुणे होता है वो वहां का एक वर्ड है सो लाइक दिस इट्स हरियाणा यस प्लीज।
3: बिल्कुल तो सागर मेरा पहला सवाल आपसे आज हरियाणा दिवस है और इस दिन को मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके मायने क्या हैं आपके लिए तो क्या कहना चाहेंगे।
4: जी बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा आपने साक्षी मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज का वो दिन था 1966 को जब पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य जन्मा था जो कि है मारा हरियाणा। ठीक है अब ये मेरे लिए बहुत खास इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ वो कल्चरल चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर हैं बचपन से हमने देखी हैं तो मेरे लिए हरियाणा एक तरीके से आप कह सकते हैं इश्क है। ठीक है हमारा पहनना खाना बोली जो है अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो हमारे लिसनर समझ नहीं पाएंगे बट दो तरह की हरियाणवी बोली जाती है एक तो ब्रिज टच होती है जो पलवल फरीदाबाद बल्लभगढ़ में बोली जाती है कहाँ जा रहे हो रे कहाँ को है रे तू अच्छो कहा नाम लाला तेरो। ठीक है ये की होती है जो हरियाणा और फरीदाबाद पलवल एरिया में होती है। एक होती है रोहतक की तरफ सोनीपत तरफ अरे कितका है तू के नाम है तेरा। ठीक है वो ज्यादा खड़ी हो जाती है लोगों को लगता है कि वो बहुत रूड है बट वो रूड नहीं है वो हमारा एक्सेंट है वो लहजा वैसा है वो बोलते बहुत भले ही कितनी पोलाइट में बात करें चा पीवेगी। ठीक है अब ये मैं क्या पूछ रहा हूँ आई एम ऑफरिंग यू अ टी, लेकिन आपको सुनाई ऐसा दे रहा है कि अरे भाई के मारेगा वारेगा क्या, क्योंकि वो है, वो एक्सेंट ही वैसा, डायलेक्ट ही वैसा है हमारा. तो नो डाउट हरियाणवी मेरे लिए तो भाई देखिए बहुत खूबसूरत एक चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के जो मेरे लास्ट डेज हों वो भी मैं हरियाणा में ही व्यतीत करूँ, बिल्कुल अपने ट्रेडिशन के बीच में.
3: बिल्कुल. तो ऐसा होता है ना कि जब हम अलग राज्य से आते हैं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बिहार से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो केरला से आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गोवा से आ रहे हैं, और आके दिल्ली में या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं, दिल्ली NCR में आते हैं जॉब करते हैं. अच्छा ये होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जब लास्ट डेज होंगे जैसे कि आपने कहा, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर अंत के अगर वो कुछ खास दिन हो तो वो अपनी मिट्टी में ही गुजरने चाहिए. मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और वो ये कि जब हरियाणा की बात आती है, वो शब्द जब भी आप सुनते हैं, चाहे हम मूवीज में देखते हैं या हम कहीं कहीं सुनते हैं, आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जब आप ये शब्द सुनते हैं, जब आप अपने राज्य के बारे में सुनते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है या दिल में सबसे पहले क्या आता है वो बताएं.
4: दूध दही, पहलवान, अखाड़े, कुश्ती, पुलिस, फौज, किसान, स्वांग, रागणी, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूवीज में खासतौर पर बॉलीवुड में जिस तरीके का हरियाणा दिखाया गया है, मुझे लगता है कि वो उसका शायद 1% भी नहीं है. अगर आप हरियाणा सही मायने में देखने चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर मेले होते हैं, जैसे देव उठनी ग्यास होती है एक हमारे यहाँ पर, उसके मेले लगते हैं. ठीक है, और ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं साक्षी, जब गांव में मेले लगते हैं, स्वांग होते हैं, होली होती है हमारे यहाँ पर. तो मुझे नहीं पता कितने लोग आप में से फेमिलियर हैं, पेटीकोट होता है एक ओढ़ना होता है और एक कमीज होती है.
3: करेक्ट,
4: औरतें पहनती हैं वो कमीज के नीचे पेटीकोट होता है और ओढ़ना पहन के, और वो नाचती है, और जैसे वो घूमर घूमर गाने में दिखाया है ऐसा एक वो बनता है, वो फॉर्मेशन होता है. और मर्दों का जो होता है वो कुर्ते पजामे या कुर्ते धोती होते हैं, नगाड़े बजते हैं, और डांस होता है स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में. मतलब आप लोग जैसे अमूमन पंजाब में उसको अखाड़ा बोला जाता है, अभी तो कॉन्सर्ट का एक कल्चर आ गया है. पहले अलग शब्द हुआ करते थे, हमारी गैदरिंग की अलग चीजें हुआ करती थी. उस टाइम पर हरियाणा में रागनियां हुआ करती थी, सोशल इश्यूज को जो आवाज दिया करती थी. जैसे एक मुझे रागनी याद आ रही है, अरे पैसा धर्म नहीं होता, ईमान कहाँ से लाएगा, दवा मिलेगी पैसे से तू प्राण कहाँ से लाएगा. इस तरीके से बहुत ऐसी मतलब सोशल चीजें हुई हैं जिनको आवाज दी गई, और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 40-50-60 साल पुरानी बात है. हरियाणवी कल्चर का ओरिजिन ऐसे हुआ है, तो वो तमाम चीजें जो हैं आती हैं जहन में, वो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं मेरी मसल मेमोरी ही हरियाणा में मेरी जब से होश संभाला है वो उसी तरफ है, तो वो बहुत सारी चीजें मुझे याद आती हैं. जी
3: देखिए, जब आप सागर को जब आप सामने से देखेंगे, बाय फेस देखेंगे, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये इतना देसी आदमी है या इतना देसी है, क्योंकि पहनावा रंग रूप बहुत बदल जाता है जब हम शहर में आते हैं. हम यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने पहनावे को चेंज करते हैं, लेकिन भाई दिल से मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल देसी है, और ये जो बोली है ये जरूर आपको लगे कि ये रूड हो सकती है, लेकिन भाई कभी कभार ना बड़ी प्यारी भी लगती है. कई सारे ऐसे मैं जैसे आपने कहा कि 1% भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जैसे कुछ भी दिखाया जाता है तो बड़ी खुशी होती है. अच्छा कोई भी अगर हरियाणवी लैंग्वेज में आके कुछ भी कहता है तो बड़ा प्यारा लगता है कि अच्छा हम मतलब अक्सर दिल से निकलता है कि ये बोली अगर सीख जाए तो मजा आ जाएगा. और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप अपने बच्चों को, जो भी अभी मुझे सुन रहा है, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, तो आजकल के बच्चे हैं लैंग्वेजेस सीखते हैं, लेकिन कल्चरल जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, और अपनी जो घर की धरोहर, अपनी जो लैंग्वेज है, आप उन्हें ज़रूर सिखाइए. आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो गाँव की लैंग्वेज है ये नहीं सीखेंगे, गाँव के हम रीति रिवाज नहीं सीखेंगे, लेकिन ये दिल से कभी नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि दिल से तो देसी है, वही दिल से जो है वो आगे भी बढ़ता है. और लाइफ में अचीव करने के लिए ना आपको दिल से देसी होना जरूरी है, क्योंकि आपको हर एक एक्सपीरियंस उससे मिलता है. चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें. आज मेरे साथ है आरजे सागर, तो बात कहीं यहीं पर होंगी, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: தங்கள்
1: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। ये खास प्रोग्राम लेकर के आ जाते हैं और इस बार का टॉपिक है कल्चर ट्रेडिशन। और आज एक बहुत ही खास दिन है, आज है हरियाणा दिवस। आज इस दिन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के ही एक कलाकार। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजे सागर। आप आरजे सागर की आवाज को सुनते हैं हर रोज रेडियो मानव रचना पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी आरजे सागर एक फिटनेस कोच भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और साथ ही एक बहुत ही अच्छे इंसान है, देसी कलाकार है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सागर, अब आपसे अगला सवाल मैं पूछती हूँ। आपने अभी रागनी की बात करी थी, आपने घूमर की बात करी, सांग की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताइए कि ये सांग क्या है, क्योंकि अब मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली से आती हूँ, बट आई एम अ बंगाली, तो बंगाल का कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें इनके बारे में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के बारे में इतना नहीं पता है, रागनी क्या है या घूमर अच्छे से आप बताएं और सांग क्या है, क्योंकि आज भी लोगों के दिलों में, जो पुराने लोग हैं के दिलों में तो जगह ये बनाए हुए हैं, जो नए लोग हैं उनको समझाएं और उनको ये याद दिलाएं, उनके दिल में ये जगह बनाएं कि ये जो है ये भी आर्ट फॉर्म्स है और इसके लिए भी हमारे दिल में जगह होनी चाहिए और हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए क्योंकि ये हमारे राज्य से है।
3: जी जी जी, सांग का अगर आप सही मायने में देखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होता है स्वांग, पर क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हर चीज को हम ट्वीट करते हैं। स्वांग का अगर आप लिटरल एक मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो होता है इमिटेशन। तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको यही नजर आएगी, चाहे आप बंगाल से हैं, आप पंजाब चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह पर हमने अपने अपने कल्चरल साइड को एम्फेसिस करते हुए, अपनी वैल्यूज को दिखाते हुए, कोर प्रिंसिपल्स को दिखाते हुए अपनी फॉर्मेशन करी थी इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स। तो स्वांग उसी का नाम है। आप कह सकते हैं मिमिक्री भी उसमें होती है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, डांस भी होता है, थिएटर भी होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट। बंगाल में भी होता होगा, भारत के हर राज्य में आपको नजर आएगा। तो हरियाणा में उस थिएटर को, उस मिमिक्री को, उस एक्सप्रेशन का, मैं बोलूंगा उस एक्सप्रेशन को स्वांग नाम दिया गया है। रागनी इज स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं एक तरह से कॉन्सर्ट हुआ करता था जो बहुत लोकल लेवल पर हुआ करता था, लेकिन रागनी का जो पॉइंट था वो ये था कि गैदरिंग हो, बुजुर्ग बैठे और जो सोशल इश्यूज हैं उनको आवाज दी जाए गाने के फॉर्म में। क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो तो अगर मैं नॉर्मली एक बात बोलूंगा वो आपके जहन में शायद ना रुके, लेकिन अगर मैं वही बात गाना गा के बोलूंगा और गाना आपको अच्छा लगेगा तो वो बात आपके जहन में रुक जाएगी, चाहे वो धुन के माध्यम से रुके या उन शब्दों के माध्यम से रुके। जैसे एक और रागनी मुझे यहाँ पर याद आ रही है, बदल गया जमाना लोगों यार ना रहा इन, मा के जाए भाइया मैं भी प्यार ना रहा। सो बेसिकली द पॉइंट वाज कि आपस में भाई अगर लड़ रहे हैं, माँ के जाए भाइयों में मतलब एक माँ से जो जन्मे हैं भाई, उनमें अब प्यार नहीं रहा, वो आपस में फूट पड़ चुकी है, लालच बीच में आ चुका है। फिर आगे उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, खोलते हैं। रागनी का ये फॉर्म हुआ करता था, स्वांग ये हुआ करता था, इट्स लाइक गैदरिंग। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा साक्षी, वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। हम एक साथ नहीं जन्मे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि ठप ठप हम ऊपर से गिरे हैं, हम इवॉल्व होकर के यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप इस पूरे फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं कि हरियाणा में स्वांग क्यों है, पंजाब में अखाड़ा क्यों है, या बंगाल में थिएटर क्यों है, या महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें होंगी, वो क्यों है, तो आपको इवोल्यूशन पूरा पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कई हजारों सालों तक ट्राइबल कल्चर से निकल के आए हैं, हम ट्राइब्स में रहा करते थे, तो हम सोशल क्रिएटर्स हैं, हमें एक साथ रहना है। हम लोगों ने दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, सोशलाइज करना बंद कर दिया है, जो कई हजारों सालों से हमारे खून में, हमारे जेनेटिक्स में रहा है। अब बीते कुछ 10-15 सालों से ये चेंज हो गया है, तो उस टाइम पर भी इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन करते हुए कि आपकी मानसिक हालत अच्छी रहे, अच्छी बातें आप सुने, अच्छी संगत में आप रहें, और चार लोग अपनी बातें शेयर कर सके ताकि कुछ नया बन सके, प्लस कोई अपने अंदर में घुट ना रहा हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम आर्ट फॉर्म्स बनाई गई थी, गाना, थिएटर, मिमिक्री, या ठहाके लगाते थे, हंसी मजाक किया करते थे, वो सब चीजें, तो उसी का रिजल्ट है स्वांग रागड़ी या और जो भी दंगल हुआ करते हैं हरियाणा में, कबड्डी भी हुआ करती है, कुश्ती भी हुआ करती है और बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट यही है कि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे और आप ट्राइब के साथ जुड़े रहे वहां पर।
2: तो देखिए बदलाव तो काफी सारे हैं और अब मैं यहाँ पर, अब हरियाणा की हम बात करें, इतना सब कुछ है। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए भी हरियाणा जो है वो जाना जाता है, चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात करें या फिर हम साक्षी मलिक की बात करें, कई सारे जो भाई शूटर हम अभी बात करें, मनु भाकड़ की बात करें,
3: तो गीता बबीता दंगल बनी है,
2: दंगल बनी
3: बजरंग है, पुनिया है, बहुत सारे लोग
2: हैं। तो कितने लोग जो है इस मिट्टी ने जने हैं और कितने सारे जो है वो अब भी बन रहे हैं प्लेयर्स लाखों की तादाद में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जैसे अब बात करें एक मॉडर्न साइड की भी हम बात करें, गुरुग्राम तो एक मॉडर्न सिटी है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक अलग हो गया राज्य है, लेकिन अगर मॉडर्न टच की भी बात की जाए तो वो गुरुग्राम आ जाता है। या फरीदाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक लग्जरी भी दिखने को मिलती है। तो आपके नजरिए में ये जो परिवर्तन है, ये क्या बदलाव लेकर के आया है और लोगों की सोच पर भी इसका कैसा असर रहा है?
3: देखिए, मैं, मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा सच है जो होता ही होता है, ठीक है। अच्छे के लिए हुआ है, रोजगार मिले हैं लोगों को, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा में, जैसे गुरुग्राम हरियाणा का एक हिस्सा है, ठीक है, और एक मेजर जगह है, अब गुड़गांव में अगर कोई इंसान हरियाणवी बोलता है तो एक तरीके से उसको जज कर लिया जाता है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसी भूमि में जन्मा है, उसी की जमीन पर वो सारी चीजें बनी है, तो वो वहीं का एक बाशिंदा है, ठीक है, वो अपनी भाषा बोल रहा है क्योंकि वो तो कई सदियों से वहां पर रहा है। लेकिन ये एक चीज है कि वो कल्चरल साइड वहां पर नजर कम आती है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हरियाणा के किसी भी गांव में आंख बंद करके घुस जाइए, सुबह 3 बजे से लेकर के 5 या 6 बजे तक, किसी भी गांव में, मैं कह रहा हूं यहां पर बैठकर, आपको हर गांव में उसके एंट्रेंस पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। और ये पागल बच्चे होते हैं, जुनूनियत होती है इनमें, ठीक है, ये या तो मिलिट्री में जाना चाहते हैं या ये पुलिस में जाना चाहते हैं या एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई उन्हें सूझता ही नहीं है। और इसका एक रीजन है साक्षी, एक तो कुरुक्षेत्र से श्रीमद् भागवत गीता निकली है,
2: बिल्कुल,
3: ठीक है, श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में दिए थे, ठीक है, महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय, तो ये भूमि है, प्राउड की भूमि है, ये क्षत्रियों का एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरीली 4 जो है जातियों को अजगर बोला जाता है, उनको अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ठीक है, ये क्षत्रिय हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, इसलिए आज भी आपको यहाँ पर वो नजर आएगा कि आज भी यहाँ के लोग वो वाली चीज रखते हैं, मतलब आपको लगेगा अकड़ू है, बट एक हरियाणवी ऐसा, मैं कहूंगा खून में एक चीज है मोस्टली जो आपको नजर आएगा कि वो प्राइड के लिए लड़ते हैं, जब भी देश की बात आएगी वो आगे आपको खड़ा मिलेगा, चाहे वो एथलेटिक्स की बात है, फौज की बात है, पुलिस की बात है, और ये मैडनेस जरूरी भी है अपने देश को लेकर के। तो हाँ, ये बात सही है कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम कल्चर को भी अगर मैं 2 मिनट के लिए साइड कर दूं, मदर नेचर का बहुत नुकसान हुआ है साक्षी, हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन बहुत भर भर के किया है। उसका प्रमाण ये हो रहा है कि आज ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है ऑलरेडी। आज आप देखेंगे तो कितने सारे जानवर है, बंदर आपको नजर आते हैं, डॉग्स आपको नजर आते हैं, ये आपको नजर आते हैं तो आपको दिक्कत तो होती है, लेकिन रूट कॉज तक कोई जाना नहीं चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता है कि इनका घर उजड़ा कैसे, क्या हुआ इनके साथ, पहले कहां रहा करते थे। तो वो एक मदर नेचर ने जो चीजें प्रिजर्व की हुई थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दुख देती है थोड़ा सा मुझे, कि अगर आप एक फ्लैट बना रहे हो, 4 अगर आप पेड़ काट रहे हो, तो आप 10 पेड़ और कहीं लगाइए, ताकि बैलेंस बना रहे, ये एक चीज है।
2: देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, आरजे सागर मेरे साथ है, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं, और कल्चर के बारे में, राज्य के बारे में, हरियाणा के बारे में, और भी कुछ बहुत सारी बातें जानेंगे। फिलहाल कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं आपकी बात आरएमआर के साथ। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे सागर, जो कि एक बहुत ही खास एक्सपर्ट बनकर आज हमारे शो में आए हैं, क्योंकि हरियाणा से हैं। और जब हरियाणा की दिवस की बात हो और कोई हरियाणवी हमारे साथ, कोई देसी कलाकार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सागर, आपसे हमारी बातें चल रही हैं, मैं अब अगला सवाल जानना चाहूँगी यहाँ पर। अब जैसे कि आपने अभी कई सारी चीज़ों पे बात करी है, आपने अरावली की भी बात करी है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है या बंदर हो गए, हम देखते हैं, हम इरिटेट ज़रूर हो जाते हैं लेकिन रूट कॉज नहीं हम जाना चाहते हैं वहाँ तक। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब बड़कल झील की अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बड़कल झील भी एक टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है। पानी जो है इसमें दोबारा से जो है उसको रिजुविनेट किया गया है अच्छे से, और मार्केट्स भी लगाई जा रही है, और एक बहुत बड़ा सरकार का भी प्रोजेक्ट है जो हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, आने वाले टाइम में हरियाणा की शान बनने वाला है।
1: जी अगेन मैं इवोल्यूशन पे जाना चाहूंगा कि हम लोग इवॉल्व होकर के यहाँ तक आए हैं। तो इतनी सदियों तक हम लोग रहे हैं जंगलों में, हम लोग रहे हैं नेचर के क्लोज, ठीक है। नेचर के बिना मुमकिन नहीं है यहाँ पर जीवन, ठीक है। और ये बात आप सभी लोग खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव हो, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन फॉग हो गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ एक चीज करिएगा, कहीं पहाड़ों में चले जाइएगा, जंगलों में चले जाइएगा, किसी बीच किनारे जाकर बैठ जाइएगा, कहीं भी फॉर्म ऑफ नेचर ढूंढिएगा और वहां एक दिन या दो दिन व्यतीत करिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप हील्ड महसूस करेंगे। वो हीलिंग बेसिकली होती है, रीजन बीइंग कि हम लोग उसी एक मदर नेचर से निकल कर के आए हैं, इवॉल्व होकर के आए हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक स्टेप है। मतलब मैं तो अगर आप रेडियो मानव रचना का टैक्सी नंबर 107.8 सुनते हैं शाम को 5 से 8, तो मैं तो कितने यहाँ पर सालों से यही बात कह रहा हूँ, इसकी गुहार लगा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से बोलता हूँ कि भैया नेचर को बचाइए, आपके आसपास होनी बहुत जरूरी है। और ये भगवान अगर आप मानते हैं तो आपको इन तत्वों को समझना होगा, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये मिला करके जो है, इनके बिना जीवन मुमकिन नहीं है। और इनमें से कोई एक भी तत्व अगर हट जाएगा इस पृथ्वी पर से, तो जीवन खतरे में आ जाएगा, वो संतुलन खराब हो जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है कि अगर एक झील बनाई जाएगी तो अल्टीमेटली वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, मोर ओवर लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा वहां पर आने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रोजगार बहुत जनरेट होगा, काफी लोगों को नए साधन मिलेंगे। और ये खाली फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा है, यूपी से भी ऐसे मैंने अपडेट्स देखे हैं जहाँ पर 100 से ज्यादा कुंड खोदे गए हैं जिनका, जहाँ पर तालाब बनाए जाएंगे और वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट अगर अभी हो रहा है तो लकीली, मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर दिस।
0: दुरुस्त है लेकिन जरूर हो,
1: बिल्कुल।
0: मैं सागर आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। अब हरियाणा की बात हुई है और देखिए, आप फीमेल्स की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं आप जानना चाहती हूँ, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या फिर आप औरतों की बात की जाए, एथलेटिक्स जैसे कि उसमें विनेश फोगाट हो गई या फिर साक्षी मलिक हो गई, उन्होंने सोसाइटी में बदलाव लेकर के वो आई, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में, क्योंकि एक ऐसे राइजिंग स्टार, क्योंकि ये एक ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देश में नाम रोशन किया है, तो जहाँ पर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गाँव में, कस्बों में ये भी सुनाई देता है कि लड़कियाँ चूल्हा चौका करें, घर से बाहर ना निकलें, तो वहीं ऐसी लड़कियाँ भी हरियाणा से बाहर निकली हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो क्या बदलाव कल्चर में भी क्या लेकर के आएगी, क्योंकि हरियाणा के कल्चर में एक ये भी छोटी सी बात ज़रूर आती है कि चूल्हा चौका है लेकिन ज्यादा घर से बाहर नहीं, लेकिन अब ये सोच जो है वो बदल रही है, तो इसमें आप कितना बिलीव करते हैं?
1: जी फिर एक बार मैं इवोल्यूशन की तरफ चलना चाहूंगा। हम लोग हंटर गैदर्स हुआ करते थे, तो हुआ ये करता था इवोल्यूशन के टाइम में, क्योंकि प्रथाएं सारी वहां से बनी है सारी।
0: जी।
1: तो जब भी आपको किसी भी सवाल का जवाब ना मिले, मैं सबको सलाह दूंगा, प्लीज एक किताब है सेपियंस, पढ़िएगा। इवोल्यूशन को जितना आप पढ़ेंगे आपको आज की सारी दिक्कतों के समाधान वहां पर मिल जाएंगे। हम लोग क्या किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, एक जमाना था, उस टाइम पर हमने नहीं सीखा था खाने को उगाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, फार्मिंग नहीं हुआ करती थी, तो हंटिंग किया करते थे। औरतों का काम था बच्चों की देखभाल करना, जो हम खाना लेकर के आ रहे हैं उसको पकाना, खाने योग्य बनाना और उसको सबको सर्व करना। मर्दों का काम हुआ करता था बाहर जंगल में निकलना, ठीक है, जंगली जानवरों से अपने परिवार को बचाना, खाने का जुगाड़ करना, ठीक है, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जुगाड़ करना। और इसको आप इस तरीके से मत देखिए कि जेंडर बेसिस पर किया गया, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई थी। कट टू द पॉइंट, आज हम आते हैं, ये प्रथाएं उसके बाद यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आई, बट अब क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो ये प्रथाएं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अभी बीते दिनों हरियाणा के एक गांव का मैं सुन रहा था किस्सा कि कोई महिला वहां पर सरपंच जो है वो चुनी गई, तो वो महिला ने क्या किया, सबसे पहली चीज वहां पर जो की गई वो की गई घूंघट हटाने की। तो पूरे गांव ने एक साथ घूंघट हटाया वहां पर, विच इज अ गुड थिंग। मतलब स्लो प्रोसेस है बट आ रहा है धीरे धीरे चेंज। पहले हुआ करता था यकीनन कि चूल्हा चौखा करना है, घर की देखभाल करनी है, बच्चों को पालो और खाना बना करके दो। लेकिन हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आप अलग से एम्फेसिस कर रहे हो कि हमें वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर एक सच ये भी है कि आप एट द सेम टाइम ये मान रहे हो कहीं ना कहीं कि वुमेन जो है वो कमजोर है, लड़कियां कमजोर हैं। मेरी ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, जिसको जो काम आता है अपनी स्किल के आधार पर उसको वो काम दे देना चाहिए। यही असली वुमेन एम्पावरमेंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन भी होगा आपकी, अगर वहां पर कोई लॉजिकल बहस हो रही है या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो वहां पर भी उस फीमेल को उतना ही मौका दिया जाए जितना एक मेल को दिया जा रहा है। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी ये जो लड़कियां कर रही हैं, हमारी छोरियां हरियाणा से उठ के जो नाम कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, इससे और बहुत सारी लड़कियों को जो है इंस्पिरेशन मिलती है। मोर ओवर पेरेंट्स भी जो है वो इंस्पायर होकर के अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, ये चेंज हो रहा है।
0: बिल्कुल। तो सागर, कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक लिसनर का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले स्कूल जो है वो बीच में छोड़ दिया था। तो मैंने उनसे रीजन पूछा, उन्होंने कहा कि बस अब एज हो गई है और मम्मी ने कहा है कि अब थोड़ा खाने वाने बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि अब आगे अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है आपको शादी करनी है और आपको अपना घर संभालना है। अच्छा, कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही अपना बातें कर रही थी रेडियो पे और कई सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, हेल्थ के बारे में बताती हूँ, और ऐसे ही मैं कुछ बातें कर रही थी, तो कुछ टाइम बाद उस लड़की का फिर से मेरे पास कॉल आया। उन्होंने, लिसनर ने मुझसे कहा कि मैम थैंक यू। तो मैंने उनसे पूछा थैंक यू किस लिए, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं तो हमारे पेरेंट्स उसे सुनते हैं, और आज फिर से मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी को इंस्पायर करना है, चाहे बहुत ही छोटी सी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, लेकिन हाँ कुछ बातें अगर आप तक पहुँचती हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी और सभी के लिए। इसी के साथ साथ सागर, जैसे कि आपने अभी कल्चर के बारे में भी कहा कि घूंघट की प्रथा हो गई या चूल्हा चौका हो गया, ज़रूर मेरा मानना ये भी है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल मुझे ये भी लगता है कि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो जो कुछ प्रथाएं ऐसी होती है ना कि जो महिलाओं पे जचती भी है, लेकिन इसमें अब जो कदम से कदम जो है महिलाएं भी मिला रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर हम अभी लखपति दीदी की भी बात करें तो चाहे उनका पहनावा है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया, और साथ ही उन महिलाओं को भी लेकर के चल रही हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, उन्हें भी काम करा रही हैं, और वो लड्डू या बहुत सारी ऐसी मिलत से चीज़ें बनाना, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे जो महिलाएं हैं हरियाणा की, वे आगे बढ़ रही हैं और इसी तरह से बढ़ती रहें और ऐसे ही पूरी दुनिया को इंस्पायर करती रहें, ना सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे देश को। चलिए सागर, एक छोटा सा ब्रेक, इजाज़त हो आपकी तो मैं लेना चाहूँगी, और आगे कुछ और बस कुछ सवाल और हैं जो मैं जरूर जानना चाहूंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रश्ना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: आई हूँ आपकी बात आरएमआर के साथ। आज मेरे साथ है आरजे सागर। बहुत सारी सागर आपसे बातें हमारी चल रही है। आज हरियाणा दिवस है और इस मौके पर हरियाणा के बारे में हम बात करें, यहाँ के कल्चर के बारे में, फोक म्यूजिक, डांस। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने दो रागनी जरूर हमें बताई है। अच्छा, जब रागनी की या गीतों की बात होती है या कोई भी एक आर्ट फोक कल्चर की बात होती है, सबसे नज़दीकी अगर गीतों में से अगर मैं बात करूँ, आपके दिल के कौन सा जो गीत है वो नज़दीक है, जो आप सभी को बस चंद दो लाइनें सुनाना चाहेंगे यहाँ पर?
1: हरियाणवी गीत
0: जी।
1: दिलराज कौर एक हुआ करते थे सिंगर
0: जी।
1: उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए थे, मैं अपने बचपन में सुनता था, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पिताजी उस टाइम पर सुना करते थे उनको, और बचपन से वो आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। तो एक गाना है, हालांकि फीमेल पर्सपेक्टिव से वो गाना गाया गया है, लेकिन आर्ट फॉर्म का कोई जेंडर नहीं होता, तो कोई भी उसको गा सकता है। जैसे मेरा चुंदड़ मंगा दे रे ओ नंदी के बीरा तन्ने न्यू ढूंगे पैराकू ओ नंदी के वीरा। बेसिकली वो अपने पति को एड्रेस कर रही है, नंदी के वीरा मतलब मेरे ननद के भाई। ठीक है, तो वो इस तरीके से है। एक और है, वो है का, हाँ, रे मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबी छोरी ने, अरे रे मेरी बहू बना दे राम गुलाबी छोरी ने। मस्ती के साथ गाते थे उन गानों।
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: तो ये मस्ती वाइब जो है ये अभी स्टूडियो में भी बिल्कुल बरकरार है। सागर, कुछ और भी सवाल है, मतलब काफी अच्छा तो लग रहा है आप हमारे साथ है, लेकिन जाने का भी टाइम हो रहा है, तो कुछ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ से अब फ्यूचर की ओर देखें, अगर आप हरियाणा को अब देखें, तो आने वाले सालों में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हरियाणा और कैसे डेवलप होना चाहिए, या कल्चरली तौर पर, फोक आर्ट म्यूजिक के तौर पर, और किस तरह से आप, क्या एंगल, किस एंगल से देखते हैं हरियाणा को?
1: मुझे ऐसा लगता है जो होना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कोर वैल्यूज को रखते हुए मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एथलीट्स हैं, कुछ बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, तो उनको स्टेडियम्स मिलने चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ताकि देश के लिए और ज़्यादा मेडल्स हम लोग लेकर के आ पाएं। इसके अलावा स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोरओवर, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा आज भी इंडिया का हिस्सा है, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन जो हमारी है भारत की, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग। उसमें बहुत बदलाव होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। क्योंकि साक्षी, ये बहुत दुखद बात है कि एक किसान इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टार्टअप के तौर पर देखिए कि अगर कोई आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो बंद फैक्ट्री में है, बिकेगा, आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, आप उसको अंदर बंद करके रखेंगे तब। लेकिन एक किसान की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, वो अपनी लिटरली सारी मेहनत से जो है बीज लेकर के आता है, पूरी मिट्टी खोदता है, बीज बोता है, फसल उगती है, और उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चौड़े में पड़ी हुई है, ओपन में। अब धूप अगर ज्यादा हो जाएगी, बर्बाद हो सकती है, बारिश ज्यादा हो जाएगी, बर्बाद हो सकती है, ठीक है, हो सकता है फसल ना होगे, हो सकता है कीड़ा लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना स्टेक पर है। आप सोचिए कि रातों रात सब खत्म हो जाता है एक बाढ़ से या सूखा पड़ जाने से, और उसके बाद फिर ऐसा भी नहीं है कि आप एक रात में फसल उगा सकते हैं, वापस से उसको 6 महीने 7 महीने का वो जो लूप है उसको रिपीट करना पड़ेगा, वही मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक पेन पॉइंट रहता है हरियाणा के लिए भी, क्योंकि वो मेरा स्टेट है, मैं यहां जन्मा हूं, लेकिन ये हरियाणा तक सीमित नहीं है, पूरे देश की बात करूंगा, जहां भी फार्मिंग होती है, हर जगह पर इतनी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कि फार्मर्स प्रिडिक्ट कर पाएं वेदर कैसा होने वाला है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, और क्या फसलें मैं उगा सकता हूं, कितने टेन्योर में वो उग सकती है। मुझे लगता है कि ये अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर, मैं ये भी चाहूंगा कि जब मेरे बच्चे हों, मैं उनको सब सिखाऊंगा, हिंदी सिखाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, जो भी होगा दुनिया में सब सिखाऊंगा, एट द सेम टाइम हरियाणवी सिखाऊंगा, स्वांग बताऊंगा, रागड़ी सुनाऊंगा, ताकि ये जो कल्चर है ये कैरी फॉरवर्ड हो सके, ये यहाँ पर गायब ना हो।
0: बिल्कुल। तो सागर, आपके साथ आज बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हरियाणा दिवस को और ज़्यादा एक महत्व अगर जो मिला है, और साथ ही आपने हर एक चीज़ के बारे में बहुत खुल के बताया है, चाहे वो रागनी की बात की जाए, गीतों की बात की जाए, यहाँ के कल्चर की एवोल्यूशन पीरियड से लेके अभी तक की सारी जानकारी आपने दी है, मैं तभी दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगी कि वो आखिरी एक लाइन हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: दूध दही का खाना, यो है हमारा हरियाणा। ये है जी, यही है हमारा, है ही ये प्रोसेस, ऑर्गेनिक है, इसीलिए आपको हट्टे कट्टे यहाँ पर लोग नजर आते हैं, क्योंकि खाना बहुत ऑर्गेनिक है और वो बचपन से डाला जाता है, मतलब पिज्जा नहीं खाते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे घर में टमाटर और मिर्च की चटनी बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है चूल्हे के ऊपर, और उसमें जो मक्खन होता है वो निकाल के ताजा रखा जाता है और उसके ऊपर वो चटनी रख के खाई जाती है। अरे साहब कभी आइए, अंगे खाइए दूध के साथ, आपको हम दिखाते हैं कि मजा क्या होता है। आप भूल जाएंगे तमाम चीज केक का स्वाद, आप भूल जाएंगे तमाम पिज्जा, और आपको मिलेंगे जो फायदे। तो ये है जी हमारा हरियाणा।
0: बिल्कुल, यही है हमारा हरियाणा। और इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। तो चलिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आज का हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM फील गुड फील लाइव। शो की बात करेंगे यहाँ पर एक प्रोसेस के तौर पे हम इस शो को आपको समझाते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले इस पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन सी कंपनीज हैं कैसे वो ऑपरेट कर रही हैं क्या उनके पीछे का प्रोसेस रहा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल गेट टू नो अबाउट द इंडस्ट्री जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो बात करेंगे बिना किसी देरी के फिलहाल मैं आ चुका हूँ इतना ही आपसे कहना है मेरा सलाम कबूल करिए लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद मेडटेक की बात होगी क्योंकि आज की जो कंपनी है वो मेडटेक में डील करती है। पहले इंडस्ट्री आपको समझाएंगे उसके बाद फाइनली वी मूव ऑन टू द कंपनी वो बताएंगे कौन सी है। तो आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके पहले हम उस कंपनी जिस इंडस्ट्री में डील करती है उस इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। सो इंडस्ट्री है मेडटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी। जरूरत बहुत है इस इंडस्ट्री को समझने की और अपने आप में बहुत क्रूशियल है ये इंडस्ट्री क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटीज हमारे आसपास आज की डेट में है चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो या

वो नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई हो या फिर कोई भी किसी तरह की महामारी अगर दुनिया में आती है तो ये इंडस्ट्री हमारी हेल्प करती है उससे कोप अप करने में। सो दैट्स हाउ ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। अब इसको थोड़ा सा हम डिकोड करके टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम रेफर करेंगे जो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तमाम तरह की चीजें, जैसे डिवाइसेस हो गए, टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई। कुल मिलाकर मोटिव ये होता है कि डायग्नोस कर पाए, डायग्नोस करना, ट्रीट करना, मॉनिटर करना मेडिकल कंडीशंस को, ताकि लोग ठीक रहे, ओवरऑल वेलबींग हमारी काफी अच्छी रहे। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिल जाती है, लिटरली वाइड रेंज मिल जाती है, चाहे आप बात करें किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, चाहे आप बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, या फिर जो आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं टेलीमेडिसिन के कि अपने घर पर बैठकर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे हम अपने घर बैठ के दवाइयां ऑर्डर कर रहे हैं तो दवाइयां हमारे डोर स्टेप तक जो पहुंच रही हैं वो भी आप मेडटेक में ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग है इस इंडस्ट्री में वो हम सब कुछ मेडटेक में कंसीडर करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को एक सरल वे में लेकर आना। अगर किसी इंसानों की प्रॉब्लम है तो अच्छे से उसको डायग्नोस करना, अगर किसी चीज की स्टार्टिंग बॉडी में हो गई है, जो आम तौर पे होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था, इनिशियल स्टेजेस में हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन अभी क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हमारे पास आ गई है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं पूरी बॉडी का चेकअप करके कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स आ गए हैं, सर्जिकल रोबोट्स जो काफी एक्यूरेसी के साथ, काफी प्रिसीजन के साथ जो है सर्जरी करते हैं, जिससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है, डैमेज भी कम से कम होता है और जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एंड एमआरआई मशीन्स, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो अचीवमेंट या फिर माइलस्टोन है हमारे लिए कि बॉडी में अंदर क्या चल रहा है उसके एक एक सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाना, अच्छे से रीड कर पाना। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और ये सब कुछ हमें दिया है मेडटेक इंडस्ट्री ने, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी कंपनी है वो इसी इंडस्ट्री में डील करती है, कंपनी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं मेडटेक इंडिया में क्या है एग्जैक्टली। देखिए मेडटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसके पीछे बहुत सारी चीजों का हाथ है, मतलब लिटरली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब इसमें एक तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ेगी और उसके हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहेगी। देन इसके बाद क्रोनिक डिजीज या फिर कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये हमने आम तौर पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि 12 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, या 14 साल की उम्र में एक बच्चे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, या 16 साल की उम्र में एक बच्चे को थायराइड हो गया, मल्टीपल चीजें। स्ट्रेस बहुत बड़ा एक एलिमेंट हो गया है हमारी लाइफ में जिससे कोप अप करने के लिए हमें जरूरत होती है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस एक इंडस्ट्री को इतना तेजी से ग्रो करा रही हैं, और ये बहुत इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। अगर दूसरे वे में इसको देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर होती जा रही है हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती आ रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है, प्लस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो काफी सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो मेडटेक हब बनाता जा रहा है इस इंडस्ट्री को पूरे एशिया में, मतलब पूरे एशिया में अगर आप उसको फिगर आउट करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एशिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक मार्केट है हेल्थ केयर का, लेकिन इंडिया उसमें बहुत स्किल्ड कंसीडर किया जाता है, मतलब हमारे यहाँ पर लिटरली एक स्ट्रांग बेस है स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, साथ साथ स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी लिटरली बहुत अच्छा लगता है देख के कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक स्टार्टअप लेकर चल रहा है और वो उसको फिक्स कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाले हैं। ऐसी मल्टीपल इनोवेशंस हमने देखी है इस हेल्थ केयर सेगमेंट में जिन्होंने लिटरली लोगों की हेल्प करी है और हमारी ओवरऑल वेलबींग काफी अच्छी की है। सो दिस इज मेडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया जो बहुत तेजी से आप कह सकते हो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। आज हम इस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे यहाँ पर, और अभी तक हमने मेडटेक इंडस्ट्री को समझ लिया है। अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स की तरफ आएंगे जो आप कह सकते हो कि सब पॉइंटर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से इंडस्ट्री का एक इनसाइट लेने में। अब हम बात करेंगे की सेगमेंट्स की।
मेडटेक इंडस्ट्री के की सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब उन वर्टिकल्स को मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे कि जहां पर कोई स्कोप है या जहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन सेगमेंट्स में हम इस इंडस्ट्री को बाइफर्केट कर सकते हैं। पहला आता है डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। इसमें हम कंसिडर करेंगे MRI, CT स्कैन्स, एक्सरेज और जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं और एक ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमारी काफी मदद करते हैं। जो मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में अब पॉसिबल है कि हम उसको एनालाइज कर पाएं और फिगर आउट कर पाएं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में, उसके लिए बहुत सारी एडवांसमेंट हमने कर ली। देन सेकंड वर्टिकल जो है वो है मेडिकल डिवाइसेस। इस सेगमेंट में आपको तमाम रेंज देखने को मिलेगी उन डिवाइसेस की जो हमारी हेल्प करते हैं, लाइक जो हमारे क्रूशियल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत क्रिटिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स की जब जरूरत होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, या स्टैंड्स जो आमतौर पर देखा जाता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है, जब किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आती है तो स्टैंड डाले जाते हैं सो दैट कि ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा ना हो और जो ब्लॉकेज है वो भी ना हो और इजीली जो है लोग वहां से कोप अप कर पाए उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो उनके सामने आई है। देन पेसमेकर्स जो इसी एक वर्टिकल में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है अपने आप में वो वर्टिकल है वियरेबल टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत आम हो चुका है, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस, इसके अलावा भी ऐसे हमारे पास वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और ये लिटरली बहुत प्राउड वाली बात है और बहुत अमेजिंग बात है कि यार अभी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में आ गई है। जैसे मल्टीपल टाइम्स हमने आपको अपने शोज में ये बात बताई है कि कोई इंसान गया माउंटेन ट्रैकिंग पे या माउंटेन क्लाइंबिंग पे और वहां पर जाकर उसको अचानक से कुछ फील हुआ, कोई पैनिक वाली सिचुएशन या अचानक से उसके या जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत शूट अप कर गया या ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा बहुत जगह से मल्टीपल टाइम्स अपडेट आए हैं कि स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी उसने नियर बाय रेस्क्यू टीम को एक मैसेज भेजा, एक SOS का मैसेज गया और इंस्टेंटली रेस्क्यू टीम वहां पर आई, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया और उस बंदे ने मतलब अपनी कॉन्शियसनेस वो खो चुका था। उस बंदे ने कोई मैसेज इंटेंशनली नहीं भेजा था, जस्ट बिकॉज कि वो जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी उसने वो सब कुछ आइडेंटिफाई किया, सिग्नल गया, रेस्क्यू टीम आई, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और समय रहते उन्हें बचा लिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, यकीन मानिएगा। सो वियरेबल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, लाइक ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने में एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने में, इसी के साथ हार्ट रेट हमारा अगर इरेगुलर हो रहा है तो उसको मॉनिटर करने में। देन इसके बाद फोर्थ वर्टिकल आता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन यानी कि आप समझ सकते हो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिमोट डायग्नोसिस को इनेबल करती है। जैसे COVID-19 के बाद से स्पेशली हमने देखा है कि वर्चुअल कॉल्स या थ्रू जो है वर्चुअल डिवाइसेस हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब रिमोटली कंसल्टेशन हो सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिससे बहुत सारे लोग जिनके पास टाइम नहीं हुआ करता था वीकेंड का वेट किया करते थे और इतने में बीमारी बढ़ती रहती थी, या किसी पर्टिकुलर डे का वेट किया करते थे तब तक बीमारी को वो झेला करते थे, तो उनके लिए काफी सुविधा हो गई है। आधा घंटा एक घंटा निकाल के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे दवाइयां भी आ जाएंगी, बहुत सिंपल है। तो इस एक चीज ने लिटरली बहुत अपलिफ्ट किया है इस एक मार्केट को। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हेल्थ IT एंड AI। इसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में हम इस चीज को देख सकते हैं कि पेशेंट्स को मैनेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एंड इसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी पास्ट में और अभी जो बॉडी साइन दे रही है वो क्या साइन दे रही है या किस एक दिशा की तरफ जो है हमें वो लेकर जा रही है। इससे पेशेंट को टाइमली ट्रीट किया जा सकता है और बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। सो ऑल दीज आर दी की सेगमेंट्स जो मेडटेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। फर्स्ट हमने आपको बताया डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग, सेकंड हमने आपको बताया मेडिकल डिवाइसेस, थर्ड बताया वियरेबल टेक्नोलॉजी, फोर्थ बताया टेलीमेडिसिन एंड फिफ्थ बताया हेल्थ IT एंड AI। अब देखिए इनमें से किसी को भी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कम महत्वपूर्ण है और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक वर्टिकल, हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बशर्ते हम उन चीजों की जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझ पाए। अभी तक हमने इंडस्ट्री को समझा ओवरऑल, हमने फिर इंडस्ट्री को समझा कि इंडिया में इसका स्टैंड क्या है अभी, फिर हमने समझा की सेगमेंट्स को, उन वर्टिकल्स को जिनमें ये इंडस्ट्री डील करती है या फिर जिनमें आप इसको बाइफर्केट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम की ड्राइवर्स की। की ड्राइवर्स यानी कि जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है। तो पहला की ड्राइवर आता है राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स। अब देखिए
जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जैसे जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर आप कह सकते हो नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड करना। मोरओवर जिस तरीके से हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हर रोज आते हैं, नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए दिन खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ नया डिटेक्ट किया जाता है, तो उस एक पर्टिकुलर चीज के साथ या उस एक पर्टिकुलर बीमारी के साथ कोप अप करना, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सच में जरूरत होती है, और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे में जो राइजिंग हेल्थ केयर नीड्स हैं वो लिटरली हमारी काफी हेल्प कर रही हैं इस एक इंडस्ट्री को आगे भी ले जाने में, और साथ साथ नई चीजों की तरफ हमें पुश करने में, मतलब नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट या नई इंप्रूवमेंट या कुछ नया इनोवेटिव हम लेकर आए। जैसे आमतौर पर भी देखने को मिलता है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये बहुत ही आम चीजें हो गई है, आमतौर पर देखने को मिल जाती है, पहले रेयरली हुआ करता था और एक सर्टेन एज ग्रुप को टारगेट किया जाता था कि इस एज में हो सकता है, लेकिन आज ये बोल पाना बहुत गलत होगा कि इस एज ग्रुप में हो सकता है, क्योंकि हमने 10 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हमने 14 साल के बच्चे को भी देखा है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत इरेगुलर है, हमने 16 साल के बच्चे को देखा है जिसको थायराइड है। ऐसे आप किसी एज ग्रुप में डाल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन प्लस स्ट्रेस प्लस ये कॉम्पिटिटिव मार्केट से हमारी होती जा रही है, इन सब की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस अर्ली स्टेजेस में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। लकीली हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकेंड आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, एज अ की ड्राइवर जो इस इंडस्ट्री को रन करता है। पहला तो मेक इन इंडिया एक मूवमेंट है जो हम अपने ही देश में अपनी चीजें बना पा रहे हैं, अपने ही देश की चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड आता है डिजिटल इंडिया जिसने बहुत हेल्प करी है, मतलब जो हम स्पेशली बात करेंगे टेलीमेडिसिन की, कि लोग अपने घर पे बैठ के कंसल्ट कर पा रहे हैं, तो वो हो पाया है डिजिटल इंडिया मूवमेंट की वजह से। देन उसके बाद आता है आयुष्मान भारत जिसमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है मेडटेक इंडस्ट्री को, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी मदद मिलती है, नई इनोवेटिव चीजें मिल रही हैं और लोगों के पास एक्सेस है हेल्थ केयर का। पहले हुआ करता था कि बहुत लिमिटेड लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सेस था, लेकिन जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, जब से हम लोग टेलीमेडिसिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से रिमोट एरियाज में भी बैठकर लोग दिल्ली या मुंबई या कहीं पर भी किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट की ड्राइवर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। AI बहुत ही अब कॉमन चीज हो गई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नई है हमारे लिए, हालांकि इतनी पुरानी नहीं हुई है, बट स्टिल हमने बहुत तरक्की कर ली है इस एक फील्ड में। मशीन लर्निंग, IoT, इन्होंने मेडटेक इंडस्ट्री को लिटरली बहुत एक नया आप कह सकते हो मुकाम दिया है, क्योंकि नई एडवांसमेंट, नई चीजें लेकर आना, अर्ली स्टेज में चीजों को डिटेक्ट कर पाना, प्लस उसको काफी पर्सनलाइज्ड वे में देखना कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। देन उसके बाद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ से इंडिया में मेडटेक जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, इन्वेस्टर्स को काफी लुभा रही है ये एक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पा रही है। देन उसके बाद लास्ट जो आप की ड्राइवर कहेंगे इस एक इंडस्ट्री में, दैट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। लोग भी अब जागरूक होते जा रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ लोग जो है अब जाने लगे हैं, साथ साथ लोग अब समझ पा रहे हैं कि यार अर्ली स्टेज में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमने डिटेक्ट कर लिया, सो इट्स गुड फॉर अस। शायद इसी वजह से लोग स्मार्ट वॉचेस या फिटनेस ट्रैकर या जो भी वेरिएबल टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको वेयर करना पसंद करते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में है तो अर्ली स्टेज पे उन्हें वो साइन मिल जाए और आगे चलकर वो परेशान ना हो जब वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो। तो ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेजी से ग्रो कर पा रही है, फिर आप कह सकते हो वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स। और इसमें अब हम बात करेंगे करंट टेक्नोलॉजीज की, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप करंट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं इस एक इंडस्ट्री की, जस्ट इन केस अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला है AI एंड मशीन लर्निंग, जो आमतौर पर हर एक इंडस्ट्री के साथ अब हम एसोसिएट कर रहे हैं और हर जगह पर हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसमें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम एनालाइज कर पाएंगे, जिससे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो पेशेंट के हिसाब से बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 3D प्रिंटिंग, जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, इम्प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन टिश्यूज हैं, उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिससे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का पूरा एफर्ट वहां पे जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए। मतलब लिटरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी का कोई ना कोई ऐसा पार्ट खो देते हैं किसी ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज में, एक्सीडेंट में, तो उसके बाद वो लाइफ टाइम उसी चीज के साथ
नहीं रहना चाहते, उन्हें चाहिए कि यार कोई रिप्लेसमेंट दे दो, लेकिन एक्यूरेसी की कमी हुआ करती थी। बट लकीली अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं 3D प्रिंटिंग की वजह से कि काफी एक्यूरेट, मतलब आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि यार ये सच में रियल है या फेक है, मतलब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। इम्प्लांट्स ऐसे ऐसे आ गए हैं, सर्जिकल जो चीजें आ गई हैं उन्होंने काफी हेल्प करी है लोगों को। कुल मिलाकर लोग जो फ्रीली कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं वो करने में काफी हेल्प करती है 3D प्रिंटिंग। उसके बाद थर्ड, वियरेबल डिवाइस, जिसकी हमने बात करी थी, जो हमारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करता है और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसका डेटा हमें प्रोवाइड करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किस दिशा में काम करना है और एग्जैक्टली क्या काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी हेल्प करते हैं टॉप नॉच डॉक्टर्स से कंसल्ट कराने में। इवन दो आप अगर एक लिमिटेड बजट लेकर चल रहे हो तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्टर हैं, उनके रिव्यूज क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहां पर मिल जाता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर जाना है, किस डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करना है, जिससे आपकी फिजिकल विजिट जो है वो बच जाती है और आप टाइम भी अपना काफी सेव कर लेते हो, आपको किसी पर्टिकुलर डे या वीकेंड का वेट नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जिकल रोबोट्स क्योंकि एक नया ट्रेंड बन चुका है और इससे काफी मदद मिलती है एक्यूरेटली ऑपरेट करने में, साथ साथ रिकवरी काफी जल्दी हो जाती है। एंड इसी के साथ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो काफी हेल्प करते हैं प्रिसाइज ऑपरेशन करने में या मेडिकल प्रोसीजर्स जो है उनको काफी सेफ और एक्यूरेट बनाने में। देन उसके बाद लास्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें देखिए मैनेज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है हेल्थ डेटा को, जिससे एक डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है, सरकार को भी काफी मदद मिलती है, साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी काफी मदद मिलती है, और अगर किसी को भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ डेवलप करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उनको काफी मदद मिलती है, एक डेटाबेस उनके हाथ में है। सो ये हैं वो तमाम टेक्नोलॉजीज जो अभी ट्रेंडिंग हैं और जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। तो अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है तो आप इन फील्ड्स में, इन टेक्नोलॉजीज में देख सकते हो। आई होप इट वर्क्स। अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो नीड क्या है इसकी इंडिया में। देखिए सबसे पहली चीज एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे देश की आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है। रूरल एरियाज मतलब लिमिटेड एक्सेस, चाहे वो किसी अच्छे टाउन के या अच्छे शहर के कितने ही करीब क्यों ना हो या कितना ही दूर क्यों ना हो, स्टिल देर आर लिमिटेशंस, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके लिए इन चीजों को एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंसान तक इनका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी चीजों को फिक्स कर सके बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। देन टेलीमेडिसिन उसमें एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, एंड मेडटेक के जो बाकी सॉल्यूशंस हैं लाइक पोर्टेबल डिवाइस हो गए, ये सब उस गैप को फिल करते हैं। इसलिए जरूरी है इंडिया में मेडटेक के ऊपर काम करना। सेकेंड, अफोर्डेबिलिटी। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। अगर मैं बात करूं एक ब्रॉडर व्यू में तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करना है या डायग्नोस करना है तो कम टाइम में अच्छे से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा प्रिसीजन के साथ हम वो कर सकते हैं, बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है, इतना इन्वेस्ट हमने ऑलरेडी किया है उस एक फील्ड में, जिसकी वजह से काफी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, जिसको जहां पर नीड है वो उसको ठीक कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड, क्वालिटी ऑफ केयर। अब एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, वेरिएबल डिवाइस आ गए हैं, AI ड्रिवन सॉल्यूशंस आ गए हैं, इससे ओवरऑल हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। जैसे कि अर्ली स्टेज डिटेक्शन, बेटर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मतलब अब अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड, आगे चलना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको कंसीडर करना चाहिए कि ये हमारी नीड है, हमारे देश की नीड है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पैंडेमिक रिस्पॉन्स। COVID-19 के बाद से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, उस टाइम पर भी, उसके बाद भी हुई, जहां पर मेडटेक ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया उस क्राइसिस के टाइम पे भी, जहां पर डॉक्टर्स के साथ वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेकर डिस्कस करते थे, एंड उसके बाद भी
क्योंकि वो एक चीज हमारी लाइफ का पार्ट बन गई, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम बहुत ट्रेंडिंग एक चीज बनी, बहुत बड़ी एक चीज निकल के सामने आई। देन उसके बाद सब कुछ हमने देखा कि डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स हमें मिल गए एंड टेलीमेडिसिन का आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए। कुल मिलाकर पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी सहूलियत हो गई, पेशेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। इट्स अ विन-विन सिचुएशन। हुआ क्या, सिंपली टेक्नोलॉजी को वहां पर अलाइन किया।

गया और उससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को नई शेप मिली। सो दैट्स हाउ हम कह सकते हैं कि इसकी नीड है, ये हमारे पास। इम्पैक्ट भी इसका देखने को मिला, मतलब काफी हमने एक्सेस को इम्प्रूव होते हुए देखा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस है अब हेल्थ केयर का। हमने देखा कि बेटर हेल्थ आउटकम्स हैं, हमने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एम्पावर हो गए हैं पहले से, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गए हैं, हमने देखा कि एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो ऐसे मेडटेक जो एक पूरी इंडस्ट्री है उसने हमारी लाइव की जो ओवरऑल वेलबींग है उसको काफी इम्प्रूव किया। आयंद्रा सिस्टम्स बेंगलुरु बेस्ड एक मेडटेक स्टार्टअप है, 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। AI का इस्तेमाल करती है ये कंपनी और पर्टिकुलर यहाँ पर एक कॉज है जिसको लेकर बहुत जानी जाती है पूरी इंडस्ट्री में, और वो है सर्वाइकल कैंसर। इनके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सर्वस्त्रा है जहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है सर्वाइकल कैंसर की, और अर्ली स्टेज पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर डिटेक्ट किया जा सकता है दैट मींस कि अर्ली स्टेज पर उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पर हमारे हाथ से गाड़ी बहुत दूर तक जा चुकी होती है। सो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इनके प्रोडक्ट्स हैं जो AI पावर्ड हैं, जैसे ऑटोमेटेड स्ट्रेनर्स हैं, टेलीपैथोलॉजी सिस्टम्स हैं जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक इस तरीके से लेकर आए हैं कि सोशल इम्पैक्ट ये लेकर आ सके। अच्छा, बहुत खास चीज़, बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि इनका जो मिशन है जिसकी वजह से कंपनी में इन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज़ कि ये क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। और ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, बेंगलुरु क्योंकि इंडिया का सिलिकन वैली जो है कंसिडर किया जाता है। बट स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये कंपनी हेल्थ केयर में स्टार्ट नहीं हुई थी। इनिशियली जो इस कंपनी के फाउंडर्स हैं मिस्टर आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा, वो कंसल्ट करते थे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर अ डिफरेंट प्रॉब्लम, जहां पर सब्सिडी लीकेजेस हुआ करते थे मिड डे मील स्कीम में स्कूल्स की जो हुआ करती है। सो इन्होंने एक टचलेस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जो अटेंडेंस की ट्रैकिंग करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये इनका पहला एक प्रोडक्ट था जो सक्सेसफुल हुआ। उस टूल का नाम था दृष्टि, जहां पर इनकी जो जान पहचान है वो AI से हुई और मार्केट जो है इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी और मार्केट जो है वो इनको समझने लगी। तो ये सब चीजें हुई। दैन उसके बाद फंडामेंटली चीजें इन्होंने अपनी ठीक करी सारी और उसके बाद ये फर्दर ग्रो करते गए और 2014 में कुछ इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उनके हेल्प से लाइक विल ग्रो है, एंड्रा है जो है वो शिफ्ट हुई टू मेडटेक, जो एक अलग ही स्टोरी है। मतलब एक पूरी नई जर्नी इनकी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अभी तक का पॉइंट ये कि 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई जहाँ पर इन्होंने पहले सरकार के बिहाफ पर काम किया, एक ऐसा इन्होंने डिवाइस बनाया जो अटेंडेंस को ट्रैक करता है ताकि किसी तरीके का घपला ना हो सके मिड डे मील स्कीम में जो स्कूल्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। फिर 2014 में जब तक ये मार्केट को समझ चुके थे, AI मॉडल्स को समझ चुके थे, डेटा को समझ चुके थे, फिर इन्होंने अपना मेडटेक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया विद द हेल्प ऑफ विलग्रो एंड कुछ और इंक्यूबेटर्स थे। तो इसके पीछे का जो आइडिया था वो हम आपको बता चुके हैं, टू यू नो मेक क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर हम बात करें तो लगभग 60,000 लोग लिटरली, मतलब हाई कॉस्ट की वजह से या लेट डायग्नोसिस की वजह से एनुअली अपनी जान गंवा देते हैं। ये इनकी कंपनी के हिसाब से एक आंकड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर इन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और वहां पर इन्होंने AI को इंट्रोड्यूस किया एंड दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इनके बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिस्टर आदर्श नटराजन की। ही इज द CEO एंड आप कह सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आंद्रा। इन्होंने अपनी MBA की डिग्री अचीव की है IIM बेंगलोर से, जो आप कह सकते हैं इंडिया टॉप बिजनेस स्कूल्स में इसको कंसीडर किया जाता है, जहां से इनकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हुई इन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। और आयंद्रा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मल्टीपल कंपनीज में इन्होंने काम किया, ठीक है, जहां पर इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं IT में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में है। काफी सारी अचीवमेंट्स हैं इनके खाते में जिनके बारे में मुझे लगता है कि रेलिवेंट नहीं होगा आपको बताना। तो इनका काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, हमेशा से एक स्मूथ एक्सपीरियंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पर मेजर एक इनका माइलस्टोन आप कहेंगे मिड डे मील स्कीम को एक्सपोज उन्होंने किया, जहाँ पर बच्चों को जो चीज़ें वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पा रही थी, वो खाना, वो जो मील्स उनके लिए बनाई जाती हैं वहाँ पर काफ़ी सारे घपले हो रहे थे, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, ठीक है। हालांकि इनका होम टाउन मेंशन नहीं है, बट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम कि डीपली रूटेड इन बेंगलोर,
क्योंकि काफी एक्सपीरियंस जो है वहीं पर इन्होंने गेन किया है। इसके बाद थोड़ी सी फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। एविड रीडर है, एक फिटनेस एंथुजियास्ट है, ही लव्स टू ट्रैवल, स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, इस तरह की चीजें। और पैशन हम देख सकते हैं डीप टेक एंड सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स। दूसरा नाम आता है अभिषेक मिश्रा, ही इज द को फाउंडर एंड आप ये कह सकते हैं बैकबोन ऑफ आइंद्रा सिस्टम्स। ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ NIT जालंधर, एक और बहुत ही खास इंस्टीट्यूशन जो कि पंजाब में मौजूद है जालंधर में। तो वहां से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो की। इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है इन कंप्यूटर विजन एंड AI, वो सारी चीजें बहुत पहले से समझते आई हैं, जिसकी वजह से ये टीम बहुत अच्छी बन पाई। तो इनका भी बहुत क्रूशियल एक पिवोटल रोल है इन डेवलपिंग आइंद्राज इनिशियल AI प्रोडक्ट्स दृष्टि एंड लेटर देन इसके बाद फर्दर जो इस कंपनी का एक बैकबोन कंसिडर हम करते हैं सर्वस्त्रा, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो करता है टूल, उसको इन्होंने बनाया। सो दैट्स हाउ यू नो दे आर जस्ट वर्किंग टुगेदर एंड मेकिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स। इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है इन AI एंड कंप्यूटर विजन। अर्ली प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते हैं इनके स्कूल डेज से। बहुत पहले से टेक को लेकर जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं और उन सब प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं जहाँ पर टेक को लाया गया, जिसकी वजह से स्केलेबल AI सोल्यूशन से बना पाए, चाहे वो मिड डे मील की हम बात करें या फिर अभी जो है हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। देन इसके बाद एक और टीम मेंबर हैं काफ़ी टैलेंटेड, मिस्टर चैतन्य, एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इनका जो पैशन है वो रोबोटिक्स में है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस में है, जहाँ पर ये हार्डवेयर वाली चीज़ें जो हैं वो सारी देखते हैं। ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ऐसे करके तीन लोगों की टीम है जो बन के आई। इनिशियली दो लोग थे जो मेन विजनरी आप कह सकते हैं जिनकी वजह से कंपनी स्टार्ट हुई, आदर्श नटराजन एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा। तीसरा नाम हमने अभी आपको बताया जो बाद में जुड़े इनके साथ, लेकिन काफी इनकी मदद हुई उससे, मिस्टर चैतन्य। आइए थोड़ी सी बात करते हैं की ड्राइवर्स की। भाई कौन से वो ड्राइवर्स हैं जिनके बलबूते पर ये कंपनी यहाँ तक पहुंची है। पहली चीज है डीप टेक्नोलॉजी। इनका जो AI का यूज है, कंप्यूटर का जो विजन है, कंप्यूटेशनल पैथोलॉजी है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत फास्टर वे में डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन एरर्स को कम कर सकते हैं और जो टर्न अराउंड टाइम होता है टेट उसको भी काफी कम कर सकते हैं। इनका फोकस है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, जहां पर ये ऐसे पोर्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अफोर्डेबल भी हों और एक्सेसिबल भी हों, जैसे विजन एक्स है, एक इंटेलिस्टेन है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो डायग्नोस कर सकती हैं इन अनडिजर्व्ड एरियाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से इनका तीसरा की ड्राइवर काफी खास हो जाता है, अ सोशल इम्पैक्ट। एज अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है ये कंपनी, बट यहाँ पर एक मिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान ये बचा रही है, यहाँ पर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वैसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कभी सुना है या बात की है, या केवल एक नाम सुना है उसके बियॉन्ड आप नहीं जानते होंगे, बताइए जरा हमें 8010078107 पे। इसके बाद फिफ्थ इनका जो आप कह सकते हैं की ड्राइवर है, दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने काफ़ी सारी यू नो ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है अपनी, जो हेल्थ केयर में काफ़ी आगे हैं, काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज हैं और इनकी टीम ऑब्वियसली काफ़ी टैलेंटेड है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने आज की इस पूरी कहानी से काफ़ी कुछ सीखा है। अब इसी नोट पर हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। तो दो लोग जो अलग अलग चीजों को समझते हैं, विजन लेकिन सेम रखते हैं, वो मिलकर के आए, उन्होंने एक कंपनी खड़ी करी, मार्केट को समझा, गैप को समझा, एंड देयर नथिंग लाइक अ परफेक्ट प्रोडक्ट। हमेशा स्कोप होता है चीजों को बेहतर बनाने का। ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है आपको एज अ थंब रूल लिख लेनी चाहिए कहीं पे, क्योंकि जितने भी केस स्टडीज यहाँ पर हमने डिस्कस किए आज तक, सब में ये चीज निकल के आती है, कॉमन होती है कि आपके कुछ फेलियर्स होते हैं, मल्टीपल चीजों के अटेम्प्ट होते हैं, उसके बाद जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं और वहां पर जाकर आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आने लगती है। तो सारे एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। अब इसी नोट पर कि ये इस शो को आप लोगों को अच्छे से समझा पाया मैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल शो है, इजाजत चाहूंगा आपसे, फिर मुलाकात होगी फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ, जो कि है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी और शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ये शो बहुत स्पेशल हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। रीजन बीइंग, यहाँ पर हम लोग काफी सारी चीजों की बात करते हैं जिनके बारे में अमूमन बात नहीं होती है, या फिर ये कहूं कि अगर आप किसी तरीके से कोई ऐसा राबता नहीं रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जाहिर सी बात है इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए बनी तो होंगी पर आप उनसे वाकिफ नहीं होंगे। इसी एक उद्देश्य के साथ हम इस शो को लेकर के आते हैं और यहाँ पर हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानवरचना यूनिवर्सिटी से अमूमन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो यहाँ पर शामिल होते हैं और जो अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पर आते हैं, हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ यहाँ पर बैठते हैं और कोशिश सिर्फ एक कि आपको हम एक जागरूक नागरिक बना सकें और आपके लिए क्या क्या चीजें इस देश में मुहैया कराई जाती हैं आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके बारे में डिस्कशन कर सकें। आज फिर एक बार हाजिर हैं हम यहाँ पर लेकर एक और खास शो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आदित्य सर जो हैं अगेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मानवरचना यूनिवर्सिटी से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और आज हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। खास तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द बातें घूमेंगी और मैं आपसे सलाह ये भी देना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप भारतीय एक नागरिक हैं, कभी भी आपको जीवन में मौका मिले, एक बार भारतीय संविधान को पढ़िएगा जरूर। उसमें क्या लिखा गया है, क्या वो चीजें हैं, कैसे वो आज भी आपके लिए रेलिवेंट है, तमाम चीजें आपको समझ में आएंगी। इट्स लाइक द सोल ऑफ आर डेमोक्रेसी, जो इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नाउ ऑन दिस नोट, बिना किसी देरी के स्वागत करेंगे आदित्य सर का और अपने शो को स्टार्ट करेंगे। सो हाय सर, वेलकम टू आवर शो।
1: हेलो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। पिछली दफा हमने शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी और आज दोबारा मुझे मौका मिल रहा है आने के लिए, सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग।
0: जी सर, हम लोग बात करने वाले हैं काफी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा। यू एज एन एक्सपर्ट मुझे प्लीज ये बताइए कि हर एक नागरिक के लिए, हर एक सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना कितना जरूरी है? जस्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन।
1: सर, टू आंसर दैट क्वेश्चन, सबसे बुनियादी चीज जो एक नागरिक कर सकता है वो ये है, क्योंकि देश के बनने के बाद जो पहला काम हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स ने किया था वो यही किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश चलाना है तो हमें एक रूलिंग डॉक्यूमेंट तो बनानी पड़ेगी, और वो सिर्फ गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ सरकार की मदद के लिए नहीं है, वो सबसे पहले अपने सिटीजन्स को राइट्स देते हैं, कुछ उनसे ड्यूटीज की कुछ उम्मीदें रखते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि इस देश के तंत्र चलेंगे कैसे। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो अमूमन तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि आपके हक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इस डॉक्यूमेंट ने आपको दिया है, और जिस वक्त में ये बना था डॉक्यूमेंट वो भी वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1947 ऑनवर्ड्स हमने बनाना शुरू किया था जब दुनिया भर में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, हम बहुत सारे सिविल राइट्स को लेकर जागरूक हो चुके थे, वेस्ट से हमने बहुत सारे आइडियाज़ लिए, हमने एशिया की बहुत सारी कंट्री से आइडिया लिए, तो हमने फिर अपने लिए एक देश बनाया। तो हमें जानना ज़रूरी है कि ये देश कैसे हमारा है, कितना हमारा है और कहाँ पर दूसरों के राइट्स शुरू हो जाते हैं और हमारे ख़त्म हो जाते हैं।
0: जी, बहुत सुंदर। जब हम लोग बात भारत की करते हैं, हम लोग बात डेमोक्रेसी की करते हैं, हम लोग बात संविधान की करते हैं, तो एक फ्रेज बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, अमूमन कहा भी जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन स्टेटमेंट?
1: सर, ये जो लाइन है यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। एक्चुअली एक पूरा प्रीफेस है, जैसे हम प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 1 से पहले ही शुरू हो जाता है, जो कि हमें बेसिकली एक डिक्शनरी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की। ये समझ, मतलब आई डोंट नो ये कितना अप्रोप्रिएट होगा, बट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डेटिंग प्रोफाइल होता किसी डेटिंग ऐप पे, तो ये उसका बायो होता, क्योंकि ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारा देश है कैसा, हमारे देश ने किन किन चीज़ों को चुना है अपने लिए। मैं अभी आगे इस सेशन में इसी की बात ज़्यादातर करूँगा कि कैरेक्टर हमने अपने देश का कैसा चूज़ किया है। तो हमने सबसे पहले हमारे पावर के सोर्स की बात की है कि इस देश को इसकी शक्ति, इस देश को इसके कानूनों की शक्ति कहाँ से मिलती है, और जवाब आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि इस देश में जो भी पावर का सोर्स है वो हम लोगों से ही मिला है। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग कि हम एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनेंगे जहां वोटिंग होगी, जहां पे कानून यानी रूल ऑफ लॉ होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर को हम सबसे पावरफुल मानते हैं या चीफ मिनिस्टर को पावरफुल मानते हैं, तो इनकी भी जो अथॉरिटी है वो हमारे ही थ्रू होके जा रही है। तो वी द पीपल दो चीजें बताती है, सोर्स ऑफ पावर भी और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी। क्योंकि अगर मैं रीड आउट करूं तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाटएवर व्हाटएवर, यानी कि ये संविधान हमने खुद को दिया है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उनको 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त दिया और कहा कि हमें एक संविधान चाहिए इस देश को चलाने के लिए। सो वी द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको हमेशा रिमाइंड कराता रहता है कि ये ताकत हमने खुद को खुद से दी है।
0: सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। वी में आपको साथ साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी मिलता है, आप एक इंडिविजुअल नहीं रह जाते हैं, आप एक भारत के नागरिक बनते हैं जहां पर पूरे समूह को, पूरी ट्राइब को, पूरे देश को आपको एक साथ ध्यान में रखकर सोचना होता है, और वही एक सही विचारधारा हो सकती है व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री। कि फॉर एग्जांपल अमूमन अपने शोज में हम लोग बात करते हैं सिविक सेंस की, जिसके बारे में बीते कुछ टाइम से बहुत तेजी से कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही
1: है।
0: कहीं पर कुछ भी कर देना, गंद फेंक देना, अभी बेंगलुरु का एक किस्सा मैं देख रहा था परसों, वहां पर यह हुआ था कि एक जगह पर बिल्कुल हाईवे पर साफ सुथरी जगह है, वहां पर 4 लड़के आए, आके अपना कुछ गार्बेज डंप किया और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने डांस कर रहे हैं, ठीक है। दे वर हैविंग दिस इल्यूजन कि दिस इज कूल। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट इट, कि जब हम एज अ कंट्री सोचते हैं तो हमें बेसिक सारे क्लियर रखने होते हैं, उसके लिए हम सबको यूनाइटेड होकर सोचना होता है। वील टॉक अबाउट इट मे बी इन सम अदर शो, बिकॉज सिविक सेंस इज अगेन अनदर बिग इशू जिसके बारे में बात होनी चाहिए।

0: वो ये थी कि हम इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंडिपेंडेंट हैं। सॉवरेन शब्द का यही मतलब है कि हम स्वाधीन हैं, हमें बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है ना अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई क्राउन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो हमें चला रही है। यूनियन ऑफ इंडिया एक सॉवरेन स्टेट ऐसे बना। फिर हमने बात की कि हम किस प्रकार की गवर्नेंस चाहेंगे, क्या यहाँ रूल ऑफ पीपल होगा या फिर जैसे राजा राजा के बाद राजकुमार ही राजा बनता है वो वाला सिस्टम अपनाएंगे या कोई तीसरी चीज़ करेंगे। तो हमने कहा नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स भी हैं। तो हमने कहा कि हम डेमोक्रेसी को एम्पावर करेंगे और इसलिए हमने एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चुना अपने लिए, डेमोक्रेसी जैसे हम जमहूरियत भी कहते हैं। और रिपब्लिक जो शब्द है ये उसका एक्सटेंशन ही है। रिपब्लिक कहता है कि हमारे जितने लीडर्स होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स होंगे, सेलेक्टेड लीडर्स नहीं होंगे। यानी कि एक चुनाव के बाद हमें पता चलेगा अच्छा लोगों ने इनको एक जनमत दिया और फिर वो बनते हैं। तो रिपब्लिक मींस हैविंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये वो चीज़ है। अब मैं जो जो बचे कंट्रोवर्शियल वर्ड्स हैं उन पे आना चाहूँगा। सेक्युलर और सोशलिस्ट कंट्रोवर्शियल नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ह्यूमेन शब्द हैं, इंसानियत की तरफ ही हमें ले जाते हैं। लोगों को एक गलत फहमी है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आपको हर धर्म का सम्मान कर रहे हैं, हर धर्म का पालन करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता है, द स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन, सरकार का कोई रिलीजन नहीं और वो किसी रिलीजन को ना प्रमोट करेगी ना डिस्करेज करेगी। स्टेट शैल नीदर प्रमोट और डिस्करेज एनी रिलीजन। सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट टू द पीपल, जनता क्या करेगी? आपका जो भी धर्म है आप उसे उसका पालन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बाकी धर्मों का पालन करना। हाँ, कुछ लॉज हैं डिफेमेशन के या हेट स्पीच के, या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि खराब माहौल हो जाए समाज का, आप किसी और समाज के या रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सेक्युलरिज्म द वर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉर गवर्नमेंट, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। छुट्टियां अगर मनेगी एक साल में तो सारी हॉलीडेज की मनेगी, इसलिए आप देखते भी होंगे कि पीएमओ से जब ट्विटर पे विशेष आती हैं तो सारे रिलीजन की आती हैं, तो वो है सेक्युलरिज्म। और आखिरी और सबसे प्यारा वर्ड है सोशलिज्म। ये दोनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट यानी 1976 के बाद ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशलिज्म का मतलब ये है कि हमारे देश की जो भी पूंजी है वो इक्वली डिवाइड होगी लोगों में। सोशलिज्म एक तरीके से आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म का ही दूसरा छोर है, ऑपोजिट छोर है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपके 5 लोगों के ग्रुप की हाउस पार्टी हो रही है जिसमें से एक काफ़ी अमीर खानदान से आता है, एक मिडिल क्लास से आता है, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो हम सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन देखेंगे। यानी कि जिसकी जितनी क्षमता है और उस हिसाब से हम उसका योगदान लेंगे भी और उसको सपोर्ट देंगे भी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे सोशलिस्टिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, जो नरेगा है या महात्मा गांधी नरेगा स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इनमें हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड करें और क्लास के बेसिस पे, इनकम क्लास के बेसिस पे, इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये गोल है। और हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, यानी कि हम थोड़े से कैपिटलिस्ट हैं, थोड़े से सोशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल भी है और रैन बसेरे भी हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों स्पेक्ट्रम को कवर करने की कोशिश की है, एटलीस्ट हमारे प्रीएम्बल के थ्रू की है। तो ये 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, इट्स एन इस्लामिक स्टेट। तो कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना रिलीजियस नेचर डिफाइन कर लिया है। हमने कहा 1947 के बाद हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं होगा, हमारे देश में सारे रिलीजन के लोग रह सकते हैं।
1: सो वंडरफुल। सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट द मीनिंग ऑफ सेक्युलर वर्ड कुड बी कि वो जो लीडर हैं जो सरकार को चला रहे हैं दे कैन हैव देयर ओन बिलीव्स बट दे कांट बी बायस्ड।
0: जी, मतलब अगर मैं इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उनको हिंदू धर्म का पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट जितने भी सरकारी काम होंगे, सरकारी ऑर्डर होंगे, जो कानून बनते हैं, उनके थ्रू कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, सरकार के काम हो रहे हैं, सरकारी काम में कोई, जैसे कि कल को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गजट ऑफ इंडिया से एक पर्टिकुलर धर्म के जो फेस्टिवल्स के हॉलीडेज हैं उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। या फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिक फंड से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही हेल्प मिलेगी, ऐसा कानून नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कैरेक्टर डिफाइन किया। बट हाँ, ये जितने गवर्नमेंट के लोग हैं ये इंसान भी तो हैं, और इंसान है तो अपने प्राइवेट लाइफ में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, अपने प्राइवेट लाइफ में जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो जिस धर्म के आप हैं जो भी पालन करना आप कर सकते हैं। वेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब आप स्टेट की हैसियत से आते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते वो सारी चीजें।

0: सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या ये बोलना गलत होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं
1: जी,
0: या फिर इसको सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाए तो ये बोला जा सकता है शायद कि भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं जो अभी करंट प्रधानमंत्री
1: जी जी जी जी,
0: तो ये नहीं बोला जा सकता है कि आप उस औहदे को नहीं बोल सकते।
1: नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन भारतीय सरकार किसी धर्म को का पालन नहीं करती है, ना प्रमोट करती है ना डिस्करेज करती है। जैसे कि कल को कोई वैकेंसी आती किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें ये केवियट नहीं लगाया जा सकता कि एबीसी धर्म के लोग तो अप्लाई कर सकते हैं बट डीईएफ के अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक गवर्नमेंट फंक्शन है और गवर्नमेंट फंक्शन में हमने इंश्योर किया कि सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे। तो एक जो मिसकंसेप्शन इस वर्ड का, जो कि मोस्टली ऑनलाइन दिखा है पिछले 5-10-15 साल में जब से इंटरनेट ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ है, लोगों को लगता है कि आप पे एक बर्डन डाल दिया है हमारे संविधान ने कि आप सारे धर्मों का पालन करें। ऐसा नहीं है, सेक्युलरिज्म मतलब कि आप अपना काम करें, सरकार किसी के साइड नहीं है, सरकार किसी धर्म का मतलब किसी धर्म को अपोज भी नहीं कर रही है, प्रमोट भी नहीं कर रही है।
0: सो वंडरफुल दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनकी समझ हम सब में आ गई तो आधी से ज़्यादा जो हमें सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज दिखाई देती हैं, बहस के जो मुद्दे दिखाई देते हैं, जो मतभेद आपको दिखाई देते हैं, वो शायद अवॉइड हो सकते हैं इन छोटी सी चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब आप बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया या भारत या इंडिया, तो वहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही रेफर कर रहे हैं, भले ही आप इंटेंशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आता है वहाँ पर। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रोड मैप बना करके हमें दिया है, मुझे लगता है वही एक सही विकल्प है, अगर सही तरीके से शांतिपूर्वक अगर हमें तरक्की के रास्ते पर चलना है, वृद्धि के रास्ते पर चलना है। ऑन दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम आदित्य सर से बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस करना है हमें, और मुझे भी हर बार यहाँ पर इस शो में खासतौर पर इतना कुछ नया जानने को मिलता है। हर बार जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने फील्ड्स के मास्टर होते हैं, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आता होगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव समथिंग वी यू वांट टू शेयर विद अस, मे बी विद मी और मे बी विद आदित्य सर, सो यू कैन लेट अस नो ऑन 8010781078। फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। बिना किसी देरी के अपने शो को हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। हमारे साथ आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, मिस्टर आदित्य, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर फंडामेंटल्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले बेसिक्स ही क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम आगे चल के शायद और लेयर्स को हटा पाएंगे। लेट्स टेक इट अहेड एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, किस तरह का जस्टिस जो है वो एम करता है टू बी सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
1: सर ये जो शब्द है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्चुअल है। जस्टिस कभी भी कोर्ट रूम से दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज को ये अडिग विश्वास रहता है कि जस्टिस वही है जो वो क्लेम कर रहे हैं, और जस्टिस को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता, वो केस टू केस बेसिस पे चेंज होता है। तो इसीलिए जो हमारे ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने तीन पैरामीटर हमको फिक्स करके दे दिए कि जस्टिस हम इन तीन कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करेंगे, उम्मीद करेंगे या कोशिश करेंगे। वो तीन कॉन्टेक्स्ट थे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब मैं एक एक पंक्ति में इन तीनों का मतलब बहुत ही सरल है बता देता हूँ कि सोशल जस्टिस समाज में आपकी जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी आपकी पहचान है, चाहे वो आपके नाम से लेके हो, आपकी जाति से लेके हो, आपके धर्म से लेके हो, सोसाइटी में जो आपका स्टेक है, क्लास के बेसिस पे भी एक्चुअली, वहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए आपको। जस्टिस यानी कि अगर आपके साथ कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, यानी कि 300 साल 400 साल पहले 500 साल पहले आपकी जाति के साथ कोई वॉयलेंस हुआ हो, और आज उस फलस्वरूप उसके ऐसा है कि आपके सरनेम को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर आपको आप पब्लिकली क्लेम नहीं कर पा रहे अपनी आइडेंटिटी को, तो ये जो पहला पार्ट है जो सोशल जस्टिस है वो ये कहता है कि समाज में आपकी हिस्सेदारी में हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं, कास्ट बस एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है। ये बेसिकली कोशिश है कि जितने मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, चाहे वो कास्ट की वजह से हों, जेंडर की वजह से हों, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से हों, बहुत सारे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पैदा नहीं होते हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं देखे हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और इंटरनलाइज करना मुश्किल होता है। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करें तो हम सबकी इंक्लूजन की बात करें कि सब को इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना नहीं चाहिए बट है, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज इससे निकले हैं, जैसे जितने जेंडर जस्टिस वाले लॉज हैं जिन पर आज बात होती है कि औरतों को क्यों प्रेफरेंस मिलती है, वो एक अलग बहस है अपने आप में, वो भी इसी से है। जितने भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि एक्चुअली किसी और दिन हम बात करें, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ही नहीं, वो सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिए गए रिजर्वेशन हैं जो कोइंसिडेंटली कास्ट को मिल गए हैं, तो वो भी इसी के थ्रू मिले हैं। तो ये सब सोशल जस्टिस के पार्ट। इकोनॉमिक जस्टिस फिर आ जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मान लीजिए मैं और आप एक ही संगठन में काम कर रहे हैं, अगर हमारा वर्कलोड सेम है, अगर हमारी क्वालिफिकेशन सेम है, तो हमारे पेमेंट में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें सेम पैसा मिलना चाहिए। और ये इशू दोनों लेवल पे काम करता है, ये कई बार हायरार्की इन एन इंस्टीट्यूशन पे भी काम करता है, और मोस्टली जब ये बात उठी है हाल फिलहाल नहीं, 10-20 साल पहले ही, वो थी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में कि सेम पोस्ट पे अगर एक लड़की काम कर रही है और एक लड़का काम कर रहा है तो पे डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी है कि आपको आपके लेबर का या कॉन्ट्रीब्यूशन का एक जस्टिफाइड इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। अगर एक मजदूर काम कर रहा है एक मिल में, ये बहुत ही एक्सट्रीम यूरोपियन थॉट है वैसे, कि जितना जो ओरिजिनल सीईओ कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिल का वर्कर भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए जब प्रॉफिट्स आते हैं तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। हमने इक्वल डिविजन वाली ऐसी कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, बट ये कॉन्सेप्ट यही है कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका देश के इकोनॉमिक्स में या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक्स में, आपको एक फेयर प्रोपोर्शन उसका मिलना चाहिए। और जो आखिरी फॉर्म ऑफ जस्टिस हमने कहा पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहता है कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस देश में, जो मोस्टली हम अपने इलेक्शंस के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू रेगुलेट करते हैं, उसमें भी सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। यानी कि पहले तो जैसे कि हमेशा से ऐसा नहीं था कि सारे वोट्स के वैल्यू बराबर थे। जो कॉन्सेप्ट हमारा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कि 18 वर्ष के ऊपर के जितने लोग हैं सबके वोट की वैल्यू बराबर है, दैट वॉजेंट ऑलवेज द केस। पूरी दुनिया में वुमेन वोट को कई बार 3 वुमेन वोट को एक मेल वोट से इक्वेट किया जाता था। हम अगर बात करें स्लेवरी वाले वक्त की, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, जब मिले तो वो भी फ्रैक्शंस में मिले थे, यानी एक इंडिविजुअल को बेसिकली स्टेटमेंट ये था कि तुम एक हो पर एक इंसान से कम की हैसियत है तुम्हारी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डिंग में या पावर स्टेक होल्डिंग में। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा सबके पास, और सबके पास ये राइट भी होगा कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, आप वोट दे रहे हैं आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट ये हमारा स्टेटमेंट था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स ने दिया कि हम इन तीन प्रकार से जस्टिस इंश्योर करेंगे।
0: बहुत सुंदर। जो अभी आपने यहाँ पर ये पूरी बात हमें बताई है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी हमें समझाई है कि किस किस तरीके से हम इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन एक सवाल है जो अभी अभी मेरे जहन में आ रहा है जिसके बारे में डेफिनेटली मैं बात करना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट लिबर्टी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? एंड वन मोर थिंग, डू यू बिलीव कि लिबर्टी को गलत तरीके से समझा जाने लगा है कुछ लोगों के द्वारा?
1: जी, लिबर्टी से ही शब्द निकलता है लिबरल, और लिबरल आज के वक्त में कई जगहों पे, कई देशों में, कई सोशल मीडिया फोरम्स पे गाली के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इसका एक अपभ्रंश इस्तेमाल किया जाता है जो मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा, बट लिबरलिज्म एक सोचने का तरीका है बस, जो जिसका ऑपोजिट क्या है, जिसका ऑपोजिट है फंडामेंटलिज्म, रूढ़िवादी, यानी कि चीजें जैसे चलती आ रही हैं वैसे ही चलेंगी, ये फंडामेंटलिज्म कहता है। लिबर्टी या लिबरलिज्म ये कहता है कि अगर गुंजाइश है बेहतरी की तो उस ओर बढ़ना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, बोलना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे भी लिबर्टी जैसे शब्द को चार वर्ड्स में या चार पॉइंट्स में हमारे प्रियम्बल ने ही डिफाइन कर दिया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप तो हमारे राइट टू रिलीजन में आ गया, जो मैंने सेक्युलरिज्म में कहा ही था कि आपका जो भी फेथ है, जैसे आपको वर्शिप करना है आप कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं इसमें, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्पेस में आपको अपना धर्म जैसे भी एक्सरसाइज करना आप कर सकते हैं, घर में जो भी करना हो, पब्लिक स्पेस में आप नहीं कर सकते। हम पब्लिक स्पेस में भी करने की इजाज़त देते हैं हमारे देश में, चाहे वो पूजा आरती करनी हो, अजान पढ़ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो तो फेथ एंड वर्शिप है। अब आते हैं थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ की लिबर्टी। तो अगर हम इसके पीछे आइडिया ये था कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सवाल पूछना, बातचीत होना खासतौर पर बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि क्या सही है क्या नहीं है और बेहतर क्या हो सकता है। जब तक आप काउंटर पर्सपेक्टिव नहीं सुनेंगे आप इको चेंबर में फंस के रह जाएंगे। और क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, खान पान, तो हमने कहा कि सबकी बात सुनना ज़रूरी है और इसके लिए एक प्रोविजन देना ज़रूरी कि भाई तुम बोल सकते हो जो भी बोलना चाहो। तो ना सिर्फ हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड हमने डाला लिबर्टी, हमने आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात की कि आप बोलो जो भी बोलना है आपको। फिर ये हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस लाए हैं बाद में। जो पहला चेंज हमने लाया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक ये था कि हमने कहा कि नहीं नहीं बोलना है जो बोल सकते हो, पर हम कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे इस पर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। उसमें भी गुंजाइश छोड़ी कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है ये सब। तो लिबर्टी बेसिकली आज़ादी का ही एक दूसरा सिनोनिम है, जो कि कहता है कि अब हम जो चाहे बोल सकते हैं, अपने मन की बात बोलेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नेंस में ये आज़ादी नहीं थी हमको। सो लिबर्टी उसी को सिंबलाइज करता है बेसिकली।
0: सो वंडरफुल। अब यहाँ पर लिबर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, आज़ादी, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो जाता है कि आज़ादी आपको मिल जाती है पब्लिक प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करने की, या कहीं पर यू नो कुछ भी फेंक देने की, या एक दो किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा और फिर आप बताइएगा क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। एक केस हुआ था अभी हाल फिलहाल, जहाँ पर एक लड़की बीच वेयर जो कपड़े होते हैं उनको पहन करके दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी, उसका एक वीडियो बना, वो वायरल हुआ और DMRC की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई और वो एक विवाद का मुद्दा वहां पर बना सोशल मीडिया पर, पूरी इसकी ट्रेल चली थी। मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगा, अगर लिबर्टी को मायने यहां पर रखा जाए तो ठीक है, लड़की अपनी फ्री विल के हिसाब से जो उसको ठीक लगा वो कर सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पर देखूं कि आप एक ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं आप, जहां पर हर एक एज ग्रुप के लोग जो हैं ट्रेवल कर रहे हैं, सो योर लिबर्टी शुड नॉट बी समथिंग लाइक एन एम्बेरसिंग फील फॉर समवन एल्स, जो वहां पर बैठे हुए हैं बुजुर्ग एक वहां पर थे स्पेशली। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा, बीइंग एन एक्सपर्ट प्लीज आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे इसको देखा जाए।
1: सर आपने अपने प्रश्न में ही लगभग इसका जवाब दे दिया है। हाँ। हमारी लिबर्टी कॉन्टेक्चुअल है, वो संदर्भ पे डिपेंड करती है, और जिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की मैं बात कर रहा था उसमें से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑब्सिनिटी, यानी कि अश्लीलता आप नहीं फैला। कल को अगर मैं चाहूं कि मैं एक मूवी बनाऊं और उसे थिएटर्स में दिखाऊं या डिस्ट्रीब्यूट करूं, गवर्नमेंट मुझे इसकी परमिशन कभी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री स्पीच है मेरा या एक्सप्रेशन है मेरा, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड है, जिसका नाम है ऑब्सिनिटी। मैं नहीं फैला सकता अश्लीलता इस समाज में। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि अश्लीलता है क्या, जिसका जवाब बहुत सारे केस लॉज में ये आया है कि ऑब्सिनिटी डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट सर्कमस्टांसिस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेटअप, यानी कि आप किस समाज में हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो जगह कौन सी है, क्या वो यही बीच वेयर अगर किसी बीच पे पहना जाता तो कोई आउटरेज नहीं होता, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट है उस जगह के लिए, वो माना गया है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में लोग कंफर्टेबल नहीं इस चीज को लेके, आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में लोग हेजिटेंट फील कर रहे हैं अपने राइट्स को एक्सरसाइज, उनका भी तो राइट टू लाइफ है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, तो उनका राइट जो मैंने शुरू में कहा था कि आपका राइट कहाँ खत्म होता है और दूसरों का कहाँ शुरू हो जाता है, पब्लिक स्पेसेस में आप अपने बहुत सारे इंडिविजुअल राइट्स को गिव अप कर देते हैं, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, क्योंकि सबको साथ रहना। तो ऑब्सीन क्या है, वो आपके इमीडिएट सराउंडिंग, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कम्युनिटी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस आइसोलेटेड केस को उठाऊं तो मुझे नहीं लगता है कि ये उस महिला का जो भी एक्शन है वो लिबर्टी के दायरे में आता है। मुझे लगता है कि उस पर लीगल एक्शन अगर लिया जाता है या उसे रिस्ट्रेन किया जाता है तो वो सही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है,

0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी मोरालिटी अपनी जगह सही होगी, आपकी मोरालिटी सिर्फ वहाँ प्रिवेल नहीं करती है, वहाँ 100 लोग और हैं जो सेम व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, सेम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब की जो कंबाइंड मोरालिटी है वो प्रिवेल करती है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को पर्टिकुलरली देखूं तो फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस और कम्युनिटी के हिसाब से उसने जो किया वो गलत था। अब यही अगर हम एग्जांपल जो मैंने शुरू में बोला था, अगर बहुत सारे दुनिया में न्यूड बीचेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये अलाउड है या एक्सेप्टेड है कि आप वस्त्र पहने ही नहीं, वहाँ पे वो एक कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि हाँ हमने एक अलग स्पेस बनाया है जिसका यही पर्पस ही है। वहां पे जाके कोई इंसान ये नहीं क्लेम कर सकता उस बीच पे जाके कि तुम लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने, क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट ही है, वहां की इमीडिएट सराउंडिंग मोरालिटी वही है। तो हाँ, मोरालिटी क्या है ये आपके आसपास के लोगों पे ही डिपेंड करता है।
1: ठीक है, यहाँ पर एक और मुझे रेफरेंस याद आ रहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। बीते दिनों एक विवाद हुआ था हमारे देश में, यहाँ पर एक रियलिटी शो था, कॉमेडियंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करते थे, और वहाँ पर एक सज्जन जो कि बहुत जाने माने पॉडकास्टर हैं भारत के, उन्होंने आकर के एक टिप्पणी कर दी थी और जिसको लेकर पूरा एक विवाद हुआ, कोर्ट कचहरी वो सारा मामला हुआ। अगर उस केस को ध्यान से देखा जाए और उसको यू नो बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंड किया जाए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि उस इंसान ने वो पब्लिक नहीं किया हुआ था कॉन्टेंट, वो जो कंटेंट था वो केवल मेंबर्स के लिए था। ठीक है, मेंबर्स कौन लोग होंगे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होगी, एक चीज है। दूसरी चीज है कि वहां पर आपको पैसे दे के जाना है। तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक बीच जैसी चीज जो एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक स्पेस बनाया गया है, सिमिलर फंडामेंटल वहां पर लागू होता है कि उन्होंने भी एक स्पेस वहां पर क्रिएट किया था, एक क्लोज्ड कम्युनिटी का, कि आप आके हमारा कॉन्टेंट देख सकते हैं। अब यहां पर किसी एक इंसान ने कुछ किया कि उस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड किया या डाउनलोड किया और उसको उठा के ओपन मीडिया में, एक ओपन स्पेस में डाल दिया। आपके हिसाब से क्या यहाँ पर मैं पूरा कल्प्रिट उस इंसान को मारूंगा जिसने वो शो ऑर्गेनाइज किया, या मैं उस इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे वहां पर कंसीडर करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, कि जिसने उसे क्लिप को प्राइवेट स्पेस से निकाल करके पब्लिक स्पेस में डाल दिया?
0: सर मैं यहाँ एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा फिर एक लीगल ओपिनियन दूंगा।
1: प्लीज। हाँ,
0: पर्सनल ओपिनियन ये कि उस कॉमेडियन की 1% की भी गलती नहीं थी इस पूरे एक्ट में।
1: हाँ।
0: और मेरा लीगल ओपिनियन भी यही है कि उसकी 1% की गलती नहीं थी। क्यों? फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन जो केवीएस आपने यहाँ पे डिस्क्लोज किया, कि जितने लोगों ने भी वो कॉन्टेंट एक्सेस किया अपनी मर्जी से किया, उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपका फ्री विल होना जरूरी है, जो हम कैसे इंश्योर करते हैं, ये कह के कि आप 18 से ऊपर के हैं। ठीक है, वो भी उसने इंश्योर किया। तीसरा, जो भी कंज्यूमर उस शो को एक्सेस करने जाता है वो नेचर ऑफ दैट शो को समझता है। अगर मैं आस्था चैनल पे किसी धार्मिक शो को देखने जा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मुझे कैसा कंटेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप या जॉनर के कॉमेडियन के कॉन्टेंट को कंज्यूम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि किस टाइप का कॉन्टेंट होगा। तो क्या अपने तरफ से उसने सारे रीजनेबल मेजर्स लिए? बिल्कुल लिए। आप एक इंसान को कहाँ तक अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो? आप उन्हीं चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो जो वो रीजनेबली देख सके और उसके लिए बंदोबस्त कर सके। उसने रीजनेबली देखा कि उन लोगों के लिए ही कॉन्टेंट होगा जो मेरे हार्डकोर फैंस हैं, जो मेरे ह्यूमर से अवगत हैं और जिनको मेरे शॉक वैल्यू से मजा आता है। अब उस कॉन्टेंट को बाहर ले जाने या उस कॉन्टेंट को पब्लिश करना, मुझे लगता है एक चीज होती है स्केप गोटिंग, आप किसी को बलि का बकरा बनाते हो। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोज केस, अगेन नाउ दिस इज पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ दोज केसेस, क्योंकि आप बहुत आने वाले दिनों में देखेंगे कि मोरालिटी या ऑब्सिनिटी को लेके कोई कानून आने वाली है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कॉन्टेंट को लेके, यानी यूट्यूब के कॉन्टेंट को लेके। तो कई बार किसी कानून को लाने से पहले उसकी लॉबिंग या ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जाता है, और ये ग्राउंड वर्क तभी क्रिएट किया जा सकता है जब आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें जनता के सामने कि देखिए आज के दौर में मोरालिटी एक प्रॉब्लम है, आज के दौर में देखिए आज की यूथ कैसी बातचीत कर रही है। तो वो प्रॉब्लम हाईलाइट करना मुझे लगता है स्टेप वन है। स्टेप टू ये थे कि एक लीगल एक्शन हो गया और कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सेंटर को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मोरालिटी और अश्लीलता को रेगुलेट किया जाए, और बहुत जल्द अगले 1-1.5 साल में आप देखेंगे ऐसा कानून आ जाएगा। क्या उसने कुछ गलत किया? अमेरिकन लॉज जिनसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोरो करके आर्टिकल 19 बनाया हमने, वो भी ऐसा नहीं कहते कि उसने कुछ गलत किया। इंडिया के अभी तक जितने केस लॉज के जजमेंट्स आए हैं वो भी ऐसा नहीं कहते। तो मेरे हिसाब से तो उसने कुछ गलत नहीं किया था। अगर पनिश करना था किसी को तो आप उसको करें जिसने वो कंटेंट वायरल किया पे वॉल के अगेंस्ट जाके, एक तरीके से तो उसने कमर्शियल राइट्स का वायलेशन किया उस आदमी का, मतलब जो भी रेवेन्यू उसको जनरेट होता एक एक्स्ट्रा यूजर या व्यूअर से वो से उसे छीना गया है। सेकेंडली अगर आप जिम्मेदार होल्ड ही कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को जिम्मेदार होल्ड कीजिए। एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी पेरेंटिंग की नहीं है, एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि मैं चीज़ें बोलूँगा उसमें से अगर कुछ ऐसा है जो क्रिमिनल नेचर का हो या फिर डिफेमेटरी नेचर का, उसको आप स्क्रैप आउट कर दीजिए। बट पेरेंटिंग इज नॉट द जॉब फॉर अ कंटेंट क्रिएटर और आर्टिस्ट, खासकर तब जब वो खुद लेबल करके बोल रहा है कि मेरा कंटेंट 18 प्लस है।
1: सो वंडरफुल। बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर हो पाएँ, ताकि सही तरीके से एक आप कह सकते हैं कि वो बायस्ड वाले जो चश्मे हमारी आंखों पे लगे हुए हैं हम उनको हटा करके देख पाएं कि व्हाट्स द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, क्योंकि मूलभूत आधार वही है हमारा। ठीक है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो आधे से ज़्यादा लेबल्स जो आपने और मैंने लगा रखे हैं वो अमूमन हमारे आसपास के लोगों ने हमें दिए हैं, हमने बना दिए हैं। वो कानून नहीं बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, भारत देश नहीं बोलता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है उस एक चीज को, और यही उद्देश्य है इस शो को लेकर आने के पीछे। फिलहाल एक और बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ आदित्य सर यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस करी हैं और कुछ और चीजें हैं जो मेरे जहन में सवाल हैं और जो वाजिब भी हैं आज की डेट में करेंगे डिस्कस। बट फिलहाल स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

जिसने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उससे निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्रायश्चित कर रहे हो। 1,00,000 की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन 1,00,000 की चोरी को 10 रुपये के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती, सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा ना मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं, आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। शब्द दे सकते हैं सत्य नहीं, अंधेरे की दीवालों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी है। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे, जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल ना समझ कह सकते, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो, सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं, और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं।
बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तत्वस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के, न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। या जैसे कोई लेट गया है घास पर, क्षण भर आकाश में चलते बादलों को देखता है, उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है, जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो, तुम मात्र दृष्टा रहो। जिसको उपनिषद साक्षी कहते हैं, उसी को बुद्ध अवलोकन कहते हैं। बस देखो, जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं, एक तटस्थ भाव, एक फासले पर खड़े हुए चुपचाप, और एक अद्भुत क्रांति घटती। जितने तुम तटस्थ होते जाते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने कृत्यों से अलग हो, पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग। और ये जो अलगपन है, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष। जो पाप के साथ अपने को एक समझता है, वो भ्रांति में है। जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है, वो भी भ्रांति में, उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते हैं, जैसे स्वप्न में किए हों कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हों कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो, स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए।

तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो, तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे। कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे हंसोगे, किसकी प्रशंसा किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे, अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा होश साधना। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति राग द्वेष पैदा हुआ। तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया, दिन भर उसकी ताजगी रहेगी और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की, रह रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी, तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है। तुमने नहीं तौला, बस देखते रहे तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में, साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का, परमात्मा का, बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजदा नहीं करते। पराये को कहीं कोई भेद की बातें बताता है। बुद्धि पराई है, उधार है, हृदय तुम्हारा है, इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेके पैदा होते हो, बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते हैं, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की,
रूस में कोई पैदा होता है उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी। ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था। जब तुमने आंख खोली थी तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्णयुक्त है, लेकिन फिर भी गंध शून्य, ऐसा ही पांडित्य है। रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से, तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती, वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते, भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है, एक रानी उसके प्रेम में थी और उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है। तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, उसने एक परीक्षा ये भी थी। वो आई एक दिन राज दरबार में, दूर खड़ी हो गई, हाथ में उसने दो गुलदस्ते के फूलों के गुलदस्ते लाई थी और उसने सोलमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था, वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलोमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो। खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए, न तो दरबारी समझे न वो रानी समझे कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोलोमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वो जो असली फूल थे उन पे जाके बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला। वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना। सोलोमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं। मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे। बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्ण युक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता है सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा। जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना, जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना। अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं, प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है।
जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो। तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात न रह जाए, उसकी जड़ें तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते हैं, बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर। और ज्ञान का तो भारी बोझ है, तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ, तुम जानते ज्यादा हो जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ, थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, अक्ल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, खुश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी। केवल वे ही समझ पाएंगे जो बुद्धि से गहरे उतर कर हृदय का दिया जलाएंगे। हृदय के दिए से अर्थ है जो जानते उसे जीवन बना लेंगे, जो समझा है वो समझ ही ना हो कि समाधि बन जाएगी, जो सुना है वो सुना ही नहीं पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो जियो ज्यादा और तुम पहुंच जाओगे, ज्यादा तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे। तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं, तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक न हो पाओगे। पंडित मत बनना, पापी भी पहुंच जाते पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा, दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है बिना जाने। शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है, सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते। जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं, सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है, तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिवान है, वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं।
जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है।

मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश, इसलिए मन जल की तरह तरंगायत, शरीर स्थिर है पृथ्वी की तरह, 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, कितने ही बादल घिरे, कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गई, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए, आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता, मन की तो बात अलग, मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का उहापोह पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश मुक्त असीम, परमहंस कहा है ज्ञानियों को। लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया, बदलने का रहस्य समझ लेना चाहिए। तुम समझ भी लेते हो कभी कोई बात, इस स्फटिक मणि की भांति साफ दिखाई पड़ती है कि समझ में आ गई। अगर तुम उसी क्षण उसका उपयोग करने लगो तो और निखरती जाए। तुम कहते हो कल उपयोग कर लेंगे, परसों उपयोग कर लेंगे, अभी समझ में आ गई संभाल के रख ले। एक मित्र यहाँ सुनने आते थे, डॉक्टर से पढ़े लिखे, मैंने उनको देखा कि जब भी वो सुनते तो बैठ के बस नोट ले रहे, फिर मुझे मिलने आए तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। कहते थे आप इतनी अद्भुत बातें कह रहे हैं कि नोट कर लेना जरूरी है, पीछे काम पड़ेंगे, जब मैं समझा रहा हूं तब वो समझ नहीं रहे, वो कल पे टाल रहे हैं, समझ तक को कल पे टाल रहे हैं, करने की तो बात अलग, वो नोट ले रहे हैं अभी, फिर पीछे कभी जब जरूरत होगी काम पड़ जाएगी। तुम अभी मौजूद थे, मैं अभी मौजूद था, अभी ही उतर जाने देते हृदय में, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बचाव है समझने से, समझना नहीं। सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यही, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया, करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है, जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा, स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा। अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है, नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना, क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है, लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, कोई हर्षा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है, उनके पास भी कुछ स्वाद हो तभी। तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो, अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है कितना आसान है कहना बहुत कठिन, क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना

जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही नहीं, जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इनकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हाँ करना कितना कठिन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कहते थे जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर। कोई आदमी कहता ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कायर नहीं कह के काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हाँ कहा वही बहादुर है, वही साहसी है। लेकिन हाँ भी नपुंसक हो सकती है अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हाँ कहती हो। अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई, जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को, कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे, अब कौन झंझट करे कि है या नहीं, कि बिल्कुल ठीक जरूर होगा। अगर तुमने हाँ भी सिर्फ बचाव के लिए कही तो तुम्हारी हाँ नहीं ही है, उस हाँ में हाँ नहीं, नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है, उसी के पास पूछना जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास, और जिसके जीवन में कोई स्वाद, जिसके ओंठों से जिसकी श्वासों से शराब की थोड़ी गंध आती हो, उसी से शराब की बात पूछना। जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो, जिसकी आंखों में खुमार हो, उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है, कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में ना खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह है, तुम उसे हृदय में ले जाओ तत्क्षण तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में संभाल के, वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जाना बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेसे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है, बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो, और एक जीवन ऐसा होता है जिसे तुम फूलों की माला कह सकते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें दो फूल जुड़े नहीं है किसी अन्य संयुक्त धागे से। सब फूल अलग अलग है, बिखरे पड़े। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण परोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो, तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे है जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है।
वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेषता था। मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था लेकिन उपदेषता की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो सृष्टम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था। लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली, वैसे ही बैठा रहा आकड़ा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन ने कहा, बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एकाध वाक्य कोई टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क ट्वेन ने कहा, शर्त बदते हो, $100 की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है, जो मैं बोला हूं ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था, मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी बेच दी और लिखा, इसमें सब है जो भी तुम बोले हो, एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश, फूल की भीड़ एक ढेर, अनसयुत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बनता है। माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होश पूर्वक एक लयबद्धता देता है। तब जीवन न केवल गद्य बन जाता है, अगर धीरे धीरे तुम जीवन को निखारते ही जाओ तो गद्य पद्य हो जाता है। जीवन तुम्हारा गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, तुम्हारे भीतर से अहिर्निक संगीत की एक धारा छूटने लगती है, तुम बजने लगते हो। जब तक तुम बजो ना, तब तक तुम परमात्मा के चरणों के योग्य न हो सकोगे। और ध्यान रखना, व्यर्थ की शिकायतें सिकवे मत करना, उनसे सिकवा फजूल है, सीमाव काबले इल्फात तू ही नहीं। परमात्मा से क्या शिकायत करनी कि आनंद नहीं है जीवन में? काबले इल्तिफात तू ही नहीं, परमात्मा की कृपा के योग्य तू ही नहीं, इसलिए किसी और से सिकवा मत करना। तुम जैसे अभी हो ऐसे ही तुम परमात्मा पर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम माला बनो, तुम जीवन को एक दिशा दो, तुम ऐसे ही सब दिशाओं में मत भागते फिरो पागलों की तरह। तुम एक भीड़ मत रहो, तुम्हारे भीतर एक स्वरता है, और बुद्ध इसी को पुण्य कहते हैं। तुम चकित होगे, बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में एक स्वरता है वही पुण्य धर्म है। पापी एक भीड़ है, पुण्य धर्म एक माला है। पापी असंगत है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ, होता कुछ। पापी के भीतर एक स्वरता नहीं, बोलता कुछ है, आंखें कुछ और कहती हैं, हाथ कुछ और करते हैं। पापी एक साथ बहुत है, पुण्यात्मा एक है, योगस्थ है, जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है। वो जो भी करता है वो सब संयोजित है, वो सभी एक दिशा में गतिमान है। उसके पैर भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसकी आंखें जा रही है, उसके हाथ भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका हृदय जा रहा है, उसकी सांसें भी उसी तरफ जा रही जिस तरफ उसकी धड़कनें जा रही। वो इकट्ठा है, उसके जीवन में एक दिशा है, एक गति है, विक्षिप्तता नहीं है। जैसे फूलों से मालाएं बनती है वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को पुण्य अर्जन करना चाहिए।
ताकि तुम्हारा जीवन एक माला बन जाए। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं, खूब हृदय भर के सुनना। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन कोई उपाय नहीं चंदन के पास कि अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेज दे। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वह है सत्पुरुष की, वह है संत पुरुष की, वह है जागृत पुरुष की सुगंध। मनुष्य भी एक फूल है और जो कली ही रह गए खिल ना पाए उनके दुख का अंत नहीं। कलियों से पूछो जो खिलने में असमर्थ हो गई, जिनमें गंध भरी थी और लुटा ना पाई। ऐसे ही जैसे किसी स्त्री को गर्भ रह गया और फिर बच्चे का जन्म ना हो तो उसका संताप समझो। गर्भ बड़ा होता जाए और बेटे का जन्म ना हो तो उस स्त्री की पीड़ा समझो। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य पीड़ा में, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बड़ा हो रहा है वो जन्म नहीं पा रहा, तुम एक गर्भ लेके चल रहे हो। गर्भ बड़ा होता जाता है लेकिन तुम्हारे जन्म की दिशा खो गई, तुम भूल ही गए हो, तुम एक कली हो, उसके भीतर गंध इकट्ठी होती जा रही है, बोझिल हो गई है कली, अपने ही बोझ से दबी जा रही। मेरे देखे तुम्हारी पीड़ा ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारी असली पीड़ा यही है कि जो सुख हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। ये दुख की मौजूदगी नहीं है जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, ये उस सुख की मौजूदगी का अभाव है जो हो सकता था और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हें पीड़ा नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अमीरी का झरना फूट सकता था, फूटने को तत्पर खड़ा है, उस पर चट्टान पड़ी, वो झरना फूट नहीं पा रहा है। ये विकास की छटपटाहट है आदमी का संताप, ये आदमी की पीड़ा जन्म लेने की छटपटाहट है। सारा अस्तित्व खिलने में भरोसा रखता है, जब भी कोई चीज खिल जाती तो निर्भर हो जाती। आदमी भी एक फूल है और बुद्ध कहते हैं बड़ा अनूठा फूल है, और बुद्ध जान के कहते हैं उनका फूल खिला। तब उन्होंने एक अनूठी बात जानी कि विपरीत दिशाओं में भी जहां हवा नहीं भी जा रही हो वहां भी संत की गंध चली जाती। संत की गंध कोई सीमाएं नहीं मानती। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की सुगंध, न तदर की, न चमेली की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सज्जन की सुगंध एकमात्र सुगंध है जो संसार के नियम नहीं मानती, जो संसार के साधारण नियमों के पार है, जो अतिक्रमण कर जाती। सीख ले फूलों से गाफिल मुद्द आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इतना ही काफी नहीं कि खुद महको, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है समाधि फिर प्रज्ञा, समाधि फिर करुणा। बुद्ध ने कहा है वो ध्यान ध्यान ही नहीं जो करुणा तक न पहुंचाते। खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। उसी समाधि को बुद्ध ने परिपूर्ण समाधि कहा है जो लुट जाए सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बह जाए। लेकिन ये समझ लेने की बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। तुम साधारण अवस्था में सभी दिशाओं में दौड़ते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धत्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जिस दिन पहुंचता है उस दिन सभी दिशाओं में बहने में समर्थ हो जाता है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो, थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी।
तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और अखीर में पाते हो भिखारी के भिखारी विदा हो गए, जिससे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ गए, बहुत पकड़ना चाहा कुछ पकड़ने ना आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी है जैसे तुमने बहुत प्रसिद्ध गधे की सुनी हो कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए बराबर दूरी पर, और गधा बीच में खड़ा था। उसे भूख तो लगी तो वो बाएं तरफ जाना चाहा, तब मन ने कहा कि दाएं, उस तरफ भी घास था। दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा मर गया, क्योंकि न वो बाएं जा सका न दाएं। जब दाएं जाना चाहा तब मन ने कहा बाएं, जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दाएं। तुम्हारा मन यही कर रहा है। जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तब मन कहता दुकान, जब तुम दुकान पर बैठे हो मन को भजन याद आता मंदिर। ऐसे ही मर जाओगे। और दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा। आधे आधे मंदिर जाने की बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चला जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है, ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सार न होगा, आधा यहाँ आधा वहां। तुम दो नाव पर सवार हो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो। तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते हैं और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते हैं सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो, बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते हैं। महावीर ने कहा जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने एक को जान लिया उसने सब जान लिया। जीसस ने कहा सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अकेली तुम परमात्मा की खोज कर लो, प्रभु का राज्य खोज लो, ये सब अपने से आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। एक को जिसने गमाया वो सब गमा देता है और एक को जिसने पाया वो सब पा लेता है। लेकिन तुम्हारा सब अधूरा अधूरा है, अधूरे अधूरे के कारण तुम खंड खंड हो गए हो। तुम्हारे भीतर बड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा कहीं जा रहा दूसरा टुकड़ा कहीं जा रहा। तुम एक टूटी हुई नाव जिसके तख्ते अलग अलग बह रहे हैं, तुम कैसे पहुंच पाओगे, तुम कहां पहुंच पाओगे? तुम हो ही नहीं, तुम इतने खंड खंड हो गए हो कि तुम हो ये कहना भी उचित नहीं है। होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी दिशा बने, एक अनुशासन हो, एक श्रृंखला हो। तुम फूलों को पुरोना सीखो, फूलों की माला बनाना सीखो। जीवन में सत्य का आविष्कार करना है, प्रेम का आविष्कार करना है। जीवन में तुम कौन हो इसका आविष्कार करना है, इसे ऐसे ही नहीं गंवा देना है। तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे अनुशासन आना शुरू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ी सी भी दृष्टि हो, दिशा हो, कहां पहुंचना है, तो एक तारतम्य आ जाए। उस तारतम्य के साथ ही साथ तुम्हारे भीतर एकता का जन्म होगा। इस एकता के माध्यम से ही किसी दिन तुम माला बन सकते हो, और जिस दिन तुम माला बन जाते हो उस दिन परमात्मा के गले में चढ़ाने नहीं जाना होता, परमात्मा का गला खुद तुम्हारी माला में आ जाता, आ ही जाएगा। तुम काबिल हो गए, काबिले इल्तिफात तो ही नहीं, तभी तक अर्जुन थी। उनसे सिकबा फजूल है सीमा, शिकायत बेकार है। इतना ही जानना कि अभी हम तैयार नहीं हुए। अब ये फूलों की गठरी को तुम किसी के गले में डालना चाहोगे तो माला कैसे बनेगी? गिर जाएंगे फूल नीचे, धूल में पड़ जाएंगे। ये माला किसी के गले में डालनी हो तो माला होनी चाहिए। फूलों के ढेर को माला मत समझ लेना, थोड़ा देखो माला और ढेर में क्या फर्क है। ढेर में संगठन नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है।
माला में एक संगठन है, एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। धागा दिखाई नहीं पड़ता, एक फूल से दूसरे फूल में चुपचाप अदृश्य में पिरोया हुआ है। जीवन के लक्ष्य भी दिखाई नहीं पड़ते, एक क्षण से दूसरे क्षण में अदृश्य पिरोए होते हैं। बुद्ध उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो हर घड़ी के भीतर ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। जो भी करते हैं, एक बात ध्यान रखते हैं कि उस करने में से ध्यान का धागा न छूटे, वो धागा बना रहे। फूल से भी ज्यादा मूल्य धागे का है, लक्ष्य का है, दिशा का है। और जिस दिन ये घड़ी घट जाती, तुम संगठित हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, उसी दिन परमात्मा की कृपा तुम पर बरस उठती। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसलिए बुद्ध उस संबंध में चुप रहे। जो कहा जा सकता था उन्होंने कहा, जो नहीं कहा जा सकता था उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सारा जोर इस पर दिया है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे एक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान कैसे आचरण बन जाए, तुम्हारे बिखरे फूल कैसे माला बन जाए। इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इसके बाद बात करनी ठीक ही नहीं। इसके बाद जो होना है वो होता ही, वो हो ही जाता है, उसमें कभी कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा को तुम भूल जाओ तो अड़चन नहीं, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूला तो सब गया, सब डूबा। खुद की याद रखी और याददाश्त को रोज रोज संभालते गए। रोज रोज हर तरह से वो याददाश्त सघन होती चली जाए। जैसे जल गिरता है पहाड़ से, चट्टान मजबूत है, जल बिल्कुल नाजुक है, लेकिन रोज गिरता ही चला जाता है। एक दिन चट्टान तो रेत होकर बह जाती, जल की धार अपनी जगह बनी रहती। कठोर से कठोर भी टूट जाता है सातत्य के सामने। इसलिए घबराना मत, अगर आज तुम्हें अपनी दशा चट्टान जैसी लगे, तुम कहो कि कैसे ये अहंकार बहेगा, ये चट्टान बड़ी मजबूत है, कैसे ये दिल झुकेगा, ये झुकना जानता नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करना, तुम सिर्फ सातत्य रखना, ध्यान का, अवलोकन का, साक्षी का, से सब अपने से हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तित्व का विज्ञान दिया, उन्होंने मनोविज्ञान दिया, मेटाफिजिक्स, परलोक के शास्त्र की बात नहीं की। बुद्ध बड़े यथार्थवादी है, वे कहते हैं जो करना जरूरी है वही, और ज्यादा व्यर्थ की विस्तार की बातों में तुम्हें भटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम काफी भटके हुए हो, थोड़े से तुम्हें सूत्र दिए, अगर तुम उन्हें कर लो तो उन सूत्रों में बड़ी आग है, वो अंधकार को जला डालेंगे, वो व्यर्थ को राख कर देंगे, और उन सूत्रों की आग से तुम्हारे भीतर का स्वर्ण निखर के बाहर आ जाएगा। बुद्ध ने बहुत थोड़ी सी बातें कही, उन्हीं को दोहरा के कहा है, क्योंकि बुद्ध को कोई रस दर्शन शास्त्र में नहीं है। बुद्ध को रस है मनुष्य की आंतरिक क्रांति में, रूपांतरण में। बुद्ध को जिन लोगों ने गौर से अध्ययन किया है, उन सबको हैरानी होती है कि बुद्ध एक ही बात को कितनी बार दोहराए चले जाते। वो हैरानी इसलिए होती है कि बुद्ध व्यर्थ की बात को कभी बीच में नहीं लाते, बस सार्थक को ही दोहराते ताकि सतत चोट पड़ती रहे। और तुम ऐसे हो, तुम्हारी नींद ऐसी है, तुम्हारी तंद्रा ऐसी है कि बहुत बार दोहराने पर भी तुम सुन लो, वो भी आश्चर्य है। बुद्ध से कोई पूछता था तो वो तीन बार दोहरा के जवाब देते थे, उसी वक्त तीन दफा दोहरा के जवाब देते थे। क्यों तीन बार? क्योंकि बुद्ध से कोई पूछने लगा कि क्यों तीन बार, क्या आप सोचते हम बहरे? बुद्ध ने कहा नहीं, अगर तुम बहरे होते तो इतनी अड़चन न थी। तुम बहरे नहीं हो और फिर भी सुनते नहीं हो, तुम सोए नहीं हो, यही तो अड़चन है। सोए होते तो जगाना आसान हो जाता, तुम बन के लेटे हो, तुम सोने का ढोंग कर रहे हो, उठना भी नहीं चाहते, जाग भी गए हो। तुम सुनते हुए मालूम पड़ते हो और सुनते भी नहीं, इसलिए तीन बार दोहराता हूं। ये जो बुद्ध का दोहराना है धम्मपद में, इस पूरी चर्चा में बहुत बार आएगा, अलग अलग द्वारों से।
वो फिर वही लौट आते, कैसे तुम्हारा रूपांतरण हो। बुद्ध की सारी आकांक्षा अभीप्सा मनुष्य केंद्रित है, महावीर मोक्ष केंद्रित है, वो मोक्ष की चर्चा करते हैं। जीसस ईश्वर केंद्रित है, वो ईश्वर की चर्चा करते हैं। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है, जैसे मनुष्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है बुद्ध के लिए। साधार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं, सबके ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर कोई सत्य नहीं, क्योंकि जिसने मनुष्य के सत्य को समझ लिया उसे कुंजी मिल गई, सारे सत्यों के द्वार उसके लिए फिर खुले। बुद्ध को भोजन बनाओ, पियो, पचाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण होने लगा, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध की प्रतिमा उभरने लगी। हर चट्टान छिपाए है बुद्ध की प्रतिमा अपने में, जरा छेनी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है, व्यर्थ को छांट के अलग कर देना है। किसी ने माइकलेंजेलो से पूछा, क्योंकि चर्च के बाहर एक पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, चर्च के बनाने वालों ने उपयोग में नहीं लिया था, वो बड़ा अनगढ़ था। माइकलेंजेलो ने उस पर मेहनत की और उससे एक अपूर्व क्राइस्ट की प्रतिमा निर्मित की। किसी ने पूछा कि ये पत्थर तो बिल्कुल व्यर्थ था, इसे तो फेंक दिया गया था, इस तो राह का रोड़ा समझा जाता था, तुमने इसे रूपांतरित कर दिया, तुम अनूठे कलाकार हो। माइकलेंजेलो ने कहा, नहीं, तुम गलती कर रहे हो, जो मैंने पत्थर से प्रकट किया है वो पत्थर में छिपा ही था, सिर्फ मैंने पहचाना और जो व्यर्थ टुकड़े पत्थर के आसपास थे उनको छांट के अलग कर दिया। ये प्रतिमा तो मौजूद ही थी, मैंने बनाई नहीं, मैंने सिर्फ सुनी आवाज। मैं गुजरता था यहां से, पत्थर चिल्लाया और उसने कहा कि कब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, कोई पहचान ही नहीं रहा है, तुम मुझे उठा लो, जगा दो। बस मैंने छेनी उठा के इस पर मेहनत की, जो सोया था उसे जगाया। बुद्धत्व को कहीं पाने नहीं जाना है, हर एक के भीतर आज जो चट्टान की तरह मालूम हो रहा है अनगढ़, बस जरा से छेनी हथौड़े की जरूरत है। सबके भीतर से पुकार रहा है कि कब तक पड़ा रहूंगा, उघाड़ो मुझे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो तुम सुनो, जो सुभाषित तुम्हारे कानों में पड़ जाएं, उन्हें तुम स्मृति में संग्रहित मत करते जाना, उन्हें उतारना आचरण में, उन्हें जीवन की शैली बनाना। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ उनकी हवा तुम्हें घेरे रहे, उनके मौसम में तुम जीना, जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व उभरना शुरू हो गया, फूल माला बन गए। और तब एक ऐसी घटना घटती है जो संसार के नियमों के पार है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन जिनके भीतर का बुद्ध पुरुष जाग गया, बुद्ध चैतन्य जाग गया, उनकी सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है, सभी दिशाओं में उनकी सुगंध फैल जाती है। और जब तक तुम ऐसे अपने को लुटा ना सकोगे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे। एक ही नरक है अपने को प्रकट न कर पाना, और एक ही स्वर्ग है अपनी अभिव्यक्ति खोज लेना। जो गीत तुम्हारे भीतर अनगाया पड़ा है उसे गाओ, जो वीणा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है उसे छेड़ो, उसके तारों को, जो नाच तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है उसे तुम बोझ की तरह मत लो, उसे प्रकट हो जाने दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है, जब तक वो फूल न खिले तब तक बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीला रहेगी, संताप रहेगा। वो फूल खिल जाए, निर्वाण है, सच्चिदानंद है, मोक्ष।

0: पर हम।
1: अरे कहां पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत।
5: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
4: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं हूँ या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
6: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
4: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
6: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, I will start experiencing those qualities जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, I will start experiencing them in myself and the result of that will be कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
4: डिप्लीटेड
6: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
4: खुद किस situation में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा pain में जाएंगे?
6: That's the point. तो जैसे ही आपका रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ता है जो इतना पावरफुल है तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी आएगी? आज एक पेरेंट भी एक बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप जोड़ सकता है, नॉट लाइक गॉड, बट इफ अ पेरेंट हैज द पावर कि वो अनकंडीशनल लव दे स्टेबिलिटी के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है? We all love each other, we say, but so many conditions we apply, and that's why we are getting disempowered. लेकिन जैसे ही हमारा connection एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, you know, just look at him just as another soul. We are looking at him just as another soul. इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
4: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, wonderful,
6: no pain, right? No anger, no stress, none of all these things. Ever powerful. Ever pure, ever peaceful. अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर?
4: Oh, it'll start vibrating.
6: Now that's all. That I will start experiencing. कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic. लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर लव प्योरिटी मिलती है दैट हेल्प्स मी to overcome my pain and overcome my old sanskar. And that's why relationship with God ka jo sabse fundamental result nikalta hai, that is self-transformation. God does not transform me. We have to be very clear. Hum Bhagwan ko agar ye bhi kehte rahe na, mera ye sanskar thik kar do, mera ye sanskar, it's not going to happen. Nahi to Bhagwan aise kare aur sabke sanskar thik ho jaye. It doesn't happen. Hum khud thik karte hain. हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी. लेकिन यस, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ.
4: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है. वंडरफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप. अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है. मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में. कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है. तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर, दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल.
6: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से, एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है. एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन. हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच. एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच. अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है. लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी. और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ. मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल. एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ़ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन. यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए. लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन. अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ. अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है. नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ. रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसे आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ. आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
4: होना ही था,
6: या आपने ऐसा कर दिया,
4: ये आप इस हद तक,
6: यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं. ठीक है, इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या व्हाटएवर. तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता. लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
4: कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
6: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया, अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूँ अपनी बात तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? एंड जब हम दर्द में होते हैं हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है? वी नीड लॉट ऑफ लव. आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन. लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई, यू नो, वी स्टिल गेटिंग पेन. सो व्हेन आई शेयर माय प्रॉब्लम, माय कॉन्फ्लिक्ट, माय पेन विद हिम, इट इज़ नॉट दैट, यू नो, जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क. एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती, कि आप जो हो, जैसे हो, आई स्टिल लव यू, दिस हेल्प्स मी टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर अगैन. तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती। पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ कर्म कर रही हूँ। हाँ, मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट, बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट? ये तो मुझे क्रिएट करना है, आई क्रिएट द थॉट। लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते
4: हैं। क्या से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है।
6: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है? परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पे जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती। तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई, और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने के। जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है, तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है। अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है, एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
4: उनका फोन आ जाता,
6: तो वो कब होता है? जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है। सो बेसिकली ही इज एवर रेडी।
4: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड। यू नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू you are there personally, but if I want to get connected to my daughter or
6: see,
4: like anyone,
6: I may
4: else,
6: not be there personally. Sometimes I could be sitting here but I'm not here if my mind is there. Mera man ho sakta na main aapse baat kar rahi hu lekin man kahin aur hai, to aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga, kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain?
4: To main hi janna chahti hu, log bhi ye janna chahenge ki when I get connected to him, matlab jab main unko yaad karu, to kya wo connected mujhse hai hamesha?
6: Absolutely.
4: This is what I think,
6: actually,
4: some reassurance.
6: Hamesha hi connected hai, you know, it's like a transmitter जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है। अब सिर्फ रोल किसका बचा है?
4: मेरा,
6: रिसीवर। कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए। अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया? बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया? ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
4: परमात्मा,
6: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया
4: था। अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था।
6: वो तो है ही है, He's not gone anywhere. वो तो है ही है, लेकिन I was not first in that same consciousness, and second, I didn't know who I was connecting to. अब knowledge के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई कि पहले अपनी consciousness कि ये सब बातों की विस्मृति करके I am a pure soul. तो soul को याद कौन आएगा? Supreme Soul. फिर वो अनुभव करना. He's already there. लेकिन the minute I tune in, I will start experiencing the flow. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम meditation करने बैठते तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है तो सुबह जब हम meditation करने बैठते हैं we are sitting with the aim and objective कि हमारे subconscious mind में जो deep rooted संस्कार्स हैं क्योंकि सबसे important बात ये है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ माई कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं. तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पर जाएँ क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए. फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं. वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम. फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है. Now I'm changing it. I'm a pure soul, child of the ocean of purity. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ. I want के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको embed कहाँ करना पड़ेगा?
0: Subconscious.
6: यहाँ subconscious में. तो morning में silent में बैठकर conscious thoughts side पे कर subconscious layer को, जैसे you know ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं. तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन I can go on communicating with him. अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें. कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम. कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम. तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
4: बाकी सब.
6: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माय रिलेशनशिप. फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
4: आसान
6: बहुत ईजी हो जाएगा. एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव. And because I start experiencing, I will start expressing. And when I start expressing, I give. And when I give, my relationships become very close. जो हम meditation में बैठते हैं तो तीन आत्मा की जो तीन faculties हैं, mind, intellect and experience, संस्कार, ये तीनों faculties अपना अपना role play करते. Mind creates a thought, intellect उसको तुरंत visualize करता है. जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी. तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो भी कहाँ पर है, क्या कर रही है. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट प्योरिटी एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं, जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं। तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा, मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट। किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है। यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
0: बस फिर
6: वो मन वहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देम, सेड पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो इट्स नॉट अ पिक्चर। एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली। मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है। ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल, जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है। दिस इज ऑल मैटर, आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति। ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, प्रकृति के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस। यहाँ से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ, मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ। ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है संबंध अनुभव करने वाली, मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, प्योरिटी, डिविनिटी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। आई सी माई सेल्फ अपने घर की तरफ चलते हुए, अपने आप को देखें, वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ। गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस। आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी, आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ। अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर, वाइब्रेटिंग ऑल ओवर। मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ। आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था, मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ। मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं, मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा। देखने का प्रयास करें।

किसी भी और व्यक्ति के साथ है वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है, ताकि रिश्ता इतना सुंदर इतना डायनेमिक हो सकता है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम जिसको हम अभी तक तलाश रहे हैं। थैंक यू सो मच। हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सचिवानी थैंक यू सो मच।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों कथाओं की बात करते हैं जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत कर दी थी

0: एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और वो है महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसे उन्होंने गणेश जी को लिखवाया था। और हम पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान रहे थे, और हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो आरुणी की कथा थी, उपमन्यु, वेद, ये जो आचार्य जी के शिष्य थे, इनकी कथा जानी थी। और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी, इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रु और वनिता।
0: जी,
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर का बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गयी। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया, तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। वह घोड़ा अश्व रत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वे पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथे हैं। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू